सुप्रभात श्रोताओं, हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 30वीं तिथि, तदनुसार 21 जुलाई सन 2026। सवेरे के 5:58 और 52 सेकंड हो रहे हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा के प्रसारण अब आरंभ होते हैं।

0: ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर। सवेरे के 6 बजने को हैं। अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में उत्तरी मैसेडोनिया पहुंच गई हैं। ये किसी भारतीय राष्ट्रपति की मैसेडोनिया की पहली यात्रा है। राष्ट्रपति मुर्मू मैसेडोनिया के राष्ट्रपति गोर्डाना सिल्जानोस्का दावोका के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। वे प्रधानमंत्री क्रिस्टियन मिकोस्की, असेंबली के स्पीकर अफ्रिम गाशी से भी मुलाकात करेंगी और उत्तरी मैसेडोनिया की असेंबली को संबोधित करेंगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचावास्केस से मुलाकात की। बैठक में डॉक्टर जयशंकर ने लैटिन अमरीका और कैरेबियाई क्षेत्र के लिए प्रवेश द्वार के रूप में पनामा के साथ भारत के संबंधों को और प्रगाढ़ करने के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने व्यापार, कारोबार, विकास, समुद्री मामलों, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा और डिजिटल सहयोग को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई। इससे पहले विदेश मंत्री ने भरोसा जताया कि पनामा के विदेश मंत्री की यात्रा से सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। पनामा के विदेश मंत्री के साथ बैठक में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और पनामा आपसी साझेदारी प्रगाढ़ करने के लिए उत्सुक हैं। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन शुरुआत हंगामे से हुई। विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच कल दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्रवाई कई बार स्थगित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मॉनसून सत्र में सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया है। सत्र से पहले संवाददाताओं से बातचीत में प्रधानमंत्री ने कहा कि केवल एक महीने में देश ने कई उपलब्धियां प्राप्त की हैं।
2: मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं, और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
1: नई दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में 118 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा कि विरोध प्रदर्शन करने वालों ने पुलिस कर्मियों पर हमला किया, पुलिस और दूसरी सरकारी गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की। पुलिस ने कहा कि झड़प के दौरान करीब 60 प्रदर्शनकारियों के भी घायल होने की खबर है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली में कल प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधि मंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य बनाने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार से अयोध्या राम मंदिर के दान में कथित हेराफेरी की जांच के लिए विशेष जांच दल बनाने की संभावना के बारे में जानकारी मांगी है। सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को इस मुद्दे का राजनीतिकरण न करने की चेतावनी दी। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों में मौसम विभाग द्वारा जारी रेड अलर्ट के मद्देनजर आज सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और सिरमौर जिलों में भी भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र के अनुसार मंडी जिले की 11 और चंबा जिले की 10 सड़कों सहित कुल 36 सड़कें बंद हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी ऐसा ही मौसम रहेगा। मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल, कर्नाटक, तेलंगाना, विदर्भ और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बिजली गरजने और तेज हवाओं के साथ तूफान आने की आशंका व्यक्त की है। इस बीच दिल्ली में हुई बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दिलाई है। पीवी सिंधु आज से शुरू होने वाले चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय दल का नेतृत्व करेंगी। महिला सिंगल्स में सिंधु के साथ देविका सिहाग और उन्नति हुडा शामिल हैं। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी और एचएस प्रणॉय टीम का हिस्सा हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर। समय सवेरे के 6:05 और आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना। सुप्रभात, अभिनंदन सभी श्रोताओं का कार्यक्रम वंदना में। प्रातः मंगल बेला और दिन भी है मंगलवार का। आइए श्रोताओं इस पावन दिन को समर्पित करें श्री राम के चरणों में। श्रोताओं, राम का नाम या राम के नाम का स्मरण ये केवल दो शब्द नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति की आस्था, करुणा, सत्य और मर्यादा का अमर मंत्र है। जब जब मन व्याकुल होता है होठों पर अनायास हे राम का उच्चारण हो उठता है। यही पुकार हमें सत्य, प्रेम और मानवता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। जब मन भटक जाए, जीवन थक जाए तो हे राम दिशा बन जाता है। इन्हीं भावों के साथ आइए आरंभ करें श्रद्धा, भक्ति और आत्मिक शांति से परिपूर्ण कार्यक्रम वंदना का।

जहाँ राम का नाम है वहाँ हनुमान जी की अटूट भक्ति है, और जहाँ हनुमान जी का स्मरण है वहाँ भय का स्थान नहीं केवल विश्वास और शक्ति का संचार होता है। पवन पुत्र हनुमान शक्ति भक्ति सेवा और समर्पण के अद्भुत प्रतीक हैं। हनुमान जी का स्मरण मात्र मन में साहस आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। आइए श्रोताओं, हम सब मिलकर संकट मोचन श्री हनुमान जी के चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित करें।

श्रोताओं, अपनी कमियों को स्वीकार कर प्रभु के चरणों में झुक जाना ही सच्ची भक्ति है। हम सभी सांसारिक धूल से भरे हैं, लेकिन अगर ईश्वर की कृपा हम पर बरस जाए तो हमें निर्मल बना सकती है, क्योंकि प्रभु की करुणा, प्रेम और पवित्रता ही आत्मसमर्पण और सच्ची श्रद्धा भावना को जन्म देती है। तो आइए अपनी कमियों को स्वीकार करें और प्रभु के चरणों का अमृत कलश चखें।

भक्ति संगीत का ये कार्यक्रम श्रोताओं आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। श्रोताओं, इबादत और मोहब्बत का रिश्ता दिल से जुड़ा होता है। जब इंसान अपने रब, अपने रहबर की यादों में खो जाता है तो उसे हर तरफ एक खूबसूरत नूर और सुकून का एहसास होता है। और आइए इसी एहसास के साथ सुनते हैं ये खूबसूरत नात।

जहाँ भक्ति की जोत जलती है वहाँ संकटों का अंधियारा मिट जाता है। पवन पुत्र हनुमान का नाम लेते ही हर मन विश्वास से भर जाता है। आइए श्रद्धा और प्रेम का दीप जलाएं, श्री हनुमान जी की पावन आरती में अपना मन और हृदय समर्पित कर जाएं।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे भक्ति संगीत कार्यक्रम वंदना। ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर। समय सवेरे के 6:30 और आइए अब सुनते हैं भव्य प्रस्तुति श्री रामचरित मानस गान से आज का प्रसंग। गायक कलाकार हैं सुरेश वाडिगर और संगीत निर्देशन है सतीश भाटिया का।

भरत के साथ आए अयोध्यावासी मंदाकिनी तट पर ठहरे हुए हैं। माताओं, गुरु तथा मंत्री से आज्ञा लेकर भरत निषाद राज और शत्रुघ्न के साथ श्री राम के आश्रम के समीप पहुंचते हैं। माता कैकेयी की करनी का ध्यान आते ही उनके मन में संकोच उत्पन्न होता है, किंतु श्री राम की सदाशयता और उदारता के प्रति वो उतने ही आश्वस्त हैं। आश्रम और प्रकृति की शोभा देख भरत के मन में वैसे ही आनंद का संचार होता है जैसे भूखे व्यक्ति को श्रेष्ठ भोजन प्राप्त करने पर होता है। रमणीय वन, सुहावनी पर्वत श्रृंखला, मुनियों के मनोरम निवास स्थान, वन प्रांतर के पशु पक्षी मन में एक सुखद साम्राज्य की कल्पना जगाते हैं। एक ऐसा परिवेश जहां केवल आनंद और मंगल की सृष्टि हो रही है। निषाद राज एक ऊंचे भूखंड पर चढ़कर भरत को श्री राम का आश्रम दिखाते हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस कांड से आज का प्रसंग। गायक कलाकार थे सुरेश वाडेकर और संगीत निर्देशन था सतीश भाटिया का। ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्स पर। समय सवेरे के 6:40 और लीजिए प्रस्तुत है आज का चिंतन।
1: अहंकार तो मिथ्या है, उसे जानना होगा। ये तभी संभव है जब मनुष्य सभी में परम पुरुष के अंश को पहचान ले। इससे हिंसा, द्वेष, लालच, ये सभी दुर्भावनाएं स्वतः ही न्यून हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने भी कहा है कि सृष्टि के सभी छोटे बड़े परमाणु स्वतंत्र होते हुए भी आपस में इस तरह बंधे हुए हैं कि वे एक ही वस्तु के बन गए हैं। अनेकता में एकता ही विश्व का रहस्य है। इस विश्व रहस्य का ज्ञान ऐहिक जीवन का चरम उद्देश्य है। भिन्न भिन्न धर्म पृथक होकर भी एक समन्वय स्वरूप विश्व धर्म की पुष्टि करते हैं। मां आनंदमयी कहती हैं कि ईश्वर के साथ मनुष्य की चिरंतन एकता है, वो कभी टूटती नहीं है। लेकिन मनुष्य बाहर की ओर देखता है, भीतर की ओर नहीं, तभी उसे एकता की अनुभूति प्राप्त करने में सफलता नहीं मिलती। डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा कि भौतिक उपलब्धि ही सब कुछ नहीं है। जब तक मनुष्य में दिव्य दृष्टि नहीं होती, उसका जीवन एक मशीन के समान है। मनुष्य के भीतर एक आत्मा है, जो इस आत्मा का दर्शन नहीं कर पाता, उसका जीना व्यर्थ है। यदि हम अच्छे पड़ोसियों की तरह रहते हुए अपनी समस्याओं को शांति और सद्भावना के साथ सुलझा लेते हैं, तो यही हमारे जीवन का सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार होगा। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि प्रेम के रूप में ईश्वर की उपलब्धि ही भक्ति है। वह प्रेमानुभूति वासना या आसक्ति के रहते नहीं प्राप्त हो सकती। उसी तरह एकत्व की अनुभूति और आत्म स्वरूप का दर्शन ही ज्ञान है, और ये ज्ञान अहम बुद्धि के रहते संभव नहीं है। वस्तुतः भक्ति एवं ज्ञान एक ही है। मन को एकाग्र चित्त कर ध्यान करने के लिए किसी विषय का आधार आवश्यक है। बाहरी अवलंबन तो मन को स्थिर करने के लिए है। भाग्य पर भरोसा, ये तो मृत्यु के चिन्ह है। कायरता की पराकाष्ठा और क्या होगी। कर्म को ही तपस्या का अंग मानना चाहिए। दूसरों के कल्याणार्थ कर्म के फल से मन का टेढ़ापन भी सीधा हो जाता है, और वो मनुष्य निष्कपटता में औरों के मंगल के लिए प्राण भी देने को तत्पर हो जाता है। तभी अनेकता में एकता का आभास प्राप्त होता है। दूसरों का कल्याण ही जीवन का ध्येय होना चाहिए। जाति पाति का मिथ्या अभिमान ही हमें उद्यमशील नहीं बना पाता है। शिक्षा के व्यापक प्रसार से ही अंधविश्वास और अज्ञानता दूर की जा सकती है। धर्म, अंधविश्वास, अतिशय भावुकता से मुक्त होना चाहिए। बौद्धिकता एवं करुणा का अपूर्व समन्वय ही उच्च दर्शन है। हम सभी आपस में प्रेम से रहें, यही उचित है। परंतु आत्मीयता के अभाव में पारस्परिक प्रेम उत्पन्न होने में संशय है। रविंद्रनाथ टैगोर ने भी कहा कि संस्कृति मनुष्य के विकास में अधिक सहायक होती है। देश के विकास में अपने रचनात्मक कार्यों का सहयोग दें, तभी हम अपनी एकता को पहचान पाएंगे।
0: अभी आप चिंतन सुन रहे थे। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। समय सवेरे के 6:45 और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम काव्य धारा, जिसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे श्री नरेंद्र वर्मा से ये काव्य पाठ।
2: मेरी पहली कविता का शीर्षक है अहंकार। अहंकार का भाव कभी जब आने लगता है, तब जुगनू सूरज को आंख दिखाने लगता है। अहंकार का भाव कभी जब आने लगता है, तब जुगनू सूरज को आंख दिखाने लगता है। अहंकार का भाव कभी जब आने लगता है। देव देवता ज्ञानी ध्यानी सबको ये भरमाए, जिसके सर पर करे सवारी उसका मान घटाए। देव देवता ज्ञानी ध्यानी सबको ये भरमाए, जिसके सर पर करे सवारी उसका मान घटाए। सही आदमी गलत डगर पर जाने लगता है, अहंकार का भाव कभी जब आने लगता है। और अहित सदा करता है उसका जिसने इसको पाला, अच्छे गुण वाला भी मन का हो जाता है काला। अहित सदा करता है उसका जिसने इसको पाला, अच्छे गुण वाला भी मन का हो जाता है काला। रावण जैसा ज्ञानी जाल बिछाने लगता है, अहंकार का भाव कभी जब आने लगता है, तब जुगनू सूरज को आंख दिखाने लगता है। और बिना बुलाए ये आ जाए संग न इसके रहना, बुद्धि भ्रष्ट करे पल भर में संत जनों का कहना। सब कुछ होने पर भी चैन चुराने लगता है, अहंकार का भाव कभी जब आने लगता है, तब जुगनू सूरज को आंख दिखाने लगता है। और मैं ही

में पाले, इसीलिए जब उनको शीश झुकाने लगता है, अहंकार का भाव कभी जब आने लगता है, तब जुगनू सूरज को आँख दिखाने लगता है, तब जुगनू सूरज को आँख दिखाने लगता है, तब जुगनू सूरज को आँख दिखाने लगता है। मेरी दूसरी कविता का शीर्षक है भोर सुहानी। आज अगर ऋतु पतझर है तो कल बगिया मुस्काएगी, आज अगर ऋतु पतझर है तो कल बगिया मुस्काएगी, चुप रह करके रात काट दे भोर सुहानी आएगी, आज अगर ऋतु पतझर है तो कल बगिया मुस्काएगी। मनमर्जी के काम ना हो जब मान समय तूफानी है, मनमर्जी के काम ना हो जब मान समय तूफानी है, काल चक्र के आगे भैया हार सभी ने मानी है, जब प्रतिकूल हवा ही हो तब क्या किस्मत कर पाएगी, आज अगर ऋतु पतझर है तो कल बगिया मुस्काएगी, चुप रह करके रात काट दे भोर सुहानी आएगी। और जो जन तुझसे आज दूर हैं कल तेरे हो जाएंगे, जो जन तुझसे आज दूर हैं कल तेरे हो जाएंगे, तुझको बुरा बताने वाले कल तेरे गुण गाएंगे, आएगा अनुकूल समय जब रज कंचन बन जाएगी, आज अगर ऋतु पतझर है तो कल बगिया मुस्काएगी, चुप रह करके रात काट दे। और हो तलाश जिनको मंजिल की राहें उनको मिलती हैं, हो तलाश जिनको मंजिल की राहें उनको मिलती हैं, लाख लगे डाली से कंटक लेकिन कलियां खिलती हैं, गम ना कर तेरा भी एक दिन द्वार खुशी खटकाएगी, आज अगर ऋतु पतझर है तो कल बगिया मुस्काएगी, आज अगर ऋतु पतझर है। और कुछ अपना कुछ ध्यान हवा का रख कर सपने बुनता चल, कुछ अपना कुछ ध्यान हवा का रख कर सपने बुनता चल, मन की तेरे जो उड़ान है उसकी भी धुन सुनता चल, सतत साधना तेरी एक दिन जग में महक लुटाएगी, आज अगर ऋतु पतझर है। और है अभाव में लोग बहुत से तू ही नहीं अकेला रे, है अभाव में लोग बहुत से तू ही नहीं अकेला रे, दुख सुख के घाटों पर लगता इस जीवन का मेला रे, सत्कर्मों की पगडंडी ही अमृत पान कराएगी, आज अगर ऋतु पतझर है तो कल बगिया मुस्काएगी, चुप रह करके रात काट दे भोर सुहानी आएगी, भोर सुहानी आएगी, भोर सुहानी आएगी। मेरी तीसरी कविता का शीर्षक है देश प्रेम। जिस पथ से भी हम गुजरेंगे उस पथ में फूल खिला देंगे, जिस पथ से भी हम गुजरेंगे उस पथ में फूल खिला देंगे, हम भारत माँ के शूरवीर दुनिया में विजय दिला देंगे, जिस पथ से भी हम गुजरेंगे उस पथ में फूल खिला देंगे, हम भारत माँ के शूरवीर दुनिया में विजय दिला देंगे, जिस पथ से भी हम गुजरेंगे। हो बैरी चाहे कोई कहीं हम कहाँ किसी से डरते हैं, भारत माँ की रखवाली को दिन रात तपस्या करते हैं, गर नजर उठी इस और कभी दुश्मन की जड़ें हिला देंगे, जिस पथ से भी हम गुजरेंगे उस पथ में फूल खिला देंगे। बापू ने हमें सिखाया है तुम डगर अहिंसा की चुनना, बापू ने हमें सिखाया है तुम डगर अहिंसा की चुनना, पर इसका मतलब यह नहीं अरिजाल लगे बुनने अपना, यदि कोई हमें ललकारेगा हम पानी उसे पुला देंगे, जिस पथ से भी हम गुजरेंगे उस पथ में फूल खिला देंगे। और छीना झपटी मारामारी घर में भी सहन नहीं होगी, छीना झपटी मारामारी घर में भी सहन नहीं होगी, हम सदा रहे मिलकर सारे आए न नजर कोई ढोंगी, छल कपट देश से कोई करे, छल कपट देश से कोई करे, मिट्टी में उसे मिला देंगे, जिस पथ से भी हम गुजरेंगे उस पथ में फूल खिला देंगे। और अंतिम छंद है कि जिस धरती पर महकी सांसे वो हमें जान से प्यारी है, जिस धरती पर महकी सांसे वो हमें जान से प्यारी है, शेरों के हमने दांत गिने बोलो कब हिम्मत हारी है, धरती से लेकर अंबर तक भारत के छोर मिला देंगे, जिस पथ से भी हम गुजरेंगे उस पथ से फूल खिला देंगे, हम भारत माँ के शूरवीर दुनिया में विजय दिला देंगे, दुनिया में विजय दिला देंगे, दुनिया में विजय दिला देंगे। और अंत में आपके सामने गजल पेश कर रहा हूँ। वो समंदर है कहाँ कोई उसका सानी है, हम तो सूखे हुए पोखर हैं कहाँ पानी है, वो समंदर है कहाँ कोई उसका सानी है,
हम तो सूखे हुए पोखर हैं, कहाँ

0: पानी है और जो वो चाहता है वही होता है इस दुनिया में, जो वो चाहता है वही होता है इस दुनिया में, सारे आलम की लिखी उसने खुद कहानी है, वो समंदर है कहाँ कोई उसका सानी है। और दूर कितना हो वो हमको दिखाई देना दे, दूर कितना हो वो हमको दिखाई देना दे, उसके ही दम से मियाँ खून में रवानी है, उसके ही दम से मियाँ खून में रवानी है। और भूल के उसको भला कैसे सुख उठाओगे, भूल के उसको भला कैसे सुख उठाओगे, सबके कर्मों का सफर याद उसे जुबानी है। और फर्ज बनता है तेरा बात तू अमन की कर, फर्ज बनता है तेरा बात तू अमन की कर, तू तो इंसान है तुझे रोशनी दिखानी है, वो समंदर है कहाँ कोई उसका सानी है। और कोई साथी न मिलेगा जब उड़ेगी चिड़िया, कोई साथी न मिलेगा जब उड़ेगी चिड़िया, सारे जुल्मों की तुझे पोट खुद उठानी है। और क्यों बगावत पे तुला है ये जेब भरने को, क्यों बगावत पे तुला है ये जेब भरने को, कौन सी चीज है जो साथ मियाँ जानी है, और सच और झूठ में मस्ताना कब हुई यारी। मकता पेश कर रहा हूँ कि सच और झूठ में मस्ताना कब हुई यारी, आज की बात नहीं बात ये पुरानी है, हम तो सूखे हुए पोखर हैं कहाँ पानी है, वो समंदर है कहाँ कोई उसका सानी है, कहाँ कोई उसका सानी है, कहाँ कोई उसका सानी है।
1: काव्यधारा कार्यक्रम के अंतर्गत अभी श्रोता सुन रहे थे श्री नरेंद्र वर्मा से ये काव्य पाठ। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। समय सवेरे के 6:55 होने को हैं। श्रोताओं आपको याद दिला दें आज शाम 6:05 पर कार्यक्रम कृषि जगत में आप सुनेंगे बासमती धान रेडियो कृषि पाठशाला, जिसका एपिसोड होगा 10 और जिसके प्रायोजक होंगे बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मेरठ। साथ ही सुनिएगा वार्ता गुणवत्ता युक्त बासमती उत्पादन हेतु सुझाव। वार्ताकार होंगे डॉक्टर सिद्धार्थ त्रिपाठी, जिनसे बातचीत करेंगे प्रमोद सिंह। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। सवेरे के 6:55 होने को हैं। अब आप सुनेंगे समाचार, पहले संस्कृत में उसके बाद हिंदी में।

0: आक्रामकं हिंसात्मकं च आचरणं प्रदर्शितम्। पुनः पुनः पूर्वसूचनाः विधिसम्मतानि निर्देशानि च प्राप्यापि ते विद्रोहं कृतवन्तः। प्रवर्तमानानां निषेधात्मक आदेशानां च उल्लंघनं कृतवन्तः। दिल्ल्यारक्षिबलेन उक्तं यत् प्रदर्शनकारिभिः आरक्षकाणाम् उपरि आक्रमणं कृतवन्तः। आरक्षकाणां प्रशासकीय वाहनान् च भंगं कृत्वा हिंसाम् आचरितवन्तः, येन सार्वजनिक व्यवस्थायाः कृते गंभीरा विभीषिका समुत्पन्नासीत्। बलेन उक्तं यत् अवशिष्ट व्रणितानां आरक्षक कर्मचारिणां चिकित्सा विधि परीक्षणं प्रचलति। दिल्ल्यारक्षिबलेन उक्तं यत् कलह समये प्रायः षष्टि आन्दोलनकारिणः अपि व्रणिताः जाताः। ते उक्तवन्तः यत् प्रायः सप्ततिः प्रदर्शनकारिणः निगडिताः सन्ति, समुचित विधि प्रक्रिया आरब्धा अस्ति। सहैव भारतीय न्याय संहितायाः प्रासंगिकोपबन्धैः अथ अन्य प्रासंगिक विधिभिः च एफआईआर प्राथमिकी इति पञ्जीकृतमस्ति। युक्रेन देशस्य ओडेसा पत्तनात् प्रस्थानावधौ एमवी गोल्डन लियो इत्यस्यां नौकायां कृताक्रमणस्य भारतेन निन्दा कृता। विदेश मन्त्रालयः एकस्मिन् वक्तव्ये अवदत् यत् चत्वारः भारतीयाः नागरिकाः दुर्दैववशात् मृत्युमुपगताः, एकः गंभीरावस्थायां चिकित्सालये उपचाराधीनः अस्ति। मन्त्रालयेन उक्तं यत् उपलब्ध सूचनानुसारं घटनासमये पञ्च भारतीय नागरिकैः सह सप्तदश चालकदलस्य सदस्याः आसन्। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः नवदिल्ल्यां पनामादेशस्य विदेशमन्त्रिणा हेवियर एडवार्डो मार्टिनेज आचा वास्केज इत्यनेन सह मेलनं कृतवान्। ह्यः जाते उपवेशने डॉ जयशंकरः लैटिन अमेरिका कैरिबियन क्षेत्रयोः प्रवेशद्वाररूपेण पनामादेशेन सह भारतस्य सम्बन्धस्य गहनतायाः महत्वम् अधोरेखितवान्। व्यापारोद्योग विकास स्वास्थ्य कृषि शिक्षा आंकिकीय सहयोगादीनां प्रगति विषये उभौ विस्तृतं विमर्शं कृतवन्तौ। बहुपाक्षिक मञ्चेषु सहभागित्वस्य विषये अपि तौ अवदताम्। प्रशासनेन संसूचितं यत् अस्य वर्षस्य जून मास पर्यन्तं देशे प्रायः 51,55,55 कोटि उपयोक्तारः यूपीआई इत्यनेन सह सम्बद्धाः जाताः इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। तीन राष्ट्रों की यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तरी मैसेडोनिया पहुंच गई हैं। ये किसी भारतीय राष्ट्रपति की उत्तरी मैसेडोनिया की पहली यात्रा है। राष्ट्रपति मुर्मू मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्डाना सिल्जानोवस्का दावकोवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। वे प्रधानमंत्री क्रिस्टीजन मिकोस्की और असेंबली के स्पीकर आफ्रिम गाशी से भी मुलाकात करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू उत्तरी मैसेडोनिया की असेंबली को संबोधित भी करेंगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज से मुलाकात की। बैठक में डॉ जयशंकर ने लैटिन अमरीका और कैरिबियाई क्षेत्र के लिए प्रवेश द्वार के रूप में पनामा के साथ भारत के संबंधों को और प्रगाढ़ करने के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने व्यापार, कारोबार, विकास, समुद्री मामलों, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा और डिजिटल सहयोग को आगे बढ़ाने सहित कई मुद्दों पर व्यापक चर्चा की। इससे पहले विदेश मंत्री ने भरोसा जताया कि पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज की सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करेगी। पनामा के विदेश मंत्री के साथ बैठक में डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देश आपसी साझेदारी को प्रगाढ़ करने के लिए उत्सुक हैं। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच कल दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही कई बार स्थगित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मानसून सत्र में सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया है। सत्र से पहले संवाददाता

0: से बातचीत में प्रधानमंत्री ने कहा कि महज एक महीने में देश ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं।
1: मानसून हो या मानसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है और देशवासी गर्व से भर जाएं, इस प्रकार की सिद्धियों का सिलसिला चला है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
0: नई दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में 118 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा कि विरोध प्रदर्शन करने वालों ने पुलिसकर्मियों पर हमला किया, पुलिस और दूसरी सरकारी गाड़ियों में तोड़फोड़ की और हिंसा की। पुलिस ने कहा कि झड़प के दौरान करीब 60 प्रदर्शनकारियों के घायल होने की भी खबर है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से कल मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधिमंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और सामान्य स्थिति बहाल करने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार से अयोध्या राम मंदिर के दान में कथित हेराफेरी की जांच के लिए विशेष जांच दल बनाने की संभावना के बारे में जानकारी मांगी है। सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को इस मुद्दे का राजनीतिकरण न करने की चेतावनी दी है। जब उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले में विशेष जांच दल की जांच के बारे में जानकारी देगी तो सर्वोच्च न्यायालय इस महीने की 27 तारीख को याचिका पर फिर से सुनवाई करेगा। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों में मौसम विभाग द्वारा तेज बारिश का रेड अलर्ट के मद्देनजर आज सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और सिरमौर जिलों में तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र के अनुसार मंडी जिले की 11 और चंबा जिले की 10 सड़कों सहित कुल 36 सड़कें बंद हैं। भारत ने डेंगू की पहली वैक्सीन को मंजूरी दी है। औषधि महानियंत्रक ने टेकोडा बायोफार्मास्यूटिकल्स इंडिया की क्यूडेंगा वैक्सीन के विपणन की अनुमति दी है। और पीवी सिंधु आज से शुरू होने वाले चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय दल का नेतृत्व करेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर, ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। समय सवेरे के 7:05 और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा, जिसमें आज जानकारी का विषय है जल ही जीवन का आधार है।
3: हजारों वर्षों के अनुभव के आधार पर भारतीय शास्त्रकारों का ये कथन सर्वथा सत्य है। शरीरे जर्जरी भूते व्याधिग्रस्ते कलेवरे औषधम जाह्नवी तोयम वैद्या नारायणो हरि, अर्थात वृद्धावस्था से जर्जर या रोगग्रस्त शरीर के लिए जल ही औषधि है और ईश्वर ही वैद्य है। हमारे शरीर के असंख्य सेलों में जल भरा हुआ है। कोई सेल नहीं, कोई तंतु नहीं जहां जल का कुछ ना कुछ अंश ना हो। शरीर में प्रोटीन, वसा और कार्बोस के ऑक्सीकरण से जल उत्पन्न होता है। रक्त और लसिका का अधिक भाग जल ही होता है। हमारे शरीर की रचना में जल की विपुलता है। शरीर के वजन का 2/3 भाग जल तथा केवल 1/3 भाग ठोस है। दांत शरीर का सबसे ठोस पदार्थ कहा जा सकता है, उसमें भी 10% जल का अंश है। शरीर के अन्य भागों की हड्डियों में 14% से अधिक जलीय अंश है। सारांश ये है कि 120 पाउंड वजन वाले शरीर में 80 पाउंड जल होता है। मनुष्य की आयु वृद्धि के साथ साथ शरीर के जलीय अंश में किंचित कमी और ठोस अंश में थोड़ी वृद्धि होने लगती है। मानव जीवन और मानव स्वास्थ्य के लिए नितांत आवश्यक जल को इसीलिए प्रकृति ने इतना सुलभ कर दिया है कि वो हर प्राणी के लिए सरलता पूर्वक

0: उपलब्ध हो सके। जल में पुराने और अनुवांशिक रोग तक को दूर करने का सामर्थ्य है। इस प्रकार हमारे शरीर को एक जटिल जल प्रणाली भी कहा जा सकता है। छोटी और बड़ी कई प्रकार की नलिकाओं में से एक अंश से दूसरे अंश में भिन्न भिन्न प्रकार के तरल पदार्थ प्रतिक्षण दौरा करते रहते हैं। प्रकृति शरीर के प्रत्येक तंतु को जो खाद्य परोसती या पहुंचाती है, जल ही उसका वाहन है। शरीर का प्रत्येक शुद्धतम कोश भी सर्वदा पानी से धुलता रहता है। शरीर में रस की समता को बनाए रखने के लिए प्रतिदिन पानी के पर्याप्त मात्रा का सेवन करना चाहिए। यदि हम ऐसा ना करें तो प्रकृति खून, मांसपेशी और शरीर के विभिन्न तंतुओं से जलीय अंश लेने के लिए बाध्य होता है। उसके फल स्वरूप प्यास बढ़ती है, आंखें बैठ जाती हैं, होंठ और जीभ सूख जाता है, मल कड़ा हो जाता है, वजन घट जाता है, त्वचा शुष्क व सिकुड़ जाती है और उसके बाद रक्त प्रवाह बंद होने से लोगों की मृत्यु भी हो सकती है। शरीर में जल का अभाव होने से शरीर के अंदर अम्ल और क्षार के अनुपात में भी परिवर्तन आता है और कभी कभी शरीर का ताप बढ़ जाता है। गर्म देशों में काम करने वाले लोग यदि प्यास के अतिरिक्त पानी ना पिए तो उनकी कार्य शक्ति नष्ट हो जाती है, स्वास्थ्य खराब हो जाता है और सिर घूमना, अवसाद तथा श्वास कष्ट आदि लक्षण प्रकट होते हैं। अंत में जीवन शक्ति का क्षय भी हो सकता है। साधारण पेयजल जब पेट में पहुंचता है तो पीने वाले के स्वभावानुसार कभी जल्दी कभी देर में शरीर कणों में समाता है और उनके संपर्क में देर तक रहने से धुलाई का काम भी करता है। पीने पर तुरंत ही अन्य मार्ग से होकर वो आमाशय में पहुंचता है और पाचन क्रिया पर प्रभाव भी डालता है। पानी पीने से मूत्राशय किडनी का कार्य भी सुचारू रूप से होता है। साथ ही शरीर की भिन्न भिन्न रस स्रावी ग्रंथियों का स्राव ठीक से होता है। विशेषज्ञों के अनुसार पर्याप्त पानी पीने से हृदय और त्वचा आदि शरीर के समस्त यंत्रों की कार्यक्षमता बढ़ती है तथा रक्त साफ होकर सारे शरीर में सुचारू रूप से संचालित होता है। तंदुरुस्त रहने के लिए हर एक मनुष्य को 24 घंटे में 3 लीटर पानी या प्रवाही द्रव्य की आवश्यकता है। पीने का पानी हमेशा स्वच्छ होना चाहिए। हर रोज 2-3 लीटर पानी पीने से मूत्र के द्वारा दूषित पदार्थ बाहर निकल जाता है। ये स्वास्थ्य रक्षा का एक प्रधान उपाय भी है।
1: स्वास्थ्य चर्चा में अभी आप सुन रहे थे जल ही जीवन का आधार है विषय पर ये जानकारी। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। समय सवेरे के 7:10 हो रहे हैं और डीजे प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें, जिसमें आज जानकारी है धान की फसल में खैरा रोग नियंत्रण।
2: किसान भाइयों राम राम। खेती की बातें कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और आज के इस कार्यक्रम के साथ में मैं हूं आपका भाई प्रमोद सिंह। देखिए किसान भाइयों, हम रोजाना अपने इस कार्यक्रम में आपके लिए नए नए विषयों पर जानकारी लेकर आते हैं, चाहे वो पशुपालन के संबंध में हो, चाहे खेतीबाड़ी से संबंधित हो, हम हर विषय पर आपको जानकारी देने का प्रयास करते हैं। और आज जो जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है धान की फसल में लगने वाला खैरा रोग और उसकी रोकथाम के संबंध में। तो देखिए किसान भाइयों, हम सभी जानते हैं कि भारत में धान एक प्रमुख फसल के रूप में जानी जाती है, इसका उत्पादन हम करते हैं। धान उत्पादन के मामले में भारत का दूसरा स्थान है। भारत की जलवायु धान की फसल के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन धान में लगने वाले रोगों के कारण उत्पादन में भारी कमी आ जाती है। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि हम अपनी फसलों की सही तरीके से देखभाल करते हैं, फसल में लागत भी हम पूरी लगाते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमारी एक छोटी सी लापरवाही के कारण हम अपनी फसलों से अच्छा उत्पादन नहीं ले पाते हैं। और जैसे कि आज हम आपको धान की फसल में लगने वाले खैरा रोग के संबंध में जानकारी दे रहे हैं, तो देखिए वैसे तो धान की फसल में बहुत सारे

0: लगते हैं, लेकिन खैरा रोग धान की फसल का एक प्रमुख रोग माना जाता है। इस रोग के कारण धान के पौधों की पत्तियों में जंग जैसे धब्बे बन जाते हैं, इससे फसल उत्पादन प्रभावित होता है। किसान भाइयों, इस रोग की सही जानकारी ना होने के कारण और इस पर हम किस तरीके से नियंत्रण कर सकते हैं, इसकी जानकारी ना होने के कारण हम अपनी फसल से बहुत अधिक नुकसान उठा सकते हैं। खैरा रोग से फसल को बचाने के लिए हमें कुछ काम करने की जरूरत होती है। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर हमारी धान की फसल में ये खैरा रोग क्या होता है, क्यों होता है और इसके क्या लक्षण होते हैं। खैरा रोग मिट्टी में जस्ते अर्थात जिंक की कमी के कारण होता है। इस रोग में धान की पत्तियों पर हल्के पीले रंग के धब्बे हो जाते हैं। खैरा रोग होने पर कुछ समय के बाद में ये धब्बे कत्थई या जंग जैसे हो जाते हैं। इससे पत्तियां सूखने लगती हैं और ये जो खैरा रोग है, इससे पौधा बौना भी रह जाता है। इसका अधिक प्रकोप होने पर पौधों की जड़ें भी कत्थई रंग जैसी हो जाती हैं और इस रोग से पौधों में कल्ले भी कम निकलते हैं, जिसके कारण हमारी फसल से हम अधिक उत्पादन नहीं ले पाते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमारी धान की फसल की पैदावार में भारी कमी आ जाती है। तो इस कमी को रोकने के लिए और धान की फसल में खैरा रोग के नियंत्रण के लिए हमें कुछ उपाय करने होंगे। जैसे खैरा रोग की रोकथाम के लिए प्रति एकड़ 10 से 12 किलोग्राम जिंक सल्फेट का इस्तेमाल रोपाई के समय मिट्टी में कर देना चाहिए। इसके अलावा पौधों में जिंक की कमी पूरी करने के लिए प्रति एकड़ खेत में 3 से 4 किलोग्राम जिंक का इस्तेमाल करें। इस रोग पर नियंत्रण के लिए प्रति एकड़ खेत में 2 किलोग्राम जिंक सल्फेट और 1 किलोग्राम बुझा हुआ चूना को 400 लीटर पानी में मिलाकर इसका छिड़काव करें। बुझा हुआ चूना अगर उपलब्ध नहीं हो पाता है तो 2% यूरिया का प्रयोग भी किसान भाई कर सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर 8 से 10 दिन के बाद में इसका दोबारा छिड़काव किया जा सकता है। तो किसान भाइयों, ये कुछ ऐसी बातें हैं, यदि हम अपने धान की फसल को खैरा रोग से बचाना चाहते हैं तो इन उपायों को अपनाना होगा और अपने धान की फसल की सही तरीके से देखभाल करनी होगी। समय समय पर जो बदलाव हमारी फसलों में दिखाई देते हैं, उस बदलाव के आधार पर हमें ये पहचानना होगा कि हमारी खेतों में खड़ी हुई फसल में कौन सा रोग लग रहा है, इसका किस प्रकार से नियंत्रण कर सकते हैं। तो बस आज का ये कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न करते हैं। कल फिर एक अन्य विषय पर खेती की बातें लेकर आपके बीच में उपस्थित होंगे। किसान भाइयों, राम राम।
1: खेती की बातें कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे धान की फसल में खैरा रोग नियंत्रण विषय। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्स पर। समय सवेरे के 7:15 हुए हैं और आइए अब आपको संक्षिप्त जानकारी दे दें हमारे केंद्र से प्रसारित आज के प्रमुख कार्यक्रमों के विषय में। जिले की हलचल आज सवेरे 9:15 पर आकाशवाणी लखनऊ से, जिसमें आज आप सुनेंगे देवरिया और कासगंज जिले की हलचल। संसद समीक्षा आज संध्या 8 बजे। संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग सुनिएगा आज रात्रि 10 बजे। ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। शेरी निशस्त कार्यक्रम पेश किया जाएगा आज रात्रि 9:30 पर, जिसमें प्रतिभागी होंगे तैयब आले अहमद, एजाज धामपुरी, मोहम्मद राशिद और संचालन करेंगे बहारुद्दीन शमशी। और अब से कुछ ही देर यानी सवेरे 7:31 पर रहेगा प्रोग्राम सूरज के साथ साथ। लोक संगीत कार्यक्रम धरती गाती है के अंतर्गत आज सुबह 9:25 पर सुनिएगा अर्पणा श्रीवास्तव के गाय रोहेलखंडी लोकगीत। और दिन में 1:45 पर कार्यक्रम लोकधारा में आनंद लीजिएगा रेशमा के गाय जौनसारी लोकगीतों का। एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का प्रसारण समय पूर्वाहन 11:30 पर। और आज दिन में 1:15 पर बहनें सुनेंगी कार्यक्रम महिला जगत, जिसमें क्रम रहेगा आधी आबादी से फोन इन प्रोग्राम हेलो सखी, साथ ही साथ गीत संगीत भी। मेरा सपना उन्नत भारत क्रम में शाम 5 बजे जानकारी रहेगी अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु प्रधानमंत्री के

0: 15 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को उधारी एवं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के संबंध में जानकारी। युववाणी रोज की ही तरह शाम 5:15 पर, जिसमें मुख्य आकर्षण रहेगा पूछो तो जाने, कुछ खास है आज, दिल से दिल तक, लव स्टोरी, बूस्टर्स, साथ ही साथ गीत संगीत भी। कृषि जगत कार्यक्रम में आज शाम 6:05 पर किसान भाई सुनेंगे बासमती धान रेडियो कृषि पाठशाला एपिसोड 10, जिसके प्रायोजक हैं बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मेरठ। साथ ही भेंटवार्ता प्रसारित की जाएगी, जिसका विषय होगा गुणवत्ता युक्त बासमती उत्पादन हेतु सुझाव। वार्ताकार होंगे डॉक्टर सिद्धार्थ त्रिपाठी और उनसे बातचीत करेंगे प्रमोद सिंह। साथ ही होगी चर्चा बरसात में फसलों और पशुओं की देखभाल व मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के संदर्भ में। अजय कुमार मित्तल की वार्ता भारत की विदेश नीति में नए आयाम, आप सुनेंगे कार्यक्रम विविधा के अंतर्गत आज संध्या 6:45 पर। जगजीत सिंह की गाई चंद गजलें पेश की जाएंगी सुगम संगीत कार्यक्रम में आज शाम 7:32 पर। और श्रोताओं, फिल्मी गीतों का आनंद आप आकाशवाणी नजीबाबाद केंद्र से ले सकते हैं आज सवेरे 8:45 पर कार्यक्रम गोल्डन हिट्स में, और सुबह 10 बजे कार्यक्रम गीत तुम्हारे में, और सुबह 11 बजे आनंद दीजिए का चित्रपट संगीत का। तो ये थी संक्षिप्त रूपरेखा हमारे केंद्र से प्रसारित आज के प्रमुख कार्यक्रमों के विषय में। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। समय सवेरे के 7:18 होने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी लखनऊ से।
1: सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
2: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है, और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। एपीजे अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है, और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
3: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है, और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
2: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती, और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्यों।
4: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। संसद का मानसून सत्र शुरू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा की अपील की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाराबंकी में 542 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 82 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास, कहा विरासत को संरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। सर्वोच्च न्यायालय ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा मामले में विशेष जांच दल एसआईटी के पुनर्गठन पर विचार करने को कहा। अब 27 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। और बारिश के कारण तेजी से बढ़ रहा है नदियों का जलस्तर। लखीमपुर खीरी में शारदा, बाराबंकी और अयोध्या में घाघरा तथा कुशीनगर में गंडक नदी खतरे के निशान के पास पहुंची। और अब समाचार विस्तार से। संसद का मानसून सत्र कल से शुरू हो गया। सत्र के पहले दिन कल विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। एक रिपोर्ट।
5: विपक्ष के विरोध के चलते लोकसभा की कार्यवाही 7 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 6 बार स्थगित की गई। इस व्यवधान के कारण दोनों सदनों में प्रश्नकाल नहीं चल सका। वहीं विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य उच्चतम न्यायालय न्यायालय संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन कर न्यायाधीशों की संख्या को मौजूदा 33 से बढ़ाकर 37 करना है। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं है। वहीं राज्यसभा में जब सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई तो 9 नवनिर्वाचित सदस्यों ने उच्च सदन के सदस्य के तौर पर शपथ ली। आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मानसून सत्र शुरू होने से पहले संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि चाहे मानसून हो या मानसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं। श्री मोदी ने सत्र के दौरान सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल बाराबंकी में 542 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 82 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चेक, स्वीकृति पत्र और आवास की चाबी भी सौंपी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार विरासत को संरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसी कड़ी में लोधेश्वर महादेव कॉरिडोर का विकास किया जा रहा है।
6: हमने भारत के विरासत के प्रतीक बाराबंकी की पहचान भगवान लोधेश्वर महादेव के इस पवित्र मंदिर के कॉरिडोर के लिए भी धनराशि स्वीकृत कर दी है और मैं देख करके अत्यंत आनंद की अनुभूति हुई, कितना भव्य कॉरिडोर बन रहा है काशी विश्वनाथ धाम की तर्ज पर, और आने वाला हर श्रद्धालु अभिभूत होकर के जाएगा और बदले में आशीर्वाद और धन्यवाद आपको दे करके जाएगा।
4: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में कहीं कहीं अनियमित बारिश से पैदा हुई सूखे की समस्या और कुछ स्थानों पर अतिवर्षा से संभावित बाढ़ की चुनौती को लेकर कल लखनऊ में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ हो या सूखा, प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा, किसानों की फसल और आमजन की आजीविका की रक्षा प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। श्री योगी ने अधिकारियों को प्रत्येक जिले की परिस्थितियों के अनुरूप ही राहत और बचाव की रणनीति तैयार करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की बैठक में प्रदेश में संचालित प्रमुख आधारभूत संरचना, औद्योगिक विकास, निवेश, जन कल्याण और सेवा वितरण से जुड़ी परियोजनाओं की समीक्षा की। बैठक में मुख्यमंत्री ने जीरो पावर्टी अभियान के तहत पात्र परिवारों का अंत्योदय कार्ड बनाने और सभी योजनाओं का लाभ देने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने लखनऊ नाइट सफारी परियोजना की समीक्षा करते हुए इससे जुड़ी सभी औपचारिकताएं शीघ्र पूरी करके परियोजना को समयबद्ध रूप से आगे बढ़ाने पर भी बल दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर योगी की पाती साझा करते हुए युवाओं से कम एक कौशल सीखने की अपील की।
7: मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपील की है कि युवा यह संकल्प लें कि कम से कम एक कौशल सीखकर समाज और प्रदेश की प्रगति में सक्रिय भागीदारी करेंगे। उन्होंने कहा कि देश की सर्वाधिक युवा शक्ति वाला अपना प्रदेश कौशल से जुड़कर न केवल विकसित उत्तर प्रदेश बल्कि $1 trillion अर्थव्यवस्था के निर्माण का पथ भी प्रशस्त करेगा। श्री योगी ने युवाओं को याद दिलाया कि कौशल ही आत्मनिर्भरता का आधार, स्वाभिमान का संबल और विकसित होने की राह पर अग्रसर प्रदेश की सबसे बड़ी पूंजी है।
4: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने कल श्रीराम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा मामले की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच की मांग करने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने इस मामले में SIT के पुनर्गठन पर विचार करने को कहा ताकि जांच बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ सके। एक रिपोर्ट।
8: सर्वोच्च न्यायालय ने संबंधित पक्षों से श्रीराम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा मामले का राजनीतिकरण न करने के निर्देश भी दिए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माले बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने कहा कि श्रीराम मंदिर चढ़ावा विवाद अपराध का एक साधारण मामला है और न्यायालय का काम सिर्फ उचित जांच सुनिश्चित करना है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायालय को बताया कि आरोपों की जांच के लिए प्रदेश सरकार ने SIT का गठन किया था और अब राज्य पुलिस इसकी जांच कर रही है। मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। समाचार कक्ष से वेद प्रकाश पाठक।
4: प्रदेश के मुख्य सचिव SP गोयल और पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने कल मेरठ में आगामी कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर बैठक की। बैठक में उत्तर प्रदेश के विभिन्न मंडलों के अधिकारियों के साथ ही उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा के अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, श्रद्धालुओं की सुविधाओं और संवेदनशील स्थानों सहित सभी प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा की।

0: डीजीपी राजीव कृष्ण ने बताया कि कांवड़ यात्रा को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और सरकार के तय नियमों का पालन कराया जाएगा।
1: इस बार भी जो शासन के माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश है कांवड़ की हाइट, कांवड़ के वॉल्यूम लेवल डेसिबल और इस साल के कुछ नए चैलेंजेस हैं, महंगाई व्यवस्थाएं हैं, साथ ही साथ कांवड़ के श्रद्धालु हैं उनको भी एक व्यवस्था के तहत उनके लिए प्लान बनाया गया है। उस ट्रैफिक के प्लान को आपके माध्यम से समाचार पत्रों के माध्यम से समय पर सभी को अवगत कराया जाएगा जिससे कि पहले से जानकारी रहे कि कांवड़ के मार्ग हैं वो क्या रहेंगे। हमारा प्रयास यही है कि सबके
0: उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने कल लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में यूपी T20 लीग के सीजन 4 के टिकट लॉन्च किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश अवस्थी ने कहा कि प्रदेश सरकार खेलों के इंफ्रास्ट्रक्चर और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए खास कदम उठा रही है।
2: माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरे प्रदेश में स्पोर्ट्स के लिए, यूथ के लिए, विशेष रूप से प्रदेश स्तर पर और जिले स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर भी स्पोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर का विशेष रूप से उन्होंने ख्याल रखा है। स्पोर्ट की नई नीति लागू करके स्पोर्ट्स पर्सन को पुलिस में, अन्य सभी विभागों में सरकारी नौकरी देने का, और हमारे कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिसमें कि उनको डिप्टी एसपी और तहसीलदार तक नौकरी देने की व्यवस्था की गई है।
0: राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के अधिकांश जिलों में रुक रुक कर हो रही बारिश से नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। लखीमपुर खीरी में शारदा नदी, बाराबंकी और अयोध्या में घाघरा और कुशीनगर में गंडक नदी खतरे के निशान के पास पहुंच गई हैं। बारिश के कारण जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है। पीलीभीत जिले में लगातार हो रही बारिश के कारण आज वहां कक्षा 8वीं तक के स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया है। मौसम विभाग ने कल तक राज्य भर में भारी बारिश का अनुमान जताया है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मानसून सत्र शुरू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा की अपील की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाराबंकी में 542 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 82 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास, कहा विरासत को संरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। सर्वोच्च न्यायालय ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा मामले में विशेष जांच दल SIT के पुनर्गठन पर विचार करने को कहा, अब 27 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। और बारिश के कारण तेजी से बढ़ रहा है नदियों का जलस्तर, लखीमपुर खीरी में शारदा, बाराबंकी और अयोध्या में घाघरा तथा कुशीनगर में गंडक नदी खतरे के निशान के पास पहुंची। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: भगवान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
1: यदि युवा को है रोजगार पाना तो होगा उसे कौशल बढ़ाना। अपने कौशल का विकास कीजिए, अपने भविष्य को संवारिए। वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें। बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत। जो सिखाएं हमें व्यवहारिक ज्ञान, करें ज्येष्ठ लोगों का सम्मान।
0: असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
2: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर। समय सुबह के 7:31 और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सूरज के साथ साथ।

हर सुबह सूरज की किरणें देती हैं एक नया पैगाम, वहीं बरसती फुहारे गाती है जीवन का मधुर गान। अपनों का तो हर कोई रख लेता है ध्यान हरदम, लेकिन भीगती राहों में कभी बनिए सहारा उन बेजुबानों का भी, जिनकी आंखें आपकी मदद को तरसती हैं सुबह शाम। थोड़ा सा दाना पानी, थोड़ी सी मदद, इंसानियत की है शान। हर जीव में बसता है ईश्वर और श्रोताओं, यही तो है भारत की सच्ची पहचान। नमस्कार श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आज के कार्यक्रम सूरज के साथ साथ में, जिसे लेकर आज आपके साथ जुड़ी हूँ मैं, श्वेता भट्ट। जी हाँ श्रोताओं, बरसात की बूंदें जब धरती पर बरसती हैं तो सूखी धरा भी हरियाली की चादर ओढ़े मुस्कुराती है, लेकिन जब यही बारिश अपना रौद्र रूप दिखाती है तब इंसान ही नहीं बल्कि हर बेजुबान की निगाहें भी मदद को तरसती हैं। श्रोताओं, इन दिनों देश के कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। कहीं रिमझिम फुहारे लोगों के चेहरों पर मुस्कान ला रही हैं, तो कहीं मूसलाधार बारिश और बाढ़ लोगों की परीक्षा ले रही है। ऐसे समय में हम अपना व अपनों की सुरक्षा में तो जुट जाते हैं, लेकिन क्या कभी एक पल ठहर कर उन बेजुबान पशुओं के बारे में भी सोचते हैं जो बोल नहीं सकते, जो अपनी तकलीफ किसी से कह नहीं सकते? सोचिए, बारिश में भीगता हुआ कोई बछड़ा, किसी पेड़ के नीचे कांपता हुआ बेसहारा जानवर, पानी से घिरा हुआ कोई पशु या चारे की तलाश में भटकती कोई गाय, उन्हें भी भूख लगती है, उन्हें भी डर लगता है और उन्हें भी सुरक्षित रहने का श्रोताओं उतना ही अधिकार है जितना हम सबको। ऐसे में श्रोताओं, अगर आपके घर के बाहर या आसपास कोई बेसहारा पशु दिखाई दे तो यदि संभव हो तो उसे सुरक्षित और सूखी जगह तक पहुंचाने की कोशिश करें। घर के बाहर साफ पानी रखें और थोड़ा सा सूखा चारा या भोजन भी रख देना एक बहुत बड़ा नेक काम हो सकता है। यदि कोई पशु घायल है तो उसे स्वयं दवा न देने के बजाय आप पशु चिकित्सा या पशुपालन विभाग को सूचना दे सकते हैं। अगर कोई पशु बाढ़ में फंसा हो तो बिना जोखिम उठाए तुरंत स्थानीय प्रशासन, आपदा प्रबंधन दल या पशु चिकित्सा विभाग को इसकी जानकारी दे सकते हैं। औषधों ध्यान रहे, बाढ़ के पानी में किसी भी पशु के बहुत पास जाने से पहले अपनी सुरक्षा अवश्य सुनिश्चित करें। तेज बहाव और बिजली के तारों के आसपास कभी जोखिम ना लें। साथ ही प्रशासन और विशेषज्ञों की मदद जरूर लें। तो श्रोताओं, आइए इस बरसाती मौसम को इतना आसान कर जाएं कि बेसहारा बेजुबानों के हिस्से में भी थोड़ी सी मुस्कान दे जाएं, क्योंकि इंसानियत की सबसे सुंदर मिसाल वही कहलाती है जो हर धड़कते जीवन की हिफाजत करना सिखाती है।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001424 पर।
1: 8700001424।

0: चिकन गुनिया मलेरिया दिमागी बुखार से बचे की।
1: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
3: तो इंतजार किस बात का,
2: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
3: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
2: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
3: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
2: और हमारा ईमेल आईडी है
3: akashwaninajibabad@gmail.com।
2: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन
3: आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
4: एक बार फिर से स्वागत है सभी श्रोताओं का। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र और कार्यक्रम है सूरज के साथ साथ। श्रोताओं, जब बारिश हद से गुजर जाती है तो खुशियों की धुन कहीं ना कहीं थम सी जाती है। पानी धीरे धीरे समय लेकर उतर तो जाता है, लेकिन जिंदगी फिर से संभलने में वक्त लेती है। श्रोताओं, कहते हैं ना कि हर तूफान एक दिन थम जाता है, लेकिन उसके बाद जो हालात सामने आते हैं उनसे लड़ना भी किसी परीक्षा से कम नहीं होता। जब बाढ़ का पानी उतरता है तो अपने पीछे छोड़ जाता है कीचड़, गंदगी, बीमारियों का खतरा, टूटी हुई सड़कें, बिखरे हुए घर और लोगों के मन में डर। और श्रोताओं, बहुत जरूरी है कि ऐसे समय में घबराने की नहीं बल्कि सूझबूझ और समझदारी से काम लेने की जरूरत होती है। तो सबसे पहले श्रोताओं, अपने घरों में जमा कीचड़, गंदगी और मटियाले पानी को अच्छी तरह से उसकी निकासी करें। साफ सफाई के दौरान अपने हाथों में दस्ताने या ग्लव्स का इस्तेमाल जरूर करें। सफाई के बाद अच्छी क्वालिटी के एंटीसेप्टिक साबुन या हैंड वॉश का प्रयोग करें। ध्यान रखें, बाढ़ के बाद सबसे बड़ा खतरा जो होता है वो होता है दूषित पानी से, इसलिए केवल उबला हुआ और साफ और सुरक्षित पानी ही पिएं। यदि पानी की शुद्धता पर संदेह हो तो उसे कम से कम 10 मिनट तक उबालें। बाढ़ के बाद मच्छरों का प्रकोप भी श्रोताओं बहुत तेजी से बढ़ता है, ऐसे में घर के आसपास पानी जमा ना होने दें। पूरी बहा के कपड़े पहने और रात में मच्छरदानी का उपयोग करें, इससे डेंगू मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों से बचाव होता है। यदि घर में बिजली के उपकरण भीग गए हों तो उन्हें बिना जांच के बिल्कुल भी ऑन ना करें। कहीं भी टूटे हुए बिजली के तार दिखाई दें तो उनसे दूर रहें और तुरंत बिजली विभाग को सूचना दें। अगर किसी व्यक्ति को तेज बुखार, दस्त, उल्टी और सांस लेने में दिक्कत या त्वचा पर संक्रमण दिखाई दे तो घरेलू इलाज में समय ना गंवाएं, बल्कि तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं और डॉक्टर से परामर्श लें और इलाज कराएं। और एक बार श्रोताओं, मुसीबत के समय अफवाहें सबसे बड़ा नुकसान करती हैं, इसलिए केवल प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें। साथ ही सरकार और प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें और अफवाहों पर ध्यान बिल्कुल ना दें। याद रखिए, बाढ़ से बड़ा संकट लापरवाही होती है और सबसे बड़ी ताकत होती है सही जानकारी, सूझबूझ और धैर्य।

श्रोताओं, सावधानी की छोटी सी आदत कई बीमारियों से राहत दिलाती है, तो समय रहते खुद को संभालें और जिंदगी को भी संभालें। श्रोताओं, बरसात अपने साथ ठंडी फुहारे, हरियाली और सुकून लेकर आती है, लेकिन यही मौसम कुछ बीमारियों को भी बढ़ाता है। इन्हीं में से एक है कंजक्टिवाइटिस, जिसे आम बोलचाल की भाषा में आंख आना कहा जाता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि किसी की आंखों में देखने से ये बीमारी फैल जाती है, जबकि ऐसा नहीं है। असल में ये संक्रमण वायरस, बैक्टीरिया और एलर्जी के कारण होता है, और संक्रमित व्यक्ति के हाथ, तौलिया, रुमाल, तकिया या अन्य सामान के संपर्क से फैल सकता है। इसके शुरुआती लक्षण हैं आंखों का लाल होना, आंखों से पानी आना, जलन महसूस होना, खुजली होना और आंखों में किरकिराहट लगना, और सुबह उठने पर पलके चिपक जाना। अगर ऐसे लक्षण दिखाई दें तो सबसे पहले तो घबराइए मत, बल्कि अपने हाथों को धोइए साफ तरीके से, और हाथ धोकर ही आंखों को साफ पानी से धोइए, और बार बार आंखों को बिल्कुल भी ना छुएं। श्रोताओं, यदि छूना पड़े तो सबसे पहले साबुन से अच्छी तरह से हाथों को धो लें। अपना तौलिया, रुमाल, तकिया और आई मेकअप किसी से भी साझा ना करें, इससे संक्रमक दूसरे लोगों तक पहुंच सकता है। यदि डॉक्टर ने दवा या आई ड्रॉप दी है तो

और आयुष, तो आप जानते हैं देश और दुनिया के इतिहास में क्या कुछ खास है आज तिथि विशेष में। आज की तारीख देश के राजनीतिक इतिहास के लिए भी खास मुकाम रखती है, क्योंकि 21 जुलाई साल 2007 को प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी। वे देश की 12वीं राष्ट्रपति निर्वाचित हुई और इस सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंचने वाली प्रथम महिला बनी। राष्ट्रपति बनने से पहले वे राजस्थान की राज्यपाल थी। और श्रोताओं, राष्ट्रपति के तौर पर उनका कार्यकाल वर्ष 2007 से 2012 तक रहा। वहीं आज का दिन बेल्जियम के इतिहास में खास महत्व रखता है। आज के दिन लियोपोल्ड फर्स्ट बेल्जियम के राजा घोषित किए गए थे। बेल्जियम का राष्ट्रीय अवकाश आज ही के दिन यानी 21 जुलाई साल

1831 को पहली बार घोषित किया गया था। तब से लेकर अब तक हर साल 21 जुलाई को बेल्जियम में राष्ट्रीय अवकाश रहता है। साथ ही वहां बेल्जियम स्थापना दिवस के रूप में भी आज का एक खास दिन मनाया जाता है। 1883 में आज ही के दिन यानी 21 जुलाई को कोलकाता में भारत के पहले सार्वजनिक थिएटर हॉल स्टार थिएटर की शुरुआत हुई थी। इसे आधुनिक भारतीय रंगमंच के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जाता है। वहीं 21 जुलाई साल 2008 में नेपाली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भारतीय मूल के रामबरन यादव को नेपाल का पहला राष्ट्रपति चुना गया था। नेपाल में राजशाही समाप्त होने के बाद वे देश के पहले गणतांत्रिक राष्ट्रपति बने। 21 जुलाई 1993 पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बड़ा मोड़ आया जब कोलकाता में ममता बनर्जी के नेतृत्व में युवा कांग्रेस की रैली के दौरान पुलिस फायरिंग में 13 लोगों की जान चली गई। इस घटना की याद में तृणमूल कांग्रेस द्वारा हर वर्ष 21 जुलाई को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। और श्रोताओं, भारतीय शास्त्रीय संगीत की महान गायिका जिन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण सहित अनेक सम्मान मिले यानी गंगूबाई हंगल का निधन आज यानी 21 जुलाई साल 2009 को हुआ था। उन्होंने शास्त्रीय संगीत को देश विदेश में नई पहचान दिलाई। और भारत के प्रसिद्ध टेस्ट क्रिकेटर चेतन चौहान का जन्म भी श्रोताओं 21 जुलाई 1947 को हुआ था। चेतन ने सुनील गावस्कर के साथ कई यादगार साझेदारियां निभाई। बाद में वे संसद और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी रहे। और श्रोताओं, अब बात करते हैं हिंदी फिल्मों के सबसे लोकप्रिय गीतकारों में से एक आनंद बख्शी जी की, जिनका जन्म आज ही के दिन यानी 21 जुलाई 1930 को हुआ था। उन्होंने लगभग 4000 से भी अधिक गीत लिखे, 40 बार फिल्म फेयर पुरस्कार से नामांकन भी हुए। ये आंकड़ा खुद ही बताता है कि आनंद बख्शी ने जो रचा उसका दायरा कितना विशाल था। आनंद बख्शी की सबसे खास बात थी उनके गीतों के सरल बोल जो कानों से सीधे दिल तक पहुंचते थे। और श्रोताओं, तिथि विशेष के बाद अब एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। अमर उजाला की सुर्खी है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया सेंडू के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। इस वार्ता का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार करना है। वहीं लेबर पार्टी के नवनिर्वाचित नेता एंडी बर्नहम ने यूके के नए प्रधानमंत्री के तौर पर पदभार संभाला। कीर स्टारमर के इस्तीफे के बाद किंग चार्ल्स द्वितीय ने ग्रेटर मैनचेस्टर के 56 वर्षीय पूर्व मेयर को नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। वहीं कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण की मदद से उत्तराखंड के काशीपुर से 24 मीट्रिक टन फ्रोजन फ्रेंच फ्राइज की पहली खेप इराक भेजी गई। इस निर्यात वीरुन ग्लोबल ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड ने किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि उत्तराखंड से मूल्यवर्धित कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने और भारत के प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात को मजबूत करने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। वहीं भारत की बढ़ती समुद्री ताकत अमेरिका, इजराइल व यूरोप के लिए अहम, यरूशलम पोस्ट में दावा, भारत अब वैश्विक व्यापार की सुरक्षा में बड़ी ताकत बन रहा है। वहीं स्पेन को विश्व चैंपियन बनाकर छाए फोरन टोरेस, भारत की धरती से मिली पहचान तो फुटबॉल के चैंपियन बन गए टोरेस। अंडर 17 फीफा विश्व कप में स्पेन को पहुंचाया फाइनल में और 16 साल बाद जीती ट्रॉफी। वह हिंदुस्तान लिखता है, भारत में डेंगू के पहले टीके क्यूडेंगा को मिली मंजूरी, औषधि महानियंत्रक ने दी बाजार में लाने की अनुमति, 4 से 60 वर्ष के लिए तैयार किया गया है टीका, देश में ही होगा उत्पादन, 2 खुराक में मिलेगी डेंगू के चारों प्रकार के वायरसों से सुरक्षा। और एथेनॉल कार ही नहीं चलाएगा बल्कि चूल्हा भी जलाएगा, एलपीजी के अलावा एथेनॉल को रसोई ईंधन का विकल्प बनाने की तैयारी, सितंबर तक नीति का मसौदा तैयार कर सकती है सरकार। और श्रोताओं, कार्यक्रम में चलते चलते आपको सुनाते हैं आनंद बख्शी का लिखा एक खूबसूरत सा गीत।

0: साथ साथ।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सूरज के साथ साथ। ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। सुबह के 8 बजने को हैं, अब आप सुनेंगे समाचार प्रभात।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संसद भवन में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन संसदीय दल की बैठक को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज स्कोपिये में उत्तरी मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्दाना सिल्यानोवस्का दाफकोवा के साथ वार्ता करेंगी। यूक्रेन के ओडेशा बंदरगाह के पास एक व्यापारिक जहाज पर हुए हमले में 4 भारतीयों की मौत, 1 घायल। भारत ने हमले की निंदा की। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वरिष्ठ नागरिकों, विधवा और दिव्यांगों के लिए मासिक पेंशन बढ़ाई। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जवाबी कार्रवाई की चेतावनी के बाद अमेरिका ने ईरान पर घातक हमले किए। और पीवी सिंधु आज से शुरू हो रहे चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत का नेतृत्व करेंगी। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक मंगल मिलन आज संसद भवन में होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक को संबोधित करेंगे। सत्र के दौरान ये बैठक पारंपरिक रूप से मंगलवार को आयोजित की जाती है। बैठक का उद्देश्य गठबंधन की पूर्ण एकता और समन्वय को प्रदर्शित करना है। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच कल दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही कई बार स्थगित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मानसून सत्र में सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया है। सत्र से पहले संवाददाताओं से बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि महज 1 महीने में देश ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं।
1: मानसून हो या मानसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं, और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले 1 महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो, और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
0: 3 राष्ट्रों की यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तरी मैसेडोनिया पहुंच गई हैं। ये किसी भारतीय राष्ट्रपति की उत्तरी मैसेडोनिया की पहली यात्रा है। राष्ट्रपति मुर्मू स्कोपिये में मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्दाना सिल्यानोवस्का दाफकोवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। वे प्रधानमंत्री क्रिस्टिजन मिकोस्की और असेंबली के स्पीकर आफ्रिम गाशी से भी मुलाकात करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू का उत्तरी मैसेडोनिया की असेंबली को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज से मुलाकात की। बैठक में डॉक्टर जयशंकर ने लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई क्षेत्र के लिए प्रवेश द्वार के रूप में पनामा के साथ भारत के संबंधों को और प्रगाढ़ करने के महत्व पर बल दिया।
2: पनामा वैश्विक व्यापार मार्गों के लिए एक प्राकृतिक सेतु और व्यापक लैटिन अमेरिकी क्षेत्र का प्रवेश द्वार है। पनामा नहर के कारण यहाँ की लॉजिस्टिक अवसंरचना विश्व स्तर पर एक महत्वपूर्ण पहचान रखती है। हम शिक्षा, छात्रवृत्ति, औषधि उद्योग, प्रौद्योगिकी और सबसे महत्वपूर्ण व्यापार सहित अनेक क्षेत्रों में आपके सहयोग और साझेदारी की रुचि की सराहना करते हैं। हमें विश्वास है कि इन क्षेत्रों में मिलकर कार्य करने से दोनों देशों के बीच आर्थिक, शैक्षिक और तकनीकी संबंध और अधिक सुदृढ़ होंगे।
0: श्री जयशंकर ने बेल्जियम के राष्ट्रीय दिवस पर वहां के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मैक्सिम प्रिवोट तथा देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत बेल्जियम के साथ अपनी बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने यूक्रेन के ओडिशा बंदरगाह से रवाना हो रहे जहाज एमवी गोल्डन लियो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस हमले में 4 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई, जबकि 1 भारतीय गंभीर रूप से घायल है। मंत्रालय के अनुसार घटना के समय जहाज पर 17 चालक दल के सदस्य सवार थे, जिनमें 5 भारतीय नागरिक शामिल थे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि यूक्रेन स्थित भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता उपलब्ध करा रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने 1 अगस्त से वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन जैसी सामाजिक कल्याण पेंशन योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाली मासिक आर्थिक सहायता को 1000 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए करने की मंजूरी दी है। कल जारी एक आदेश में सरकार ने कहा कि बढ़ी हुई राशि सभी पात्र लाभार्थियों को मौजूदा प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण DBT प्रणाली के माध्यम से दी जाएगी। निर्वाचन आयोग आज कोलकाता में डाक मतपत्र प्रणाली को अधिक समावेशी, सुरक्षित और सुलभ बनाने पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल के सभी 24 चुनावी जिलों के चुनाव अधिकारी, साथ ही भारत और कई अन्य देशों के चुनाव प्रशासक, नीति निर्माता, शिक्षाविद और चुनाव विशेषज्ञ शामिल होंगे। चर्चा का मुख्य विषय पोस्टल बैलेट और विशेष मतदान व्यवस्थाओं को ज्यादा समावेशी, सुलभ और सुरक्षित बनाने के तरीकों पर होगा। पश्चिम बंगाल की मुख्य चुनाव अधिकारी नीलम मीणा इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी। कार्यक्रम में पोस्टल बैलेट, चुनावी निष्पक्षता बनाए रखने, धोखा धड़ी रोकना, ऑडिट सिस्टम, कानूनी ढांचे, टेक्नोलॉजी पर आधारित विशेष वोटिंग सिस्टम और रिमोट वोटिंग के भविष्य जैसे विषयों पर सत्र होंगे। अंतर्राष्ट्रीय सत्र के दौरान नेपाल, अल्बानिया, बोस्निया और हर्जेगोविना और अन्य देशों के चुनाव विशेषज्ञ वर्चुअली अपने अनुभव साझा करेंगे। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मानसून सक्रिय है और कई क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्थानीय मौसम विभाग ने आज राज्य के 5 जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है।
3: हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार हो रही मानसूनी वर्षा से जनजीवन प्रभावित हुआ है। भूस्खलन के कारण अनेक संपर्क सड़कें अवरुद्ध हैं, जबकि कुछ क्षेत्रों में बिजली और पेयजल आपूर्ति भी बाधित हुई है। प्रभावित इलाकों में बहाली का कार्य जारी है। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज कांगड़ा, मंडी, चंबा, सिरमौर और कुल्लू जिलों में भारी से अत्यधिक भारी वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। एहतियात के तौर पर कांगड़ा, मंडी, चंबा और सिरमौर जिलों में सभी सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों को आज लगातार दूसरे दिन भी बंद रखने का निर्णय लिया गया है। प्रशासन ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों से अनावश्यक यात्रा से बचने तथा नदियों, नालों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: उधर जम्मू कश्मीर में बारिश से जुड़ी नई घटनाओं में एक महिला और उसके 2 बच्चों सहित 11 लोगों की मौत हो गई है। इससे पिछले 3 दिनों में मरने वालों की संख्या 23 हो गई है। इस बीच मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी दिन के दौरान मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। सिक्किम के नामची जिले के समरडुंग में NHPC जल विद्युत परियोजना की बन रही सुरंग में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए तलाश और बचाव अभियान जारी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: ये घटना कल दोपहर दक्षिण सिक्किम के समरडुंग में NHPC प्रोजेक्ट पर घटी। NDRF, SDRF और दूसरी एजेंसियों को तुरंत ही बचाव कार्यों में लगाया गया है, लेकिन गैस लीक होने के कारण बचाव दल शुरुआत में घटना स्थल तक नहीं पहुंच पाए थे। हालांकि सभी की कोशिशों से अब तक 8 शव बरामद किए जा चुके हैं। माना जा रहा है कि भूस्खलन के कारण बन रही सुरंग को नुकसान पहुंचा है, लेकिन असली वजह अब तक नहीं नहीं पता चल पाया है। बचाव दल फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जिनमें मजदूर, एनएचपीसी के अधिकारी और एक प्राइवेट इंजीनियरिंग फर्म के कर्मचारी शामिल है। मानसपतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एंडी बर्नहम को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि भारत और ब्रिटेन साझा लोकतांत्रिक मूल्यों से बंधे हैं और दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा और जन संबंधों में व्यापक सहयोग है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी जवाबी कार्रवाई की चेतावनी देते हुए कहा है कि ईरान को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हाल ही में जॉर्डन में दो अमरीकी सैनिकों और इराक में एक सैनिक के मारे जाने के बाद उनकी ये चेतावनी आई है। इस बीच अमरीकी सेना ने आज ईरान के खिलाफ नए हमलों की शुरुआत की है। अमरीकी केंद्रीय कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इन हमलों का उद्देश्य ईरान की उस सैन्य क्षमताओं को और कमजोर करना है, जिनका इस्तेमाल हॉर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर हमले के लिए किया जाता है। इससे पहले ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने कहा कि उसने ईरानी प्रांतों पर अमरीकी हमलों के जवाब में मिसाइल और ड्रोन हमलों के तीन दौर के जरिए बहरीन और कुवैत में अमरीकी संपत्तियों और ठिकानों पर तेज प्रहार किए हैं। चाइना ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता आज से शुरू हो रही है। प्रतियोगिता में भारत का नेतृत्व पीवी सिंधु करेंगी। महिला सिंगल्स के पहले दौर में सिंधु का सामना उन्नति हुडा से होगा। देविका सिहाग भी महिला सिंगल्स में खेलेंगी। पुरुष सिंगल्स में भारत की ओर से लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी और एचएस प्रणॉय चुनौती पेश करेंगे। पुरुष डबल्स में एमआर अर्जुन और हरिहरन अंश करुणन भारत के खिलाड़ी हैं। वहीं ओलंपियन तनिषा क्रेस्टो और ध्रुव कपिला, रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गड्डे मिक्स्ड डबल्स में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। महिला डबल्स में भारत की कोई भी खिलाड़ी नहीं है। और हॉकी में FIH यूथ 5S एशियाई चैंपियनशिप में भारत की पुरुष और महिला सब जूनियर टीमों ने जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की है। ओमान के मस्कत में खेले गए मुकाबले में भारतीय महिला टीम ने कजाकिस्तान को 8-3 से हराया। भारतीय पुरुष टीम ने अपने पहले मैच में बांग्लादेश को 7-3 से शिकस्त दी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
5: राजधानी दिल्ली से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने आज अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। अमर उजाला ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से अपने मुख्य पृष्ठ पर लिखा है, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर राजनीति ना हो, SIT के पुनर्गठन की संभावना तलाशें। हिंदुस्तान ने इसी खबर पर सुर्खी दी है, चढ़ावा चोरी की जांच नई SIT करे। दिल्ली में कल हुए प्रदर्शन को भी अधिकतर अखबारों ने सचित्र प्रकाशित किया है। नवभारत टाइम्स लिखता है, संसद मार्च में झड़प, सरकार से बात, आंदोलन जारी। राजस्थान पत्रिका ने केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और CJP प्रतिनिधियों की मुलाकात का चित्र प्रकाशित करते हुए लिखा है, सरकार से आश्वासन के बाद दीपके ने अनशन तोड़ा, 100 प्रदर्शनकारी घायल। अमर उजाला ने संपादकीय में इसी खबर का उल्लेख किया है, संसद के बाहर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच टकराव लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनौती का संकेत है, जिसमें संवाद का स्थान धीरे धीरे टकराव लेता जा रहा है। ये निर्विवाद है कि संविधान नागरिकों को शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखने का अधिकार देता है। लोकतंत्र की मजबूती भी इसी में है कि असहमति को स्थान मिले और सरकारें जन भावनाओं के प्रति संवेदनशील हों, लेकिन ये भी उतना ही आवश्यक है कि प्रदर्शन संविधान और कानून की सीमाओं के भीतर हो। हिंदुस्तान ने कुछ अलग शीर्षक से लिखा है, एथेनॉल से कार ही नहीं चलेगी, चूल्हा भी जलेगा। LPG के अलावा एथेनॉल को रसोई ईंधन का विकल्प बनाने की तैयारी, सितंबर तक नीति का मसौदा तैयार कर सकती है सरकार।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संसद भवन में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन संसदीय दल की बैठक को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज स्कोपिये में उत्तरी मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्दाना सिल्यानोवस्का दाफकोवा के साथ वार्ता करेंगी। यूक्रेन के ओडिशा बंदरगाह के पास एक व्यापारिक जहाज पर हुए हमले में 4 भारतीयों की मौत, 1 घायल, भारत ने हमले की निंदा की। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वरिष्ठ नागरिकों, विधवा और दिव्यांगों के लिए मासिक पेंशन बढ़ाई। और PV सिंधु आज से शुरू हो रहे चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत का नेतृत्व करेंगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to address NDA Parliamentary Party meeting at Parliament House this morning. President Draupadi Murmu to hold talks with a North Macedonian counterpart in Skopje today. 4 Indians killed and 1 critically injured in attack on commercial vessel near Odessa port in Ukraine. India condemns attack on the ship. West Bengal government hikes monthly pension for senior citizens, widows and specially abled persons in the state. US launches fresh strikes on Iran as President Donald Trump warns of massive retaliation. And PV Sindhu to lead India's challenge at the China Open Badminton tournament beginning today. The National Democratic Alliance, NDA Parliamentary Party's weekly strategy meeting, now known as Mangal Milan, will be held in the Parliament House this morning. Prime Minister Narendra Modi is scheduled to address the meeting. The meetings are traditionally held on Tuesdays during Parliament sessions with an intent to demonstrate complete alliance unity. NDA Alliance partners will pass a congratulatory motion during the meeting, honouring Mr. Modi for becoming the longest-serving elected Prime Minister of India. President Draupadi Murmu will hold talks with a North Macedonian counterpart, Gordana Siljanovska Davkova, in Skopje today. President Murmu is also scheduled to meet Prime Minister Hristiyan Miskosti and Speaker of the Assembly, Afrim Gashi, and address the Parliament. She will also address the India-North Macedonia Business Forum. More from a correspondent.
7: President Murmu arrived in North Macedonia last night on a two-day state visit as part of her three-nation tour to Moldova, North Macedonia and Romania. She is the first Indian president to visit North Macedonia. The visit reflects the importance India attaches to strengthening bilateral ties with the three countries and its engagement with wider Eastern European region. Both sides have shown keen interest in deepening economic ties in priority sectors such as agriculture, pharmaceuticals, science and technology, information technology and IT-enabled services. North Macedonia is a landlocked country in southeastern Europe. The Indian community in the country is very small, with most members working in the IT sector, teaching at universities, or serving as executive

आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं कलीम अहमद। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सुबह पार्लियामेंट हाउस में एनडीए पार्लियामानी पार्टी की मीटिंग से खिताब करने वाले हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज स्कोपेई में शिमाली मकदूनिया के अपनी हमनसब से बातचीत करेंगी। यूक्रेन में ओदेसी बंदरगाह के नजदीक कमर्शियल बहरी जहाज पर हमले में 4 भारतीय शहरियों की मौत हो गई जबकि एक शदीद तौर पर जख्मी हुआ। भारत ने बहरी जहाज पर हमले की मजम्मत की है। मगरबी बंगाल सरकार ने रियासत में बुजुर्ग शहरियों, बेवाओं और दिव्यांगजनों के लिए माहाना पेंशन में इजाफा कर दिया है। अमरीका ने ईरान पर फिर हमले किए हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जबरदस्त जवाबी कार्रवाई का इंतबाह दिया है। और चांगझू में आज से शुरू होने वाले चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु भारतीय चैलेंज की क्यादत करेंगे। अब खबरें तफसील से। कौमी जमहूरी इत्तेहाद एनडीए की पार्लियामानी पार्टी की हिकमत अमली से मुतालिक हफ्तावार मीटिंग आज सुबह पार्लियामेंट हाउस में होने वाली है जिसे अब मंगल मिलन कहा जाता है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस मीटिंग से खिताब करेंगे। इस तरह की मीटिंग पार्लियामेंटी इजलास के दौरान रिवायती तौर पर हर मंगल को हुआ करती है जिसका मकसद एनडीए के मुकम्मल इत्तेहाद का मुजाहरा करना है। एनडीए इत्तेहाद में शामिल पार्टियां इस मीटिंग के दौरान सबसे तवील अरसे तक अपने ओहदे पर फाइज रहने वाले मुंतखब वजीर आजम बनने पर जनाब मोदी की इज्जत अफजाई के लिए मुबारकबाद से मुतालिक एक तहरीक मंजूर करेंगी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज स्कोपेई में शिमाली मकदूनिया की अपनी हमनसब गोर्डाना, सिलजानो, वस्का, दाओकोवा के साथ बातचीत करेंगी। मोहतरमा मुर्मू वजीर आजम क्रिस्टीजन मिकोस्की और असेंबली के स्पीकर अफरीम गाशी से भी मुलाकात करेंगी। वो शिमाली मकदूनिया की पार्लियामेंट और भारत शिमाली मकदूनिया कारोबारी फोरम से खिताब करेंगी। सदर जमहूरिया तीन मुल्कों मोलदोवा, शिमाली मकदूनिया और रोमानिया के दौरे के तहत कल रात 2 रोजा सरकारी दौरे पर शिमाली मकदूनिया पहुंची। ये किसी भारतीय सदर जमहूरिया का शिमाली मकदूनिया का पहला दौरा है। उनका ये दौरा मस्कूरा तीनों मुल्कों के साथ दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने और मशरकी यूरोप के

0: चुनाव अफसरान शिरकत करेंगे। इसके अलावा भारत और कई दिगर मुल्कों से इंतखाबी मुंतजमीन, पॉलिसी साज, माहरीन तालीम और इंतखाबी उमूर के माहरीन भी शरीक होंगे। कॉन्फ्रेंस में डाक के जरिए वोट डालने के अमल और खसूसी पोलिंग के निज़ाम को मजीद जामे, आसान और महफूज बनाने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। मगरबी बंगाल की आला चुनाव ऑफिसर नीलम मीना इस कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगी। कॉन्फ्रेंस में डाक के जरिए वोट डालने का अमल, इंतखाबी अमल की शफाफियत और दयानतदारी को बरकरार रखने, चुनाव में धोखाधही की रोकथाम, ऑडिट के निज़ाम, कानूनी ढांचे, टेक्नोलॉजी पर मबनी खसूसी पोलिंग के निज़ाम और दूर दराज इलाकों से वोट डालने के निज़ाम के मुस्तकबिल पर खसूसी इजलास मुनक़िद होंगे। संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
1: सिक्किम में नामची जिले में समरदुंग के मुकाम पर NHPC के छठे मरहले के तीस्ता पनबिजली प्रोजेक्ट की जेर तामीर सुरंग के अंदर फंसे हुए अफराद को बहिफाजत बाहर निकालने के लिए तलाश और बचाव कार्रवाई जारी है। नामची जिले के SSP ने बताया है कि इमदादी टीमों ने अब तक 8 लाशें बाहर निकाली हैं। ऐसा शुभा है कि सुरंग के अंदर कम से कम 25 अफराद फंसे हुए हैं। ऐसा ख्याल है कि चट्टानों के टुकड़े गिरने की वजह से ये सुरंग ढह गई थी। मुख्तलिफ एजेंसियां बचाव और इमदादी कार्रवाई जारी रखे हुए हैं। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: जनूबी सिक्किम में समरदुंग में कल NHPC प्रोजेक्ट के मकाम पर यह अफसोसनाक वाकया पेश आया। NDRF, SDRF और दीगर एजेंसियों को फौरी तौर पर बचाव मिशन पर लगाया गया। गैस के रिसाव की वजह से शुरू में इमदादी टीमें वहां नहीं पहुंच सकी। अलबत्ता इमदादी टीमों ने तालमेल के साथ कोशिश करते हुए 8 लाशें बाहर निकाल ली हैं। इमदादी टीमें वहां फंसे हुए अफराद को बाहिफाजत बाहर निकालने के लिए भरपूर कोशिशें कर रही हैं। इनमें कारकुन, NHPC के अहलकार और एक प्राइवेट इंजीनियरिंग फर्म के मुलाजमीन शामिल है। गंगटोक से मानस प्रतिम शर्मा के रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शोएबा।
1: हिमाचल प्रदेश के बेशतर हिस्सों में मानसून सरगर्म है और कई इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। शिमला के मौसमियाती मरकज ने आज रियासत के 5 जिलों में शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश के इम्कान के मद्देनजर रेड अलर्ट जारी किया है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में मानसून की बारिश लगातार होने से रोजमर्रा की जिंदगी मुतासिर हुई है। चट्टानों के टुकड़े गिरने के वजह से कई राब्ता सड़कें बंद हो गई हैं, जबकि कुछ इलाकों में बिजली और पीने के पानी की सप्लाई में रुकावट पड़ गई है। बहाली का काम जारी है। शिमला के मौसमियाती मरकज ने कांगड़ा, मंडी, चंबा, सिरमौर और कुल्लू जिले में आज शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश होने की पेशगोई की है। एहतियाती इकदाम के तौर पर कांगड़ा, मंडी, चंबा और सिरमौर में सभी सरकारी और प्राइवेट तालीमी इदारे आज लगातार दूसरे दिन भी बंद रहेंगे। इंतजामिया ने लोगों और सयाहों पर जोर दिया है कि वो गैर जरूरी सफर करने से गुरेज करें। शिमला से रितेश कपूर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं नरगिस सलीम।
1: भारतीय मौसमियात महकमे ने आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद के बाद हिस्सों में बहुत तेज बारिश होने की पेशगोई की है। इधर दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, शिमाली मशरकी भारत के कुछ हिस्सों, मशरकी मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी औसत से लेकर शदीद बारिश होने का इम्कान है। नई दिल्ली इलाके में कल एक एहतजाज के पुरतशद्दुद रुख इख्तियार करने के बाद 118 से ज्यादा पुलिस अहलकार जख्मी हो गए। जख्मी होने वालों में पुलिस के स्पेशल कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर के ओहदों पर फायज सीनियर अफसरान भी शामिल हैं। दिल्ली पुलिस ने एक बयान में कहा कि एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन बेकाबू हो गए और उन्होंने जारहाना और पुरतशद्दुद रवैया इख्तियार कर लिया। कई बार की तंबीह और कानूनी हिदायत के बावजूद उन्होंने मुंतशिर होने से इनकार किया और इलाके में आयद इम्तनाई अहकाम की खिलाफवर्जी की। दिल्ली पुलिस ने कहा कि मुजाहिरीन ने पुलिस अहलकारों पर हमला किया, पुलिस और दीगर सरकारी गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया और तशद्दुद का रास्ता इख्तियार किया, जिससे अमनो अमान को संगीन खतरा लाहिक हुआ। दिल्ली पुलिस ने मजीद बताया कि जख्मी पुलिस अहलकारों का तिब्बी और कानूनी जांच जारी है। अमरीकी फोर्सेज ने ईरान के खिलाफ फिर हमले किए हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर अमरीका की मरकजी कमान ने कहा है कि ये हमले ईरान की फौजी सलाहियत को मजीद कमजोर करने के मकसद से किए गए हैं, जिसका इस्तेमाल वो आबनाए हुरमुज में कमर्शियल बहरी जहाजों पर हमले करने के लिए करता है। उधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहते हुए ईरान को जबरदस्त इंतकामी कार्रवाई की वार्निंग दी है कि ईरान को कई गुना भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तीन अमरीकी फौजियों की हालिया हलाकत के तनाजुर में सदर ट्रंप ने यह तंबीह की है। भारत की सरकर्दा बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु आज से शुरू होने वाले चाइना ओपन 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय दस्ते की क्यादत करेंगी। ख्वातीन के सिंगल्स मुकाबलों के पहले राउंड में आज पीवी सिंधु का मुकाबला अपनी हमवतन खिलाड़ी उन्नति हुडा से होगा। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं मोहम्मद अम्मार।
0: शुक्रिया कलीम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अहमियत के साथ शाये किया है। रोजनामा प्रताप ने कल मौसूल इजलास के पहले दिन कार्रवाई शुरू होने से कबल मीडिया से वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिताब को अहमियत के साथ शाये किया है, जिसमें वजीर आजम ने कहा कि बहस मुबाहसे में दलील और सच्चाई होनी चाहिए। साथ ही वजीर आजम ने पार्लियामेंट में मुल्क के मफाद के लिए काम करने की अपील की। अखबार की एक अहम सुर्खी है, नई दिल्ली में मुजाहिरीन के साथ मरकजी वजीर जेपी नड्डा की बातचीत से मुतालिक है। मुजाहिरीन की जानिब से सरकार को अपनी मांगों के लिए मेमोरेंडम पेश किया गया। रोजनामा इनकलाब ने ईरान के मौजूदा हालात वाकयात के तनाजुर में भारतीय शहरियों के लिए जारी नई एडवाइजरी से मुतालिक खबर को नुमाया किया है।
1: खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सुबह पार्लियामेंट हाउस में एनडीए पार्लियामानी पार्टी की मीटिंग से खिताब करने वाले हैं। सदरे जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज स्कोपेई में शिमाली मकदूनिया के अकिये अपनी हम्मन सब से बातचीत करेंगी। यूक्रेन में ओदेसा बंदरगाह के नजदीक कमर्शियल बहरी जहाज पर हमले में चार भारतीय शहरियों की मौत हो गई जबकि एक शदीद तौर पर जख्मी हुआ। भारत ने बहरी जहाज पर हमले की मजम्मत की है। मगरबी बंगाल सरकार ने रियासत में बुजुर्ग शहरियों, बेवाओं और दिव्यांगजनों के लिए माहाना पेंशन में इजाफा कर दिया है। अमरीका ने ईरान पर फिर हमले किए हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जबरदस्त जवाबी कार्रवाई का इंतबाह दिया है। और चांगजू में आज से शुरू होने वाले चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु भारतीय चैलेंज की क्यादत करेंगी। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।

हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्स पर। समय सुबह के 8:45 हो रहे हैं और आइए अब सुनते हैं सदाबहार नगमों का कार्यक्रम गोल्डन हिट्स। स्वागत है सभी श्रोताओं का आज के गोल्डन हिट्स कार्यक्रम में। श्रोताओं, महक वही जो दिल को छू जाए और जिंदगी वही जो औरों को महकाए। रंग रूप शब्द स्पर्श तो पल भर में मिट जाते हैं, पर सच्ची खुशबू वही है जो नजर न आए और उम्र भर साथ निभाए।

गुलनिधि कार्यक्रम का श्रोता हूँ। ये पहला गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में, फिल्म थी खामोशी, शब्द रचना थी गुलजार की और संगीत था हेमंत कुमार का।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: 10 लाख की लॉटरी मुझे
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
3: RBI कहता है
4: जानकार बनिए सतर्क रहिए।
5: एक बार फिर से स्वागत है सभी श्रोताओं का। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गोल्डन हिट्स आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। श्रोताओं कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं यशुदास और अनुराधा पोर्टवाल की आवाजों में। फिल्म है साजन बिना सुहागन, शब्द रचना है एंडीवर की और संगीत है उषा खन्ना का। श्रोताओं नजरें जिसे देख नहीं पाती, जो फूल और इत्र तक ही सीमित नहीं, जो केवल सौंदर्य साधन नहीं बल्कि हमारे जीवन का एक ऐसा एहसास है जो जिंदगी के बाद भी हमारे व्यक्तित्व को महका कर रखती है। जी हाँ श्रोताओं, वो है एक अदृश्य आनंद खुशबू। खुशबू यानी महक जो मन को प्रसन्न करती है, आत्मा को शांति और दिल की गहराइयों तक पहुँचने पर इंसान के मन और व्यक्तित्व को महका देती है। फूलों की कोमल पंखुड़ियों से लेकर इंसान के मीठे व्यवहार तक खुशबू हर रूप में हमारे जीवन को महकाती है। श्रोताओं खुशबू वो माध्यम है जो हमारे विचारों, हमारे व्यवहार और हमारे रिश्तों में बसती है। अच्छे मित्र, अच्छे कर्म और अच्छी संगत हमारे जीवन को महका देती है। और श्रोताओं जीवन तभी सार्थक होता है जब हम दूसरों के लिए उपयोगी बने, और यही जीवन की सच्ची महक है।

एक बार फिर से स्वागत है सभी श्रोताओं का। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गोल्डन हिट्स आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। श्रोताओं, प्यार भी खुशबू की तरह होता है, अदृश्य लेकिन महसूस करने योग्य। जैसे गुलाब की खुशबू उसके फूलों को पहचान दिलाती है, वैसे ही प्यार इंसान को उसकी असली पहचान देता है। प्यार की खुशबू रिश्तों को मजबूत बनाती है और मन में मिठास खोल देती है। खुशबू केवल प्रकृति या इत्र तक सीमित नहीं, बल्कि इंसान के व्यवहार, उसके विचारों और उसके प्रेम में भी झलकती है। जब हम अपने जीवन में प्यार, दया और सच्चाई की खुशबू भर देते हैं, तो हमारा जीवन भी किसी सुगंधित बगिया सा महक उठता है।

बदलते रिश्ते इस फिल्म में श्रोताओं आपने सुना लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर को, बोल लिखे थे अंजान ने और संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं अमिताभ बच्चन, आशा भोसले और शरद कुमार की आवाज़ों में फिल्म है द ग्रेट गैम्बलर। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत है आरटी परमन का।

और श्रोताओं, आइए कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवा रहे हैं ममता फिल्म का ये गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने। गीत लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने और संगीत है रोशन का। श्रोताओं, एक अच्छे व्यवहार और अच्छे व्यक्तित्व की खुशबू कुछ ऐसी ही होती है जो हमारे साथ साथ हमारे और या हमारे साथ जो लोग होते हैं उनको भी महका देती है। तो आइए हम सब मिलकर अपने व अपनों के जीवन को इस प्यार की खुशबू से भर दें, ताकि जब भी जहाँ भी हम जाएं, हमारी व्यक्तित्व की सुगंध से एक अमिट छाप रह जाए, हमारी उस उपस्थिति से दुनिया महके, हमारी यादें भी खुशबू बनकर दिल को छू जाएं, चाहे हम रहें ना रहें।

अभी आप सुन रहे थे सदाबहार नगमों का कार्यक्रम गोल्डन हिट्स। ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्स पर। समय सुबह के 9:15 होने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से।

इस दौरान जिले में विभिन्न सार्वजनिक व व्यक्तिगत स्थलों समेत सरकारी भवनों के परिसरों में पौधे लगाए गए। अपने संबोधन के दौरान कृषि मंत्री ने गांव, खेत, बागीचे, मंदिर, तालाब, अमृत सरोवरों एवं सड़क के किनारे आदि सजीव वृक्ष लगाने की अपील की। वृक्षारोपण अभियान के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों, स्कूली बच्चों, किसानों एवं अंत्योदय कार्ड धारकों में पौधे भी वितरित किए गए। इसके अलावा जिले के समस्त सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, विद्यालयों, पंचायत भवनों, ग्राम सचिवालयों, चरागार भूमियों एवं तालाबों के तटबंधों सहित विभिन्न सरकारी व गैर सरकारी भूमियों पर वृक्षारोपण किया गया। एक पेड़ मार्ग नाम बृहद वृक्षारोपण अभियान के जिले के नामित नोडल अधिकारी रविंद्र कुमार प्रथम तथा जिलाधिकारी

0: होलगी ने बैतारपुर विकासखंड के सृजन गुना पंचायत के प्राथमिक विद्यालय तथा आंगनबाड़ी केंद्र पर वृक्षारोपण करते हुए आम जन से अधिक पौधे लगाने तथा उसका संरक्षण करते रहने की अपील की है। पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर शंकर के नेतृत्व में जिले के पुलिस अधिकारियों ने पुलिस विभाग के सभी परिसरों थानों चौकियों पुलिस लाइन आदि पर पौधरोपण किए। जिलाधिकारी मधुसूदन होलगी ने महर्षि देवरावा बाबा सोसा से राज्य चिकित्सा महाविद्यालय का निरीक्षण कर विभिन्न निर्माणाधीन परियोजनाओं के कार्यों की प्रगति का जायजा लिया तथा अधूरे कार्यों को यथाशीघ्र पूर्ण करने का सख्त निर्देश दिया। उन्होंने एक सप्ताह के अंदर ट्रामा सेंटर चालू करने का भी निर्देश दिया। विकास के क्षेत्र में जिले को प्रदेश का मॉडल जिला बनाने के लिए जिलाधिकारी ने विकास कार्यों की समीक्षा बैठक करते हुए विकास कार्यों को पूरी गुणवत्ता के साथ पारदर्शी पूर्वक तय समय सीमा के अंदर पूर्ण करने के निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने सभी योजनाओं का लाभ पारदर्शी पूर्वक पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाने का भी निर्देश देते हुए कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। विकास कार्यों व योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही उजागर होने पर जिम्मेदारी तय करते हुए विभागीय कार्रवाई की जाएगी। जिले में चयनित आकांक्षी ब्लॉकों को निर्धारित पैरामीटर के तहत संतुलित करने के लिए जिलाधिकारी ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि बच्चों के डिजिटल हाजिरी कक्षा में निपुण तालिका शिक्षक संदर्शिका पठन पाठन की गुणवत्ता मध्याह्न भोजन स्कूल ड्रेस व अन्य मूलभूत व्यवस्थाओं का व्यापक व्यवस्था करते हुए पढ़ाई व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए। जिलाधिकारी ने कहा
1: सरकार द्वारा विभिन्न विभागों में विभिन्न तरीके की योजनाएं संचालित की जा रही हैं। शिक्षा विभाग में अब जुलाई महीने में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की गई है, जहां पे बच्चों को स्कूल आने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है ताकि बच्चों को शिक्षा की गुणवत्ता के ऊपर फोकस किया जाए। उसके साथ साथ बच्चों को निपुण भी बनाया जाए, उसके साथ साथ मूलभूत सुविधाएं विद्यालयों में और स्ट्रेंथन करने के लिए भी फोकस किया जा रहा है।
0: जिले में बाढ़ की आशंका को देखते हुए जिलाधिकारी ने बाढ़ समय पूर्व सभी तैयारियों को पूर्ण करने का सख्त निर्देश दिया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि बाढ़ के मद्देनजर सभी आवश्यक सामग्रियों की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित कर लें। बाढ़ विभाग व अन्य संबंधित विभाग आपसी समन्वय से कार्ययोजना तैयार कर रखते हुए उसका प्रभावी क्रियान्वयन करें। मार्ग दुर्घटना में हो रहे जनहानि को रोकने के लिए जिलाधिकारी ने सड़क सुरक्षा उपायों की गहन समीक्षा की। दौरान उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में जनहानि न हो इसके लिए हर संभव उपाय किए जाएं। बार बार सड़क दुर्घटना होने वाली जगहों को चिन्हित करते हुए वहां पर आवश्यक संकेतक तथा अन्य सुरक्षात्मक व्यवस्थाएं सुनिश्चित किया जाए। सेवा संस्कार सुशासन एवं सम्मान की मूल भावना के साथ कल्याणकारी शिविर का आयोजन जिले के विभिन्न तहसीलों में किया गया। इस दौरान पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, जिला समाज कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, जिला प्रोबेशन विभाग, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के पात्र लाभार्थियों में जनप्रतिनिधियों द्वारा स्वीकृत प्रमाण पत्र व अन्य उपकरण वितरित किया गया। सीएम डैशबोर्ड की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सीएम डैशबोर्ड शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता में है। यह शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों व विभागीय योजनाओं की प्रगति का प्रतिबिंब है। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम नहीं होगी। जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने जननी सुरक्षा योजना, संस्थागत प्रसव, हेपेटाइटिस बी आदि के टीकाकरण, आशाओं का लॉजिस्टिक वितरण, BHND सत्रों तथा मिशन डिलीवरी सहित प्राथमिक व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के कार्यों में लापरवाही न बरतने का निर्देश दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य केंद्रों की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार पर शिथिलता बर्दाश्त नहीं होगी। आगामी 31 जुलाई तक चलने वाले विशेष संचारी रोग अभियान तथा दस्तक अभियान का क्रियान्वयन पूरी तरह से किया जा रहा है। इस दौरान आशा कार्यकर्तियों द्वारा घर घर जाकर सर्वे किया जा रहा है तथा लक्षणयुक्त रोगियों को चिन्हित करते हुए उन्हें निकटतम स्वास्थ्य केंद्रों पर जाकर इलाज कराने का सलाह दिया जा रहा है। इस दौरान जिला मलेरिया अधिकारी सुधाकर मणि ने बताया कि
2: आशा एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री घरों के भ्रमण कर लक्षण युक्त रोगियों को चिन्हित कर रही हैं तथा कुपोषित बच्चों का भी सूची तैयार किया जा रहा है जो स्वास्थ्य केंद्रों पर और अन्य आगे की जाँच के लिए संदर्भित किया जाता है।
3: देवरिया जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं कासगंज जिले की हलचल। आलेख और स्वर है चंद्रशेखर मिश्र का।
4: जनपद कासगंज में 12 जुलाई को वृक्षारोपण महायज्ञ 2026 के अंतर्गत एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वृहद पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड के अध्यक्ष राकेश गर्ग तथा राज्य मानवाधिकार आयोग के सचिव एवं नोडल अधिकारी राजेश कुमार ने पौधारोपण कर किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी प्रणय सिंह, पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश सिंह, मुख्य विकास अधिकारी वीरेंद्र सिंह सहित जनप्रतिनिधियों, अन्य अधिकारियों और बड़ी संख्या में नागरिकों ने पौधे लगाए। मुख्य अतिथि राकेश गर्ग ने कहा कि एक पेड़ माँ के नाम अभियान पर्यावरण संरक्षण का जन आंदोलन है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2026 के वृक्षारोपण महायज्ञ के अंतर्गत जनपद कासगंज को 26,51,800 पौधे लगाने का लक्ष्य दिया गया है, जिसे जन सहभागिता से पूरा किया जाएगा। वक्ताओं ने नागरिकों से अधिक पौधे लगाने तथा उनके संरक्षण का संकल्प लेने का भी आह्वान किया। जनपद कासगंज में 16 से 22 जुलाई तक भूजल सप्ताह मनाया जा रहा है। अभियान के दौरान जल संरक्षण के प्रति जन जागरूकता पर विशेष जोर दिया जा रहा है। वर्षा जल संचयन, रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा भूजल पुनर्भरण जैसे प्रभावी उपायों को अपनाने के लिए लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। अभियान का उद्देश्य भूजल संरक्षण, उसके नियोजित विकास, विवेकपूर्ण उपयोग तथा अनियंत्रित दोहन पर रोक लगाने के प्रति आम जन को जागरूक करना है। इस वर्ष भूजल सप्ताह की थीम है जल संरक्षण का करें संकल्प, इसका नहीं है कोई विकल्प। अभियान के अंतर्गत जनपद की सभी ग्राम पंचायतों, विकास खंडों, नगर पंचायतों और नगर पालिका परिषदों में 7 दिवसीय सघन जल संरक्षण एवं जन जागरूकता कार्यक्रम मिशन मोड में संचालित किए जा रहे हैं। जनपद वासियों से जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने तथा भूजल संवर्धन और जल संसाधनों के संरक्षण में सक्रिय सहभागिता निभाने की अपील की जा रही है। इस विषय पर साहित्यकार और सामाजिक कार्यकर्त्री पारुल बंसल ने कहा,
5: मैं सभी लोगों से आग्रह करती हूं कि वर्षा जल का अधिक से अधिक संचयन करें, अनावश्यक पानी की बर्बादी रोकें और अपने आसपास जल स्रोतों के संरक्षण में सहयोग दें और आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्याप्त जल सुरक्षा रखने में अपना योगदान दें।
4: जनपद कासगंज में अपराधियों के विरुद्ध पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है। पुलिस अधीक्षक ओपी सिंह ने बताया कि सभी क्षेत्राधिकारियों सहित संबंधितों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि पुलिस मित्र वाली छवि को बनाए रखने एवं पीड़ितों की समस्याओं को गंभीरता से सुनकर तत्काल उनका गुणवत्तापूर्ण समाधान किया जाए। 18 जुलाई को जनपद न्यायालय परिसर में धारा 138 NI एक्ट से संबंधित लंबित मामलों के निस्तारण के लिए विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया। यह आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कासगंज द्वारा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में किया गया, जिसमें 4 मामले मौके पर ही सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित किए गए। कासगंज में आगामी कावड़ यात्रा को सुरक्षित, सुचारू और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। इसी क्रम में जिलाधिकारी प्रणय सिंह एवं पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश सिंह द्वारा गंगा नदी के लहरा घाट सहित अन्य घाटों का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। वहीं गंगा नदी के बढ़ते जल स्तर को देखते हुए प्रशासन श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है। गहरे पानी वाले स्थानों पर बैरिकेडिंग, खतरे के संकेतक, नावों, गोताखोरों तथा सुरक्षा बलों की तैनाती सुनिश्चित की जा रही है, ताकि किसी भी श्रद्धालु को किसी भी प्रकार की असुविधा या दुर्घटना का सामना न करना पड़े। मुख्य विकास अधिकारी वीरेंद्र सिंह की अध्यक्षता में 17 जुलाई को कलेक्ट्रेट सभागार में खरीफ एवं रबी वर्ष 2026 के लिए किसान क्रेडिट कार्ड कवरेज अभियान तथा जनपद स्तरीय उर्वरक निगरानी समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी द्वारा निर्देश दिए गए कि जिन पात्र किसानों के पास अभी तक KCC नहीं है, उनकी पहचान कर कृषि विभाग, सहकारिता विभाग, बैंक शाखाओं, पैक्स, FPO और कॉमन सर्विस सेंटर के समन्वय से विशेष अभियान चलाकर उन्हें KCC से जोड़ा जाए।
3: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक। जिले की हलचल समाप्त हुई। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। समय सुबह के 9:25 हो रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है लोक संगीत कार्यक्रम धरती गाती है, जिसके अंतर्गत आज सुनेंगे आप अर्पणा श्रीवास्तव के गाए रोहिलखंडी लोकगीत।

0: चिकन गुनिया मलेरिया दिमागी बुखार से बचे की।
1: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से इस समय श्रोता सुन रहे हैं लोक संगीत कार्यक्रम धरती गाती है, और जिसके अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं अर्पणा श्रीवास्तव के गाए रोहेलखंडी लोकगीत।

आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से श्रोताओं, आप सुन रहे हैं लोक संगीत कार्यक्रम धरती गाती है, और कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं अर्पणा श्रीवास्तव के गाए रुहेलखंडी लोकगीत।

0: लोक संगीत कार्यक्रम धरती गाती है के अंतर्गत आज आपने सुने अर्पणा श्रीवास्तव के गाय रोहिलखंडी लोकगीत। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्स पर। समय सुबह के 10 बज रहे हैं। लीजिए पेश है हमारे श्रोताओं के अनुरोध पत्रों और व्हाट्सएप मैसेजेस पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत तुम्हारे। ये महफिल भी आपकी है, ये तराने भी आपके हैं, हर धुन में बसे अफसाने भी आपके हैं। हम तो बस आवाज़ बनकर दिल तक पहुंचते हैं। असल में श्रोताओं, ये कार्यक्रम के हर गीत और ये कार्यक्रम भी आपके हैं। जी हाँ श्रोताओं, बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का कार्यक्रम गीत तुम्हारे में। और हाँ, आज का कार्यक्रम लेकर आपके साथ है आपके रेडियो साथी श्वेता भट्ट। और गीत तुम्हारे कार्यक्रम के साथ साथ अगले प्रसारण लेकर हमारे साथ हैं।
1: जी हाँ, मैं हूँ आपके साथ आपका रेडियो मित्र चरणजीत सिंह।
0: तो चरणजीत जी, शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम, लेकिन उससे पहले अपने श्रोताओं को बता देते हैं कार्यक्रम से जुड़ने के लिए, और नए श्रोता जो हमसे जुड़ रहे हैं स्पेशली उनको बता देते हैं हमारा व्हाट्सएप नंबर जो कि है 9457078288।
1: जी हाँ बिल्कुल, आप नंबर फिर से नोट कर लीजिए 9457078288।
0: अपना नाम, पता और पसंद का गीत लिखकर श्रोताओं कीजिएगा हमें मैसेज और जुड़िएगा लाइव प्रोग्राम में हमारे साथ। और कार्यक्रम का ये पहला गीत हमारे सभी श्रोताओं के नाम।
2: होठों पे रंगत है, दिल में मोहब्बत है, क्या जिसमें औरत है, बस जन्नत ही जन्नत है।

श्रोताओं, कार्यक्रम गीत तुम्हारे का ये पहला गीत आपने सुना किशोर कुमार की आवाज़ में। फिल्म का नाम था ड्रीम गर्ल। गीत लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। कार्यक्रम का अगला गीत सुनवाने से पहले श्रोताओं, आपको सुनवाते हैं एक संदेश और उसके बाद मिली जुली पसंद पर पढ़ेंगे हम अपने श्रोताओं के मैसेजेस और पत्र।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: एक बार फिर से स्वागत है हमारे सभी श्रोताओं का कार्यक्रम गीत तुम्हारे में, जिसे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। और श्रोताओं, कार्यक्रम के पहले गीत के लिए हमें फरमाइश की थी महाराष्ट्र बीड शहर से प्रकाश पगारिया, पराग पगारिया, प्रदीप पगारिया, केशव पगारिया और रामनिवास अग्रवाल ने। बक्सर बिहार से फरमाइश की थी शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून, असलम अंसारी, अक्रम अंसारी और अल्ताफ अंसारी ने। डुमराव बिहार से ये फरमाइश हमें मिली थी इसी गीत के लिए डॉक्टर डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा और दानिश अंसारी की। इसी गीत को सुनना चाहते थे सरीरामपुर बक्सर से आसमा खातून, राज डी अंसारी, मेहताब अंसारी, आफ्ताब अंसारी और महराज अंसारी। इसी गीत को सुना चाहा था मोहल्ला हलवाईयान कस्बा शेरकोट से मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी खान, बिट्टू भैया, साजदा रानी, जोया रानी और सानिया परवीन ने। परीमहल कासगंज से फरमाइश की थी इसी गीत के लिए नबील खान, आदाब आरफा, एम असलम सैफी, इल्मा खान, मास्टर जाहिद अली। जलालाबाद वेस्ट से फरमाइश की थी सुरेश गंगनेजा, पूनम गंगनेजा, विशाल, प्रिया दिशानी और नमित आहूजा ने। और पाठर कावड़ा से इसी गीत को सुना चाहा था अनिल बुरांडे, उषा बुरांडे, प्राची, अनुश्री, धनश्री और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने। बल्लाराशा से सूरज जी, प्राची और एकलव्य। मोहाली पंजाब से बब्बल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा और इनके परिवार के सभी सदस्य।
2: और ये मैसेज हमें मिला अपने गीत को सुनने के लिए कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जौड़ा सिटी दीवाना का। एक मैसेज हमें मिला है सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा और इनके परिवार के सदस्य माया देवी वर्मा। और ये अगला मैसेज हम तक पहुंचा है गगनदीप थांदी, त्रिपिता कुमारी थांदी, डॉक्टर प्रियंका थांदी, डॉक्टर प्रशांत थांदी, डॉक्टर प्रियम थांदी, बेबी वामिका वाणी थांदी। और ये मैसेज भेजा गया है गांव टोरोवाल, जिला नवाशहर, पंजाब से। एक मैसेज हमें और मिला है ये जय जिनेंद्र श्रोता संघ परभणी महाराष्ट्र से। भेजने वाले हैं रूपेश संघई, महेश संघई, प्रज्ञेश संघई, प्रीतेश संघई और पूरा संघई परिवार। ये मैसेज पटेल नगर मालोट से हमें भेज रहे हैं डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, आरजू जाजोरिया और गुड्डू। चांदनी चौक बिहार से मैसेज भेजने वाले हैं सरफुद्दीन जाटव, फातिमा जाटव, डब्लू वली जाटव, सोनम वली जाटव और इनके परिवार के अन्य सदस्य। मुसर्रत जहानाज, तलत जहानाज, रिफत जहानाज, फरहत जहानाज, नुजहत जहानाज, साजिया शाहीन नाज और नाजिया नूरी नाज ने हमें मैसेज लिख भेजा है नूर महल महसौल सीतामढ़ी बिहार से।
1: और श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म है पिया का घर, शब्द रचना है आनंद बख्शी की और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। और इस गीत को सुनने के लिए हमें फरमाइश भेजी है हमारे स्थानीय श्रोता ठाकुर द्वारा, शिव एवं निकट विश्वकर्मा मंदिर, पोस्ट छितावर वाया किरतपुर, जनपद बिजनौर से अमित धीमान, मुकेश धीमान, अमिता, प्रिंसी, खुशबू, आनंद किशोर धीमान, भागवत, भगवत प्रसाद, जयप्रकाश मिस्त्री, आरव, आफिया, अक्षत, अक्षिता एवं रैम्स कृष्णन की। और ये फरमाइश है मोहल्ला धर्मदास नजीबाबाद से रूपा वर्मा, मंजू वर्मा, तनु वर्मा, प्रभा वर्मा, स्वाति, आराध्या, विशाल, अगम्य और वैष्णवी वर्मा की। चौक बाजार नजीबाबाद से फरमाइश कर रहे हैं इसी गीत के लिए राजेंद्र कुमार, तुषार कुमार, अनिरुद्ध कुमार, सौरभ कुमार और इनके परिवार के सभी सदस्य। और इसी गीत के लिए हमें फरमाइश मिली है मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना और निवान शर्मा की। फजिल का पंजाब से ही एक और फरमाइश है भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, लाडी, विशाल, शालिनी और टिवांशी खेड़ा की। इसी गीत को सुनना चाहते हैं अनोखीलाल मौर्य, सुंदर देवी मौर्य, प्रकाश मौर्य, रिंकी मौर्य, कपिल, वेदराम, कैलाश, सुनील, खुशबू, आरोही, स्वाति और इनके परिवार के सभी सदस्य। और इसी के साथ एक पत्र है करूला मुरादाबाद से अयूब खान, ईरम गुड़िया, शुएब खान और सिंधौली मीरगंज बरेली से जिशान वारसी, इमरान शेख और रेहान शेख की।
2: और ये मैसेज हम तक पहुंचा है मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब बाजार रोड मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरुन निसा शबिस्ता, मोहम्मद नसीब, पलक, लुबना और यश मंसूरी का। कौनसाही से पूना जंक्शन मस्तानपुरा से अनंता भगत, अरुणा भगत, चेतन भगत, सुलोचना भगत का भी मैसेज हम तक पहुंचा है। गांव पांडरकवड़ा से हमें ये मैसेज लिख रहे हैं अनिल बुरांडे, उषा बुरांडे, अनुश्री बुरांडे, धनश्री बुरांडे, आमिर हुसैन, तैयबा शेख, फौजिया शेख, आहिल हुसैन, अरहान हुसैन और इनके परिवार के अन्य सदस्यों ने हमें मैसेज लिख भेजा है। पटियाली रोड गंज डुंडवारा से, ज़िला मुरादाबाद के गांव दूल्हापुर से हमें मैसेज लिख रहे हैं मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार, नरगिस खातून और इनके परिवार के अन्य सदस्य। एक मैसेज हमें मिला है मोहम्मद कैफ, सैफ, ओवैस, उबैद, मोंटी, डॉक्टर विजय, कासिम पेंटर और इनके परिवार के अन्य सदस्यों का, और ये भेजा गया है गांव मीरमपुर बेगा, तहसील नजीबाबाद, जनपद बिजनौर से।
1: और इसी के साथ ही चरणजीत जी, मैसेज के साथ साथ पत्र भी हमारे पास है, तो
2: जी बिल्कुल
1: पत्र भी ले लेते हैं हम। ये हमें भेजा है पत्र से गीत के लिए यादव मोहल्ला सनावद मध्य प्रदेश से, दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता मालाकार, मुस्कान मालाकार और जितेंद्र धर्मेंद्र मालाकार का, टैगोर गार्डन दिल्ली से रविंद्र छाबड़ा। देखिए आपने इनका मैसेज भी शामिल किया था और ये पत्र भी
2: इन्होंने हमें भेजा है,
1: छाबड़ा परिवार की तरफ से आया है इसी गीत के लिए। और गंज टुंटवारा से मोहम्मद कासिम अली अंसारी, जाहिरा बेगम, मोहम्मद आयान उस्मान, यासीन हाशमी, शमशुल कमर राही और इनके परिवार के सभी सदस्य। पश्चिम बंगाल से फरमाइश कर रहे हैं इसी गीत के लिए मुन्ना भगत और गुट्टी भगत। और सुंदरखेड़ राजमाता नगर बुढ़लाड़ा महाराष्ट्र से आप हैं नरेंद्र नरवाड़े, ज्योति नरवाड़े, आकांक्षा नरवाड़े और आकाश कुमार नरवाड़े का। तो श्रोताओं, इन सभी श्रोताओं के साथ आप भी सुनिए फिल्म पिया का घर का एक ही, जिसमें आवाजें हैं लता मंगेशकर की, शब्द रचना आनंद बख्शी की और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: श्रोताओं, आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत तुम्हारे। और कार्यक्रम में हमने अगला गीत लिया है मोहम्मद अजीज़ और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है खुदा गवाह। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। और इस गीत को सुनने के लिए हमें फरमाइश भेजी है वाइल्ड फील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण, अंजु श्रीवास्तव, देवेंद्र भूषण, संस्कृति पौरुष, रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी, कुलदीप कंवल और इनके परिवार के सभी सदस्य। और इसी गीत को सुना चाहा है मनकारा मंदिर बीटीए कॉलोनी करगैना बरेली उत्तर प्रदेश से पन्नीलाल सागर, बेनी सिंह मासूम, धर्मवीर मन मौजी, आशीष कुमार सागर, अमर सिंह, हितेश, रूबी भारती, एकता भारती, रचना भारती, दिव्या भारती, ममता चौधरी, ओमवती भारती, खनक, नकुल, नैन्सी और सारांश ने। और इसी गीत के लिए हमें फरमाइश भेजी है आगरा से सरिता चौरसिया, सुमित चौरसिया, अबीर चौरसिया और सुजाता चौरसिया ने। उज्जैन एमपी से फरमाइश कर रहे हैं इसी गीत के लिए विनोद मूड़त, नेहा जैन, दीपक, मयंक चेतन और दिलीप सिंह पवार। और इस गीत को सुना चाहा है कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार ने, जिसमें शामिल है मुकेश बत्ता, नीलम पलक, नितिन करण, गीतू निहारिका और वंश बत्ता। गांधी बाग अकोला से फरमाइश इसी गीत के लिए है और भेजने वाले हैं रमेश कटंकर, वैशाली कटंकर, कीर्तिकी कटंकर और सरोज चौक अमरावती से कमरुला ठेकेदार और नसीम बेगम। सहारनपुर से राधा नामदेव, अभिषेक नामदेव और अर्पणा नामदेव। कोयते वस्ती पुनावले से आप फरमाइश कर रहे हैं अजय सोनवनी, करिश्मा, अविका, विशाखा, शायशा। श्रीरामपुर से अविका, जीविका और कुंभार। और ये पत्र हमें मिला है रामगंज खांडवा मध्य प्रदेश से विजय महोविया, संजय महोविया, कविता महोविया, विशाल, विवेक, सपना, शिवी, सनोली और राजू चराटी के साथ पेंटर बाबू। बागपत से संजय ठींगिया, नमन, आपार और इनके परिवार के सभी सदस्य। श्री तुलजा भवानी माता वाट खांडवा से अनिल विंचुंकर और मंगला शोभित विंचुंकर। उदयनगर से मोहित रतन पारखी, स्वीटी मिस्टी और मनस्वी रतन पारखी।
1: और हमें मैसेज लिख भेजा है गांव जेवरा हिसार से वीरेंद्र भ्याण, शमशेर भ्याण, सुरेंद्र भ्याण, मनोज भ्याण और इनके परिवार के अन्य सदस्यों ने। एक मैसेज भोपाल गढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा, पूजा परिहार ने भी हमें मैसेज लिख भेजा है। शाही मार्केट सिहारा जनपद बिजनौर से आसिफ चौधरी, बेगम रेहाना, अराफात चौधरी, अदीब चौधरी और कादिर चौधरी ने भी मैसेज हम तक पहुंचा दिया है। दीदार रेडियो श्रोता संघ बिलराम गेट कासगंज से अमसलम सैफी, जैबुन निसा बेगम, अकरम सैफी, जाहिद सैफी, सद्दाम सैफी, सोनी सैफी, आबाद खान का मैसेज हम तक पहुंच गया है। रेलवे रोड गंज डुंडवारा से मोहम्मद कलीम जख्मी, भुवन प्रकाश गौतम, डॉक्टर दबीरुल हसन, बेगम शबनम अनवार, नजमा बेगम नाज, सरिता गौतम ने मैसेज लिख भेजा है। नदीम बाकी, कलीम बाकी, अलीम बाकी, अजीम बाकी, अदीम बाकी, अब्दुल गनी, अलमीर, मोहम्मद जैन, जन्नत ने मैसेज लिख दिया है मोहम्मद मोहल्ला अफगानान शेरकोट जनपद बिजनौर से। निज़ामुद्दीन, रऊफ अहमद, अरसलान, हन्नान, महक और इनके परिवार के अन्य सदस्यों ने ये मैसेज भेजा है शेरकोट जनपद बिजनौर से। दतरेंगी से मैसेज लिख रहे हैं भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा, रुद्र वर्मा और इनके परिवार के अन्य सदस्य। सुरेंद्र संधू, अनिता संधु, रोहित संधु, रितेश संधु, शिखा संधु, प्रीतिशा संधु और मैक्स ने हमें ये मैसेज लिख दिया है गुलाम रोड हरगोबिंद नगर नवा शहर पंजाब से। और ये मैसेज हम तक पहुंचा है मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी का ऊपरकोट बुलंदशहर से।
0: चलिए श्रोताओं, आपको सुनवाते हैं फिल्म खुदा गवाह का ये गीत, जिसमें आवाज़ें हैं मोहम्मद अजीज़ और कविता कृष्णमूर्ति की। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से हमारे श्रोता इस समय सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत तुम्हारे। और श्रोताओं, कार्यक्रम में अगला गीत हमने लिया है सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज़ों में फिल्म बॉर्डर से। गीत लिखा है जावेद अख्तर ने और संगीत है अनु मलिक का। इस गीत को सुनना चाहते हैं दौलतबाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नाइमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली और जुनेद अब्बासी, तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष चैतन्य मेघा, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचित टीशू और इनके परिवार के सभी सदस्य। इसी गीत को सुनना चाहते हैं चंदन नगर सहारनपुर से सुरेश नारंग, आशु सोनाली, प्रतिव और कृषिव, गरीब नवाज कॉलोनी, वंदना नगर इंदौर से संतोष रेखा रघुवंशी, शोभा भूपेंद्र रघुवंशी, बबीता सुरेंद्र रघुवंशी, पूजा विकी रघुवंशी, स्वाति प्रयाग चौधरी, मालती चौधरी, गणेश कार्तिक खर्चे, संजना परी खर्चे और ललिता नारायण खर्चे। इसी गीत के लिए हमें फरमाइश मिली है करमवीर हाउस बठिंडा से प्रेम सिंह जौड़ा, मनजीत कौर जौड़ा, करणवीर करण, विपिंदर दीपिंदर, सिमरन एकम दवन और अभिजीत का। पट्टी मेहर बड़ौत यूपी से इसी गीत को सुनना चाहते हैं रामानंद कश्यप, विमलेश कश्यप, आर्यन कश्यप, पाली राम भगत, आयुष, आदित्य, राजेश और इनके मम्मी पापा। और ये फरमाइश हमें मिली है श्री गंगानगर से बजरंग लाल शर्मा, जगमोहन सिंह अरनेजा, दिनेश कुमार शर्मा और नरेश कुमार शर्मा की। इसी गीत के लिए एक और फरमाइश है गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयानंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज प्रमोद, रोहित और मोहित की। और इसी गीत के लिए ये पत्र है यवतमाल से जयराम

0: सिंघाड़कर, दिशांत कुमार सिंघाड़कर और अर्पिता का, रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस नायक, शोभा नायक और डागला परिवार, आदर्श नगर मलोट पंजाब से संगीत को सुना चाहते हैं राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना शर्मा और निवान शर्मा, कस्बा उगेती बदायूं से फरमाइश की है संगीत के लिए देवेंद्र कुमार गुप्ता, धीरज कुमार गुप्ता, पंकज बजाज, प्रिंस कुमार, प्रशांत गुप्ता और कार्तिक गुप्ता, अनारकली बाजार जगराओं से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, आशीष मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा और सुच्चा पाठक।
1: और हम तक मैसेज भी कर रहे हैं, और हम अपने श्रोताओं को, श्वेता बता दें कि अगर
0: जी
1: उन्हें हमारे इस कार्यक्रम का मोबाइल नंबर नहीं मालूम, व्हाट्सएप नंबर नहीं मालूम और वो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, तो हमारे श्रोता हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9457078288, यानी 9457078288। और जैसे कि ये मैसेज हम तक पहुँच चुका है, मोहल्ला फतेहगढ़ लुधियाना पंजाब से विनोदपुरी, वीपी रंजू, अशोकपुरी, सुशीलपुरी, बीकेपुरी, कैलाशपुरी, नीलमपुरी, रमापुरी, पालीपुरी, सुनील पाठक और वीकेपुरी, विनोदपुरी का। इसके साथ ही ये मैसेज हमें मिला है जसपुर उत्तराखंड से, रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज, रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन, माहिरा नूर का। और मैसेज हमें भेज रहे हैं झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया, मयंक भाटिया। इसके साथ ही ये मैसेज हमें मिला है गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से, मास्टर खिल्लू परवेज, इमराना नाज, नवाज़ शेख, दानिश शेख, अमन आफरीदी, राधा नामदेव का। राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी, आसमा अंसारी, मोहम्मद कैफ अंसारी ने मैसेज लिख भेजा है जैन मंदिर वाली गली कुरावली से। ये मैसेज हमें मिला है किदवई नगर सिद्धपुरा टाउन से, ज़ुबैर अली ख़ान, सबीहा ज़ुबैर, अंजुम खान और इनके परिवार के अन्य सदस्यों का। सादमी नाम इन्होंने लिखे हैं मारहरा दरवाज़ा एटा से, नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी, अनम अब्बासी, रशीद वारसी और यशफ अब्बासी के। इसके साथ ही ये मैसेज हमें मिला है,
0: ये मैसेज है ग्राम जुजिला थाना शिवाला कला बिजनौर से, राशिद अंसारी, पनवीर जहा, निशात आयशा, शाइना महवेश, मोहम्मद अफरान और अदीना नूर का। और इसी के साथ ये मैसेज हमें मिल रहा है अनूपगढ़ राजस्थान से, मंगल जनागल, श्रीमती रोशनी जनागल, अंकुर इंदु और डॉक्टर सुनील जगाकल का।
1: और ये मैसेज हमें मिला है महाराणा प्रताप कॉलोनी उदयपुर से, रमेश नाचानी, भारती नाचानी, विनीत नाचानी और मिथिल नाचानी का।
0: आप हैं दादरी गेट भिवानी से, कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा, कुणाल मेहरा, उनके परिवार के सभी सदस्य। और इसी गीत को सुनना चाहते हैं नेहरू पार्क निजामाबाद तेलंगाना से, अजीज भाई, मतीन भाई, अब्दुल रहमान, शेख चंद फारूक फूलवाले और सैयद खलील मुबीन भाई के साथ, एमडी यासीन, मूसा करीम शेख और इनके परिवार के सभी सदस्य।
1: चौटाला हरियाणा से दारा पंडित, संजय शर्मा, प्रियंका शर्मा ने भी मैसेज हमें लिख भेजा है।
0: जवाहर नगर दुर्ग से आप हैं आरसी कांबड़े, करुणा, मीना, अश्वनी और विपुल कांबड़े।
1: जी हाँ, और ये मैसेज गुलाम हसन, निशाद बानो, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद फरमान, साबरा खातून, शहजादी, शराफत अली, अब्दुल रहमान, बिटिया मदीहा का मैसेज हमें मिला है मोहल्ला धर्मदास नजीबाबाद से।

0: ये गीत श्रोताओं आपने सुना सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज़ों में। फिल्म थी बॉर्डर, गीत लिखा था जावेद अख्तर ने और संगीत था अनु मलिक का। कार्यक्रम की अगली पेशकश फिल्म मदहोशी से, जिसमें आवाज़ें हैं उदित नारायण और साधना सरगम की, शब्द रचना है शकील आजमी की और इस गीत को संगीतबद्ध किया है रूप कुमार राठौर ने। और सुनना चाहते हैं हमारे ये सभी श्रोता भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, पूजा परिहार, विलेज एंड पोस्ट राहुल नगली से आचार्य सत्यवीर सिंह, अलका चौहान, भूमिका चौहान और कशिश चौहान, दुबीहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय, प्रांजल राय और उनके परिवार के सभी सदस्य, और ये फरमाइश हमें मिली है कोटवा नारायण बाबा पट्टी बलिया से, ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित राय और हैप्पी राय की। जदुका किशनपुर से फरमाइश कर रहे हैं ऐसे गीत के लिए आलम दिलकर, शवान अनाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, फिरोज आलम, आलम शेख और चांदनी नाज ने। पाकुड़ झारखंड से श्वेता भगत, कीशु ताशु, अर्णव आनंद, सत्यम आनंद, मुन्ना भगत और गुटी भगत। उदयपुर राजस्थान से फरमाइश है रमेश नचानी, विनीत नचानी और मिथिला नचानी की, और इसे गीत के लिए फरमाइश की है छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झाविंद्र कुमार वर्मा ने। और ये पत्र हमें मिला है गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर विरेक, जयतेक बिरक और मीका विरक का। संगीत टाकेश शाहगंज आगरा से फरमाइश कर रहे हैं महफूज अंसारी, फिरदोस अब्दुल, हुमैरा, हिफ़ज़ा, हबीबा, हलीमा, हसन और इनके परिवार के सभी सदस्य। करोला मुरादाबाद से अयूब खान, नीरम गुड़िया, शुएब खान। शास्त्री नगर मेरठ से मैसेज कर रहे हैं दिलीप शर्मा, अंजू शर्मा, सुगंधा शर्मा, धैर्य और वत्स शर्मा का। राजस्थान से रानी झाव, नीतू झाव और इनके परिवार के सभी सदस्य।
1: और ये मैसेज हम तक पहुंचा है गांव दूल्हापुर जनपद मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोहनी, मोहिनी, ऋतिक, बलवीर सिंह का। ये मैसेज एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोट का भी हम तक पहुंचा है। बीजना मुरादाबाद से राजवीर सिंह यादव, कुणाल यादव, हर्ष यादव, मनीष यादव, अंशिका यादव, यूसुफ खान, सोफिया खान का मैसेज हम तक पहुंच चुका है। और ये मैसेज लक्सर रोड सुवाहेड़ी कस्बा पुरकाजी ज़िला मुजफ्फरनगर से मोहम्मद जाबिर, मोहम्मद हुजैफा, मोहम्मद शाहनवाज़, मोहम्मद शाहरुख, मोहम्मद शोहेब कहकशां और इनके परिवार के अन्य सदस्यों का मैसेज हम तक पहुँचा। गाँव गादरोना पोस्ट लंढौरा रुड़की से मदन गिरी, विमला गिरी, विमला देवी, बलराम गिरी, मधु देवी, भारत गिरी, सोनिया देवी, सिमरन गिरी, गोविंद गिरी, वंशिका गिरी, रमन गिरी, दिव्या गिरी ने भी मैसेज हम तक लिख भेजा है। गरीब नवाज कॉलोनी का मैसेज देखेगा श्वेता, हम तक पुनः भेजा गया है। अपने श्रोताओं से कहना चाहेंगे कि एक बार जिन्होंने मैसेज भेज दिया और उनका मैसेज हम शामिल कर चुके हैं तो वे रिपीट ना करें, दोबारा मैसेज ना भेजें। और ये मैसेज हमें मिला है गांव भोजपुर तगा सहारनपुर से मोहम्मद इंतज़ार, मोहम्मद जावेद, राहत अली, जाकिर हुसैन और वकील अहमद का। ज़िला अम्बागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा, सबीहा, अनस और रेहान का भी मैसेज हम तक पहुंचा है। शास्त्री नगर बीड शहर से किशन सपकाल, आशा सपकाल, सोनिया सपकाल, साईराज सपकाल, विशाल सपकाल ने भी मैसेज हमें लिख भेजा है। कवाई सालपुरा ज़िला बारा राजस्थान से सतीश श्रीवास्तव, प्रेमलता श्रीवास्तव, हिमानी हर्षिता, अभिषेक श्रीवास्तव ने भी मैसेज हमें लिख भेजा है। सहारनपुर से सोनाली नारंग, आशा नारंग और सुरेश नारंग ने मैसेज हमें लिख भेजा है। और ये मैसेज हमें मिला है तहसील रोड गंज डुंडवारा से के एच राही, गुड़िया बेगम, वकील प्रेमी, हमाद जमील और इनके परिवार के अन्य सदस्य।
0: ये मैसेज हमें मिल रहा है पटियाली रोड गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से एम खलील कुरैशी, नुसरत बेगम, एजाज कुरैशी, अकील कुरैशी और अरीबा हबीबा। इसी के साथ एक और मैसेज ले लेते हैं, ये है संबलपुर कांकेर से फगुन राम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव का। आप हैं निम्भोरा महाराष्ट्र से अशोक देशमुख, शरद देशमुख, आदिनाथ वाघ।

इनके परिवार के सभी सदस्य। और ये मैसेज हमें मिला है कुम्हेड़ा सहारनपुर से, सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सा, नाजिया, आफिया, इब्राहिम सद्दाम और इनके परिवार के सभी सदस्य। तो श्रोतों लीजिए सुनिए फिल्म मदहोशी का ये गीत उदित नारायण और साधना सरगम की आवाज़ों में।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत आप सभी के लिए है फिल्म दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे से। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर ने, संगीत है जतिन ललित का और गीत लिखा है आनंद बख्शी ने। और इस गीत को सुनना चाहते हैं हमारे ये सभी श्रोता, महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रयांश गुड़िया ठाकुर, उत्तम नगर दिल्ली से मैसेज कर रहे हैं बोधराज खोरवाल, गीतिका खोरवाल, कमला रानी और भानु प्रकाश। इसी गीत को सुनने के लिए हमें मैसेज किया है मेन रोड तेलहरा से प्रकाश पोहरकार, नर्मदा अनिल, महेंद्र, सुनील, साहिल और सुजाता पोहरकार ने, महाराजा रेडियो श्रोता संघ जिला खांडवा ग्राम लाहौरी से राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल कुमार धनजे, शीला धनजे, गायत्री धनजे, खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद, नीतू वैद और इनके परिवार के सभी सदस्य भी इसी गीत को सुनना चाहते हैं। और ये मैसेज हमें मिला है भाटापारा छत्तीसगढ़ से, सोहन जोशी, विष्णु साहू, अंकिता, अमृता, लोकेश जोशी, सिवहारा से आशिफ चौधरी, अराफा चौधरी, इनके परिवार के सभी सदस्य, और भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, काशीपुर से इकबाल, अतीब और आयशा बेगम, मालवा रेडियो श्रोता संघ परमीलागंज, आलोर जिला रतलाम मध्य प्रदेश से हमें मैसेज कर रहे हैं बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति, अतुल, प्रियांश और ऋषि वर्मा। दुर्गा प्रसाद बीसलपुर पीलीभीत से हमें मैसेज किया है विमल वर्मा, विनय वर्मा, उनके परिवार के सभी सदस्यों का, और ये फरमाइश है ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और महराज जहां की, आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से। और इसी के साथ एक और मैसेज हमें मिला है हांडी खेड़ा जिला सिरसा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा और सार्थक शर्मा का।
1: जी हाँ, और लगातार हमें व्हाट्सएप पर मैसेज मिल रहे हैं। हम अपने उन श्रोताओं से क्षमा याचना करेंगे, खेल करेंगे कि समय की बाध्यता के चलते हम जिनके मैसेज इस कार्यक्रम में शामिल नहीं कर सके, लेकिन हाँ, इस उम्मीद के साथ हम अगला अब इस कार्यक्रम का आखिरी गीत सुनवाएंगे कि आप व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से हमसे ज़रूर जुड़े रहिए, ताकि आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े रहिए, ताकि हम आपके मैसेजेस को अपने आने वाले अन्य कार्यक्रमों में शामिल करते रहें। तो अब श्वेता, इस कार्यक्रम का हम अंतिम गीत सुनवा रहे हैं अपने श्रोताओं को।
0: जी, फिल्म का नाम है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, आवाज़ है लता मंगेशकर की, शब्द रचना आनंद बख्शी और

0: अशुतो, इसी गीत के साथ ही आज का गीत तुम्हारे कार्यक्रम संपन्न करने की श्वेता को दीजिए इजाजत। आप जुड़े रहें चित्रपट संगीत में हमारे साथी चरणजीत सिंह के साथ, और हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें और सुनते रहें आकाशवाणी नजीबाबाद। हैव अ नाइस डे।
1: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत तुम्हारे। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 11 बज रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। चित्रपट संगीत सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन। श्रोताओं, गीत संगीत के इस कार्यक्रम को लेकर हाजिर हूं मैं आपका रेडियो मित्र चरणजीत सिंह। और दोस्तों, गीत संगीत क्या है? गीत संगीत एक वो तरंग है जो हमारे भीतर, हमारे अंतर्मन में एक ऊर्जा का भाव जगाता है, एक सकारात्मक सोच हमारे मन में विकसित करता है। यही ऊर्जा, यही सकारात्मक सोच जब सुबह हमारे साथ साथ चलती है तो दिन बन जाता है। जैसे कि अब इस कार्यक्रम की हम शुरुआत करने जा रहे हैं आपका समा बांधने वाले इस प्यारे से गीत के साथ।

अभी आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल और रिहन की आवाज़ में फिल्म इतिहास का ये प्यारा सा गीत, जिसे लिखा समीर ने, संगीतबद्ध किया दिलीप सेन, समीर सेन ने। और दोस्तों, जब जब दिल की कलम कुछ लिखती है, ये सच है कि इतिहास रचती है। जैसे कि दिल की कलम से, यानी दिल के भावों से, दिल की पीड़ा की, दिल की वेदना से जब कोई गीत लिखा जाता है, जब कोई गीत शब्दों में पिरोया जाता है, तो वास्तव में वो दिल में सीधे उतर जाता है। देखिएगा, एक गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं मोहरा फिल्म का, जिसे आवाजें दी पंकज उदास और साधना सरगम ने। ये गीत भी सीधे सीधे दिल में उतर जाता है। इस गीत को लिखा इंदीवर ने और संगीतबद्ध किया विजू शाह ने।

0: इस गीत के साथ ही श्रोताओं कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब सुन लेते हैं जरूरी संदेश।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूं।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
0: इस संदेश के बाद श्रोताओं आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत फिल्म संगीत के कार्यक्रम चित्रपट संगीत में, और ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। श्रोताओं हमारे मन के भाव हमें अक्सर गीतों में महसूस होते हैं। जी हाँ, जब गीत हम सुनते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे जीवन से, हमारी दिनचर्या से, हमारे कार्य व्यवहार से किसी ना किसी रूप में वो जुड़ा नजर आता है। और देखिएगा मन क्या है, मन चलायमान है, मन गतिमान है। जब तक ये मन चलायमान गतिमान होता है तब तक इस मन में हर पल भाव बदलते रहते हैं, लेकिन मन भागता भी बहुत है।

सुनिधि चौहान की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे फिल्म चमेली का ये प्यारा सा गीत, जिसे लिखा इरशाद कामिल ने और संगीत दिया संदेश सांदल्य ने। दोस्तों, मन, हमने आपसे कहा था कि पल पल भाव बदलता है, वो इसलिए क्योंकि मन गतिमान चलायमान होता है। और देखिएगा, मन को कोई देख नहीं सकता, मन की भावनाओं को केवल महसूस किया जा सकता है। और ये भाव अक्सर हमारे चेहरे पर, हमारी आंखों पर, हमारे मस्तक पर सहज ही नजर आ जाया करते हैं, क्योंकि कहा जाता है ना कि सामने वाले का चेहरा पढ़कर उसके दिल में क्या है, उसके दिमाग में क्या है, ये हम अक्सर पता लगा लिया करते हैं। लेकिन दोस्तों, भाव तभी पता चलता है जब हम किसी की बात को समझें, महसूस करें, उसे तवज्जो दें। यानी प्यार भरे भाव से अगर एक दूसरे के बीच अपनी भावनाओं का लेन देन करें, आदान प्रदान करें, तो ही हमें मन के भावों का पता चलता है। लेकिन अगर एक तरफा बात हम करते रहें, यानी केवल हम कहते ही रहें, दूसरे वाले को बोलने का मौका ना दें, तो उसके दिल की बात को, उसके भावों को, जो उसके चेहरे पर नजर आ जाना चाहिए, जो उसकी आंखों से छलकना चाहिए, वो नजर नहीं आता। इसलिए किसी ने क्या खूब बात कही है इस गीत में।

अभी आपने सुना अलका याग्निक की आवाज़ में फिल्म चीख का ये प्यारा सा गीत, हसरत जयपुरी का लिखा और नदीम श्रवण का संगीतबद्ध किया। श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में अब हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म रन का प्यारा सा गीत अलका याग्निक और सोनू निगम की युगल आवाज़ों में। गीत रचना समीर की और संगीत हिमेश रेशमिया का है।

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत अब यहीं पर संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं NCERT।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश।
3: और मैं हूं अजीत। स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू, सुजाता साहू जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: बारिश सिर्फ पानी की बूंदें नहीं होती, ये प्रकृति का धरती के प्रति प्रेम है।
3: बहुत सुंदर विचार आपने भेजा, धन्यवाद। हम इसे एक पर्यावरण संदेश भी कह सकते हैं
2: जी।
3: आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है चरौदा बार नवापारा अभयारण्य, जिला बालौदा बाजार छत्तीसगढ़ से नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, खुशबू और ज्योति ठाकुर जी का।
2: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा।
3: और करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर।
2: राजा जी नगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद और अखिला प्रसाद।
3: और रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से अखिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू और शुभम सेजल साहू जी।
2: जी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश और उत्तर भेजने के लिए।
3: स्वागत है आप सबका हमारी मनोरंजक ज्ञान श्रृंखला ये भी जानिए में। श्रोताओ, इस सप्ताह हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत के विभिन्न मेलों की।
2: जी हाँ श्रोताओ, कुंभ और पुष्कर जैसे मेलों के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं
3: जी,
2: लेकिन आज हम लेकर आए हैं जानकारी कुछ ऐसे मेलों और उत्सवों की जो लोक संज्ञान में कम हैं, लेकिन उनका सांस्कृतिक महत्व बहुत अधिक है।
3: जी हाँ श्रोताओ, ये मेले अपनी अनोखी परंपराओं के कारण बेहद रोचक हैं
2: जी।

0: जी, आज हम चर्चा करेंगे जॉन बील मेले की।
1: जॉन बील मेला?
0: जी।
1: बड़ा अपरिचित सा नाम लगता है। हमारे बहुत सारे श्रोता मित्र ऐसे भी होंगे जिन्होंने शायद ये नाम सुना भी ना हो।
0: जी,
1: तो अब ये तो बताइए कि ये मेला कहाँ लगता है।
0: अजीत जी, ये भी बताती हूँ, लेकिन इससे पहले कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ आपसे और हमारे श्रोताओं से भी।
1: जी पूछिए पूछिए।
0: ये बताइए कि जब हम कुछ खरीदने जाते हैं या खरीदारी का माध्यम क्या होता है?
1: ये भी कोई पूछने की बात है। हम मुद्रा या सरल शब्दों में कह लीजिए कि पैसों या रुपयों से खरीदते हैं।
0: बिल्कुल सही, लेकिन अब ये बताइए कि जब प्राचीन काल में मुद्रा नहीं थी तो किस तरह लेन देन करते थे? क्या लेन देन होता ही नहीं था? बताइए बताइए।
1: हाँ विमलेश जी, लेन देन तो होता था, लेकिन जब मुद्रा नहीं थी तो एक तरीका था लेन देन का, लेकिन क्या तरीका था आप बताइए ना।
0: अजीत जी, वो तरीका था वस्तु विनिमय, यानी बार्टर सिस्टम, यानी किसी वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना या देना। ये बहुत प्राचीन तरीका था।
1: जी बिल्कुल सही, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि हम आज के विषय से भटक गए हैं? कहाँ हम बात कर रहे थे मेले की और कहाँ आगे वस्तु विनिमय पर, अर्थशास्त्र पर?
0: अरे नहीं अजीत जी, हम बिल्कुल विषय से नहीं भटके हैं। यही तो हम श्रोताओं को बताना चाहते हैं कि आज भी उत्तर पूर्वी राज्य असम में एक ऐसा मेला लगता है जिसे जॉन बील मेला कहते हैं। यहाँ आज भी वस्तु विनिमय प्रणाली द्वारा लेन देन होता है। लोग बिना पैसे के एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का लेन देन करते हैं।
1: अरे वाह, आज की डिजिटल करेंसी के युग में भी वस्तु विनिमय प्रणाली का जीवित रहना सचमुच बड़ी अनूठी बात है।
0: जी
1: विमलेश जी, जरा जॉन बील मेले के बारे में श्रोताओं को विस्तार से बताइए।
0: जी अजीत जी, ये मेला असम के मोरीगांव जिले में हर वर्ष माघ बिहू यानी जनवरी में आयोजित होता है। अब आपकी बारी।
1: जी श्रोताओं, इस मेले में असम और मेघालय की टिवा जनजाति सहित कार्बी आंग्लोंग के जनजातीय या आदिवासी समुदाय भाग लेते हैं।
0: जी हाँ श्रोताओं, पहाड़ों की जनजातियाँ अदरक, हल्दी, शहद और बांस के उत्पाद और जड़ी बूटियाँ और अचार इत्यादि लेकर आते हैं,
1: जबकि मैदानी क्षेत्रों के आदिवासी लोग चावल, मछली, पीठा और अन्य खाद्य सामग्री लेकर आते हैं, और इन वस्तुओं का आपस में सीधा आदान प्रदान किया जाता है।
0: जी
1: तो अब बात करते हैं विमलेश जी इसके इतिहास की। तो अब आपकी बारी।
0: श्रोताओं, माना जाता है कि जॉन बील मेले की शुरुआत 15वीं शताब्दी में हुई थी। शुरुआत में इसका उद्देश्य व्यापार या लेन देन करना नहीं था। इसमें उत्तर पूर्व की पहाड़ी और मैदानी जनजातियों के मुखिया लोग मित्रता, सांस्कृतिक आदान प्रदान और अपने क्षेत्र की समस्याओं पर विचार विमर्श के लिए जमा होते थे।
1: लेकिन जब लोगों ने देखा कि उनके मुखिया लोग मोरीगांव में जमा होते हैं तो धीरे धीरे वे अपने उत्पाद भी वहां लाने लगे।
0: जी, फिर वहां विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम होने लगे जिनमें आदिवासी गीत, संगीत, नृत्य और विशेषकर मोरीगांव की बड़ी झील में मछली पकड़ने की प्रतियोगिता शुरू हुई।
1: बता दें श्रोताओं कि इस मेले का आयोजन तिवा जनजाति के द्वारा किया जाता है। जनजाति के तत्कालीन राजा और आज की तिथि में मुखिया के संरक्षण में ये मेला आयोजित होता है। मेले के अंतिम दिन एक शानदार रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया जाता है जो महाभोज के साथ समाप्त होता है।
0: अब ये विश्व का अकेला मेला है जिसमें अभी भी मुद्रा पूर्व परंपरा यानी वस्तु विनिमय प्रणाली को जीवित रखा गया है। ऐसा भी नहीं है कि आधुनिक मुद्रा वहाँ नहीं चलती, लेकिन इस मेले का अनूठापन इसकी वस्तु विनिमय प्रणाली ही है।
1: तो श्रोताओं, ये थी जानकारी अनूठे जॉन बील मेले की। आशा है आपको जरूर पसंद आई होगी। अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, जॉन बील मेला कहाँ और कब मनाया जाता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: जॉन बील मेला कहाँ और कब मनाया जाता है?
1: 8800440559 है हमारा IVRS नंबर, और audio@cieet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं और उत्तर व संदेश भेज सकते हैं।
0: फेसबुक, इंस्टा, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए श्रोताओं सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। शीर्षक है सांकेन।
0: हिंदी की कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित ये कार्यक्रम उत्तर पूर्वी भारत के सुरम्य राज्य अरुणाचल प्रदेश की जनजातियों द्वारा मनाए जाने वाले बौद्ध नववर्ष के त्योहार सांकेन के बारे में मनोरंजक ढंग से जानकारी देता है।

0: कमरे में। क्या हुआ, चिल्ला क्यों रही हो? बड़ी खुश नजर आ रही हो।
1: भैया, खुश होने की बात तो है ही। पता है, पापा का ईमेल आया है।
0: अच्छा, क्या लिखा है?
1: उन्होंने हम सबको अरुणाचल प्रदेश बुलाया है। कितना मजा आएगा। माँ को बताती हूँ। माँ, माँ।
2: साथियों, वल्लरी के पिता वन विभाग में अधिकारी हैं। पिछले दिनों उनका स्थानांतरण अरुणाचल प्रदेश के चौखाम में हो गया था। उन्होंने वहां जाकर अपना कार्यभार संभाला और सब कुछ नियोजित करने के बाद अपने परिवार को थोड़े समय के लिए चौखाम बुलाया है। टिकट भी भेज दिए हैं।
3: वल्लरी, यमन और उनकी माताजी पूरे जोश खरोश के साथ चौखाम जाने की तैयारी कर रहे हैं।
1: भैया, मैं तो ये कपड़े लेके जाऊंगी।
0: मैं भी कुछ गर्म कपड़े रख लेता हूँ।
2: अरे बच्चों, वहाँ इतने अधिक कपड़ों की जरूरत नहीं होगी। कुछ रख लो। चौखाम का मौसम अप्रैल मई महीने में सुखद और हल्का गर्म होता है। हाँ, कभी कभी हल्की बारिश भी हो जाती है। तो चलो बच्चों, जल्दी से तैयारी पक्की कर लो, कल हमारी उड़ान है।
3: नई दिल्ली से उन्होंने भरी उड़ान और पहुँचे डिब्रूगढ़।
2: उन्होंने डिब्रूगढ़ से टैक्सी ली और पहुँच गए चौखाम। टैक्सी स्टैंड पर पिताजी ने सबका स्वागत किया।
3: अरे बेटा वल्लरी, यमन, आजा आजा आजा आजा।
4: नमस्ते पापा।
3: नमस्ते नमस्ते नमस्ते। कैसे हो बेटा आप लोग?
4: ठीक है।
3: और कैसा सफर रहा दिल्ली से डिब्रूगढ़ तक का?
4: बड़ा मजा आया।
3: चलो अब यहाँ और मजा आएगा। चलो सामान उठाओ अपना, आओ टैक्सी पे चलते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चौखाम पूर्वोत्तर भारत के राज्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जो अपनी संस्कृति, बौद्ध परंपरा और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। ये असम राज्य की सीमा पर है।
2: कहां दिल्ली की भीड़ भरी सड़कें, हॉर्न बजाती हुई कारें और बसें, लोगों की लंबी लंबी कतारें, और कहां चौखाम का खुला वातावरण। जिधर देखो हरियाली ही हरियाली और फूल ही फूल। यहाँ के लोग बहुत विनम्र और हंसमुख हैं।
3: शाम होने में अभी थोड़ा समय था। पूर्वोत्तर में वैसे ही सूरज जल्दी ढल जाता है। वल्लरी के पिताजी के एक मित्र चाउतान जी ने उन्हें सपरिवार अपने घर बुलाया था। उनकी माँ अपनी एक मित्र श्रीमती चौहान से मिलने चली गई थी। जब वे घर पहुँचे तो चाउतान जी ने उनका स्वागत किया। अरे भाई चावतान जी घर पर हैं क्या?
5: अरे आइए आइए वर्मा जी। नमस्ते नमस्ते।
4: नमस्ते अंकल।
5: नमस्ते। अरे वाह, आप यमन और आप वल्लरी है ना?
3: बिल्कुल ठीक पहचाना।
5: आइए, स्वागत है आप सबका।
3: धन्यवाद।
5: आपके परिवार को देखकर हमको बहुत अच्छा लगा।
3: अरे भाई, हमें भी आपके घर आकर बहुत अच्छा लगा।
1: अंकल, हमारा यहाँ आने का बहुत मन था। बड़ी सुंदर जगह है।
5: थैंक यू।
0: हमारा मन खुश हो गया यहाँ आकर।
5: ओहो। वर्मा जी, मैं आपसे कहता था ना
3: जी,
5: एक बार परिवार को यहाँ बुला लीजिए, जाने का मन नहीं करेगा।
3: बिल्कुल ठीक कहा।
5: अच्छा तो पहले थोड़ा जलपान कर लीजिए, मैं कुछ लेकर आता हूँ।
3: अरे
5: तुम लोग बहुत अच्छे समय पर आए हो, आज हमारा सांखकेन का पर्व जो है।
3: अरे वाह, फिर तो बड़ा मजा आएगा।
1: अच्छा, तभी मैं सोच रही थी कि आज इतनी चहल पहल क्यों है।
3: चौतान जी, मैं भी तो यहाँ नया ही हूँ। सांकेन पर्व के बारे में कुछ और बताइए ना।
5: अरे बताता हूँ वर्मा जी, बताता हूँ, पहले आप लोग नाश्ता तो कीजिए।
0: वाह वाह, कितने स्वादिष्ट है अंकल। ये पकवान तो हमारे लिए बिल्कुल नए है। ये किन चीजों से बने हैं?
5: बेटा, ये जो आप मिठाइयाँ देख रहे हो ना, ये हैं चावल की मिठाइयाँ, और ये पकौड़े, ये हैं बैम्बू शूट्स के पकौड़े, और ये है भाप में पकाई हुई सब्जियों की करी, और ये जो है, ये है अरुणाचल की खास चाय। ये सांकेन त्योहार के विशेष पकवान है।
3: अरे वाह वाह वाह भाई, मैं तो चाय पीऊंगा।

0: आज वल्लरी बहुत उत्साहित है। क्यों? आइए जानते हैं।
1: यमन भैया, कहाँ हो भैया?
2: यही दूसरी

0: तो बहुत अच्छा था, मुझे बड़ा मजा आया।
1: थैंक यू।
2: अरे भाई चौतान जी, आप तो हमें सांकेन त्योहार के बारे में बताने वाले थे।
3: हाँ हाँ वर्मा जी, सांकेन बौद्ध नया साल है जो 13 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच मनाया जाता है।
2: अच्छा
0: अंकल, क्या क्या होता है इस उत्सव में?
3: बेटा इस उत्सव को ना जल उत्सव भी कहते हैं।
2: जल उत्सव क्यों?
3: वो इसलिए कि आज के दिन भगवान बुद्ध की प्रतिमाओं को पवित्र जल से नहलाया जाता है।
2: अच्छा।
3: इस दिन हम लोग अपने घरों को खूब सजाते हैं, जैसा कि आप इस घर में भी देख रहे हो।
2: हाँ।
3: और हम लोग नए कपड़े भी पहनते हैं।
2: जी।
0: अरे ये तो बहुत बड़ी शोभा यात्रा है, कितनी भीड़ है।
3: हाँ बेटा, ये शोभा यात्रा पास के बौद्ध विहार जा रही है।
0: तो हम भी चले?
3: हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो आ जाओ।
0: चलो चलो चलो।
4: थोड़ी देर में शोभा यात्रा बौद्ध विहार के पास पहुँची। वहाँ की जालीदार दीवारें बांस और बांस की खपच्चियों से बनी हुई थी। बीच बीच में पेड़ों की हरी भरी टहनियाँ लगाई गई थी और खोस खोस कर उन पर रंग बिरंगे फूल सजा दिए गए थे।
2: बौद्ध भिक्षुओं ने मंत्र पढ़ते हुए मूर्तियों को पालकियों से उतारा और उन्हें विहार में रख दिया और उन पर जल चढ़ाने लगे। हंसी खुशी के इस वातावरण में वल्लरी ने देखा कि लोग एक दूसरे पर बाल्टियां भर भर कर पानी डाल रहे हैं।
4: वे एक दूसरे के चेहरों पर चावल का आटा भी लगा रहे हैं। वल्लरी को होली की याद आ गई। उसने चावतान जी से कहा,
0: अंकल लगता है हम लोग होली का त्योहार मना रहे हैं।
2: इतने में किसी ने चावतान जी, वर्मा जी और यमन पर एक बाल्टी पानी उंडेल दिया।
3: अरे।
4: फिर तो लोग बहुत देर तक एक दूसरे पर पानी डालते रहे और सांकेन मनाते रहे। चावतान अंकल ने बताया कि सांकेन 3 दिनों तक इसी तरह मनाया जाता है।
3: बच्चों, तीसरे दिन बौद्ध भिक्षु इन मूर्तियों को पालकियों में रखकर बौद्ध विहार ले जाएंगे।
0: अच्छा।
3: वहाँ वो मंत्र पढ़ पढ़कर इन मूर्तियों को इनके स्थान पर प्रतिष्ठित कर देंगे।
0: जी अंकल।
3: गांव के लोग तीसरे दिन बौद्ध विहार जाएंगे और बौद्ध भिक्षु उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहेंगे, खेती फले फूले तुम्हारी, ना हो तुम्हें कोई बीमारी। क्या बोलेंगे?
5: खेती फले फूले तुम्हारी, ना हो तुम्हें कोई बीमारी।
3: हाँ, और फिर कहेंगे, हिल मिल कर सब नाचें गाएं, नए साल में खुशी मनाएं।
5: हिल मिल कर सब नाचे गाए, नए साल में खुशी मनाए।
2: उत्सव समाप्त हो गया था। वल्लरी, यमन और उनके पिताजी घर वापस जा रहे थे। बच्चे सोच रहे थे, कितना सुंदर है हमारा देश। तरह तरह के त्योहार, भाषाएं, संस्कृतियां और लोग, सचमुच विविधताओं का संगम है हमारा भारत।
6: अभी आपने सुनी कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वीणा के एक पाठ पर आधारित ये नाट्य प्रस्तुति। अब आपके लिए कुछ करने को, पूर्वोत्तर भारत में मनाए जाने वाले अन्य जनजातीय त्योहारों के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। ये पता कीजिए कि सांगकेन मुख्य रूप से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है और साथ ही साथ सांगकेन त्योहार पर चावल से बने पकवान एवं मिठाइयों के नाम भी मालूम कीजिए। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर भारती कौशिक, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, कलाकार परवेज गौहर, शिमाइला परवेज और राजेश काम्बोज, बाल कलाकार वान्या और सोहम, आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण अरशद अहमद। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम सांगकेन। आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम, और अगला कार्यक्रम है तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर।
4: देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत ये गीत है, जिसे भारत के स्वाधीनता आंदोलन के दौरान आम जनता द्वारा जलूसों में गाया जाता था। इस गीत के द्वारा देश के करोड़ों लोगों को आजादी की लड़ाई जारी रखने के लिए प्रेरणा मिली।

अभी आप सुन रहे थे ये गीत, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर। जी हाँ श्रोताओ, ये गीत आज भी हमें जीवन के प्रति एक नए उत्साह और आत्मविश्वास से भर देता है।

0: जी हाँ, जन जन होगा अब साक्षर उल्लास के साथ। आइए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के इस अभियान में बटाएं हाथ उल्लास के साथ। उल्लास भारत सरकार की एक अनूठी पहल।
1: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम क्लैप एंड स्माइल।
2: ये कार्यक्रम बच्चों को सुंदर गीत और संगीत के माध्यम से रोचक गतिविधि कराता है। कार्यक्रम

0: समय बच्चों को व्यायाम के महत्व से भी खेल खेल में परिचित कराया गया है और विनम्र व्यवहार का महत्व भी समझाया गया है।
1: क्लैप एंड स्माइल।
2: हेलो फ्रेंड्स।
3: हेलो।
2: आई नो यू डोंट वॉन्ट टू बी सैड, इवन आई डोंट वॉन्ट यू टू बी सैड, सो वी विल सिंग द हैप्पी सॉन्ग अगेन बट विद अ डिफरेंस।

0: clap and smile.
1: Friends, you were just listening to this song. We hope you enjoyed it.
2: Concept and coordination by Dr. R. Meghanathan. Sung by Neha and Children. Recorded by Butty Langdingdo. Produced by Ajit Horo. This song is presented to you by CIET-NCERT, New Delhi, India.
3: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम क्लैप एंड स्माइल. और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है. तो अब अजीत,
4: उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी
3: कुसुमलता,
4: जगबंधु,
3: चेतना
4: और मंजू जी के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए.
3: नमस्कार, नमस्कार.
5: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग.
6: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग. इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे NCERT. मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं.

उमंग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे NCERT। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं।

एक आम व्यक्ति, एक आम भारतीय नागरिक अक्सर तरसता रहता है। जी हाँ, आप देश की सीमाओं की रक्षा में डट कर खड़े हैं, मोर्चा संभाले हैं ताकि हमारे हर एक भारतीय अपने कर्मपथ पर आगे बढ़ सके और देश की एकता, भाईचारा और उन्नति में किसी ना किसी रूप में अपना योगदान दे सके। दोस्तों, यूं तो हर एक भारतीय की एक नैतिक जिम्मेदारी है अपने देश के प्रति। हालांकि हमारे भारतीय सैनिक सीमाओं की रक्षा में तो खड़े हैं, लेकिन सीमा

दोस्तों, फिल्म प्रेम रोग के इस प्यारे से गीत में आप सुन रहे थे सुरेश वाडेकर और लता मंगेशकर को। गीत संतोष आनंद का लिखा था और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। देखिएगा, हमारे जो सैनिक भाई हैं वो शौर्य के धनी होते हैं और मिट्टी की कसम खाकर मिट्टी की रक्षा में सीमा पर डटे होते हैं और उन्हीं की ये कोशिश होती है कि हम यहाँ बड़ी सुकून की, राहत की सांस ले रहे होते हैं और जीवन के हर एक क्षेत्र में, निजी जीवन में तरक्की कर रहे होते हैं और इस कामना के साथ कि कहीं ना कहीं हमारी जो सेवाएं हैं, हमारा जो काम है, उसका लाभ कहीं ना कहीं देश सेवा के रूप में सामने आए। लेकिन दोस्तों, जो सैनिक होते हैं ना, वे दुश्मनों का जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं, मुंह तोड़ जवाब देना जानते हैं। लेकिन उनका भी परिवार है, उनका भी घर है, उनके भी अपने हैं। तो जैसी भावनाएं परिवार के साथ होती हैं, उनका भी एक भावनात्मक रिश्ता परिवार के साथ जुड़ा होता है और गीत संगीत के माध्यम से वे अपने घर परिवार से जो रिश्ते होते हैं उन्हें जोड़कर देखते हैं।

पहुंचने का, और वो होता है चिट्ठी। और कहीं ना कहीं आधुनिक युग में तो कई माध्यम हैं, लेकिन प्रोटोकॉल में, अनुशासन में बंधा होता है हमारा सैनिक। वो एक सीमित दायरे में जी रहा होता है और उसे उस सीमित दायरे में केवल और केवल अपने मोर्चे पर ही डटा रहना होता है। बस उस वक्त का इंतजार होता है जब किसी संदेशे के रूप में या किसी चिट्ठी के रूप में किसी अपने की बात उस तक पहुंचेगी।

0: पंकज उदास की आवाज़ में फिल्म नाम के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम सैनिकों के लिए अब यहीं पर संपन्न होता है।
1: अपने घर में भी है रोटी चिट्ठी आई है।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सैनिकों के लिए। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 12:30 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम मिड डे मेलोडी। मिड डे मेलोडी सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को आपके अपने रेडियो मित्र चरणजीत सिंह का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज का हमारा ये कार्यक्रम पूरी तरह से समर्पित है महान गीतकार आनंद बख्शी को। जी हाँ, आनंद बख्शी, जिन्होंने ढेरों गीत लिखे हैं, न केवल लिखे हैं बल्कि उन गीतों में जीवन को जिया है और हमें जीवन को जीने की प्रेरणा दी है। ऐसे महान गीतकार आनंद बख्शी की जयंती पर उन्हें नमन। और श्रोताओं, कुछ ही देर पहले हम सुन रहे थे कार्यक्रम सैनिकों के लिए, जिसमें सैनिकों के प्रति जो भावनाएं होती हैं वो गीत संगीत के माध्यम से हमारे सैनिक भाइयों तक पहुंचती है। और देखिएगा, जो सैनिक होते हैं वो देश की रक्षा में अपना सर्वस्व न्योछावर करते हैं और कहीं ना कहीं हमारे देश के हर एक भारतीय नागरिक की नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि वो भी अपने कर्मों के माध्यम से देश में, देश की उन्नति में अपना योगदान दे, जैसा कि योगदान महान गीतकार आनंद बख्शी ने अपने गीतों के माध्यम से दिया। गीतकार आनंद बख्शी ने ऐसे गीत लिखे हैं जिन्होंने हमारी भावनाओं को हमारी मिट्टी से, हमारी मातृभूमि से, हमारे देश से जोड़ा है। तो इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं ऐसे ही एक प्यारे से गीत के साथ।

0: दोस्तों, मन में कुछ करने का जज्बा हो तो बाधाएं भी रास्ता छोड़ देती हैं, मंजिल तक पहुंचना आसान हो जाता है, जैसा कि आनंद बख्शी के साथ हुआ। लेकिन राहों को आसान करने के लिए इन्होंने बड़ा संघर्ष किया, जीवन में कई उतार चढ़ावों को झेला। आपको बता दें कि 21 जुलाई 1930 को रावलपिंडी पाकिस्तान में पिता मोहनलाल वैद बख्शी और मां सुमित्रा के घर आनंद बख्शी का जन्म हुआ। दोस्तों, बचपन में आनंद बख्शी को परिजन एवं संबंधी नंद या नंदू कहकर पुकारते थे। परिवार ने उनका नाम आनंद प्रकाश रखा था। दोस्तों, उनके दादा सुगरमल वैद बख्शी ब्रिटिश सरकार में रावलपिंडी में सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस थे और परिवार भी यह चाहता था कि नंदू यानी आनंद बख्शी सेना या पुलिस में जाकर अपनी सेवाएं दे, यानी भारतीय सीमाओं की रक्षा में या आंतरिक सीमाओं में आनंद बख्शी अपना योगदान दें और कहीं ना कहीं उन्हें वो इसी क्षेत्र में भेजना चाहते थे। आगे क्या होता है इनके जीवन में, ये हम आपको बताएंगे इस संदेश के बाद।
1: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
0: इस संदेश के बाद आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम मिड डे मेलोडी में। और श्रोताओं, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से, और आज के इस

कार्यक्रम की ये खास बात है कि आज का ये कार्यक्रम पूरी तरह से समर्पित है महान गीतकार आनंद बख्शी को, क्योंकि आज हम मना रहे हैं आनंद बख्शी साहब की जयंती। और जैसे कि इस संदेश से पहले हम आपसे ये जिक्र कर रहे थे कि परिवार चाहता था कि आनंद बख्शी देश सेवा में जाएं, यानी देश की सीमाओं की रक्षा करें या पुलिस की सेवा में अपना योगदान दें, तो नंदू जो थे उनके सपने कुछ बड़े थे। हालांकि परिवार की भावनाओं का सम्मान करते हुए नंदू यानी आनंद बख्शी ने पुलिस में जाना या सेना में जाना बेहतर समझा और उन्होंने तैयारी भी कुछ इसी क्षेत्र की की। नंदू पुलिस या सेना में भर्ती होकर देश को सेवाएं देना शुरू किया। और उन्होंने ऐसा कब किया ये भी आपको बता देते हैं। आनंद बख्शी के पिता मोहनलाल हालांकि बैंक सर्विस में थे, लेकिन देश विभाजन के बाद आपने भारतीय सेना में सेवाएं दी। यहीं से, जी हां, यहीं से आनंद बख्शी का इरादा मजबूत हुआ और वे तुरंत ही भारतीय सेना में शामिल हो गए। उन्होंने 1956 तक भारत की आजादी से लेकर, यानी 1947 से लेकर 1956 तक भारतीय सेना में नौकरी की। दोस्तों, यहां पहुंचने से पहले आनंद बख्शी ने जीवन में कड़ा संघर्ष किया स्वयं को स्थापित करने के लिए। उन्होंने जो सोचा वो किया, लेकिन उसे करने से पहले जो संघर्ष किया वो आज हम इस कार्यक्रम के माध्यम से याद करेंगे और आनंद बख्शी के लिखे कुछ गीत आपको जरूर सुनवाएंगे। और देखिएगा, एक गीत जो हम आपको सुनवाने वाले हैं उसमें भी कुछ ऐसा ही भाव है कि जब कोई किसी क्षेत्र में पूरी लगन से काम करता है, संघर्ष करता है, उसका लक्ष्य होता है, उसका सपना होता है, तो वो उसकी आराधना सफल होती है।

0: दोस्तों, परिवार जनों की भावनाओं का सम्मान करते हुए आनंद बख्शी बेशक भारतीय सेना में शामिल हो गए और अपनी सेवाएं उन्होंने वहां 6 वर्षों तक दी, लेकिन जो वो सोचते थे, जो उनका मन था, उस जगह पहुंचने के लिए आनंद बख्शी ने एक दिन भारतीय सेना से अपनी नौकरी को त्याग दिया, त्याग पत्र दे दिया और फिर वहां से वो सीधे मुंबई आ गए और यहीं से उनकी शुरुआत एक नए सफर पर हुई। आखिर वो सफर कैसे शुरू हुआ, ये जानेंगे इस संदेश के बाद।
1: महिला एवं बाल विकास मंत्री

0: से राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर भेज सकती हैं। पोर्टल है https://awards.gov.in। नामांकन भेजने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। विशेष रूप से बालिकाओं, कमजोर वर्गों, अनुसूचित जाति जनजाति तथा दिव्यांग बच्चों में से प्रतिभाशाली बच्चों को चिन्हित कर उनके नामांकन हेतु प्रोत्साहित किया जाए। अधिक जानकारी हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल अथवा संबंधित विभाग से संपर्क किया जा सकता है। सूचना समाप्त हुई।
1: इस संदेश के बाद आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से फिल्म संगीत का कार्यक्रम मिड डे मेलोडी, और ये कार्यक्रम पूरी तरह से समर्पित है महान गीतकार आनंद बख्शी को, क्योंकि आज हम सब मना रहे हैं उनकी जयंती। दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि आखिर सेना के क्षेत्र से फिल्मी दुनिया में कैसे आनंद बख्शी पहुंचे, हम आपको बताएं, तो आपको बता देते हैं कि आनंद बख्शी सेना से अपनी नौकरी को छोड़कर सीधे मुंबई पहुंचे, क्योंकि आनंद बख्शी फिल्मों में काम करने के साथ अपने लेखन से देश सेवा का सपना संजोए थे। वे जब मुंबई पहुंचे तो उनका सपना एक गायक के रूप में पहचान बनाना था। यहां आनंद बख्शी की मुलाकात अभिनेता भगवान दादा से होती है। फिलहाल उन्होंने आनंद बख्शी को गीतकार यानी गीत लिखने का मौका दिया। फिल्म बड़ा आदमी में लिखे गए गीतों से वे भले ही चर्चाओं में नहीं आए, लेकिन साल 1965 में जब जब फूल खिले, ये फिल्म जब प्रदर्शित हुई तो फिल्म के गीत, लगभग सभी गीत सुपरहिट हुए। बस यहीं से आनंद बख्शी की सफलता की यात्रा शुरू हो गई। और दोस्तों, साल 1965 में ही आई फिल्म हिमालय की गोद में इसके गीत और 1967 में फिल्म मिलन के गीतों ने उन्हें बुलंदियों पर पहुंचा दिया, और यही वो बुलंदियां थी कि जिससे फिल्मी दुनिया में एक लंबी यात्रा तय की महान गीतकार आनंद बख्शी ने। और इस मौके पर हम आपको सुनवा रहे हैं उन्हीं का लिखा ये प्यारा सा गीत।

0: सावन का महीना पवन करे, पवन करे शोर,
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं।

आपको बता दें कि आनंद बख्शी साहब ने 550 से भी ज्यादा फिल्मों में लगभग 4000 गीत लिखे हैं, और इनकी समीक्षा करना, उनके बारे में, उनकी इस यात्रा के बारे में बताना, उनकी उपलब्धियों के बारे में बताना सूरज को दिया दिखाने के बराबर है। लेकिन हम हर चंद कोशिश करते हैं कि उनके जीवन के हर एक पड़ाव को आपके बीच लेकर आएं। आपको बता दें कि महान गीतकार आनंद बख्शी साहब की यात्रा इतनी लंबी रही कि उन्होंने ढेरों सुपरहिट गीत दिए, और उन्हीं के गीतों की वजह से कई बार ये देखा गया है कि फिल्में भी सुपरहिट हुई हैं और लोगों में काफ़ी पसंद की गई हैं। उन्हीं में से कुछ फिल्में हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, जैसे कि फिल्म फर्ज, दो रास्ते, बॉबी, अमर अकबर एंथोनी, एक दूजे के लिए, कटी पतंग, अमर प्रेम, हरे रामा हरे कृष्णा, लव स्टोरी। दोस्तों, ये वो फिल्में हैं जो फिल्मी पर्दे पर काफ़ी चर्चाओं में रही हैं, और लोग इन फिल्मों को आज भी देखना पसंद करते हैं और इन फिल्मों के गीतों को आज भी सुनना पसंद करते हैं। ये तो रही पुराने दौर की फिल्मों की बात, और अगर हम बात करें 90s के दौर की, जी हाँ दोस्तों, तो 90s के दौर में एक फिल्म आई राम लखन, और इससे पहले देशभक्ति भावना के साथ फिल्म आई थी कर्मा। 90s के दौर की हम बात कर रहे हैं तो फिल्म सौदागर, खलनायक, ताल, और फिर एक नई सदी की होती है शुरुआत। 21वीं सदी की शुरुआत में ही आनंद बख्शी के लिखे गीत फिल्म यादें में हमें सुनाई देते हैं। और दोस्तों, इतना लंबा सफर, यानी 4 दशक की लंबी यात्रा आनंद बख्शी ने गीत संगीत के माध्यम से की, और हम तक वो ऐसे ऐसे गीतों को पहुंचाया कि जिन्हें अगर हम सुनने बैठ जाएं तो उम्र का एक पड़ाव बीत जाएगा, लेकिन वो गीत खत्म नहीं होंगे। और दोस्तों, अगर हम बात करें इनकी उपलब्धियों के बाद उनके अपने जीवन की, तो हम क्या देखते हैं, उनके जीवन में उन्होंने कई पुरस्कार भी जीते। जी हाँ, जिस संघर्ष के साथ, जिस उम्मीद के साथ वो आगे बढ़े, उन्होंने वो स्थान हासिल किया, और न केवल स्थान हासिल किया बल्कि अपनी उपलब्धियों को एक ऐसे मुकाम पर पहुंचाया कि जहां उन्हें ढेरों पुरस्कार भी मिले। जी हाँ, आनंद बख्शी 40 बार फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामित किए गए, और 4 बार यह पुरस्कार उनके खाते में आया भी, और अंतिम बार 1999 में सुभाष घई की ताल के गीत इश्क बिना क्या जीना के लिए उन्हें फिल्म फेयर से नवाजा गया था, और इसके अलावा भी उन्होंने कई पुरस्कार जीते। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात कि आनंद बख्शी ने नए गायकों को जीवन दिया। जी हाँ, आनंद बख्शी ने शैलेंद्र सिंह, उदित नारायण, कुमार सानू, कविता कृष्णमूर्ति और एसपी बाला सुब्रमण्यम जैसे अनेकों गायकों के पहले गीत का बोल भी लिखा। ऐसे महान गीतकार आनंद बख्शी को हमारा शत शत नमन।

तो दोस्तों, हमें आप सभी को और देश दुनिया को अनगिनत भावपूर्ण गीत देकर 72 वर्ष की आयु में 30 मार्च सन 2002 को ये महान शख्सियत, ये महान गीतकार, गीतों का फनकार, इस गीत को कहने के बाद हम आपसे विदा लेंगे। लेकिन आपको बता दें कि उनकी मृत्यु 30 मार्च 2002 को हो गई और हमेशा के लिए ये जो लेखन की एक विधा, उनकी कलम में जो ताकत थी वो शांत हो गई। लेकिन आज भी उनके गीतों को सुनकर हम उन्हें नम आँखों से याद करते हैं। ऐसी महान आत्मा को हमारी

इसी गीत के साथ आज का मिड डे मेलोडी कार्यक्रम संपन्न करने की मुझे यानी चरणजीत सिंह को दीजिए अनुमति। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम मिड डे मेलोडी। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 1 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप हमारे दिल्ली केंद्र से सुनेंगे समाचार। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में भविष्य की परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए सभी संबंधित पक्षों से मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया है। आज संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि श्री मोदी ने परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया। श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने मुक्त व्यापार समझौते के बारे में भी बात की जो भारत ने कई देशों के साथ किए हैं।
1: प्रधानमंत्री जी ने कहा है जितना भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं उसमें किसानों को लेकर के किसानों का इंटरेस्ट उसको प्राथमिकता देते हुए कोई नुकसान होने नहीं देंगे। उसमें किसानों का हित को सबसे सर्वोच्च ध्यान दिया जाएगा और दिया गया है, इसलिए ये किसानों के हित में और देश हित में रहेगा।
0: मंगल मिलन नाम से आयोजित बैठक के दौरान एनडीए के सहयोगी दलों ने प्रधानमंत्री मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री होने पर बधाई प्रस्ताव पारित किया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। पहले स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर हंगामे के बीच संसद की अलग अलग समितियों के चुनाव के लिए सदन में प्रस्ताव पेश किए गए। पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने सदस्यों से अपनी सीटों पर लौटने और सदन को सुचारू रूप से चलने देने का आग्रह किया। उनके आग्रह के बावजूद विपक्षी सदस्य नीट तथा विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन को लेकर नारेबाजी करते हुए हाथों में तख्तियां लेकर सदन के बीचों बीच पहुंच गए, जिसके कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में भी 12 बजे के स्थगन के बाद बैठक फिर शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विपक्षी सदस्यों से अपनी सीटों पर जाने और सदन की कार्यवाही चलने देने की अपील की, लेकिन विपक्ष ने उनकी बात नहीं मानी। हंगामे के बीच राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम में नामची जिले में निर्माणाधीन सुरंग दुर्घटना के बाद बचाव कार्यों के सिलसिले में आज मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग से बात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री तमांग ने बताया कि प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री

0: 13 लोगों को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया है। जो छात्र हैं उनका भविष्य को नुकसान ना हो इसलिए री एग्जामिनेशन नीट का प्राथमिकता दिया गया और री एग्जामिनेशन को सफलतापूर्वक कंडक्ट किया गया और उसका रिजल्ट निकलने में कोई विलंब नहीं किया।
1: वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में एक आला सतही जायजा मीटिंग की ताकि रियासत के कुछ हिस्सों में बेतरतीब बारिश की वजह से पैदा होने वाले खुश्क साली और दीगर इलाकों में जरूरत से ज्यादा बारिश से पैदा होने वाले मुमकिन सैलाब से निपटा जा सके। वज़ीर-ए-आला ने हिदायत दी कि रिलीफ कमिश्नर ऑफिस का कंट्रोल रूम 24 घंटे एक्टिव रहे और इसकी ताजा रिपोर्ट वज़ीर-ए-आला के दफ्तर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफिस और मुतल्लिका इमदादी एजेंसियों को फराहम की जाए। उन्होंने हिदायत दी कि हर जिले की सूरत हाल को रियासती सतह के डैशबोर्ड पर बाकायदगी से अपडेट किया जाए। वज़ीर-ए-आला ने हिदायत दी कि सैलाब से मुतासर और गैर महफूज अजला के तमाम रिलीफ कैंपों को आइंदा 3 दिन में मुकम्मल तौर पर तैयार किया जाए। रिलीफ कैंपों में ताजा और गजाइयत से भरपूर खुराक, पीने का पानी, तिब्बी सहूलियात, सफाई सुथराई और दीगर जरूरी इंतजाम को यकीनी बनाया जाए। डेयरी फार्म्स के जरिए बच्चों को दूध मुहैया किया जाए और खवातीन, बच्चों, बूढ़ों, मजदूरों और हामिला खवातीन की जरूरियात पर खसूसी तवज्जो दी जाए। वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने कल रियासती तब्दीली कमीशन की मीटिंग में रियासत में जारी बड़े बुनियादी ढांचे के मंसूबों, सनअती तरक्की, सरमायाकारी, अवामी बहबूद और खिदमात की फराहमी के मंसूबों का जायजा लिया। उन्होंने जीरो पॉवर्टी मुहिम के तहत अहल खानदानों को अंत्योदय कार्ड जारी करने और तमाम स्कीमों के तहत फवायद फराहम करने की हिदायत दी। लखनऊ नाइट सफारी प्रोजेक्ट का जायजा लेते हुए वज़ीर-ए-आला ने तमाम रस्मी कार्रवाईयों को तेज करने और बरवक्त पेशरफ्त को यकीनी बनाने की जरूरत पर जोर दिया। उत्तर प्रदेश में हज 2027 की तैयारियां इस साल रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई हैं। वज़ीर मुमलिकत दानिश आज़ाद अंसारी की पहल पर मरकजी हुकूमत ने हज दरख्वास्त की आखिरी तारीख 24 जुलाई तक बढ़ा दी है। उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश में हज 2027 की तैयारियां इस साल रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई हैं। वज़ीर मुमलिकत दानिश आज़ाद अंसारी की पहल पर मरकजी हुकूमत ने हज दरख्वास्त की आखिरी तारीख 24 जुलाई तक बढ़ा दी है। उत्तर प्रदेश रियासती हज कमेटी ने पहली मुकर्रर तारीख के अंदर 19,280 हज दरख्वास्तें वसूल करके

मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 1:15 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम महिला जगत।

कार्यक्रम महिला जगत सुनने वाली सभी बहनों को भावना कौशिक का प्यार भरा नमस्कार। कैसी हैं हमारी सारी बहनें? उम्मीद करती हूं कि हमारी सारी बहनें खुश और स्वस्थ होंगी। तो बहनों, इस आशा और विश्वास के साथ आइए शुरू करते हैं अपने इस कार्यक्रम को जिसका नाम है महिला जगत। बहनों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, वैसे तो हमारी सारी बहनों को पता ही है कि आज माह का तीसरा मंगलवार है और तीसरे मंगलवार को हम लेकर आते हैं आपके फोनिंग कार्यक्रम हेलो सखी को, जिसमें हम अपनी श्रोता बहनों से करते हैं किसी विषय पर बातचीत और इसी बातचीत से हमारी बहुत सारी बहनें उठाती हैं लाभ। तो बहनों, तैयार हो जाइए आज के फोनिंग कार्यक्रम हेलो सखी के लिए, जो बस अब कुछ ही समय में शुरू होगा। और आज का विषय भी हम आपको बता दें बहनों, आज का विषय रहेगा बरसात में रखें सेहत का ख्याल। तो बहनों, तैयार हो जाइए हमारे इस फोनिंग कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बस कुछ ही देर में। हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हमारा फोन नंबर आप लिखिए। हमारा हेलो सखी का फोन नंबर है 01341-230-105 01341-230-105। हमारा दूसरा नंबर भी नोट कर लीजिए बहनों, हमारा दूसरा नंबर है 9457078288, यानी 9457078288। उम्मीद करती हूं कि हमारी बहनों ने नंबर लिख लिया होगा। तो बहनों, आइए शुरू करते हैं आज के कार्यक्रम को। जैसा कि बहनों हम सभी जानते हैं कि आज का बच्चा कल का भविष्य होता है और कल का भविष्य अच्छा होगा या बुरा, इसके लिए हमें आज से ही मेहनत करनी होगी। आप मेरा इशारा समझ गई होंगी बहनों। जी हाँ बहनों, अगर हमें अपने आने वाले कल में अपने बच्चों से सुख लेना है तो उन्हें आज से ही अच्छी बुरी बातों के बारे में सिखाना होगा, उन्हें गलत चीजों से दूर और अच्छी बातों के लिए जागरूक करना होगा। अभी तो बच्चे ही हैं, बाद में समय के साथ समझ जाएंगे, अभी कोई इनके समझने की उम्र है क्या, अभी बच्चे को मौज मस्ती करने दो, अभी इन्हें फ्री छोड़ दो, बड़े होकर जैसा इन्हें ठीक लगेगा बन जाएंगे। न जाने ऐसी ही कितनी बातें, न जाने कितनी लापरवाह सोच हमारे भविष्य को, हमारे बच्चे को पतन की ओर ले जाती है। बहनों, क्या आप जानती हैं आज 21 जुलाई को कुछ बनो दिवस है। यह मुख्य रूप से एक अमरीकी जागरूकता दिवस है, लेकिन इसका संदेश सबके लिए है। इसका उद्देश्य किसी युवा या बच्चे के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए मात्र 10 सेकंड का समय निकालकर उन्हें सही राह दिखाना और प्रोत्साहित करना है। यह अभियान समाज के सभी वर्गों को एक साथ लाता है ताकि वे बच्चों की छिपी हुई प्रतिभा को पहचान सकें और उन्हें सही मुकाम हासिल करने में मदद कर सकें। कहते हैं ना बहनों कि कभी कभी कुछ शब्दों से जीवन बदल जाता है। न जाने कब हमारे द्वारा बोले गए शब्द दूसरे के जीवन में क्या बदलाव

रही। जी हाँ बहनों, हम बात कर रहे हैं गंगूबाई हंगल की, जो किराना घराने की एक महान हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका थी, अपनी गहरी, भारी और प्रभावशाली आवाज के लिए प्रसिद्ध। उन्होंने ख्याल गायकी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। 6 दशकों से अधिक के कैरियर में उन्होंने सामाजिक और आर्थिक बाधाओं को पार करते हुए भारतीय संगीत जगत में एक अमिट छाप छोड़ी। तो आइए आज के आधी आबादी से क्रम के अंतर्गत सुनते हैं शास्त्रीय गायिका गंगूबाई हंगल के बारे में। बहनों, गंगूबाई हंगल हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत ख्याल शैली की, दिगंजन और किराना घराने की प्रख्यात गायिका थी। इनका जन्म 5 मार्च 1913 को कर्नाटक के धारवाड़ में हुआ। गंगूबाई अपनी भारी और दमदार आवाज के लिए जानी जाती थी। उन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था।

श्रोता बहनों, गंगूबाई हंगल का जन्म कर्नाटक के धारवाड़ा जिले के शुक्रावारा द्वापते में हुआ। देवदासी परंपरा वाले केवट परिवार में उनका जन्म हुआ था। उनके संगीत जीवन के शिखर तक पहुंचने के बारे में एक अतुल्य संघर्ष की कहानी। उन्होंने आर्थिक संकट, पड़ोसियों द्वारा जातीय आधार पर उड़ाई गई खिल्ली और भूख से लगातार लड़ाई करते हुए भी उच्च स्तर का संगीत दिया।

0: गंगूबाई की माँ अंबाबाई कर्नाटक संगीत की ख्याति प्राप्त गायिका थीं। इन्होंने प्रारंभ में देसाई, कृष्णाचार्य और दत्तोपंत से शास्त्रीय संगीत सीखा, जिसके बाद उन्होंने संवाई गंधर्व से शिक्षा ली। बहनों, इन्हें संगीत के प्रति इतना लगाव था कि कंदगोल स्थित अपने गुरु के घर तक पहुंचने के लिए वह 30 किलोमीटर की यात्रा ट्रेन से पूरी करती थी और इसके आगे पैदल ही जाती थी। इन्होंने भारत रत्न से सम्मानित पंडित भीमसेन जोशी के साथ संगीत की शिक्षा ली। लेकिन बहनों, बचपन से ही उन्हें संगीत के प्रति जन्मजात लगाव, और यह उस समय उस वक्त दिखाई पड़ा जब वह अपने बचपन के दिनों में ग्रामोफोन सुनने के लिए सड़क पर दौड़ पड़ती थी और उस आवाज की नकल करने की कोशिश करती थी। वो कैसे बिना गुरु के ही अपनी गायकी के सुरों को उच्च पायदान पर ले जाती थी, ऐसा ही कुछ उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा।
1: गाना पड़ता था शुरू में रेडियो में, रात का ही प्रोग्राम होता था 9:30 से 11 तक, बाद में दिन में दो दो बार, तीन तीन बार ऐसे। उस वक्त तो मुझे राग कम पढ़ने लगे, सब राग तो आते नहीं थे। और ऐसे हो गया, हमारे गुरु तो वहाँ तो इलेक्ट्रिसिटी ने, कुंदगोल करके गांव है हुबली के पास उनका गांव, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी ने, वो नहीं सुनेंगे वो गा लेंगे, इसलिए वो किताब से हमने विभास का राग गाए। वो सुन गए, बेलगाम आए थे तो सुन गए, तो गलत था मैंने जो गाए। वो हमारे घराने में तीव्र दैवत लगते हैं, हम कोमल दैवत किताब में कैसे था वैसे गा ले। हमको गुरु जी सुने थे, इसलिए हम ट्रेन में जा रहे थे दोनों, गंगू बोलते थे, गंगू तुम कौन से राग गए रेडियो में, हम घबरा गए, सुने हैं विभास गए, गलत गाए, क्योंकि हमारे घराने में तीव्र दैवत लगते हैं, तुम कोमल दैवत लगे के गा गए, ये अच्छे नहीं है, क्यों पूछती नहीं मेरे ऐसे। हम पूछने का हमको इतनी धैर्य नहीं था, इसलिए हम ऐसे गाए। कभी कभी ऐसे करना

0: पता है।
1: बहनों गंगूबाई को भैरव, आसावरी, तोड़ी, भीम पलासी, पुरिया, धनश्री, मारवा, केदार और चंद्रकोश रागों की गायकी के लिए सबसे अधिक वाहवाही मिली। उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण, तानसेन पुरस्कार, कर्नाटक संगीत नृत्य अकादमी पुरस्कार और संगीत नाटक अकादमी जैसे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। बहनों 21 जुलाई 2009 को हुबली कर्नाटक में उनका देहांत हो गया। ऐसी विदुषी महिला को हमारा शत शत नमन।

अभी हमारी बहनें सुन रही थी आधी आबादी से क्रम में भारतीय शास्त्रीय गायिका गंगूबाई हंगल के बारे में। और अब समय है हमारे फोनिंग कार्यक्रम हेलो सखी का। तो आइए शुरू करते हैं कुछ बातें, बरसात में रखें सेहत का ख्याल, लेकिन उससे पहले ये संदेश।

और अब शुरू करते हैं अपना फोनिंग कार्यक्रम हेलो सखी, जिसमें आज का विषय है बरसात में रखें सेहत का ख्याल।

0: हमसे जुड़ी हैं, मुझे आवाज़ नहीं आ रही। हेलो हेलो, चलिए दूसरी।
1: हेलो,
0: हेलो, हाँ कौन बोल रहे हैं आप मैम?
1: मैं सुमन बोल रही हूँ।
0: अच्छा सुमन जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम हेलो सखी में।
1: जी
0: पूनम, आप सुमन जी मुझे कुछ बताइए अपने बारे में, आप कहाँ पर रहती हैं, क्या करती हैं?
1: मैं नजीबाबाद के आरसीपुरम में रहती हूँ।
0: जी
1: जी, इससे पहले मैं गवर्नमेंट सर्विस में प्रधानाचार्य के पद से रिटायर हूँ।
0: अच्छा, आप एक शिक्षक हैं,
1: जी
0: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है।
1: जी हाँ जी हाँ
0: अभी
1: हाँ
0: अभी कुछ कर रही हैं आप?
1: जी, अभी तो मैं अपना एक ऑटो लोन खोला है, पीएस ऑटो लोन,
0: अच्छा अच्छा
1: नजोबाद से 4 किलोमीटर पड़ता है
0: अच्छा
1: जी, अभी उसी पे वर्क कर रही हूँ।
0: चलिए सुमन जी, आज आप हमारे कार्यक्रम फोनिंग हेलो सखी में जुड़ी, तो आज हम आपसे कुछ बात करना चाहेंगे बरसात में रखें सेहत के ख्याल से संबंधित। तो आप
1: जी
0: हमें कुछ बताइए कि आप बरसात में किस तरह से मतलब दिन बिताती हैं अपने, कैसे अपनी सेहत का ध्यान रखती हैं?
1: मैं बारिश के मौसम में
0: जी
1: स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए
0: जी
1: सबसे पहले अपने घर के वातावरण को अच्छा शुद्ध रखने के लिए
0: जी
1: एक कटोरी में कपूर की
0: जी
1: 2 टिक्कियां और
0: अच्छा
1: 5-7 लौंग घर में रख देती हूँ,
0: अच्छा
1: जिससे बरसात के जो कीटाणु होते हैं वो भी दूर हों
0: जी
1: और घर में खुशबू भी अच्छी रहती है
0: अरे
1: इससे।
0: वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है।
1: जी
0: और इसके
1: जी
0: अलावा?
1: सुबह सुबह गुनगुना पानी पीते हैं
0: जी
1: जी। आप सुबह अखरोट की 1 या 2 गिरी भी सेवन कर सकते हैं,
0: अच्छा, उससे क्या होता है सुमन
1: जिससे
0: जी?
1: उससे कफ संबंधी समस्या दूर होती है,
0: अच्छा अच्छा अच्छा
1: क्योंकि वातावरण में क्या होता है इस समय जब बारिश का मौसम होता है
0: जी जी
1: तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है थोड़ा,
0: हाँ, चारों तरफ थोड़ी सी
1: जो
0: नमी वगैरह रहती है।
1: जी नमी के कारण ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है,
0: जी,
1: जिसके कारण दमा वाले इंसानों को जिनको खांसी और कफ की ज्यादा शिकायत रहती है
0: हाँ, वो एलर्जी वाले
1: उनको ये
0: पेशेंट को।
1: समस्याएं ज्यादा आती
0: जी
1: हैं।
0: जी
1: जी
0: जी
1: हाँ,
0: क्योंकि इस मौसम में थोड़ा
1: तो
0: एलर्जी का ज्यादा रहता है।
1: जी हाँ एलर्जी का ज्यादा रहता है, इसलिए गुनगुना पानी पिए।
0: जी
1: गुनगुना पानी में अगर आप ज्यादा अच्छा समझते हैं तो अजवाइन

0: काढ़ा भी बनता है जो बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक रहता है।
1: अच्छा, कैसे बनता है
0: इससे
1: सुमन जी?
0: हमारी नसें भी साफ होती हैं।
1: जी
0: जी, इसके लिए मैं अभी बताना चाहूंगी।
1: जी जी बताइए।
0: जी, ये चाहे तो आपके किसी भी प्रकार के लोग हैं, जैसे
1: जी
0: चाहे बुजुर्ग हैं चाहे बच्चे हैं, सभी के लिए अच्छा रहता है।
1: जी
0: जी, इसमें 5-7 पत्ते तुलसी के ले लेते हैं हम,
1: अच्छा
0: और 1/4 चम्मच सौंफ,
1: अच्छा
0: सौंफ,
1: जी जी
0: और एक छोटा सा आधा इंच का छोटा सा अदरक का टुकड़ा,
1: जी
0: एक लौंग,
1: जी
0: एक इलायची,
1: जी
0: आधा इंच मतलब या आधा 1 सेंटीमीटर के लगभग,
1: जी
0: एक दालचीनी का टुकड़ा लेकर इसे थोड़ा सा खलबत्ते या किसी भी चीज में कूट ले,
1: अच्छा ठीक है
0: और 1 ग्लास पानी में इसको डालकर उबाल लें।
1: जी
0: जब ये थोड़ा सा पानी उबलकर कम हो जाए, यानी कि आधा गिलास रह जाए,
1: जी
0: तो उसमें यदि आप ऐसे पीना चाहें, जैसे बहुत से लोग को शुगर की समस्या रहती है, तो
1: हाँ
0: वो
1: जी
0: ऐसे भी पी सकते हैं,
1: जी
0: गुनगुना गुनगुना इसको।
1: जी
0: और यदि जैसे बच्चे या कोई भी है,
1: जी
0: तो गुड़ या मिश्री मिलाकर भी सेवन कर सकते
1: हाँ,
0: हैं।
1: तो उससे उसका टेस्ट बढ़ जाएगा।
0: जी
1: अब वो
0: हाँ,
1: पा
0: ये बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक रहता है,
1: अच्छा
0: और ये जो अधिक उम्र वाले लोग हैं उनके लिए ये खून
1: रामबाण है एक
0: की
1: तरह से।
0: जो जी रामबाण है, और
1: जी
0: जो धमनियों में खून जमने की समस्या, या कहते हैं खून गाढ़ा हो जाता है,
1: जी जी
0: उसके लिए भी बहुत स्वास्थ्यवर्धक रहता है।
1: नहीं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा ज्ञान आपने सुमन जी दिया। वाकई आप
0: जी
1: जिस पोस्ट से रिटायर्ड हैं, आपने उस पोस्ट की एक तरह से और शोभा बढ़ा दी। आपने इतना
0: जी
1: अच्छा ज्ञान हमारे श्रोताओं को दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी सर।

ये बहुत अच्छा रहता है। और मानसून से पहले जैसे बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं जो रोगी होते हैं, प्रतिरोधक क्षमता जिनकी डाउन होती है, वो टीकाकरण पर भी थोड़ा सा ध्यान दें, और अपने पहले बरसात आने से पहले अपने किसी डॉक्टर से, जिस पे भी उसको ट्रस्ट होता है, जो उसका फैमिली डॉक्टर होता है, उससे एक बार जरूर कंसल्ट कर लें। विटामिन सी वाला भोजन ज़्यादा से ज़्यादा करें, अंकुरित अनाज खाएं, हरी सब्जियां खाएं, संतरे खाएं, इससे उसकी इम्यूनिटी पावर आपकी जो है वो बढ़ेगी। मानसून का मौसम वायरस और बैक्टीरिया के पनपने का एकदम सही मौसम ये बरसात होता है, इसलिए साफ पानी पिएं और प्रोबायोटिक सेवन बढ़ाएं, क्योंकि प्रोबायोटिक स्वस्थ सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमारी आंत और पाचन तंत्र में पाए जाते हैं। दही, छाछ, घर के बने अचार, इन चीज़ों का आप ज़्यादा से ज़्यादा बहनों सेवन करें, क्योंकि ये पेट के जो संक्रमण है ना, उनसे लड़ने की क्षमता को बढ़ाते हैं। जंक फूड से परहेज करें, मैदा, बाहर की चीज़ें आप देखते ही हैं, ये आपको नहीं खानी चाहिए, क्योंकि आप सभी ये जानते हैं कि ताज़ा भोजन हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, और जो ये जंक फूड वाले हैं, मैदा के जो बनाते हैं, आपके मोमोज हैं, चाउमीन है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो अब हमारे दूसरे श्वेता, ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं बहनों के जो हम अपनाकर इस बरसात के मौसम का दुगना मज़ा ले सकते हैं। तो बहनों, आज के लिए हम आपको इतना ही बताएंगे कि बरसात में अपनी सेहत का ध्यान आप इस तरह से रख सकते हैं, और भी जो भी आपके पास ज्ञान है।

और अब चलते चलते आपको कार्यक्रम का पता बता दें। हमारा पता है कार्यक्रम महिला जगत, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी नजीबाबाद, पिन 2467633। और इसी के साथ आज का कार्यक्रम समाप्त करने की अपनी बहन भावना कौशिक को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम महिला जगत। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं।

दोपहर के 1:45 हुए हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम लोकधारा। कार्यक्रम लोकधारा सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। श्रोताओं, कार्यक्रम में आइए आपको आज सुनवाते हैं लोक कलाकार, लोक गायक रेशमा शाह की आवाज में जौनसारी लोकगीत।

खेल दर्पण। प्रस्तुति आकाशवाणी नजीबाबाद की होगी, जिसमें 23वीं एशियाई मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक विजेता तरुण शहरावत से बातचीत प्रसारित की जाएगी। इसके साथ ही कबड्डी प्लेयर अंडर 17 तनीश कुमार से भी बातचीत का प्रसारण किया जाएगा। आलेख एवं वाचन स्वर होगा नमित राज का, प्रस्तुतकर्ता होंगे अंकित सैनी। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम लोकधारा।

0: इसी चौनसारी लोकगीत के साथ लोक संगीत का कार्यक्रम लोकधारा अब यहीं पर संपन्न होता है। कार्यक्रम लोकधारा में अभी आप सुन रहे थे लोक गायक रेशमा शाह की आवाज में जौनसारी लोकगीत। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 2 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप हमारे दिल्ली केंद्र से सुनेंगे मिड डे न्यूज।
1: दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वर्षा विलियम्स विद द मिड डे न्यूज। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi calls for coordinated efforts to prevent paper leaks in future examinations, reiterates government's commitment to ensuring strict action against those involved in NEET paper leak. Proceedings in both houses of parliament disrupted amid opposition uproar on various issues. 11 people killed, several others trapped after tunnel collapses in Sikkim's Namchi district. Rescue operation underway. Prime Minister assures Sikkim Chief Minister of all possible assistance. IMD issues red alert for very heavy rainfall over Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir and Ladakh for today. And India summons Russian envoy over death of 4 Indian nationals following attack on a commercial vessel. The National Democratic Alliance NDA parliamentary party meeting, now known as Mangal Milan, was held at the GMC Balayogi Auditorium in Parliament House today. During the meeting, NDA alliance partners passed a congratulatory motion honouring Prime Minister Narendra Modi for becoming the longest-serving elected Prime Minister of India. Talking to media, Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju said, during the meeting, Prime Minister Modi called for coordinated efforts by all stakeholders to prevent paper leaks in future examinations across the country. He said, Mr. Modi reiterated the government's commitment to ensuring strict action against those involved in examination paper leaks and safeguarding the interests of the country's youth. The Prime Minister said all those involved in the recent NEET paper leak case have been arrested with 13 accused currently lodged in jail.
2: Paper leak ka khabar aaye turant sarkar ne karwai kiya.
3: As soon as reports of paper leak emerged, the government took swift action. 13 individuals were arrested and sent to jail. To ensure that the future of students was not affected, the NEET re-examination was conducted on priority and the results were declared in a timely manner. Strict measures have also been put in place to prevent such incidents from recurring.
2: दोबारा इस तरह का पेपर लीक ना हो इसके लिए सख्ती से कदम उठाया गया है।
1: मिस्टर रिजिजू सेड प्राइम मिनिस्टर मोदी आल्सो स्पोक अबाउट द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स दैट इंडिया हैज साइंड विद सेवरल कंट्रीज। ड्यूरिंग द मीटिंग मिस्टर मोदी सेड इन एवरी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट द इंटरेस्ट्स ऑफ इंडियन फार्मर्स हैव बीन गिवन द हाईएस्ट प्रायोरिटी।
2: फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कई देशों के साथ भारत ने किया है।
3: इंडिया हैज साइंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स विद सेवरल कंट्रीज। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैज स्टेटेड दैट दीज एग्रीमेंट्स हैव बीन कंक्लूडेड व्हाइल गिविंग द हाईएस्ट प्रायोरिटी टू द इंटरेस्ट ऑफ इंडियन फार्मर्स। ही हैज आल्सो एम्फसाइज्ड दैट द वेलफेयर ऑफ द फार्मर्स एंड द ब्रॉडर नेशनल इंटरेस्ट हैव बीन द फोरमोस्ट कंसिडरेशंस इन एवरी एग्रीमेंट।
2: इसलिए ये किसानों के हित में

हवा सहायता का आश्वासन दिया। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी और भारत ने एक वाणिज्यिक जहाज पर हमले में 4 भारतीय नागरिकों की मौत के मामले में रूस के दूत को तलब किया।

0: कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के साथ मजबूती से खड़ी है।
1: हर एक से अपने तरीके से बात करनी है, पर भारत एक इतना बड़ा विशाल देश है और भारत के युवा समझदार युवा, उनमें पूरा पोटेंशियल है, वो ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जो राष्ट्रहित में ना हो।
0: भाजपा सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि प्रधानमंत्री ने 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प दोहराया।
2: हम अपने आप में मंगल भावना के साथ हम आगे बढ़ें, यह प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए संकल्पित होने का सभी अपने माननीय सांसदों को यह आग्रह और निर्देश दिया है कि 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना है तो हमें मंगल कामनाओं के साथ ही काम करना पड़ेगा।
0: संसद में विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई है। दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित हुई। पहले स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर हंगामे के बीच संसद की अलग अलग समितियों के चुनाव के लिए सदन में प्रस्ताव पेश किए गए। पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने सदस्यों से अपनी सीटों पर लौटने और सदन को सुचारू रूप से चलने देने का आग्रह किया। इसके बावजूद विपक्षी सदस्य नीट तथा विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन को लेकर नारेबाजी करते हुए हाथों में तख्तियां लेकर सदन के बीचों बीच पहुंच गए, जिसके कारण लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में 12 बजे के स्थगन के बाद बैठक फिर शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विपक्षी सदस्यों से अपनी सीटों पर जाने और सदन की कार्यवाही चलने देने की अपील की, लेकिन विपक्ष ने उनकी बात नहीं मानी। इससे पहले सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना मुद्दा उठाने की अनुमति दी। श्री खड़गे ने नीट मुद्दे को लेकर कल नई दिल्ली में विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का मामला उठाया। इसके बाद विपक्ष और सत्ता पक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की और कहा कि विपक्ष विद्यार्थियों के मुद्दे पर चर्चा करना चाहता है। संसद के बाहर श्री गांधी ने कहा कि मुद्दा विद्यार्थियों और युवाओं के भविष्य से जुड़ा है।
3: इशू स्टूडेंट्स की है, यूथ के फ्यूचर की है। ये जो युवा हैं, ये एजुकेशन सिस्टम के बारे में, टेस्टिंग सिस्टम के बारे में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दैट इज ऑल दे सेइंग, नथिंग रॉन्ग विद इट।
0: सरकार ने उन कई सोशल मीडिया पोस्ट का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया था कि कल दिल्ली में हुए प्रदर्शनों के दौरान एक लड़की की मौके पर ही मौत हो गई। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली में प्रदर्शन से संबंधित कोई मौत नहीं हुई है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सिक्किम में नामची जिले में एनएचपीसी तिस्ता पनबिजली परियोजना की निर्माणाधीन सुरंग में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए बचाव और राहत अभियान जारी है। नामची जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि अब तक 11 शव बरामद किए जा चुके हैं। एक रिपोर्ट।
4: बारिश और खराब मौसम के बावजूद रेस्क्यू टीम फंसे हुए मजदूरों को सुरक्षित निकलने की पूरी कोशिश कर रही है। माना जा रहा है कि समरदंग में 7 किलोमीटर लंबी टनल के अंदर कम से कम 25 लोग फंसे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांगुले से बात की और हालात से निपटने के लिए हर तरह की मदद का भरोसा दिया। इस बीच जिला प्रशासन ने अब तक 7 शवों की पहचान कर ली है। रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर रखने के लिए जिला के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर है। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गंगटोक।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम में निर्माणाधीन सुरंग दुर्घटना में जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए तथा घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। हिमाचल प्रदेश में चंबा, कांगड़ा, हमीरपुर, मंडी और कुल्लू जिलों में 24 घंटे के दौरान कई स्थानों पर अत्यधिक तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई हिस्सों में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है।
5: किन्नौर जिला के करछम बांध और सिरमौर जिला में गिरी जटवन बांध से अतिरिक्त पानी छोड़ा जा रहा है। स्थानीय प्रशासन द्वारा इन नदियों के साथ लगते इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने व समय समय पर जारी किए जाने वाले दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा है। उधर किन्नौर जिला के शलखर और समदो में भूस्खलन और चट्टाने गिरने से राष्ट्रीय राजमार्ग

0: 5 पर यातायात बाधित हो गया है। वहीं लाहौल स्पीति जिला में भी जहालमा नाले में आई बाढ़ के कारण संपर्क सड़क बह जाने से यातायात बंद है। शिमला जिला के ठियोग उपमंडल में 16 सड़क संपर्क मार्ग भूस्खलन के कारण अवरुद्ध हैं और चंबा जिला के लाहड़ू नूरपुर मुख्य सड़क में भी टिक्कर गलाधार में भारी भूस्खलन से मार्ग अवरुद्ध हुआ है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: उत्तराखंड में बारिश और यात्रा मार्गों पर भूस्खलन की आशंका के कारण कल स्थगित की गई चार धाम यात्रा आज फिर शुरू हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: चारधाम यात्रा का संचालन जिला प्रशासन, पुलिस, एसटीआरएफ और संबंधित विभागों के समन्वय से किया जा रहा है। यात्रा मार्गों की लगातार निगरानी की जा रही है और संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि यदि भारी बारिश भूस्खलन

0: ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: चारधाम यात्रा का संचालन जिला प्रशासन, पुलिस, एसटीआरएफ और संबंधित विभागों के समन्वय से किया जा रहा है। यात्रा मार्गों की लगातार निगरानी की जा रही है और संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि यदि भारी बारिश भूस्खलन

फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारत ने वाणिज्यिक पोत एमवी गोल्डन लियो पर हुए हमले के संबंध में आज दिल्ली में रूस के प्रभारी राजदूत व्लादिमीर लादानोव को तलब किया। 19 जुलाई को इस जहाज पर हुए हमले में 4 भारतीय मारे गए थे। हमले की कड़ी निंदा करते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा कि ऐसे हमले अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार की सुरक्षा और स्थिरता कमजोर करते हैं। मंत्रालय ने बताया कि श्री लादानोव से कहा गया कि व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाना और इसके कारण निर्दोष

0: यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड शामिल हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा के साथ मिलकर लकाडोंग हल्दी मिशन गोल्डन स्पाइस का शुभारंभ किया। मिशन गोल्डन स्पाइस पूर्वोत्तर भारत के विकास के लिए शुरू की गई एक प्रमुख और महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसकी लागत 175 करोड़ रुपए से अधिक है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित उच्चाधिकार समिति ने अरावली पर्वतमाला से संबंधित मामलों पर जनता से राय मांगी है। समिति 31 अगस्त से पहले सर्वोच्च न्यायालय को अपनी विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया है कि इच्छुक व्यक्ति दस्तावेजी साक्ष्य और अन्य सत्यापन योग्य सामग्री के साथ अपनी राय mshpcaravali@gmail.com पर ईमेल के माध्यम से 3 सप्ताह के अंदर भेज सकते हैं। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज दोपहर के सत्र में गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 231 अंक गिरकर 77,478 पर और निफ्टी 52 अंक गिरकर 24,186 पर आ गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल का दौरा किया और वहां डॉक्टरों के साथ बैठक की। उन्होंने नीट यूजी 2026 का पेपर लीक होने के आरोपों को लेकर कल राजधानी में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल हुए लोगों की स्थिति का भी जायजा लिया। श्री नड्डा ने लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का भी दौरा किया और वहां भर्ती घायल प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भविष्य में परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया। उन्होंने नीट प्रश्न पत्र लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का सरकार का संकल्प दोहराया। संसद में विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित। सिक्किम के नामची जिले में निर्माणाधीन सुरंग ढहने से 11 लोगों की मौत, कई लोग फंसे, बचाव कार्य जारी। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी और भारत ने एक वाणिज्यिक जहाज पर हमले में 4 भारतीय नागरिकों की मौत के मामले में रूस के दूत को तलब किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 2:30 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक ही कलाकार। कार्यक्रम एक ही कलाकार सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। श्रोताओं, ये कार्यक्रम लेकर मैं हूं आपके साथ, आपका रेडियो मित्र चरणजीत सिंह। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उठा, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। जी हाँ दोस्तों, इस अमर गीत को आवाज देने वाले गायकी के क्षेत्र के साथ साथ दूसरों के दर्द को अपना दर्द समझने वाले महान पार्श्व गायक मुकेश को आज इस कार्यक्रम में हम याद कर रहे हैं। दोस्तों, वो इसलिए क्योंकि मुकेश के प्रशंसक, उनके चाहने वाले, उनके गाए गीतों में अपने जीवन को जीने वाले, कल यानी 22 जुलाई को मनाएंगे उनका जन्मदिन। आपको बता दें कि महान गायक मुकेश का जन्म 22 जुलाई सन 1923 को दिल्ली में हुआ था। मुकेश को दर्द का बादशाह कहा जाता था क्योंकि आवाज में बहुत दर्द था और बहुत ही भावुकता थी। और दोस्तों, इस दर्द को, इस भावुकता को, इनके भावों को आज भी बड़ी रोचकता के साथ, बड़े दिल के साथ हमारे श्रोता सुनते हैं।

0: दोस्तों, फिल्म अनाड़ी के इस गीत को मुकेश ने तो आवाज़ दी, लेकिन आपको बता दें कि इस गीत को लिखा शैलेंद्र ने और संगीत दिया शंकर जयकिशन ने। मुकेश के जीवन से जुड़ी कुछ और बातें हम आपके साथ इस कार्यक्रम में साझा करने वाले हैं, लेकिन कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब पहले सुन लेते हैं जरूरी संदेश।
1: शास्त्रीय संगीत का अमृत कलश रागम, भारतीय शास्त्रीय संगीत को समर्पित आकाशवाणी का बेहतरीन चैनल रागम, डीटीएच पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए इंटरनेट और आपके मोबाइल ऐप पर भी। रागम, आनंद की अटूट रसधार।
0: एक ही कलाकार कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से, और आज के कलाकार हैं मुकेश। दोस्तों, मुकेश को बचपन से ही संगीत और गायन का शौक था। खास बात यह थी कि उन्होंने संगीत की कोई औपचारिक शिक्षा नहीं ली थी और उनकी आवाज मशहूर गायक KL सहगल से काफी मिलती जुलती थी। मुकेश अपनी बहन की शादी में जब गीत गा रहे थे तो उस दौर के अभिनेता मोतीलाल ने उनकी आवाज को तरजीह देते हुए उन्हें मुंबई ले आए। दोस्तों, यूं तो मुकेश ने फिल्मी दुनिया में अपने करियर की शुरुआत साल 1941 में फिल्म निर्दोष में बतौर अभिनेता और गायक के रूप में की थी, लेकिन पार्श्व गायक के रूप में मुकेश ने अपने करियर

की शुरुआत साल 1945 में आई फिल्म पहली नजर के गीत दिल जलता है तो जलने दे सकी। दोस्तों ये गाना काफी हिट हुआ था।

0: दोस्तों, ये गीत आप जो सुन रहे थे वो था फिल्म पहली नज़र से। आवाज़ मुकेश की थी। इस गीत को लिखा आन सीतापुरी ने और संगीतबद्ध किया था अनिल बिस्वास ने। और दोस्तों, इस गीत को सुनने के साथ ही आपको इस बात का ज़रूर एहसास हो गया होगा कि मुकेश की आवाज़ KL सहगल से कितनी मिलती जुलती थी। और जो लोग बहुत पुराने गीतों को सुनने के शौकीन हैं, उन्हें इस बात का ज़रूर एहसास हुआ होगा कि KL सहगल ने आखिर मुकेश को एक बड़े कलाकार के रूप में क्यों और कैसे पहचान लिया था। चलिए श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, कुछ और बातचीत जारी रखेंगे मुकेश जी के संबंध में। फिलहाल ये संदेश।
1: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुँचाना चाहते हैं
2: तो इंतजार किस बात का,
1: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
2: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
1: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
2: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
1: और हमारा ईमेल आईडी है
2: akashwaninajibabad@gmail.com।
1: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन
2: आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
0: आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक ही कलाकार, और आज के कलाकार हैं महान पार्श्व गायक मुकेश। इस कार्यक्रम लेकर मैं हूं आपके बीच आपका रेडियो मित्र चरणजीत सिंह। दोस्तों, संदेश से पहले जो गीत हम सुन रहे थे उसमें हम ये बात साझा कर रहे थे कि KL सहगल से काफ़ी मिलती जुलती आवाज़ थी महान गायक मुकेश की। और दोस्तों, आपने ये महसूस किया होगा कि हर एक गायक की आवाज़ किसी न किसी अभिनेता की आइकन आवाज़ के रूप में सुनी जाती है, पहचानी जाती है, वो भी एक दो या चार छह नहीं बल्कि ज़्यादातर फिल्मों में। जैसे राज कपूर और मुकेश के बीच एक अच्छी खासी जुगलबंदी के चलते मुकेश की आवाज़ ही राज कपूर की आवाज़ बन गई। दोनों की जोड़ी ने भारतीय सिनेमा को कई अमर गीत दिए, जैसे कि फिल्म आवारा का गीत आवारा हूं, फिल्म संगत का ये गीत कि मेरे मन की गंगा तेरे मन की जमुना, और फिल्म 420 का श्री 420 का ये गीत।

दोस्तों, मुकेश के पारिवारिक जीवन की अगर हम बात करें तो मुकेश के पिता जोरावर चंद माथुर और माता चंद्रानी माथुर की 10 संतानों में वे छठे थे। मुकेश ने 10वीं कक्षा के बाद स्कूल छोड़ दिया। कुछ समय लोक निर्माण विभाग में नौकरी करने के साथ ही उन्होंने अपनी आवाज की रिकॉर्डिंग भी कराई, जिसमें वे काफी सफल रहे। ये तो रही उनके निजी जीवन की बात। जब मुकेश अपने करियर में आगे बढ़े और सार्वजनिक जीवन में आगे आए तो संगीत निर्देशक नौशाद की मदद से मुकेश ने अपनी गायन शैली विकसित की। नौशाद ने उन्हें फिल्म अंदाज के लिए गाने दिए। दोस्तों, ये वो फिल्म थी जिसमें राज कपूर को मोहम्मद रफी ने आवाज दी, जबकि मुकेश और राज कपूर के बीच अच्छी खासी जुगलबंदी रहती थी, लेकिन अंदाज फिल्म में राज कपूर के लिए मोहम्मद रफी ने गाना गाया। मुकेश ने सबसे अधिक 133 गीत शंकर जयकिशन के लिए गाने गाए और कल्याण जी आनंद जी ने 99 गीत मुकेश के रिकॉर्ड किए। और दोस्तों, जिस फिल्म की हम बात कर रहे हैं, फिल्म अंदाज, जिसमें राज कपूर पर फिल्माए गए गीत को मोहम्मद रफ़ी ने आवाज़ दी, उसी फिल्म का गीत हम आपको सुनवा रहे हैं मुकेश की आवाज़ में।

राज कपूर के लिए 110, मनोज कुमार के लिए 47 गीतों और दिलीप कुमार के लिए 20 गीतों को आवाज़ दी। दोस्तों, मुकेश ने करीब 1300 गीतों को अपनी आवाज़ दी। हालांकि आपको यह आंकड़ा उनके समकालीन अन्य गायकों की तुलना में बहुत कम नजर आएगा, लेकिन मुकेश ने इन गीतों में गुणवत्ता और भावों को समझकर उन्हें अपनी आवाज दी। दोस्तों, शायद आपको यह इस बात की हैरानी हो कि मुकेश के गीतों को सुनकर प्रसिद्ध भारतीय स्पिन गेंदबाज शानदार प्रदर्शन करते थे। जी हां, और आपको यह भी बता दें कि उनके इस सकारात्मक व्यवहार से खुद लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर, किरमानी, विश्वनाथ इनसे काफी प्रभावित थे। एक खास बात और है कि मुकेश की 100वीं जयंती पर डाक विभाग ने स्मारक डाक टिकट जारी किया था। दोस्तों, जब हम कुछ खास करते हैं ना, तो हमें पुरस्कार भी मिलता है। जैसे कि मुकेश को साल 1974 में आई फिल्म रजनीगंधा के गीत कई बार यही देखा है के लिए सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। इसके अलावा फिल्म अनाड़ी के गीत सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी, पहचान फिल्म के गीत सबसे बड़ा नादान, बेईमान फिल्म के गीत जय बोलो बेईमान की, और कभी कभी फिल्म के गीत कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, इसके लिए आपको फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। दोस्तों, बहुत सी ऐसी जानकारियां हैं जो मुकेश के जीवन से ऐसी जुड़ी हैं कि जो कि हमें जान लेनी चाहिए, लेकिन समय की बाध्यता के चलते हम इस कार्यक्रम को गागर में सागर की तरह ही आपके लिए लेकर आए हैं। कार्यक्रम में चलते चलते सुन लेते हैं मुकेश की आवाज़ में वही गीत जिसे फिल्म फेयर पुरस्कार मिला, और ये गीत अपने दौर में भी नहीं बल्कि आज के दौर में भी, आज की पीढ़ी भी, आज के लोग भी इस गीत को सुनना बहुत पसंद करते हैं।

दोस्तों, अपनी सांसारिक यात्रा में अपनी झोली में कई उपलब्धियां डालते हुए और हमारी झोली में इन गीतों के रूप में कुछ सौगातें, कुछ धरोहर डालते हुए महान गायक मुकेश 27 अगस्त 1976 को अमेरिका में स्वर्ग सिधार गए। ऐसी महान शख्सियत को शत शत नमन।

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक ही कलाकार अब यहीं पर संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक ही कलाकार। आज के कलाकार थे मुकेश। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। अपराह्न के 3 बज रहे हैं। हमारी प्रथम प्रसारण सभा के कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होते हैं। द्वितीय प्रसारण सभा में शाम 5 बजे आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए।

मीडियम वेव 374.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे हैं। हमारी आज की संध्याकालीन सभा अब आरंभ होती है। सभा के आरंभ में श्रोताओं आइए सुनते हैं कार्यक्रम मेरा सपना उन्नत भारत। श्रोताओं, जैसा कि हम सब जानते हैं कि सरकार लगातार प्रयासरत रहती है कि जो मध्यम और गरीब परिवार हैं या मध्यम वर्गीय जो लोग हैं उनको जो है उनकी आय में लगातार वृद्धि करती रहे, उनके लिए नई नई योजनाएं सरकार चलाती रहती है। उसी क्रम में श्रोताओं, अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु प्रधानमंत्री के जो नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम हैं उनके अंतर्गत जो योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं के अंतर्गत आने वाली जो योजना है उन्हीं में से हम 2 योजना आपके लिए आज जानकारी के लिए लाए हैं। योजना है प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को उधारी और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो श्रोताओं, आइए पहले बात करते हैं प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को जो उधारी है उसके विषय में। तो श्रोता, हम आपको बताएं कि ये प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को उधारी जो योजना है भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI द्वारा संचालित एक बेहद महत्वपूर्ण नीति है। इसके तहत देश के सभी वाणिज्यिक बैंकों के लिए ये अनिवार्य होता है कि वे अपने कुल कर्ज का एक निश्चित हिस्सा समाज के उन पिछड़े संवेदनशील और बुनियादी क्षेत्रों को दे जो सामान्य परिस्थितियों में बैंकिंग लोन से वंचित रह जाते हैं। इसके तहत मुख्य रूप से कृषि, सूक्ष्म, लघु और मध्यम, शिक्षा, किफायती आवास, सामाजिक बुनियादी ढांचा, नवीकरणीय ऊर्जा और समाज के कमजोर वर्गों को शामिल किया जाता है। इस व्यवस्था का श्रोताओं सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देती है जिससे छोटे जो किसान हैं और छोटे उद्यमों को साहूकारों के ऊंचे ब्याज दर के जाल में फंसने से मुक्ति मिलती है और वे आत्मनिर्भर बनते हैं। इसके अतिरिक्त कृषि और लघु उद्योगों को समय पर और सस्ता लोन मिलने से देश में बड़े पैमाने पर रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होती है और आर्थिक असमानता कम हो जाती है जिससे देश का संतुलित और समावेशी विकास सुनिश्चित होता है। इस व्यवस्था के भीतर विशेष उपलक्ष्य तय हैं जैसे कुल लोन का 18% कृषि के लिए, 7.5% सूक्ष्म उद्योगों के लिए और 12% समाज के कमजोर वर्गों के लिए रिजर्व रखना पड़ता है। यदि कोई बैंक इन लक्ष्यों को पूरा करने में नाकाम रहता है तो उसकी बची हुई कमी की राशि को अनिवार्य रूप से नाबार्ड के ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास कोष या अन्य विकास कोषों में जमा करना पड़ता है जिस पर बैंकों को बहुत कम ब्याज मिलता है और उन्हें सीधा नुकसान होता है। इस जुर्माने से बचने के लिए बैंक RBI के ई कुबेर प्लेटफॉर्म पर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार प्रमाण पत्र की खरीद बिक्री करते हैं जहां लक्ष्य के ज्यादा लोन देने वाले बैंक अपने अतिरिक्त हिस्से को प्रमाण पत्र के रूप में उन बैंकों को बेच देते हैं जो अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर पाते। अगर सीधे शब्दों में ये कहें श्रोताओं कि वो पूरी प्रणाली देश के गरीब, ग्रामीण और छोटे उद्यमों तक संस्थागत ऋण पहुंचाकर वित्तीय समावेशन को मजबूत करती है, रोजगार पैदा करती है और देश के संतुलित आर्थिक विकास को सुनिश्चित करती है। संक्षेप में कहें तो ये योजना एक बैंकिंग नियम नहीं बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाने वाले क्षेत्रों को मजबूत कर देश के समग्र सामाजिक आर्थिक विकास को गति देने वाली एक कल्याणकारी और दूरदर्शी व्यवस्था है। तो श्रोताओं, ये तो थी बात प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को उधारी के बारे में और अब बात करते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की। तो हम बता दें श्रोताओं कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को देश के गैर कॉरपोरेट और गैर कृषि और सूक्ष्म व लघु उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करके स्वरोजगार और उद्यमता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। इस योजना को इसलिए शुरू किया गया ताकि समाज के उन छोटे व्यापारियों, दुकानदारों, फल सब्जी विक्रेताओं, ट्रक ऑपरेटरों और मरम्मत की दुकान चलाने वाले फंडिंग द अनफंडेड यानी जिन्हें बैंक आसानी से लोन नहीं देते उन लोगों को बिना किसी गारंटी के सस्ता व सुरक्षित ऋण मिल सके और वे साहूकारों के चंगुल से बच सके।
मुद्रा योजना का लाभ लेने के लिए श्रोताओं, कोई भी भारतीय नागरिक जो अपना छोटा व्यवसाय शुरू करना चाहता है या मौजूदा व्यवसाय का विस्तार करना चाहता है, वो अपने नजदीकी वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, लघु वित्त बैंक, सूक्ष्म वित्त बैंक या जन समर्थ पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन भी आवेदन कर सकता है। इस योजना के तहत व्यवसाय की वित्तीय आवश्यकता के आधार पर 3 श्रेणियों में लोन दिया जाता है। पहला लोन होता है श्रोताओं शिशु लोन, जो कि 50,000 तक होता है। दूसरा किशोर लोन 50,000 से 5 लाख तक, और तीसरा तरुण लोन जो 5 से 10 लाख तक दिया जाता है। इस लोन को चुकाने के लिए अधिकतम 5 वर्ष की अवधि मिलती है और लोन मंजूर होने पर लाभार्थी को एक मुद्रा कार्ड दे दिया जाता है, जिससे वे अपनी कार्यशील पूंजी की जरूरत के आधार पर एटीएम से कभी भी पैसे निकाल सकता है। कुल मिलाकर श्रोताओं, अगर बात करें कि ये योजना देश में जमीनी स्तर पर रोजगार के ज्यादा अवसर पैदा करने, महिलाओं, SC ST और पिछड़े वर्गों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और देश के आर्थिक विकास में छोटे व्यवसायों की भागीदारी सुनिश्चित करने का एक बेहद प्रभावी माध्यम है।

इसी के साथ कार्यक्रम मेरा सपना उन्नत भारत अब संपन्न होता है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये नजीब आपात केंद्र है। शाम के 5:10 हुए हैं। श्रोताओं, आइए अब आपको जानकारी दे दें हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के विषय में।

श्रोताओं, पहले जानकारी हमारे आज के शेष कार्यक्रमों के बारे में। तो हम आपको बता दें श्रोताओं, आज रात 8 बजे संसद समीक्षा हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे और रात 10 बजे राज्य स्तरीय प्रसारण के अंतर्गत कार्यक्रम आप सुनेंगे खेल दर्पण। इस कार्यक्रम में श्रोताओं आज प्रस्तुति होगी आकाशवाणी नजीबाबाद की और इस कार्यक्रम में श्रोताओं आप सुनेंगे 23वीं एशियाई मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक विजेता तरुण शहरावत से बातचीत, साथ ही होगी अंडर 17 कबड्डी प्लेयर तनीश कुमार से बातचीत। आलेख और वाचन स्वर होगा नमित राज का, प्रस्तुतकर्ता अंकित सैनी। रात 10:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आपकी फरमाइश और रात 9:30 पर आप सुनेंगे शेरी नशिस्त। इस कार्यक्रम में आज प्रतिभागी होंगे सर्वश्री तैयब, आले अहमद, एजाज धामपुरी, मोहम्मद राशिद और शेरी नशिस्त का संचालन करेंगे बहरुद्दीन शमसी। फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत संध्या होगा श्रोताओं रात 8:15 पर, 8:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम एक ही फिल्म से। जगजीत सिंह की गाई गजलें आप सुन सकते हैं श्रोताओं सुगम संगीत कार्यक्रम में शाम 7:32 पर। छाया गीत फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम होगा शाम 6:55 पर और 6:45 पर। विविधा कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे वार्ता भारत की विदेश नीति में नए आयाम और वार्ताकार होंगे अजय कुमार मित्तल। कृषिगत कार्यक्रम में आज शाम 6:05 पर श्रोताओं आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम बासमती धान रेडियो कृषि पाठशाला। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे डॉक्टर सिद्धार्थ त्रिपाठी से प्रमोद सिंह की बातचीत जिसका विषय होगा गुणवत्ता युक्त बासमती उत्पादन हेतु सुझाव। युववाणी कार्यक्रम में आपसे थोड़ी देर बाद यानी 5:15 पर क्रम होगा दिल से दिल तक लव स्टोरीज और कुछ खास है आज।

श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारे आज के शेष कार्यक्रमों के बारे में, और आइए अब एक नजर डालते हैं कल के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों पर। तो श्रोता, हम आपको बता दें कल रात 9:30 पर आप सुने कार्यक्रम चर्चा का विषय है। रात 10 बजे संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग और 8 बजे संसद समीक्षा, ये कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत संध्या होगा रात 8:15 पर, 8:30 पर होगा कार्यक्रम एक ही फिल्म से कानून की बात। लखनऊ से ये कार्यक्रम हम अनुप्रसारित करेंगे श्रोताओं कल शाम 7:32। सुगम संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत 7:45 पर आप सुनेंगे भाई हरजिंदर सिंह के गाए शब्द। छाया गीत कार्यक्रम होगा शाम 6:55 पर, 6:45 पर विविधा कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे डॉक्टर अमित कुमार सिंह से वार्ता, जिसका विषय होगा भारतीय संविधान में लोक कल्याण के तत्व। कृषि जगत कार्यक्रम में शाम 6:05 पर आप सुनेंगे नए फलदार वृक्षों की रोपाई करते समय सावधानी विषय पर डॉक्टर प्रतिमा गुप्ता से प्रमोद सिंह की बातचीत। युववाणी कार्यक्रम में कल शाम 5:15 पर क्रम होगा यूथ कनेक्ट और लव स्टोरी। भानुराम सुकोटी के गायक कुमाऊनी लोकगीत आप सुन सकते हैं लोकधारा कार्यक्रम में कल दोपहर 1:45 पर, और 1:15 पर घर संसार कार्यक्रम में क्रम रहेगा हमारा घर आंगन भोर से सांझ तक। शास्त्रीय संगीत, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे दोपहर 12:05 पर। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे पंडित रविशंकर का सितार पर बजाय राग मधुवंती। श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के विषय में। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:15 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी।

0: कुछ दुआएं लफ्जों की मोहताज नहीं होती, कुछ दुआएं आंखों से भी बयां हो जाती हैं। और जैसे कभी किसी अपने की खुशी के लिए उठ जाते हैं हाथ, तो कभी किसी अनजान के लिए भी दिल से दुआ निकल ही जाती है।
1: दोस्तों, दुआ की खूबसूरती भी तो इसी में होती है ना। जब हम किसी के लिए दुआ करते हैं तो उसमें अपना कोई मतलब नहीं होता, बस अंदर से एक ही ख्वाहिश होती है कि सामने वाला खुश रहे।
0: और इसी खूबसूरत एहसास के साथ आज की शाम का भी आगाज करते हैं। हेलो एंड गुड इवनिंग दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी दोस्त और होस्ट मोनिका सैनी।
1: और मोनिका के साथ प्रोग्राम में जुड़ गई हूँ मैं, आपकी अपनी दोस्त और आज की वन ऑफ द होस्ट रुमान परवीन।
0: रुमान, हम बात कर रहे थे दुआ की। दुआ जो दिल से दिल निकलती है और दिल तक ही पहुंच जाती है।
1: जी हाँ, और एक ऐसा ही ट्यूसडे स्पेशल सेगमेंट हम आपके लिए लेकर आते हैं दोस्तों, जिसमें आपके मैसेजेस हमारे और हमारे लिसनर्स के दिलों तक पहुंचते हैं।
0: और जिसका नाम है दिल से दिल तक, और जिसमें हमारी आज की थीम होने वाली है दुआ।
1: दुआ जो हमेशा हाथ जोड़कर या आंखें बंद करके नहीं मांगी जाती। दुआ तो हर पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए करता है और हर दोस्त अपने दोस्त के लिए करते हैं।
0: और कभी कभी तो किसी अनजान के लिए भी करते हैं। तो कोई ऐसी ही दुआ जो आपने या किसी और ने आपके लिए की हो, वो आप हमें आज मैसेजेस के जरिए बता सकते हैं।
1: जी हाँ, आप अपने एक्सपीरियंस और दुआ से रिलेटेड जो भी आपके दिल में ख्याल आए वो हमें लिखकर भेज दीजिएगा हमारे व्हाट्सएप नंबर 9457078288। अब जरा ये प्यारा सा मैसेज लिखने से पहले कुछ सवाल जवाब हो जाए।
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो चलिए अब आपको लेकर चलते हैं हमारे आज के बूझो तो जाने की तरफ, जिसमें आपसे हमारा आज का सवाल है।
1: जी हाँ दोस्तों, हमारा आपसे सवाल रहेगा, IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता?
0: और इस सवाल का जवाब देने के लिए आपको जाना है हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी नजीबाबाद पर, और कमेंट सेक्शन में टाइप कर देना है हमें हमारे सवाल का सही जवाब।
1: चलिए तब तक आपको सुनवाते हैं आज के दिल से दिल तक सेगमेंट के अंतर्गत ये पहला गीत।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे।
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: हम हंसाएंगे, आप मुस्कुराएंगे,
2: हो जाओगे एहसास कर लोट पोट,
1: क्योंकि ये है लाफ्टर का सॉलिड डोज।
3: और डोज में क्या है?
2: डोज में है मजा। जी हाँ, मजा आ गया।
4: अरे आ गए आप, बताइए पहले खाना खाएंगे या पानी लेकर आऊँ? आज आप लंच भी नहीं लेकर गए थे।
3: अरे हाँ यार, मैं भूल गया, बस जल्दी जल्दी में। तुम एक काम करो, जल्दी से खाना ले आओ, मुझे ना बहुत तेज भूख लगी है।
4: ठीक है, आप बैठिए, मैं जल्दी से खाना लेकर आती हूँ।
3: हाँ प्लीज, ले आओ ले आओ।
4: लीजिए, जल्दी से खाकर बताइए कैसा बना।
3: हाँ खाता हूँ। ये कैसा खाना बनाया तुमने, एकदम गोबर जैसा।
4: हे भगवान, इस आदमी ने हर चीज चखी है।
2: जी हाँ, मजा आ गया।
5: रुमान, तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुमने कोई काम करने के लिए सोचा, पूरा प्लान भी बना लिया, और फिर तुम्हें वो करने से पहले कोई एक एक्सक्यूज याद आ गया हो?
4: एक? मोनिका, एक्सक्यूजेस की तो पूरी लिस्ट है मेरे पास। कल से करूंगी, अभी मन नहीं है। टाइम मिला तो देख लेंगे यार, रिसोर्सेज नहीं है, लोग क्या कहेंगे, और सबसे ज्यादा जो होता है मेरे पास वो होता है टाइम नहीं है मेरे पास।
5: अरे अरे अरे, बस रुक जाओ। और पता है तुम्हें, मतलब इंटरेस्टिंग बात क्या है, टाइम सबके पास 24 घंटे ही होते हैं, लेकिन हम अपने सपनों की जगह एक्सक्यूजेस ढूंढने में ज्यादा टाइम लगा देते हैं।
4: और पता है, कभी कभी तो हम खुद को इतने इनकन्विंसिंग एक्सक्यूजेस देते हैं कि हमें लगता है कि अब कुछ नहीं कर सकते हम।
5: बिल्कुल, लेकिन लेकिन लेकिन दोस्तों, आज हम किसी को जज करने बिल्कुल नहीं आए हैं, और ना ही हम जज कर रहे हैं, क्योंकि सच तो ये है कि एक्सक्यूजेस हम सब बनाते हैं, कभी डर की वजह से, तो कभी
4: फेलियर्स की वजह से, तो कभी सिर्फ इसलिए क्योंकि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकलना चाहते।
5: और इसीलिए आज हम बात करेंगे नो एक्सक्यूजेस ओनली एफर्ट्स के बारे में।
4: मोनिका, एफर्ट्स का असल मतलब क्या होता है? क्या दिन भर काम करना एफर्ट होता है?
5: नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। एफर्ट्स का मतलब बहुत ही सिंपल सा है, जो आपके कंट्रोल में है आप उसके लिए अपनी पूरी ईमानदारी से मेहनत करिए और कोशिश करते रहिए।
4: और दोस्तों, बिल्कुल वैसे ही आपका रिजल्ट आपके कंट्रोल में तो नहीं है, लेकिन आपकी जो प्रिपरेशन है वो आपके ही हाथ में है।
5: और बिल्कुल इसी तरह से हम देख सकते हैं अपॉर्चुनिटी। आपको अपॉर्चुनिटी कब मिलेगी शायद ये भी आपको नहीं पता होता, लेकिन अपॉर्चुनिटी के लिए रेडी रहना तो आपके कंट्रोल में ही होता है ना।
4: मतलब कुल मिला के बात करें तो एफर्ट्स का मतलब हर बार जीतना बिल्कुल भी नहीं होता दोस्तों, बल्कि एफर्ट्स का मतलब है हारने के बाद भी हम खुश रहें और अपने मन में कह सकें, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की।
5: अगर अब हम बात करें एक्सक्यूजेस की, तो कभी कभी हम कोशिश ही नहीं करते क्योंकि हमें डर होता है कि अगर हम फेल हो गए तो।
4: लेकिन आपको एक बात याद रखनी चाहिए, फेलियर्स आपकी आइडेंटिटी तो बिल्कुल भी नहीं है, कभी कभी फेलियर्स भी हमें बहुत कुछ सिखा कर जाते हैं।
5: जैसे आपने क्या गलत किया, क्या लास्ट टाइम गलत हुआ, और आगे क्या आप सही कर सकते हैं, और आगे आपको बस ये सोचना चाहिए कि आगे अब जो आप नहीं सीख पाए अभी तक वो आपको क्या सीखना है।
4: दोस्तों, जिंदगी में हर किसी की स्टार्टिंग लाइन अलग होती है, किसी को रेस में थोड़ा आगे से स्टार्ट मिलता है तो किसी को थोड़ा पीछे से,
5: लेकिन आप उसी रेस में कितनी दूर तक जाते हैं ये आपकी कोशिश यानी के एफर्ट्स ही तो तय करते हैं।
4: और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, अगर अभी आपका स्ट्रगल पीरियड चल रहा है तो आपको लगता है प्रोग्रेस स्लो है,
5: तो आपको रुकना बिल्कुल नहीं है।
4: बिल्कुल,
5: और हो सकता है कि अभी आपको रिजल्ट नहीं मिला हो, वो आपको रिजल्ट नहीं दिख रहा हो, लेकिन आपके आज के एफर्ट्स ही तो होते हैं जो आपके कल को जरूर जरूर बदलते हैं।
4: देखिए दोस्तों, एक्सक्यूजेस हमें एक पल के लिए कंफर्ट दे सकते हैं, लेकिन एफर्ट्स वो हैं जो एक दिन हमारी जिंदगी में बदलाव जरूर लाएंगे, हमारे सपने पूरे करते हैं और हमें कामयाबी तक पहुंचाएंगे।
5: बिल्कुल, और इसीलिए आज से एक छोटा सा, आज से नहीं बल्कि अभी से एक प्रॉमिस कीजिए, और हमारे साथ साथ बोलिए भी, बहाने कम, कोशिश ज्यादा, डर कम,
4: एक्शन ज्यादा और एक्सक्यूजेस एकदम जीरो।
5: अगर लास्ट में कहें एट द एंड, एफर्ट्स ओनली एफर्ट्स।
4: और दोस्तों, आज के कुछ खास है, आज में हमारी बातें बस इतनी सी ही रहेंगी। इसी के साथ हम आपको सुनवाते हैं आज की शाम के हमारे स्पेशल सेगमेंट दिल से दिल तक के अंतर्गत का ये अगला गीत।

0: नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें, ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें हैं आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स। इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
1: हम हंसाएंगे, आप मुस्कुराएंगे,
2: हो जाओगे आसास कर लोट को,
1: क्योंकि यह है लाफ्टर का सॉलिड डोज।
3: और डोज में क्या है?
2: डोज में है मजा। जी हाँ, मजा आ गया।
3: अरे जज साहब, मेरी बात तो सुनो ना, आप एक बार सुन तो लो मैं कहना क्या चाहता हूँ।
4: कोई बात नहीं सुनी जाएगी तुम्हारी। तुमने 10 साल से अपनी पत्नी को डरा धमका कर अपने कंट्रोल में रखा है।
3: अरे मुझे बोलने तो दो ना, मेरी बात तो सुनो एक बार।
4: कोई बात नहीं सुननी, सफाई नहीं चाहिए मुझे, बस तुम तरीका बताओ मुझे, तरीका।
2: जी हाँ, मजा आ गया।
5: दोस्तों, प्रोग्राम में वक्त हो चला है उस स्पेशल सेगमेंट का जो कि इस वीक खास रहने वाला है। जी हाँ, हमारा सेगमेंट लव स्टोरीज, जिसमें आप सुनेंगे कहा

0: Love stories.
1: नमस्कार दोस्तों, हमारी कहानी दोस्तों कल हमने सुना था एक लड़की नैना जिसने अनजाने में सही आरजे आर्यन को एक मैसेज टाइप किया था। मैसेज में लिखा था, क्या कभी किसी अजनबी की आवाज भी घर जैसी लग सकती है। नेक्स्ट डे नैना ने अपने फोन में प्रोग्राम शुरू किया जिसमें आरजे आर्यन ने कहा, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम दिल की बातें। कल मैंने आप सबसे कहा था कि अगर दिल में कोई बात हो तो हमें मैसेज जरूर कीजिए। यकीन मानिए दोस्तों, कई बार किसी अनजान इंसान से कही हुई बात अपने लोगों से कही हुई बात से भी ज्यादा सुकून देती है। और आरजे आर्यन ने कहा, आज एक ऐसा ही मैसेज हमें मिला है दोस्तों। मैसेज में सिर्फ एक लाइन लिखी है, क्या कभी किसी अजनबी की आवाज भी घर जैसी लग सकती है। जिसने भी ये दोस्तों मैसेज टाइप किया है उससे मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि हाँ, अगर उस आवाज में अपनापन हो, अगर वो बिना जाने आपकी खामोशी समझ ले तो कभी कभी आवाजें भी घर बन जाती हैं। और उम्मीद है आज की रात आप पहले से थोड़ा बेहतर महसूस करेंगे। उधर अपने रूम में बैठी नैना के हाथ कांप रहे थे। उसने कई बार सोचा शायद उसका मैसेज हजारों मैसेजेस में कहीं खो जाएगा, लेकिन आज पहली ही बार किसी ने उसकी बात सुन ली। जी हाँ, उसका मैसेज आरजे आर्यन ने पढ़ लिया। नैना को बिल्कुल भी नहीं पता था कि नेक्स्ट डे उसका मैसेज भी शामिल होगा। उसे बहुत अच्छा लगा, उसने दिल से थैंक यू बोला। और अब ये रोज का सिलसिला बन गया था नैना का। दिन भर ऑफिस, शाम को घर और रात के 10 बजते ही FM ऑन करके प्रोग्राम सुनना। और आज आरजे आर्यन ने शो खत्म होने से पहले कहा, दोस्तों आज एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी से। अगर आप रोज हमारा प्रोग्राम सुनते हैं तो अपने बारे में 2 लाइन जरूर लिखिएगा। नाम लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन अपने बारे में 2 लाइन जरूर लिखिएगा। उधर नैना ने भी मैसेज टाइप किया और लिखा, मैं वो लड़की हूँ जो हर रात आपकी आवाज़ सुनकर अपने कमरे की खामोशी से दोस्ती कर लेती है। और उधर आरजे आर्यन भी उस अनजान श्रोता का मैसेज का इंतज़ार करने लगा था। वैसे दोस्तों, क्या 2 अनजान लोग सिर्फ शब्दों के सहारे एक रिश्ता बना सकते हैं? दोस्तों ये जानेंगे हम कल अनकहा रिश्ता के एपिसोड नंबर 3 में।

0: तो दोस्तों अब देखते हैं, हमारे साथियों ने हमें मैसेज किए हैं तो क्यों ना उनके मैसेज को शामिल कर लिया जाए प्रोग्राम में।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो मैं तुम्हें बताती हूँ कि हमारे पास पहला मैसेज किन का आया है। मोनिका, तुम्हें पता है हमारे पास जो पहला मैसेज आया है वो कुछ यूं है, प्रोग्राम युवाणी दिल से दिल तक, नगीना से अनिल मिनोजा हमारे डेली लिसनर हैं
1: बिल्कुल, हर बार हमें इनका मैसेज जरूर से रिसीव होता ही है।
0: और इनका मैसेज रिसीव होने के बाद एक पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है।
1: बिल्कुल, तो इसी बात पे पढ़ लिया जाए
0: जी
1: आज
0: हाँ,
1: क्या लिख भेजा है
0: उन्होंने
1: इन्होंने।
0: कहा है आज का टॉपिक दुआ बहुत अच्छा है और वो कुछ इस तरह से कहते हैं, दुआ मतलब ईश्वर की पूजा करना और अपने लिए कुछ मांगना, यही दूसरों के लिए भी करते हैं। दुआ आशीर्वाद देना भी होता है और साथ में दुआ वो भी होती है जिससे दूसरे की जिंदगी और दूसरे को शुभकामनाएं दी जा सकें ताकि लोग अपने नसीब को पा सकें, जीवन सुखी से बिता सकें। दुआ में बहुत असर होता है, सब अच्छे रहें सुखी रहें, यही दुआ है उनकी।
1: हमारी भी यही दुआ है, सब अच्छे से रहें और अपने सपनों को पूरा करते रहें।
0: बिल्कुल
1: और रुमान, एक और मैसेज मैं शामिल करना चाहूँगी जो कि हमें मिला है गढ़ मीरपुर हरिद्वार से, और लिखने वाले हैं रवि जवालिया। और वो लिखते हैं, ऐ खुदा तेरी खुदाई सब पर बरसे, तेरी रहमत मेरे चाहने वालों पर भी बरसे। मेरी तो ये दुआ है कि मुझे पानी बना देना, गर मेरा चाहने वाला प्यास में पानी से तरसे।
0: अरे वाह, क्या खूबसूरत मैसेज भेजा है इन्होंने हमें।
1: बिल्कुल
0: तो क्यों ना इसी खूबसूरत से
1: खूबसूरत
0: मैसेज के
1: शायरी
0: साथ
1: को,
0: में हम एक खूबसूरत सा गीत सुन ले।
1: बिल्कुल, तो चलिए इन सबको सुनवाते हैं ये खूबसूरत सा अगला गीत।

0: दोस्तों चलिए अब चलते हैं दिल से दिल तक सेगमेंट में वापस, और जिसमें हमारी आज की थीम है दुआ, और हमें लगातार मैसेज भी मिल रहे हैं दुआ से जुड़े हुए। तो अगला मैसेज हमें मिला है विलेज एंड पोस्ट राहु नंगली से। लिखने वाले हैं आचार्य सत्यवीर सिंह, अलका चौहान, भूमिका चौहान, कशिश चौहान, प्रिंस राजपूत, कनिष्का चौहान और भव्या चौहान। वो लिखते हैं, दुआ धीरे धीरे रंग लाती है, बहुत शक्तिशाली होती है, और इसे प्रे, प्रार्थना, इबादत, अरदास बहुत सारे नामों से भी जाना जाता है। और हम जब भी ईश्वर से लगन लगाते हैं तो हमें और सभी के लिए भी दुआ जरूर करनी चाहिए। वाकई बहुत अच्छी बात कही है आपने, हमें जब भी हम अपने लिए भी दुआ मांगते हैं तो हमें दूसरों के लिए भी जरूर से दुआ मांगनी ही चाहिए।
1: और दोस्तों आपको बताते हैं कि अगला मैसेज हमें रिसीव हुआ है मिसबा शमसी का नगीना से। जी हाँ, वो लिखती हैं, दुआ करना एक बहुत ही प्यारी आदत है जो इंसान को सुकून देती है। जब हम किसी के लिए सच्चे दिल से दुआ मांगते हैं तो वो दुआ सीधे हमारे दिल तक पहुंचती है। दुआ का मतलब सिर्फ अपनी ज़रूरतें मांगना नहीं, बल्कि दूसरों के लिए अच्छा सोचना भी होता है। जी हाँ, इसलिए हमें

0: वो तो हर चीज में होती है, हमारे पेरेंट्स हमारे लिए हर रोज मांगते हैं, दोस्त हमारे लिए मांगते हैं, मैं तुम्हारे लिए मांगती हूँ और मुझे लगता है कि तुम भी कहीं ना कहीं मेरे लिए मांगती
1: बिल्कुल,
0: होंगी।
1: थैंक यू मोनिका। तो मोनिका, क्यों ना अब दोस्तों को हमने जो सवाल दिया था उसका जवाब हमारे किन किन साथी ने दिया ये देख लिया जाए।
0: पहले उससे सवाल और जवाब तो बता दिया जाए।
1: बिल्कुल, तो दोस्तों प्रोग्राम के स्टार्टिंग में हमने पूछा था आपसे एक सवाल। हमारा आपसे सवाल था, IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है?
0: और जिसका सही जवाब है सौरभ कोठारी।
1: अब जान लेते हैं सही जवाब देने वाले साथियों के नाम। मुकेश कश्यप, सुदर्शन शाह, पुंजाजी नहवकर, नानक खन्ना, धोमेंद्र नीतम दोमू, जगदीश धाकर, जॉन्डी कास्ट्रो, मोहम्मद रफीक पवार, हीरामानी वर्मा, लाडला जी, गंगा सिंह रावत, दिनेश वर्मा, नदीम बाकी और हैं अनिल विनोचा, BI धाकर, मसरूर हसन, फागुराम यादव, प्रवीण चौहान, रामकुमार रेवा, निसार सलमानी, बबलेश पवार, बलवंत कुमार वर्मा, ओम देवेश देवशंकर तामुरिया, निवी हसन अब्बासी, विजय सुरलकर, अरविंद कुमार, अनिल पी गोटके, महेंद्र मोदी, शाहजी पोटके, गजानन येले, शकील अहमद इदरीसी साथी हैं।
0: धीरज भाई राबड़ी, लाल मोहम्मद अंसारी और गुरमीत सिंह मीता, राजकुमार दूदी, मोहम्मद यासीन अंजान, नवाबुद्दीन, सुरेश गंगनेजा, रस्त्रपाल गजभिये, मोहम्मद जाहिद अली, राजेश वर्मा, संजय ढिंगिया, शाहरुख नूर अंसारी और मोहम्मद हसनीन पवार।
1: और इसी के साथ दोस्तों अब हम आपको सुनवाते हैं ये आखिरी गीत हमारे सेगमेंट दिल से दिल तक के अंतर्गत।

0: दोस्तों, ये तो था हमारा आज का कार्यक्रम। हमें उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आया होगा। हमारे प्रोग्राम्स आपको कैसे लगते हैं आप हमें खत के जरिए भी बता सकते हैं। खत के लिए हमारा पता है कार्यक्रम युववाणी अनुभाग द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी नजीबाबाद, पिन कोड 246763।
1: और साथ ही हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9457078288। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। अपडेटेड रहने के लिए हमारा फेसबुक अकाउंट है @आकाशवाणी नजीबाबाद, इंस्टाग्राम आईडी है @आकाशवाणी नजीबाबाद। साथ ही हमारे पुराने प्ले, कहानियाँ, आने वाले प्रोग्राम्स हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी नजीबाबाद पर सुन सकते हैं। आप सभी लाइक, शेयर, फॉलो, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही दीजिए अनुमति मुझे रुमान
0: और मुझे मोनिका सैनी को कार्यक्रम सम्पन्न करने की। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। मीडियम वेव 314.47 मीटर था 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजे हैं, कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।
1: समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सुबह 11 बजे प्रश्नकाल शुरू करने की कोशिश की तो विपक्षी सदस्यों ने नीट पेपर लीक का मुद्दा उठाया। हंगामा जारी रहने पर पीठासीन अधिकारी ने लोकसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। उधर राज्यसभा में उपसभापति हरिवंश ने सदन के कामकाज को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष के सदस्यों ने विरोध जारी रखा। हंगामे के बीच राज्यसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में भविष्य में परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए सभी संबंधित पक्षों से मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया है। आज संसद भवन में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीतिक बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि श्री मोदी ने परीक्षा पेपर लीक मामले में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया। वैश्विक चुनौतियों और भू राजनैतिक उथल पुथल के बावजूद भारत का वस्त्र और परिधान निर्यात 2025-26 में 3,25,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा, जिसमें 1.8% की वृद्धि दर्ज की गई। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि सरकार ने वस्त्र और परिधान क्षेत्र की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता और निर्यात को मजबूत करने के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पास कर दिया। अब यह विधेयक राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा और मंजूरी मिलते ही मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू हो जाएगा। यूसीसी के मुख्य प्रावधानों के अनुसार प्रदेश में एक से अधिक विवाह अब मान्य नहीं होगा, तलाक की प्रक्रिया कानूनी होगी तथा महिला और पुरुष को समान उत्तराधिकार का अधिकार मिलेगा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में तत्काल स्थानांतरित करने का आदेश दे दिया है। मुख्य न्यायाधीश डी के उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया है। गीतांजलि ने रविवार को उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें न्यायालय ने सरकारी अस्पताल में चल रहे उनके इलाज में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और उत्तरी मैसेडोनिया ने साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और आपसी सम्मान पर आधारित अपने गहरे और दोस्ताना रिश्तों को फिर से मजबूत किया है। स्कोपिये में राष्ट्रपति गोडाना सिल्जानोवस्का दावकोवा के साथ बातचीत के बाद राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों ही देश व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने पर सहमत हुए हैं।
2: आर्थिक सहयोग हमारे द्विपक्षीय संबंधों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ है। हम अपने द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर भी सहमत हुए। हमने आईटी, कृषि, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल्स तथा टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और फिल्म मेकिंग सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा। हम स्वास्थ्य सेवा में सहयोग पर अपने द्विपक्षीय अग्रीमेंट को भी रिन्यूअल कर रहे हैं।
1: संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी JAAC ने आज कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर POJK में बंद और चक्का जाम जारी है। सोशल मीडिया पर JAAC ने 23 जुलाई को महत्वपूर्ण दिन बतलाते हुए लोगों से आंदोलन के दौरान मारे गए लोगों के लिए न्याय और अपनी मांगे मनवाने के लिए विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का आह्वान किया। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार एजेंसी ने POJK में अशांति पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रदर्शनकारियों की मौत की जांच की मांग की थी। चीन ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता में पुरुष सिंगल्स में भारत के एच एस प्रणॉय को मलेशिया के लियोन जून हाउ से हार का सामना करना पड़ा है। महिला सिंगल्स में देविका सिहाग को थाईलैंड की बुसानन ओंगबा मरुंग फान ने हराया। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर। शाम के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कार्यक्रम कृषि जगत सुनने वाले सब बहन भाइयों को आपके भैया सुवेंद्र सिंह झुमरू
1: और भैया प्रमोद सिंह की
0: राम
1: राम
0: राम।
1: राम।
0: तो प्रमोद भाई,
1: हाँ झुमरू भैया।
0: अरे कैसे हाल चाल है भाई? राजी खुशी
1: हाँ भैया सब ठीक ठाक हैं। तुम अपने सुनाओ भैया, सब ठीक तो?
0: भाई। देखो बिल्कुल ठीक ठाक है। और भैया बात ये होगी, देखो 2-3 दिन से भाई बादल जो हो धरती छू छू को जा रहे हैं,
1: पर बारिश नहीं आ रही।
0: पर भैया बारिश नहीं हुई भाई। देखो इससे थोड़ी अब दिक्कत हो रही है।
1: बात तो ठीक है भैया, पर भैया देखो जो पहले जितनी गर्मी हो रही थी उसमें थोड़ी सी है।
0: अरे आज तो भैया गर्मी भी होने लगी शुरुआत
1: हाँ होने
0: से।
1: लगी भैया, पर देखो ये तो मौसम है। अब भाई कोई बात नहीं, बारिश भी होगी और भैया मौसम भी ठीक ठाक होगा। पर यो बताओ तुम कि भैया आज के कार्यक्रम में, जैसे कि मंगलवार है, तुम क्या सुनवाने वाले हो?
0: मैं देखो अब तो हर मंगलवार को बासमती धान रेडियो कृषि पाठशाला चल रही है।
1: अरे यो तो हमें भी पता भैया
0: हाँ
1: पर आज के पाठ में क्या होगा यो जानना जरूरी।
0: भाई देखो जहां तक आज के पाठ की बात है तो भैया आज के पाठ में जानकारी रहेगी गुणवत्ता युक्त तो बासमती उत्पादन हेतु सुझाव।
1: देखो भैया ये तुमने अच्छी बात बता दी और सब किसान भाई अब इस जानकारी को लेने के लिए तैयार भी बैठे हैं।
0: बिल्कुल
1: तो क्यों ना भैया शुरू करो दे हैं और सुनो ले हैं यो आज का पाठ। भला कौन सा?
0: बासमती धान रेडियो कृषि पाठशाला।
1: पाठशाला। बिल्कुल
0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं
2: कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी एपीडा,
0: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संस्थापित
2: बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मोदीपुरम मेरठ।
3: अरे मास्टर जी।
2: हाँ भैया।
3: अरे अपना खेत तो देखो कैसा लहलहा रहा है।
2: अरे भाई लहलाएगा क्यों नहीं, क्योंकि सही समय सही मात्रा सही कीटनाशक का हमने ख्याल रखा है।
3: बिल्कुल, और बासमती की खुशबू को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना है।
2: और भैया वैज्ञानिकों की सलाह को भी मानना है।
3: हाँ, देश किसान किसान का मान बासमती धान।
4: किसान भाई करें सही समय पर सही मात्रा और सही कीटनाशक का प्रयोग। बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मोदीपुरम मेरठ द्वारा जनहित में जारी।
5: किसान का मान बासमती, देश किसान बासमती।
6: खूब उगाओ बासमती, देगा फायदा बासमती।
0: स्वागत है हमारे सभी बहन भाइयों का आज के प्रायोजित कार्यक्रम बासमती धान रेडियो कृषि पाठशाला में। और इस पाठशाला के साथ मैं हूं आपका भैया सुवेंद्र सिंह झुमरू।
1: और भैया मैं हूं आपका भाई प्रमोद सिंह। और आज की ये पाठशाला लेकर हम दोनों भैया उपस्थित हो गए हैं। क्यों झुमरू भैया?
0: बिल्कुल भाई, देखिए आज है 21 जुलाई और दिन है मंगलवार का।
1: बिल्कुल, और किसान भाई सुनने के लिए लालायित हो रहे हैं अपनी आज की इस बासमती धान रेडियो कृषि पाठशाला को।
0: तो भाई देखो जहां तक बासमती धान की बात है तो भैया इस टाइम जो रोपाई बिल्कुल अपने अंतिम पड़ाव पर आ गई है।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: और जिन भाइयों के भैया बचे कुछ रोपाई रह गई है या भैया खेत उनके बाद में खाली हुए हैं तो भैया अब वे खेत को तैयारी करके भैया जो रोपाई उसमें कर रहे हैं धान की।
1: सही कह रहे हो भाई। देखो धान की रोपाई के काम को हमारे किसान भाई समय रहते पूरा कर लें, लेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भैया समय से बोई गई फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त हुआ है।
0: बिल्कुल, तो भाई देखो हमारे किसान भाई अपनी रोपाई को निपटा रहे हैं और भैया आगे को हमें भैया अपनी फसल की अच्छे तरीके से देखभाल करनी है भैया, उसमें उर्वरक प्रबंधन करना है, साथ ही भैया जल प्रबंधन की व्यवस्था करनी है। इसी तरीके से हम गुणवत्ता युक्त बासमती धान का उत्पादन लेना है।
1: हाँ, और भैया देखो गुणवत्ता युक्त बासमती धान का उत्पादन किस प्रकार से लिया जा सके आज के इस पाठ में यू ही जानकारी लेकर आए हैं हम।
0: तो ये जानकारी कौन दे रहे हैं
1: भाई? देखो इस बारे में जानकारी देने के लिए डॉक्टर सिद्धार्थ त्रिपाठी बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मोदीपुरम से हमारे इस कार्यक्रम में आ चुके हैं और भैया जानकारी देने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं।
0: और देखो भाई डॉक्टर सिद्धार्थ त्रिपाठी भाई थारी बगल में बैठे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा बातचीत, तम ही कर लो भैया।
1: ठीक है भैया, हम ही बातचीत कर लेते हैं।
0: तो किसान भाइयों आइए सुनते हैं गुणवत्ता युक्त बासमती हेतु सुझाव हेतु डॉक्टर सिद्धार्थ त्रिपाठी से की गई यो बातचीत।
1: बासमती धान रेडियो कृषि पाठशाला, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं और इस कार्यक्रम में आप बासमती की रोपाई किस तरह से करनी है, कैसे हमें अच्छी बासमती पैदा करनी है, ये सारी बातें आपने अभी तक इस कार्यक्रम में सुन ली हैं। और आज भी एक नई जानकारी लेकर हम आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। आज की जो हमारी जानकारी है उसका विषय है गुणवत्ता युक्त बासमती तैयार करने की विधि और सुझाव। और इस संबंध में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मोदीपुरम मेरठ के डॉक्टर सिद्धार्थ त्रिपाठी। तो डॉक्टर त्रिपाठी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
7: धन्यवाद प्रमोद जी।
1: देखिए, जैसे कि हमारे किसान भाई इस कार्यक्रम को सुन ही रहे हैं और बड़े ध्यान से इस कार्यक्रम को सुनते हैं, किसान भाई बासमती पैदा करते हैं, अब बासमती की रोपाई किसान भाइयों ने कर ली है, उसकी देखभाल में वो लगे हुए हैं, तो किस तरीके से वो अच्छी बासमती पैदा कर सकते हैं डॉक्टर साहब?
7: जैसा कि आज 21 जुलाई है
1: जी,
7: आप सभी किसान भाई जानते हैं, और आपकी ट्रांसप्लांटिंग लगभग हो चुकी होगी, एक आध अगर नहीं हुई होगी तो एक दो दिन में कम्प्लीट हो जाएगी। तो पहली ट्रांसप्लांटिंग के कम से कम 10 दिन के बाद आप यूरिया 20 से 25 किलोग्राम और प्लस 10 किलोग्राम जिंक का एक ब्रॉड छिड़काव कर दें
1: जी,
7: स्प्रे कर दें जैसे या पाउडर उसमें ग्रेन्यूल्स के रूप में।
1: तत्पश्चात
7: आप सबसे, चूंकि आपने जरूरी चीज बताई कि क्वालिटी बासमती प्रोडक्शन होना, तो क्वालिटी बासमती प्रोडक्शन में जो फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन का जो डोज है वो आपको बहुत ही
1: सीमित मात्रा में
7: करनी है, क्योंकि अगर डोज आपका ऊपर जाएगा तो प्रोडक्शन तो आपका जरूर हो जाएगा। प्रोडक्शन का इन द सेंस हाई यील्डिंग का मतलब नहीं होता है, प्रोडक्शन सिर्फ प्रोडक्शन के रूप में आप ले पाओगे, हाई यील्डिंग भी होने के चांस उसमें बहुत ही कम रहेंगे। दूसरा, उसकी क्वालिटी जो है वो बहुत ही पुअर मात्रा में रहेगी, प्रभावित भी होगी और आप खा सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन वो पुअर रहेगी क्वालिटी।
1: तो देखिए डॉक्टर साहब, जो आप ये बात बता रहे हैं कि किसान भाई उर्वरकों का प्रयोग बासमती धान में बहुत ही संतुलित मात्रा में करें, तो जो उर्वरकों की हम बात कर रहे हैं
7: जी,
1: इन उर्वरकों का और कौन कौन से उर्वरकों का किस मात्रा में हमें प्रयोग करना है, ये जानकारी होनी बहुत ही जरूरी है किसान भाई।
7: चूंकि आप पहले ही ट्रांसप्लांटिंग से बिफोर आपने ट्रांसप्लांटिंग के टाइम पे डीएपी का यूज कर लिया है, यूरिया आपने नहीं किया है, तो यूरिया की जो मात्रा है अब ट्रांसप्लांटिंग के कम से कम 30 से 35 दिन टोटल आपके हो गए हैं
1: जी,
7: तो 10 दिन के अंदर में पहले ट्रांसप्लांटिंग के 10 दिन के बाद 30 से 35 किलोग्राम यूरिया जो है और प्लस 10 किलोग्राम जिंक की मात्रा, ये जो अर्ली वेराइटी हमारी है जैसे 1509 है, पूसा बासमती 1509, पूसा बासमती 1847, पूसा बासमती 1692, इन सब में आपको ये मात्रा यूज करनी है। जो लेट वेराइटी जैसे 1121 हो गया, 1885 हो गया, उसमें आपको यूरिया की मात्रा थोड़ी कम कर देनी है।
1: अच्छा अच्छा,
7: इसका विशेष आपको ध्यान देना है।
1: तो हमारे किसान भाइयों को पता है, वो जानते हैं कि उन्होंने बासमती कौन सी प्रजाति की रोपाई अपने खेत में की है, उसी हिसाब से वो उर्वरकों का इस्तेमाल अपने खेत में कर सकते हैं
7: जी। जी
1: डॉक्टर साहब, ये जो उर्वरकों का हमें इस्तेमाल करना है, छिड़काव करना है या स्प्रे करना है, ये हमें किस समय करना उचित रहता है?
7: ये पहला तो फर्स्ट वेसल डोज जो आप करोगे वो ट्रांसप्लांटिंग के 10 दिन

0: बाद लगभग। दूसरा जो आप करोगे वो 40 दिन के आसपास, तो दो ही आपको मेन करना है, क्योंकि जब आपकी पेनिकल स्टेज आ जाएगा, पेनिकल स्टेज से बिफोर ही कर देना है। पेनिकल स्टेज होने के बाद आपको फर्टिलाइजर एप्लीकेशन नहीं देना है, क्योंकि वो बहुत ही फिर आपके लिए हानिकारक रहेगा प्लांट के लिए।
1: देखिए डॉक्टर साहब, हमने जो अभी तक बात की वो ये की कि हम जो बासमती धान की रोपाई कर रहे हैं, एक तो हमें रोपाई के 10 दिन के बाद में उर्वरकों का हमें इस्तेमाल करना है, दूसरा हमें 40 दिन के बाद में उर्वरकों का इस्तेमाल करना है। इस तरीके से हम अपने बासमती धान में उर्वरकों का इस्तेमाल करके अच्छी पैदावार ले सकते हैं।
0: जी,
1: इसके अलावा उसमें देखिए सिंचाई प्रबंधन है, दूसरे उसमें रोग लग सकते हैं, कीट लग सकते हैं, और आज हम बात कर रहे हैं कि हमें बासमती धान की गुणवत्ता किस तरीके से बनाकर
0: मेंटेन
1: रखनी
0: करना
1: है,
0: है।
1: तो और हमें कौन-कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए
0: देखिए,
1: डॉक्टर साहब?
0: बासमती क्वालिटी प्रोडक्शन के लिए मैं अब थोड़ा ट्रांसप्लांटिंग के बिफोर भी आ जा रहा हूँ, हालांकि ट्रांसप्लांटिंग आपका हो चुका है, आज 21 जुलाई है जैसा आप जानते हैं,
1: जी
0: लेकिन नर्सरी मैनेजमेंट से लेके जो क्वालिटी प्रोडक्शन हम ले रहे हैं, नर्सरी मैनेजमेंट से लेके हार्वेस्टिंग के बाद तक सारी प्रक्रियाएं आपको प्रॉपर वे में यूज करना है, तभी आप क्वालिटी प्रोडक्शन बासमती आप ले
1: ले
0: सकते
1: सकते
0: हो
1: हैं।
0: और दूसरे को हम उसको प्रदान कर सकते हैं,
1: जी
0: दे
1: जी
0: सकते
1: जी
0: हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो उसमें नर्सरी मैनेजमेंट में इसलिए बता रहा हूँ कि सबसे बड़ा चीज़ होता है सीड का सोर्स, क्योंकि सीड ही सबसे पहली वो आपकी मटेरियल है जो आपको आगे आपकी ईल्ड देगा। तो सीड का जो सोर्स होना चाहिए वो कोई भी ऑथेंटिक सोर्स से होना चाहिए, जैसे कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कोई हो, या कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट हो, या नेशनल सीड कॉरपोरेशन हो, या कोई स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो
1: जी जी जी
0: जो सीड बासमती का वैरायटी डेवलप किए हो, हालांकि

0: होना है
1: बीज को।
0: बीज को, उसके बाद उसमें हाँ पानी में डुबोने, उस तत्पश्चात आप 24 घंटे के लिए उसको किसी जूट के बोरे में जैसे दबा देते हैं मेथड में, उसके साथ में कुछ कार्बांडेजिम या टाइकोडर्मा जो भी हो आप
1: लगा सकते हैं।
0: लगा दें, 4 से 5 ग्राम प्रति किलो बीज में टाइकोडर्मा का मात्रा हम यूज करते हैं।
1: अच्छा,
0: उस तत्पश्चात आप जब प्रॉपर सोइंग उसमें अंकुरण आ जाए, जब भी सोइंग हम सोइंग कर रहे हैं उसमें अंकुरण सब होना चाहिए। पैडी के लिए 80% अंकुरण एक स्टैंडर्ड मानक माना गया है ईस्टा के द्वारा, इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एसोसिएशन है, उसमें 80% अगर आप 100 में से 80 बीज आपके अगर अंकुरित हो रहे हैं तो उस वो बीज मतलब आपके लिए
1: अच्छा
0: अच्छा माना जाएगा, वो एक मानक जो है निर्धारित कर रहा है। प्योरिटी और सारी चीजें तो आप चूंकि बात हो गई, सर्टिफाइड सीड होगा, ऑथेंटिक प्लेस से लेंगे, सोर्स सही हो तो प्योरिटी भी रहेगी। तो उसके बाद में आप 48 आवर्स के बाद में आप उसको नर्सरी में आप सोइंग कर सकते हैं। नर्सरी सोइंग में, नर्सरी बनाते समय भी कई चीजें आपको प्रिकॉशन करना है, भूमि का शोधन भी कर लेना है जो सॉयल का है ट्राइकोडर्मा के द्वारा, जिससे कई बार होते हैं कि हालांकि हम बीज का तो शोधन कर ही रहे हैं लेकिन भूमि का भी कर लें, चूंकि कोई भी फंगस वंगस का अगर अटैक भूमि में है, कोई प्रॉब्लम है तो वो वहीं पे कंट्रोल हो जाएगा। फिर तत्पश्चात हमको क्या करना है, अपना नर्सरी के प्रॉपर वे में देख रेख करना है। 20-21 दिन के जो ये ड्यूरेशन होता है इसमें उसका प्रॉपर वे में सावधानी पूर्वक निरीक्षण करते रहना है। कोई भी हमारा जो जैसे कि स्टेम बोरर हो गया या इस तरह के कोई अगर इंसेक्ट अटैक कर रहे हैं तो वो पहले अवस्था में, या एक बकानी की प्रॉब्लम आती है उस बकानी में आपको देख लेना है, जो हाइट अगर नर्सरी के प्लांट की हाइट सामान्य से ऊपर जा रही है सारों में तो उसको तुरंत रिमूव कर दें।
1: अच्छा,
0: वहीं से रिमूव कर देना ये अच्छा रहेगा, क्योंकि शैशवावस्था में ही यार अर्ली स्टेज में आप खत्म कर देने से तो काफ़ी बेनिफिट रहेगा। फिर 21 से 25 दिन के बीच में आप ट्रांसप्लांटिंग का करिए। ट्रांसप्लांटिंग में आपको ध्यान देना है, चूंकि ये क्वालिटी की बात हो रही है तो आइसोलेशन डिस्टेंस देखना है।
1: अच्छा,
0: कम से कम 3 मीटर ऐसे साइंटिफिक होता है, लेकिन किसान के पास इतनी अगर रकबा जमीन नहीं है तो 2 मीटर 1.5 मीटर के बीच में एरिया एक वैरायटी से दूसरी वैरायटी में छोड़ दे।
1: अच्छा,
0: और दूसरा करे प्लांट टू प्लांट रो टू रो 20 सेंटीमीटर कम से कम करे, 3 से 4 सेंटीमीटर उसकी गहराई हो। 10 लाइन लगाने के बाद में कुछ स्पेस छोड़ दे,
1: बीच में छोड़ दे
0: फिर अपना वो प्रॉपर वे में लगाए। दूसरा ये ट्रांसप्लांटिंग का प्रक्रिया हो गया, फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन मैंने आपको बता ही दिया है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज आती है रोगिंग। रोगिंग मतलब जब दूसरे तरह के जो प्लांट आ गए हैं, अदर वैरायटी आ गई हैं, या कुछ रोगिंग ऐसी भी होती हैं जो उस वैरायटी तो सेम ही है लेकिन प्लांट की हाइट से और उसके मॉर्फोलॉजी से देख के कुछ अलग अंतर पड़ रहा है, तो उसी समय से हम ट्रांसप्लांटिंग के 10 दिन के बाद से ही हटाना शुरू कर दें। हालांकि हमने नर्सरी में तो ध्यान दिया है लेकिन नर्सरी से ट्रांसप्लांटिंग के बीच में भी कई बार प्लांट उस तरह के आ जाते हैं, क्योंकि खेत बदलता है तो कोई हो सकते पिछले साल के कुछ बीज का उसमें वो असर आ रहा हो, प्रभाव पड़े, तो उसको हम ध्यान दें। रोगिंग को हमको करना है और वो लास्ट तक ले जाना है।
1: अच्छा,
0: जब तक हम मेच्योरिंग स्टेज और बिफोर हार्वेस्टिंग
1: कटाई से पहले
0: भी रोगिंग एक बार करना है। 3 रोगिंग करना ही करना है आपको, क्योंकि रोगिंग ही सबसे बड़ा फैक्टर है जो क्वालिटी को वो करेगा, प्रभावित करेगा। तीसरा, हमको जो इंसेक्टिसाइड का यूज कर रहे हैं कोशिश करें हम IPM का यूज करें।
1: अच्छा,
0: इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट जैसे ट्राइको, हमारे पास स्टेम बोरर का प्रभाव दिख रहा है खेत में, तो उसमें हमको फेरोमोन ट्रैप का यूज करना है। और उसका जो है पहले तो मूल्यांकन में 2 लगा के देखें कि फिर उसमें
1: कितना
0: स्टेम बोरर आ रहा है या नहीं आ रहा है।
1: हाँ।
0: उसके बाद कम से कम 8 स्टेम ये फेरोमोन ट्रैप 1 एकड़ खेत में लगा सकते हैं।
1: अच्छा।
0: दूसरा होता है लीफ होल्डर, एक प्रॉब्लम आती है, चूंकि आप हमारी 21 जुलाई के आसपास की बात चल रही है तो हम बहुत आगे नहीं जा रहे हैं, 15 से 20 दिन 25 दिन के अंदर में हम अपने आप को रख रहे हैं
1: जी।
0: आगे भी अगर ये प्रॉब्लम आ रही है आपको तो सेम आप अप्लाई करोगे। तो इसमें क्या है, लीफ होल्डर के लिए ट्राइकोडर्मा कार्ड है, प्रति एकड़ 2 कम से कम कार्ड आपको लगा देने हैं। तो IPM के थ्रू कोशिश करिए, बहुत ही ज्यादा अगर प्रॉब्लम आ रही है, अगर इससे कंट्रोल नहीं हो रहा है तो आप जो कृषि विज्ञान केंद्र है या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के जो प्लांट क्वारंटाइन के लोग हैं उनसे एक बार देख रेख कर

0: के समझ लीजिए कितनी मात्रा में कितना यूज करना है। कभी भी आप गुमराह मत होइए, एक लिमिट मात्रा में ही इंसेक्टिसाइड के, क्योंकि इंसेक्टिसाइड और फर्टिलाइजर एप्लीकेशन क्वालिटी को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। अगर ओवर डोज आप दे रहे हैं तो आपका क्वालिटी खराब होगा। और बासमती में सबसे बड़ी चीज़ एरोमा का, जो आज लोग बोल रहे हैं कि एरोमा हमारी खत्म हो रही, सुगंध ही बासमती से फेमस है, वो इस सबसे बड़ा कारण यही है। लिमिट से हम ज़्यादा एप्लीकेशन फर्टिलाइजर दे रहे हैं और इंसेक्टिसाइड का यूज कर रहे हैं। कोशिश करिए लास्ट तक आप मैक्सिमम रेसिड्यू लिमिट होती है तो उससे ऊपर मत जाइए, उसको नियत में रखिए।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, देखिए आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं और हमारे किसान भाई इन सब बातों को नोट भी कर रहे हैं। आपने नर्सरी बुआई से लेकर और धान की कटाई तक की महत्वपूर्ण बातें बताई हमें, कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है और कैसे रोपाई करनी है, किस तरीके से रोगों का और कीट का हमें नियंत्रण करना है। आपने पत्ती लपेटक कीट के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी है जो कि धान के फसल में लग ही जाता है। ये जानकारी हमारे किसान भाइयों को मिली और आपने कहा कि हमें किस मात्रा में किस उर्वरक का इस्तेमाल करना है, तो हम समझते हैं कि अगर हमारे जो किसान भाई हैं वो इन सब बातों का ध्यान रखेंगे और अपने खेत में अच्छी तरीके से देखभाल करेंगे तो बासमती धान से वो गुणवत्ता युक्त उत्पादन बासमती का प्राप्त कर सकते हैं। कोई और विशेष बात आप बताना चाहेंगे डॉक्टर साहब?
0: विशेष बात मुझे आपसे बस यही लोगों से आग्रह करना चाहूँगा और लोगों को जागरूक करना चाहूँगा जो भी किसान भाई हमारी वार्तालाप को सुन रहे हैं कि आप बासमती जो भारत देश गिफ्ट में गॉड से परमात्मा से मिला है उसकी क्वालिटी को मेंटेन रखिए और उस क्वालिटी में सबसे बड़ी चीज़ खुशबू है, उस खुशबू को बरकरार रखिए क्योंकि खुशबू सी बासमती का नाम है। और दुनिया के कोने कोने में बासमती जो पहुंचती है उसका एक मिसाल भारत का जो बना हुआ है वो आगे भी बनता रहे और नाम बासमती का हमारे किसान भाई के लिए समृद्ध रूप से चलता रहे।
1: तो डॉक्टर सिद्धार्थ त्रिपाठी जी, आज आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और आपने गुणवत्ता युक्त बासमती किस प्रकार से तैयार करनी है इस बारे में बहुत अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद प्रमोद जी।
2: गुणवत्ता युक्त बासमती उत्पादन हेतु सुझाव, इस बारे में जानकारी दे रहे थे डॉक्टर सिद्धार्थ त्रिपाठी जो कि वैज्ञानिक है बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मोदीपुरम मेरठ में, और आपसे बातचीत कर रहे थे हमारे भैया प्रमोद सिंह।
1: तो देखो झुमरू भैया डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बातें बताई कि हम किस प्रकार से बासमती धान से अच्छा उत्पादन ले सके हैं और गुणवत्ता युक्त बासमती धान हम तैयार कर सके हैं।
2: तो भाई देखो, जहां तक गुणवत्ता युक्त बासमती धान के उत्पादन की बात है तो भाई इसके लिए हम एक तो संतुलित मात्रा में उर्वरक का प्रबंधन करना है।
1: बिल्कुल,
2: यानी कि भाई जितने उर्वरकों की हमारी फसल को आवश्यकता है, चाहे भैया वो नाइट्रोजन हो, फास्फोरस हो, पोटाश हो, तो भैया हमें बिल्कुल संतुलित मात्रा में डालनी है। साथ ही भैया जो वैज्ञानिकों के द्वारा सुझाए गए रसायन है केवल उन्हीं का इस्तेमाल करना है और कम मात्रा में भैया हम इस्तेमाल करना है।
1: समय का ध्यान रखना है भैया, रोपाई करते समय कुछ बातें ध्यान में रखनी है, उसके बाद में हमें किस तरीके से फसल की देखभाल करनी है, ये सारी बातें डॉक्टर सिद्धार्थ त्रिपाठी ने बताई हैं।
2: और भाई देखो, हम बढ़िया उत्पादन बासमती का ले सकें भाई, इसके लिए देखो एक तो सही तरीके से हम अगर लाइनों में रोपाई करते हैं
1: जी,
2: और साथ ही भैया हम बीच में अगर रास्ता छोड़ते हैं आने जाने के लिए तो भैया हमारा सही से प्रबंधन हो जाता है, चाहे तो भैया जल प्रबंधन की बात हो, चाहे भैया उर्वरक प्रबंधन की बात हो, या भैया कोई और भी हम शस्य क्रिया अगर करनी हो अपनी फसल में, तो भैया उसमें आराम से भैया हमारी ये सारी फसल की शस्य क्रियाएं हो जाती हैं
1: और हमें ये भी पता आसानी से चलता रहता है कि हमारी फसल किस तरीके से ठीक ठाक चल रही है कि नहीं चल रही है, हम उसमें घूम के देख सकते हैं। और भाई अच्छा उत्पादन लेने के लिए बहुत सारी बातें जो डॉक्टर साहब ने बताई हैं, अगर हम उनको ध्यान में रखकर ये बासमती धान की खेती करेंगे तो भाई हम अपने देश को आर्थिक रूप से भी मजबूत कर सकें।
2: बिल्कुल भाई देखो, अगर इस तरीके से भैया हम रसायन मुक्त बासमती धान का उत्पादन करेंगे तो भैया हमारा जो बासमती का निर्यात है वो बढ़ेगा और हमारे देश में भैया विदेशी मुद्रा का भंडार होगा, विदेशी मुद्रा आवेगी
1: जी, जी, जी।
2: तो हम निश्चित तौर पर भैया अपने देश को विकसित बना सकते हैं। तो भाई बासमती धान के बारे में पूरी जानकारी लेने के लिए और भैया तकनीकी जानकारी प्राप्त करने के लिए सुनते रहो प्रत्येक मंगलवार को
3: बासमती धान रेडियो कृषि पाठशाला।
4: अरे मास्टर जी।
5: हाँ भैया।
2: अरे अपना खेत तो देखो कैसा लहला रहा है।
4: अरे भाई लहलाएगा क्यों नहीं, क्योंकि सही समय, सही मात्रा, सही कीटनाशक का हमने ख्याल रखा है।
2: बिल्कुल, और बासमती की खुशबू को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना है।
4: और भैया वैज्ञानिकों की सलाह को भी मानना है।
2: हाँ, देश किसान, किसान का मान, बासमती धान।
1: किसान भाई करें सही समय पर सही मात्रा और सही कीटनाशक का प्रयोग। बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मोदीपुरम मेरठ द्वारा जनहित में जारी।
5: किसान का मान बासमती, देश किसान बासमती।
6: खूब उगाओ बासमती, देगा फायदा बासमती।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे
7: कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी एपीडा,
2: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संस्थापित
7: बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मोदीपुरम मेरठ।
2: तो अभी हमारे किसान भाई सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम बासमती धान रेडियो कृषि पाठशाला।
1: बिल्कुल भैया, देखो इस पाठशाला को भाइयों ने सुना और भैया इसमें गुणवत्ता युक्त बासमती उत्पादन के लिए बहुत अच्छे अच्छे सुझाव भी दिए गए।
2: और मैं देखो अगले मंगलवार के बारे में हम भाइयों को बता दें कि भैया अगला जो मंगलवार होगा 28 जुलाई का
1: जी,
2: तो भैया उसमें हमारे किसान भाई सुनेंगे सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो बासमती।
1: और भैया बासमती धान से संबंधित अगर कोई भी जानकारी लेनी है तो हमारे पास में फोन करके वो जानकारी ले सकते हैं, विशेषज्ञ हमारे स्टूडियो में उपस्थित होंगे।
2: और भाई फोन करने के लिए हमारे फोन नंबर है, हमारा मोबाइल नंबर है 9457072888।
1: और भैया हमारा दूसरा नंबर है 01341230105।
2: तो भाई इन फोन नंबर पर भैया हम जो है आपकी फोन कॉल का 28 जुलाई को हेलो बासमती कार्यक्रम में इंतजार रहेगा।
1: बिल्कुल आपने ठीक कहा। और भाई देखो हमारे सब किसान भाई बहन हमारे पास में फोन जरूर करेंगे, पर एक बात तो बताओ।
2: पूछो भैया।
1: भाई बासमती की बात हम कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि इस बरसात के मौसम की जो मुख्य फसल है धान, वो हम पैदा कर रहे हैं।
2: भाई देखो चाहे बासमती की बात हो या भैया जो हमारा सामान्य धान है,
1: हाँ,
2: भैया उसकी बात है।
1: बिल्कुल
2: भाई बिजनौर में तो ज्यादातर भैया लगती है सरबती।
1: हाँ,
2: और भैया यो धान लग रहा है सरबती और रोपाई अब आप यो समझ लो कि लगभग लगभग पूरी हो चुकी है।
1: बिल्कुल भैया,
2: और जो खेत भैया बाद में खाली हुए हैं चारा काटने के बाद भैया उनमें जो है खेत को तैयार करके रोपाई करी जा रही है।
1: बिल्कुल ठीक कह रहे हो। और देखो किसान भाई जल्दी से जल्दी धान की रोपाई के काम को पूरा कर रहे हैं। और भैया अब अगर जरूरत है तो इस बात की कि धान की खड़ी फसल की सही तरीके से देखभाल किसान भाई करते रहे।
2: अब देखो भाई जहां तक है देखभाल की बात
1: जी,
2: तो भैया इसमें हमें ध्यान यू रखना है कि भैया एक तो जल प्रबंधन का हमें ध्यान रखना है। और भैया जब भी हम धान की फसल में
1: जी
2: आवश्यकता अनुसार पानी लगाम
1: जी,
2: जैसे कि भैया अब बारिश नहीं हो रही है तो बीच बीच में भैया देखो बरसात के मौसम में भी ऐसे पैटर्न आते रहते हैं।
1: हाँ हाँ।
2: कि जब बरसात में गैप आ जाता।
1: बिल्कुल ठीक कह रहे हो भाई, एक लंबा जो है वो अवधि हो जाती है तो उसके लिए भी फिर हमें जो है खेतों में सिंचाई की जरूरत पड़े।
2: बिल्कुल, तो भैया धान की फसल को पर्याप्त नमी की आवश्यकता होती है तो हमारी जो धान की फसल है भैया वो बढ़िया बढ़वार कर सके, और जो उसकी मुख्य क्रांतिक अवस्थाएं हैं भैया उन अवस्थाओं को वो बहुत आसानी से पार कर सके
1: जी।
2: तो भाई इसके लिए खेत में नमी का होना आवश्यक है, और जब भी हमारे किसान भाई आवश्यकता के हिसाब से
1: जी
2: खेत में पानी लगावे तो भैया वो हमेशा शाम के टाइम लगावे।
1: देखो ये बात आपने कही कि शाम के समय पानी लगावे, और हम एक बात किसान भाइयों को यू बताना चाहेंगे कि भैया जब भी हमें धान के खेत की सिंचाई करनी है तो ध्यान इस बात का रखना कि हमें पानी डॉलो तक नहीं भरना। कुछ किसान भाई डॉल तक पानी भर दें।
2: हाँ हाँ।
1: तो भैया पानी इतना भरना है कि हमारे खेत में नमी बनी रहे, और जब हमें सिंचाई की जरूरत होगी तो उस समय किसान भाई पहचान लें कि अगर खेत में दरार पड़ने लगी है तो वो खेत की सिंचाई कर सकते हैं।
2: बिल्कुल भाई, इस बात का हमें ध्यान रखना है। और भैया जैसा आपने बताया कि डॉल तक ऊपर तक पानी हमें नहीं भरना है, खेत को लबालब हमें नहीं भरना है।
1: हाँ हाँ।
2: केवल भैया 2-3 इंच ही पानी का स्तर हमें रखना है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
2: और भाई ध्यान रखना। और भैया रोपाई के लगभग 10-12 दिन बाद भैया हम जो है नत्रजन की एक जो मात्रा है वो भैया हम अपने खेत में डालनी है, अपनी फसल में डालनी है।
1: जी, जी, जी।
2: और इसके साथ भैया अगर हमने जिंक का प्रयोग ना करा हो तो भैया जिंक सल्फेट की मात्रा या भैया 1 किलोग्राम प्रति बीघा के हिसाब से हम यूरिया के साथ में मिलाकर दे सकते हैं।
1: और देखो भैया जिंक का जो इस्तेमाल है धान की फसल में करना बहुत जरूरी हो है। आपने सुना होगा धान का खैरा रोग के बारे में।
2: हाँ बिल्कुल।
1: और भैया धान का जो खैरा रोग है वो जिंक की कमी की वजह से ही होकर है, इसलिए भाई खेत में इसकी पूर्ति भी करते रहे।
2: तो भाई देखो जो हमारी फसल है भैया इनकी देखभाल के साथ साथ भाई जो हमारे पशु है ना
1: जी,
2: तो भैया पशुओं की देखभाल करना भी बहुत जरूरी है।
1: हाँ भैया, पशुओं की देखभाल भी करनी जरूरी है, अब उनके लिए सही चारा खिलाना बहुत जरूरी है। और बरसात के मौसम में तुमने देखा होगा भैया, पशुओं को डांस ज्यादा लगे कर रहे
2: हैं भाई, देखो मक्खी मच्छर लगते हैं और ये लगते हैं सुबह शाम। तो भाई अगर हम सुबह शाम जब भैया हमारे पशुओं को डांस लगते हैं, मक्खी मच्छर लगते हैं
1: जी जी जी,
2: तो हम थोड़ा धुआं कर देंगे भैया, तो इससे हमारे पशुओं को राहत मिलती है। साथ ही भाई हम जो है उसमें जो है नीम की पत्तियां डाल दें, सूखी नीम की पत्तियां
1: जी जी,
2: तो भैया इससे जो हो जो आसपास का वातावरण वो ठीक ठाक हो जाए और ये मक्खी मच्छर या डांस जो है भैया ये हमारे पशुओं के आसपास नहीं आते हैं।
1: बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो देखो इस तरीके से हमें भैया अपने पशुओं की भी देखभाल करनी चाहिए, पशुशाला की भी साफ सफाई रखनी चाहिए, और भैया पशुओं को हरा चारा हर समय उपलब्ध होता रहे, चारे की भी सही व्यवस्था रखनी चाहिए।
2: और भैया हमारे जो पशु भैया वो हष्ट पुष्ट रहे भैया, स्वस्थ रहे, इसके लिए भैया देखो पशुओं में टीके लगवाना भी बहुत जरूरी है।
1: हाँ भैया,
2: और भाई इस टाइम जो है भैया पशुओं में टीके लगवाए जा रहे हैं, और जो भैया राज्य के पशु चिकित्सालय हैं भैया उनकी टीम घर घर आकर भैया टीके लगवा रही है और FMD के टीके लगवाए जा रहे हैं। तो भाई जब भी पशुपालन विभाग की टीम हमारे आसपास आ भैया या हमारे घर आवो तो हम उनका स्वागत करें और भैया हमारे जो पशु हैं उनको टीके जरूर लगवाओ।
1: भाई देख लें कि अगर आज हमारे गांव के अंदर पशुपालन विभाग की कोई टीम आई हुई है जो कि पशुओं का टीकाकरण कर रही है, तो उनसे संपर्क करते रहें और उनको बता दें कि भाई हमारे मोहल्ले में या हमारे आसपास में इतने पशु हैं, उनका टीकाकरण होना है, तो वो आपके घर अवश्य आएंगे। और एक बात का ध्यान रखें कि भाई इस टीकाकरण अभियान में कोई पशु छूटना नहीं चाहिए।
2: बिल्कुल, और देखो ये बरसात का मौसम है और भाई इस मौसम में भैया जो पशुशाला
1: जी
2: या भैया जो पशुओं के नीचे का फर्श भैया वो गिल्ला नहीं होना चाहिए।
1: सही कह रहे हो,
2: हमारी जो पशुशाला भैया वो सूखी होनी चाहिए, यानी कि पशुओं के उठने बैठने का स्थान सूखा होना चाहिए भैया।
1: भाई देखो सारी बातें हो गई हैं, किसान भाई सब बातों को नोट कर रहे हैं और बड़े समझदार हैं किसान भाई। पर देखो किसान भाई सोच रहे होंगे कि भैया बातचीत हो रही, मनोरंजन जाने कब का कराएंगे, तो देखो मनोरंजन तो हम कराएंगे किसान भाइयों का।
2: बिल्कुल भैया, लेकिन पहले सुनते हैं ये कुछ संदेश।
1: ठीक है भैया।
8: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
9: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
8: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
9: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
8: डायल कीजिए 8700014242।
9: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: तो भाई देखो संदेश तो हमने सुन लिए।
1: हाँ भैया, संदेश हमने सुन लिए। और भैया देखो गीत संगीत की बात हो रही थी।
2: भाई देखो गीत संगीत की बारी भी आ गई है।
1: अच्छा,
2: लेकिन एक महत्वपूर्ण बात भैया हमारे ध्यान में आ गई है।
1: क्या भैया?
2: और वो यो हो कि भैया हम जो सरकार की योजना है भैया हमारे किसान बहन भाइयों के हित के लिए, उनके कल्याण के लिए सरकार विभिन्न योजनाएं चला रही है।
1: और भैया एक योजना हमें भी याद आ रही, एक योजना का नाम सुना था हमने, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना, इसके बारे में पता है क्या कुछ?
2: भाई देखो ये बहुत ही बढ़िया योजना है भैया, जो हमारे किसान हैं या भैया बटाईदार हैं।
1: अच्छा।
2: या भैया सह खातेदार हैं।
1: हाँ हाँ हाँ हाँ।
2: भैया अगर किसी की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है,
1: अच्छा,
2: तो भैया उसे 5 लाख तक का मुआवजा दिया जाएगा उसके परिवार को।
1: अच्छा, तो भैया देखो परिवार तो अपना भरण पोषण बड़े अच्छे तरीके से कर सके फिर।
2: और भाई इसके लिए किसान की आयु 18 से 70 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। और साथ ही भैया खसरा खतौनी में उसका नाम होना चाहिए।
1: अच्छा,
2: और अगर बटाईदार है,
1: अच्छा,
2: तो भैया जो उसने खेत पट्टे पर लिया है या भैया खेती करने के लिया है, तो भैया उसका एक वाजिब होना चाहिए भैया,
1: मतलब उसके पास में कुछ ऐसा दस्तावेज हो जिसे वो दिखा के यो मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का लाभ ले सके।
2: बिल्कुल, तो भैया अगर हमारे पास में कोई एफिडेविट है कि भैया हमने कृषि भूमि पट्टे पर ले रखी है खेती करने के लिए,
1: जी जी जी,
2: तो पट्टा धारक को भी भैया यानी कि जो बटाईदार है उसे भी इस योजना का लाभ मिल सकता है।
1: ये तो बड़ी अच्छी योजना है भैया। देखो हमारे सब किसान भाई बहन अब इस बात को सुन रहे हैं, इसका लाभ भी उठाएंगे। और भैया देखो लाभ उठाने की बात आ गई, देखो तुम भैया हमारी बात को बार बार टाल लो जा रहे हैं।
2: भाई देखो टाल नहीं रहे हैं, बस एक बात रह गई आखिरी।
1: चलो भैया वो भी सुनेंगे।
2: भाई वो बात ये होगी, देखो इस योजना का लाभ लेने के लिए दुर्घटना होने के 6 माह के अंदर अंदर आवेदन कर देना चाहिए।
1: अच्छा, यो भी अच्छी जानकारी भैया, यो भी होनी चाहिए।
2: बिल्कुल। तो भाई देखो अब योजना की जानकारी हो गई है और अब बारी आ गई है गीत संगीत की। तो बहन भाइयों करवाते हैं मनोरंजन और सुनते हैं सेठ पाल आर्य की यो रागिनी।
1: ठीक है भैया।

0: ओ भाई तेरी पिंगला रानी। तो भाई ने रागनी सुनी, सेठपाल सिंह आ रहे हैं साथी सर।
1: बिल्कुल भैया, देखो रागनी तुमने अच्छी सुनाई, भाइयों को अच्छी लगी होगी, मनोरंजन तो भाइयों का हो गया। और भैया कोई मौसम मौसम की भी चिट्ठी आई क्या?
0: भाई देखो, मौसम की चिट्ठी हमारे पास में आई है,
1: अच्छा
0: और मौसम की चिट्ठी भैया हमें मिली है ग्रामीण कृषि मौसम सेवा विभाग, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मोदीपुरम, मेरठ सर।
1: जी भैया, क्या लिखा?
0: और वह यहाँ से प्राप्त जानकारी के अनुसार भैया, अगले 2 दिन जनपद बिजनौर और उसके आसपास के क्षेत्रों में बादल छाए रहने और हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना।
1: तो देखो भैया, किसान भाई मौसम के हिसाब से अपने खेतों में काम करेंगे। और भैया, किसान भाइयों को हमारा ये कार्यक्रम कैसा लग रहा है? किसान भाई इसमें क्या सुनना चाह रहे हैं? भाई देखो, ये तो हमें तभी पता लगेगा जब वो हमारे पास में चिट्ठी लिखेंगे।
0: बिल्कुल, तो भैया चिट्ठी लिखने के लिए पता हम बता रहे हैं,
1: हाँ,
0: और भाई हमारा पता है कार्यक्रम कृषि जगत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी नजीबाबाद, पिन 2467-63।
1: और भैया देखो, चिट्ठी के साथ साथ किसान भाई अब हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर सके हैं। नंबर भैया जाने ही है, किसान भाई नंबर है 94-570-78-288।
0: और भाई इसके अलावा देखो भैया, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर भैया जो हमारे चैनल है भैया, उसे आप जो है फॉलो कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, और जो हमारे भैया कार्यक्रम है उन्हें आप सुन सकते हैं।
1: बिल्कुल। और भाई देखो, हमारे कार्यक्रम में अब हम किसान भाइयों को अच्छी अच्छी जानकारी तो देखो भैया पहले भी देते थे, अब भी दे रहे हैं। साथ ही हमारे कुछ ऐसे कार्यक्रम हैं जैसे भैया हम पगडंडी की बात कर रहे हैं, या भैया हम नाटक की बात कर रहे हैं, या भैया हम हेलो लोकमंजरी की बात कर रहे हैं, हेलो बासमती की बात कर रहे हैं, हेलो किसान की बात कर रहे हैं, हेलो गन्ना किसान की बात कर रहे हैं। ये हमारे विशेष कार्यक्रम हैं, और किसान भाइयों को ये कार्यक्रम कैसे लग रहे हैं ये वो हमें अवश्य बताना।
0: बिल्कुल, और भैया जो हमारे ये विशेष कार्यक्रम है, जो फोन इन कार्यक्रम है, इसमें अपनी सहभागिता भी सुनिश्चित अवश्य करें।
1: बिल्कुल। तो भैया देखो, बात करतो करतो टाइम कब कार्यक्रम का पूरा हो गया भैया पता ही ना चला, इसलिए आज के कार्यक्रम को अभी को समेट लें। और भैया दोनों भैया करो ले हैं राम
0: राम राम।
1: राम।

0: अभी किसान भाई सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत, मीडियम वेव 314.47 मीटर पर। यह आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। शाम के 6:45 हुए हैं। विविध कार्यक्रम के अंतर्गत श्रोताओं आइए सुनते हैं अजय कुमार मित्तल की पूर्व प्रसारित वार्ता, जिसका विषय है भारत की विदेश नीति में नए आयाम।
1: आज हम भारतीय विदेश नीति के नए आयामों पर चर्चा करेंगे। पारंपरिक रूप से भारत गुटनिरपेक्षता की नीति पर चलता रहा है। इसके अंतर्गत संसार की किसी महाशक्ति के साथ स्वयं को बगैर जोड़े अपना हित साधन करना रहा है, जो कि किसी भी राष्ट्र की विदेश नीति का उद्देश्य होता है। वर्तमान सरकार ने सदा यह ध्यान रखा है कि हमारी विदेश नीति भारत के हितों को बढ़ाने वाली तथा राष्ट्रीय गौरव व सम्मान दिलाने वाली हो। आज भारत अमेरिका व रशिया दोनों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण बन गया है। इनमें से किसी के भी गुट में शामिल होने का ठप्पा लगाए बिना वह दोनों से अपना हित साध रहा है। अमेरिका ने रूस पर कच्चे तेल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया था, पर भारत उससे सस्ता तेल आयात कर रहा है और अमेरिका इस बात पर भारत से कोई नाराजगी भी नहीं जता रहा। उसने उसे नाटो के बाहर अपना निकटतम मित्र देश घोषित कर दिया है। 2 वर्ष पहले भारत ने अपने 20,000 विद्यार्थियों के अलावा अमेरिका सहित 18 राष्ट्रों के लगभग 10,000 नागरिकों को यूक्रेन से वाया पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी निकाला था। उस समय अपना तिरंगा सबके लिए सुरक्षा का प्रतीक बन गया था। जिसके हाथ में तिरंगा होता था उस पर रूसी और यूक्रेनी कोई सेना फायर नहीं करती थी। अन्य देशों के द्वारा पारगमन में भी तिरंगे वालों को कोई कठिनाई नहीं होती थी। भारत को अंतर्राष्ट्रीय जगत में मिला यह अभूतपूर्व सम्मान था। सरकारी प्रयास के अतिरिक्त और गैर सरकारी स्तर पर भी भारत की एनजीओ सेवा इंटरनेशनल ने 467 अफ्रीकी नागरिकों को यूक्रेन से बचाया। दुनिया भर में जहां कहीं नागरिकों की रक्षा की जरूरत पड़ती है, वर्तमान सरकार भारतीयों एवं अन्य राष्ट्रिकों में भेद नहीं करती। कुवैत, सूडान, यमन, अफगानिस्तान से लेकर वर्तमान इजराइल हमास युद्ध तक लाखों लोगों को भारतीय फोर्स ने बचाया है। इस नेक काम में भारत का नाम सर्वत्र चमका है। कोविड-19 के समय में भारत ने दुनिया को अपना मुरीद बना लिया। 150 देशों में कोविड वैक्सीन, दवाइयां तथा डॉक्टरों को भेजकर विश्व की सेवा की। गरीब देशों से इसका कोई पेमेंट भारत ने नहीं लिया। विश्व में प्रयुक्त कुल कोविड वैक्सीन का 60% अकेले हिंदुस्तान ने दिया। दुनिया ने पाया कि वसुधैव कुटुंबकम यानी संपूर्ण संसार ही परिवार है, भारत के व्यवहार में है। युद्ध पीड़ित जगत में भारत शांति व सेवा की आस है। इस गौरव और सम्मान का ही नतीजा है कि चीन को छोड़कर सभी बड़े राष्ट्र अमेरिका, रूस, कनाडा, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, कोरिया और ऑस्ट्रेलिया आदि सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सीट के समर्थक बन गए हैं। भारत विश्व के नेता के रूप में उभरा है। सन 2005 में इंडोनेशिया की सरकार ने भारत से संस्कृत धर्म ग्रंथों और कुछ हिंदू पंडितों की मांग की थी, पर खुद को सेकुलर बताते हुए पिछली सरकार ने वो भेजने से इनकार कर दिया था। अपनी लुक ईस्ट एक्ट ईस्ट नीति के तहत मोदी जी ने तुरंत वहां हिंदू धर्मग्रंथ तथा विद्वान रवाना कर इंडोनेशिया से अच्छे संबंध बनाए। इस लुक ईस्ट नीति जो वर्तमान सरकार की विदेश नीति का उल्लेखनीय आयाम है के अनुसार ही मोदी जी म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, कंबोडिया, वियतनाम, सिंगापुर आदि से रिश्ते सुधार रहे हैं। कंबोडिया के अंकोर वाट और अंकोर थोम मंदिरों का रखरखाव और संरक्षण भारतीय पुरातत्व विभाग कर रहा है। हाल ही में विशाखापट्टनम में INS विक्रांत और विक्रमादित्य पर नौसैनिक अभ्यास में 50 देशों ने भाग लिया। इस प्रदर्शन से चीन पाकिस्तान दोनों घबराहट में हैं। इस बीच मालदीव ने चीन के उकसावे में आकर भारत को इजराइल की कठपुतली बताकर तथा अन्य अपशब्दों से भारत का अपमान किया। वहां के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने इसके लिए वर्तमान पदासीन मोइजू सरकार की तीखी भर्त्सना की। भारत को उन्होंने अपना दशकों पुराना दोस्त बताया है, किंतु चीन के प्रति मोइजू का झुकाव कम नहीं हुआ। पर्यटन, जिस पर मालदीव की आर्थिकी टिकी हुई थी, धड़ाम से गिर गई है। 2004 की सुनामी में भारत की अरबों की मदद वे भूल गए और चीन के समर्थक हो गए। भारत को घेरने की नीति के तहत चीन ने श्रीलंका में अपना अड्डा बनाना चाहा। उसने अपने दो जासूसी जहाज वहां तैनात किए थे। उसने श्रीलंका को करोड़ों डॉलर देकर हम्बनटोटा बंदर का कब्जा रखा है। भारत के समझाने पर लंका ने उसके दोनों जहाज लौटा दिए। उसको लग गया कि उसका हित भारत के साथ ही सुरक्षित है। आज इसराइल और उसके परंपरागत शत्रुओं, खाड़ी देशों दोनों के साथ भारत के गर्मजोशी भरे मैत्री संबंध हैं। यहाँ तक कि अबू धाबी UAE में वहाँ की सरकार द्वारा दान दी गई जमीन पर मंदिर बनवाने में वर्तमान सरकार सफल रही। UAE को अपनी आर्थिक सदाशयता का परिचय देते हुए मोदी ने 15 वर्ष पुराने 40,000 करोड़ वापस किए। दोस्ती इसी तरह प्रगाढ़ बनती है। अपनी आर्थिक सोच के अंतर्गत भारतीय रुपए को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बनाने की दिशा में वर्तमान सरकार ने कदम बढ़ा दिए हैं। आज 18 देशों के साथ रुपए द्वारा भारत का व्यापार चल रहा है। इनमें ब्रिटेन व सिंगापुर भी शामिल हैं। अभी 27 और देश इस सूची में आने वाले हैं। डॉलर का स्थान भारतीय रुपया ले, यह वर्तमान सरकार की महत्वाकांक्षा है। वैश्विक राजनीति, कूटनीति और अर्थनीति में एक नया सूर्योदय हो गया है। कनाडा की जस्टिन ट्रूडो सरकार, जो खालिस्तानियों की समर्थक है, इस सूर्य की चमक छुपाने की असफल कोशिश करने लगी है। इसके लिए अपने घर में सत्तारूढ़ लिबरल पार्टी के समर्थकों से उसे खरी-खोटी सुनने को मिल रही है, बल्कि अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडन की नसीहत भी मिल रही है। अमरीका, जो भारत द्वारा फ्रांसीसी राफेल की खरीद को लेकर नाराज चल रहा था, वो आज उन्नत F-16 विमान के निर्माण का संयंत्र भारत को भेंट कर रहा है। इस प्रकार से भारत संसार भर में अपनी विदेश नीति के नए आयामों के माध्यम से सफल हो रहा है। सऊदी अरब और ईरान दोनों के साथ में मैत्री संबंध कायम रखना, ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के प्रबल शत्रु हैं। ईरान ने भारत से अपनी मैत्री को आगे बढ़ाते हुए पाकिस्तान पर हमला किया। पाकिस्तान को उसने समझा दिया कि भारत के साथ में दोस्ती रखने में ही उसकी भलाई है, और पाकिस्तान की भी समझ में आ गया है कि भारत अब इतनी बड़ी शक्ति है और संसार भर में उसका इतना सम्मान है कि उसके साथ में मैत्री बनानी पड़ेगी। और इसलिए पाकिस्तान ने भी अपने जो चीन समर्थक कदम थे वो पीछे खींचने शुरू किए हैं, और वो भारत के साथ में अपने संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में बढ़ रहा है। वर्तमान सरकार ने जो नए आयाम विदेश नीति में जोड़े हैं, उनके द्वारा भारत को बहुत लाभ हुआ है, और भारत अब इस स्थिति में है कि वो संसार का नेतृत्व कर सके। और ये बात कई उदाहरणों से प्रमाणित होने भी लगी है। कनाडा की जस्टिन ट्रूडो सरकार, जो खालिस्तानियों को अपने यहाँ शरण देती रही है, उसने

0: जो प्राप्त किया है उसकी प्रशंसा भी सब भारतीयों को करनी चाहिए।
1: विविधा कार्यक्रम के अंतर्गत श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे अजय कुमार मित्तल की पूर्व प्रसारित वार्ता, जिसका विषय था भारत की विदेश नीति में नए आयाम। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये नजीब आपात केंद्र है। शाम के 6:55 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम छाया गीत।

हाथ की सफाई। इस फिल्म में श्रोताओं आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार को। गीत के बोल थे गुलशन बावरा के और संगीत कल्याण जी आनंद जी का था। कार्यक्रम का अगला गीत श्रोताओं आइए सुनते हैं सोनिक ओमी के संगीत निर्देशन में, बोल हैं जीएल रावल के, आवाज मोहम्मद रफी की और फिल्म का नाम आबरू।

आकाशवाणी नजीबाबाद से श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं श्रोताओं लता मंगेशकर की आवाज़ में, जिसे हमने लिया है फिल्म कर्तव्य से। गीत के बोल हैं कफील अजहर के और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

कर्तव्य फिल्म में लता मंगेशकर के गाए इस गीत के साथ ही कार्यक्रम छाया गीत अब संपन्न होता है। मीडियम वेव 314.47 मीटर पर ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। आइए सुनते हैं देशगान।

अभी आप सुन रहे थे देशगान, मीडियम वेव 314.47 मीटर पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। हम अपने श्रोताओं को एक बार पुनः याद दिला दें कि आज रात 9:30 पर आप सुनेंगे शेरी नशिस्त। 8 बजे होगी संसद समीक्षा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। राज्य स्तरीय प्रसारण के अंतर्गत रात 10 बजे आप सुनेंगे श्रोताओं कार्यक्रम खेल दर्पण, जिसे हम अपने लखनऊ केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। और आज इस कार्यक्रम में प्रस्तुति होगी आकाशवाणी नजीबाबाद की। कल रात 9:30 पर श्रोता आप सुनेंगे कार्यक्रम चर्चा का विषय है, और रात 8 बजे संसद समीक्षा, ये कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कानून की बात कल शाम 7:30 पर अपने लखनऊ केंद्र से अनुप्रसारित की जाएगी। भाई हरजिंदर सिंह के गाय शब्द आप सुन सकते हैं सुगम संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत कल शाम 7:45 पर। धरती गाती है कार्यक्रम के अंतर्गत कल सवेरे 9:25 पर आप सुनेंगे सेठपाल सिंह आर्य और साथियों की गाय रागनी सूरज के साथ साथ। ये कार्यक्रम होगा रोजाना की तरह शाम 7:31 पर। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में दोपहर 12:05 पर हम आपको सुनाएंगे पंडित रविशंकर का सितार पर बजे राग मधुवंती, मिड डे मेलोडी। ये कार्यक्रम होगा दोपहर 12:30 पर। महारा घर आंगन भोर से सांझ तक, ये क्रम रहेगा कार्यक्रम घर संसार में कल दोपहर 1:15 पर। श्रोताओं, ये थी कुछ कार्यक्रम संबंधी जानकारी। ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। शाम के 7:18 हुए हैं, थोड़ी देर बाद आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।

जीवन कठिन प्रतीत हो सकता है, लेकिन आपके करने योग्य हमेशा कुछ न कुछ होता है जिसे करके आप सफल हो सकते हैं। ये विचार है स्टीफन हॉकिंग के। प्लेटो का कथन है, बुद्धिमान लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ होता है, और मूढ़ व्यक्ति इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी बोलना होता है। एपीजे अब्दुल कलाम का कथन है, लक्ष्य के प्रति एकाग्र समर्पण लक्ष्य को पाने का एकमात्र साधन है।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश कैबिनेट की बैठक में 18 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। 26,315 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा 333 किलोमीटर लंबा विंध्य एक्सप्रेसवे। 3 अगस्त से शुरू होगा विधानमंडल का मॉनसून सत्र। रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के तहत राज्य की 50,000 मेधावी स्नातक छात्राओं को सरकार देगी मुफ्त स्कूटी। 12 लाख रुपए वार्षिक से कम आय वाले परिवारों को मिलेगा लाभ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रावस्ती में 396 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 83 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। बहराइच को दी 352 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात। और राजधानी लखनऊ सहित कई जनपदों में रुक रुक कर बारिश जारी। लखीमपुर खीरी में शारदा नदी खतरे के निशान से ऊपर। कल भारी बारिश का येलो अलर्ट। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज हुई प्रदेश कैबिनेट की बैठक में 18 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। प्रस्तावों में 3 अगस्त से विधानसभा के मॉनसून सत्र, रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के तहत मेधावी स्नातक छात्राओं को मुफ्त स्कूटी और विंध्य एक्सप्रेसवे जैसे अहम फैसलों को सहमति प्रदान की गई। कैबिनेट बैठक के बाद फैसलों की जानकारी देते हुए वित्त और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि विंध्य एक्सप्रेसवे 333 किलोमीटर लंबा होगा, जो कि प्रयागराज से शुरू होकर भदोही मिर्जापुर होते हुए सोनभद्र तक जाएगा। इस पर 26,315 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसके अलावा विंध्य पूर्वांचल स्पर लिंक को भी स्वीकृति दी गई। श्री खन्ना ने बताया कि 3 अगस्त से विधानमंडल का मॉनसून सत्र शुरू होकर 6 अगस्त तक चलेगा। आगामी सत्र में वित्तीय वर्ष 2026-27 का अनुपूरक बजट, अध्यादेशों के प्रतिस्थानी विधेयक और अन्य महत्वपूर्ण विधायी कार्य संपादित किए जाएंगे।
1: राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का आगामी सत्र 3 तारीख से प्रारंभ होकर 6 तारीख तक चलेगा और इसमें सप्लीमेंट्री भी आएगा।
0: रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के तहत मेधावी स्नातक छात्राओं को मुफ्त स्कूटी दिए जाने के बारे में प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि इस योजना में इस वर्ष करीब 50,000 छात्राएं लाभान्वित होंगी। इसमें राज्य के उच्च संस्थानों के शैक्षणिक सत्र 2025-26 में उत्तीर्ण समस्त स्नातक छात्राओं में से शीर्ष 5% छात्राएं इसकी पात्र होंगी।
2: इसमें उच्च संस्थानों की शैक्षणिक सत्र 2025-26 में उत्तीर्ण समस्त छात्राओं में से जो टॉप 5% होंगे, उन छात्राओं की मेरिट के आधार पर उनको लाभ मिलेगा। जिनकी परिवार की आय 12 लाख रुपए वार्षिक से कम, एक तो ये प्रावधान है। दूसरा, इसको एक पैकेज बनाया गया है जिसमें पंजीकरण शुल्क सरकार वहन करेगी, व्यापक वाहन बीमा योजना सरकार वहन करेगी, एक हेलमेट ISI मार्का ये उनको दिया जाएगा बच्चियों को।
0: उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ उन्हें मिलेगा जिनके परिवार की आय सीमा 12 लाख वार्षिक से कम होगी। साथ ही छात्राओं को ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के बस बेड़े में 250 नई इलेक्ट्रिक बसों की खरीद से जुड़े प्रस्ताव, वाराणसी में 500 बेड के अत्याधुनिक कामकाजी महिला छात्रावास, अग्निशमन तथा आपात सेवा को अधिक प्रभावी बनाने के लिए 25,78,00,000 रुपए के प्रस्ताव, यूपी आउटसोर्स सेवा निगम को 20 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण जैसे प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज श्रावस्ती में 396 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 83 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि एक जिला एक उत्पाद ने प्रदेश में विकास की संभावनाओं को आगे बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि सरकार के प्रयासों का नतीजा है कि आकांक्षी जिलों में शामिल श्रावस्ती ने विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है।
3: प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर 100 ऐसे जनपदों की सूची निकाली जो सबसे पिछड़े पूरे देश के अंदर, उसमें से श्रावस्ती भी एक था। पिछले 9 वर्ष में श्रावस्ती ने एक नई ऊंचाई अर्जित की।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बहराइच

0: में महसी और नानपारा विधानसभा क्षेत्रों के लिए 352 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 70 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार में योजनाओं का लाभ हर वर्ग को बिना भेदभाव के दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार ने विकास कार्यों और प्रगति के जरिए पिछले 9 सालों में प्रदेश की नई पहचान बनाई है।
1: जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार आई, यूपी में डबल इंजन की सरकार आई, आज बहनों और भाइयों आप देखते होंगे परिवर्तन, हर क्षेत्र में परिवर्तन। अब उपद्रव नहीं होता है, अब तो उत्सव प्रदेश के रूप में यूपी ने एक नई पहचान बनाई।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में भविष्य में परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए सभी संबंधित पक्षों से मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया है। आज संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि श्री मोदी ने परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया।
2: आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सटी से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया, और प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है। और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने के लिए और खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को, और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिल करके करें।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की कल अहम बैठक होगी। बैठक में ट्रस्ट के नियमों के अनुरूप विभिन्न समितियों के पुनर्गठन, मंदिर के सीईओ समेत कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। बैठक से पहले आज प्रशासन के अधिकारियों ने बैठक स्थल का निरीक्षण किया। एक रिपोर्ट।
3: भगवान श्री रामलला मंदिर के चढ़ावा विवाद के बीच श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की कल होने वाली दूसरी बैठक के लिए इसके सदस्य अयोध्या पहुंचने लगे हैं। बैठक के दौरान ट्रस्ट महासचिव के पद और न्यासियों के 3 खाली पदों पर विचार विमर्श करेगा और राम मंदिर के पहले सीईओ के चयन की प्रक्रिया को भी अंतिम रूप दिया जा सकता है। वहीं कल होने वाली बैठक के मद्देनजर एसपी सिटी चक्रपाणी त्रिपाठी और एडीएम सिटी योगानंद पांडे ने आज बैठक स्थल के सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया। तन्मय सोनी, आकाश समाचार, अयोध्या।
0: केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने भारत की पहली डेंगू वैक्सीन क्यू डेंगा के विपणन को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य देश में डेंगू की रोकथाम के प्रयासों को मजबूत करना है। ये भारत में डेंगू की रोकथाम के लिए स्वीकृत पहली डेंगू वैक्सीन है। इसमें 4 से 60 वर्ष की आयु के लोगों में डेंगू की रोकथाम के लिए मंजूरी दी गई है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आज सहारनपुर में मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय के 4th दीक्षांत समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। दीक्षांत समारोह में 22,315 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की गईं। राजधानी लखनऊ सहित कई जनपदों में रुक रुक कर बारिश जारी है। लखीमपुर खीरी के पलियाकला में शारदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि बाराबंकी में घाघरा खतरे के निशान के करीब है। वाराणसी में गंगा के किनारे घाटों पर सतर्कता बढ़ा दी गई है और प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। हमीरपुर में पिछले 24 घंटों में बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित हो गया है। एक रिपोर्ट।
4: बीते 24 घंटे से रुक रुक कर हो रही झमाझम वर्षा किसानों के चेहरों में मुस्कान लौटा दी है और मौसम को भी पूरी तरह सुहावना कर दिया है। कुछ दिनों पहले वर्षा के अभाव में किसानों की बोई गई खरीफ की फसल उर्द, मूंग, तिल, अरहर, ज्वार की फसलें सूखने की कगार पर पहुंचने लगी थी, लेकिन मानसूनी वर्षा ने फसलों को जीवंत कर किसानों के चेहरों में मुस्कान लौटाने का काम कर रही है। हालांकि कहीं कहीं जल भराव का सामना करना पड़ रहा है। शिव कुमार सेठी, आकाशवाणी समाचार, हमीरपुर।
0: मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान जताया है। विभाग ने कल राज्य में कई जगहों पर भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश कैबिनेट की बैठक में 18 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। 26,315 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा 333 किलोमीटर लंबा विंध्य एक्सप्रेसवे। 3 अगस्त से

0: शुरू होगा विधानमंडल का मॉनसून सत्र। रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के तहत राज्य की 50,000 मेधावी स्नातक छात्राओं को सरकार देगी मुफ्त स्कूटी। 12 लाख रुपए वार्षिक से कम आय वाले परिवारों को मिलेगा लाभ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रावस्ती में 396 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 83 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। बहराइच को दी 352 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात। और राजधानी लखनऊ सहित कई जनपदों में रुक रुक कर बारिश जारी। लखीमपुर खीरी में शारदा नदी खतरे के निशान से ऊपर, कल भारी बारिश का येलो अलर्ट। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: महात्मा गांधी के अनुसार युद्ध भूमि से भागने से अच्छा है हम लड़खड़ाएं, गिर जाएं, लेकिन फिर से शक्ति बटोर कर खड़े हो जाएं।
2: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।
3: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। सुगम संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत श्रोताओं आइए सुनते हैं जगजीत सिंह की गाई गजलें।

सुगम संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे जगजीत सिंह की गाई गजलें। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है।

हम अपने श्रोताओं को एक बार फिर याद दिला दें कि आज रात 9:30 पर आप सुनेंगे शेरी नशिस्त और रात 10 बजे राज्य स्तरीय प्रसारण के अंतर्गत आप सुनेंगे कार्यक्रम खेल दर्पण। इस कार्यक्रम के अंतर्गत श्रोताओं आज प्रस्तुति होगी आकाशवाणी नजीबाबाद की और इसमें आज आप सुनेंगे श्रोताओं 23वीं एशियाई मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक विजेता तरुण सेहरावत से बातचीत। इसके अलावा आप सुनेंगे अंडर 17 कबड्डी प्लेयर तनिष कुमार से बातचीत। आलेख और वाचन स्वरोगा नमित राज का प्रस्तुति होगी अंकित सैनी की और रात 10:30 पर श्रोता सुनेंगे अपने व्हाट्सएप मैसेज और फरमाइशी पत्रों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कल रात 9:30 पर श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम चर्चा का विषय है और 8 बजे संसद समीक्षा। ये दोनों कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। विविधा कार्यक्रम के अंतर्गत कल शाम 6:45 पर श्रोता सुनेंगे डॉक्टर अमित कुमार सिंह से वार्ता जिसका विषय होगा भारतीय संविधान में लोक कल्याण के तत्व।

0: श्रोताओं, ये थी कार्यक्रम संबंधी जानकारी। ये आकाशवाणी का निजी आपात केंद्र है। थोड़ी देर में अगला कार्यक्रम होगा, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: अब आप मुनीश शर्मा से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले राज्यसभा, लेखक हैं पीटीआई भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में आज भी नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस द्वारा कथित लाठीचार्ज किए जाने का मुद्दा छाया रहा।

0: और इसे लेकर विपक्ष के हंगामे के चलते उच्च सदन की कार्यवाही दो बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के कारण उच्च सदन में आज शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं हो पाया। पूर्वान्ह 11 बजे बैठक शुरू होने के बाद हंगामे के कारण इसे दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। दोपहर 12 बजे बैठक फिर शुरू होने पर भी सदन में वही नजारा देखने को मिला और बैठक 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इसके बाद 2 बजे भी हंगामा थमा नहीं और उपसभापति हरिवंश ने एक ही मिनट के भीतर बैठक को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया। दो बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे बैठक शुरू होने पर कार्यवाही संचालित करने के लिए आसन पर आए उपसभापति हरिवंश ने सदन में एक विधेयक पेश करने को कहा। सदन की संशोधित कार्यसूची के अनुसार आज गृह मंत्री अमित शाह को राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश करना था। इस विधेयक में 1971 के मूल अधिनियम में संशोधन का प्रावधान है। इस बीच कांग्रेस सहित विभिन्न विपक्षी दलों के सदस्य अपने स्थानों पर खड़े होकर नारेबाजी और शोरगुल करने लगे। विरोध कर रहे सदस्यों को शांत कराने का प्रयास करते हुए हरिवंश ने कहा कि आप जानते हैं कि सदन में आज जो भी कामकाज सूचीबद्ध है उसी पर आप बात कर सकते हैं। उन्होंने सदस्यों से कहा कि वे यदि इसी प्रकार का व्यवहार करते रहे तो फिर सदन कैसे चलाया जा सकता है। उन्होंने विपक्षी सदस्यों से अपने स्थानों पर बैठने और सदन में चर्चा शुरू करने की अपील की। श्री हरिवंश ने कहा कि सदन में चर्चा के लिए प्रक्रियाओं के नियम आपने ही बनाए हैं, उन नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करने दीजिए। उन्होंने कहा कि सदस्य यदि किसी विषय पर चर्चा के लिए सभापति से अनुमति चाहते हैं तो इसके लिए भी नियमों में प्रावधान दिए गए हैं। उपसभापति ने हंगामा कर रहे सदस्यों से कहा कि वे सदन में निर्धारित कामकाज होने दें और सदन की मर्यादा का पालन किया जाना चाहिए। उन्होंने विपक्षी सदस्यों से कहा कि यदि आप इसी तरह से अपने स्थानों पर खड़े होकर शोरगुल कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप चाहते नहीं कि सदन में कामकाज हो। हरिवंश जिस समय अपील कर रहे थे उस समय विपक्षी सदस्य अपने स्थानों पर खड़े होकर नारेबाजी और हंगामा कर रहे थे। इस दौरान सत्ता पक्ष के कई सदस्यों को भी अपने स्थानों पर खड़े होकर विपक्षी सदस्यों का विरोध करते देखा गया। सदन में हंगामा थमते न देख उपसभापति ने महज एक मिनट के भीतर ही बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। इससे पहले सुबह 11 बजे बैठक शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के जन्मदिन की जानकारी देते हुए उन्हें पूरे सदन की ओर से शुभकामनाएं दी और उनके दीर्घ स्वस्थ और खुशहाल जीवन की कामना की। श्री राधाकृष्णन ने कहा, मुझे विश्वास है कि उनका नेतृत्व युवाओं और नेताओं के लिए संविधान, लोकतंत्र और देश की अखंडता के प्रति भरोसा रखने के लिए प्रेरणास्पद मिसाल बनेगा। जिस समय सभापति उन्हें जन्मदिन की बधाई दे रहे थे उसी समय श्री खड़गे अपने स्थान पर खड़े हुए और उन्होंने हाथ जोड़कर सभी सदस्यों का अभिवादन किया और आभार व्यक्त किया। सदन के नेता जेपी नड्डा, कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष सोनिया गांधी तथा अन्य नेताओं ने मेजें थपथपाकर श्री खड़गे को बधाई दी। उन्होंने सदस्यों को सूचित किया कि संसद टीवी पर सदस्यों के जन्मदिन की जानकारी नियमित तौर पर दी जाती है। श्री राधाकृष्णन ने इसके बाद स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा को भुवनेश्वर के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में एक सदस्य को नियुक्त करने संबंधी प्रस्ताव को पेश करने की अनुमति दी। श्री नड्डा ने प्रस्ताव रखते हुए कहा कि एम्स अधिनियम के तहत सदन के किसी भी सदस्य को एम्स भुवनेश्वर में नियुक्त करने के बारे में सभापति को अधिकृत करने के लिए वो प्रस्ताव पेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ममता मोहंता के 2 अप्रैल 2026 को सेवानिवृत्त होने के बाद एम्स भुवनेश्वर में ये रिक्ति बनी हुई थी। सदन ने इस प्रस्ताव को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी। सदन ने संसदीय कार्य राज्य मंत्री एल मुरुगन द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव को भी ध्वनिमत से मंजूरी दी। इस प्रस्ताव में संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024 और संघ राज्य क्षेत्र विधि संशोधन विधेयक 2024 संबंधी संयुक्त समिति में उच्च सदन की सदस्य सागरिका घोष और मनमोहन सामल को सदस्य बनाने का प्रावधान है। सभापति ने सदन को सूचित किया कि मनोनीत सदस्य पीटी ऊषा ने ग्लासगो में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय दल का नेतृत्व करने के अपने दायित्व को पूरा करने के मकसद से इस सत्र में 20 जुलाई से 4 अगस्त तक अनुपस्थित रहने की अनुमति मांगी है। सदन ने उन्हें इसकी अनुमति दे दी। बाद में श्री खरगे ने कुछ कहना चाहा और सभापति ने उन्हें अपनी बात रखने की अनुमति दी। श्री खरगे ने कहा कि नीट पीपर लेक को लेकर कल राजधानी में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने बल प्रयोग किया जो उचित नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठी चार्ज किया गया और पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े। उनकी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि सत्ता पक्ष के सदस्यों ने आपत्ति जताते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। इस पर विपक्षी सदस्यों ने भी हंगामा शुरू कर दिया। सदन में हंगामे को देखते हुए सभापति राधाकृष्णन ने कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी और शून्यकाल नहीं हो पाया। 12 बजे बैठक शुरू होने पर शोरगुल के बीच ही राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी ने लोकसभा का एक संदेश सदन में पढ़कर सुनाया। उन्होंने सदन को बताया कि लोकसभा ने कल अपनी बैठक में एक प्रस्ताव पारित कर राज्यसभा से लाभ के पद संबंधी संयुक्त समिति में 2 सदस्यों के निर्वाचन की सिफारिश की है। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू हुआ था और नीट पेपर लीक सहित विभिन्न मुद्दों पर हंगामे के कारण कल भी सदन में कोई महत्वपूर्ण विधायी कामकाज नहीं हो पाया था। लीजिए अब सुनिए लोकसभा में हुई कार्रवाई की समीक्षा। लेखक हैं यूनिवार्ता के वरिष्ठ पत्रकार मोहम्मद आजाद और वाचिका हैं जया भारती।
1: नीट पेपर लीक तथा अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष का हंगामा आज दूसरे दिन भी जारी रहा, जिसके कारण लोकसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। दो बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही शुरू करते हुए नियम 377 के तहत सदस्यों से अपने विषय सदन के पटल पर रखने को कहा तो विपक्षी दलों के सदस्य नारेबाजी करते हुए सदन के बीचों बीच आ गए। श्री सैकिया ने हंगामा कर रहे सदस्यों से कहा कि आप लगातार दूसरे दिन सदन के बीच आकर कार्यवाही बाधित कर रहे हैं, जिससे सदन का कामकाज प्रभावित हो रहा है। उन्होंने कई बार सदस्यों से सदन की कार्यवाही चलाने में सहयोग करने की अपील की, लेकिन हंगामा थमने के बजाय और तेज हो गया, जिसके बाद उन्होंने सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले सुबह 11 बजे अध्यक्ष ओम बिरला ने जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू की तो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, एसपी तथा अन्य विपक्षी दलों ने सदस्य नीट पेपर लीक और अन्य मुद्दों को लेकर नारेबाजी करने लगे। श्री बिरला ने प्रश्नकाल चलने देने में सदस्यों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि प्रश्नकाल सदस्यों के लिए सरकार से जवाब मांगने का महत्वपूर्ण अवसर होता है, लेकिन हंगामा जारी रहने पर उन्होंने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 12 बजे बैठक फिर से शुरू हुई तो विपक्षी सदस्य तख्तियां और बैनर लेकर सदन के बीचों बीच पहुंच गए और नारेबाजी जारी रखी। पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने हंगामे के बीच आवश्यक विधायी दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए और सदस्यों से अपने अपने स्थान पर लौटकर शून्यकाल चलने देने की अपील की। उन्होंने कहा कि शून्यकाल में सदस्यों को अपने क्षेत्रों की समस्याएं उठाने का अवसर मिलता है और पूरा देश सदन की कार्यवाही देख रहा है। इसके बावजूद विपक्षी सदस्यों ने हंगामा जारी रखा, जिसके कारण सदन की कार्यवाही अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन ने लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में कहा कि भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची के संदर्भ में पंचायत स्थानीय सरकार होने के कारण राज्य का विषय है। पंचायतों को राज्यों के पंचायती राज अधिनियमों के अंतर्गत स्थापित और संचालित किया जाना चाहिए। संविधान के प्रावधानों के अधीन रहते हुए राज्यों ने अपने अलग अलग पंचायती राज अधिनियम बनाए हैं। उन्होंने कहा कि जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने में स्थानीय सरकारों की भूमिका का आकलन करने के लिए मंत्रालय ने फरवरी 2025 में राज्यों में पंचायतों को अंतरण की स्थिति एक सांकेतिक साक्ष्य आधारित रैंकिंग 2024 नामक शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है। उन्होंने कहा कि स्थानीय स्वशासन को सुदृढ़ करने और पंचायती राज संस्थाओं में अधिक स्वायत्तता, जवाबदेही और क्षमता सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय ने संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की केंद्रीय प्रायोजित योजना को वित्तीय वर्ष 2022-23 से लागू किया है। इसका उद्देश्य निर्वाचित प्रतिनिधियों और अन्य हितधारकों को नेतृत्व क्षमता विकसित करने के लिए प्रशिक्षण

दान करके पंचायती राज संस्थाओं का समर्थन करना है, जिससे ग्राम पंचायतें सभी राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों में प्रभावी ढंग से कार्य कर सकें। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक लिखित जवाब में लोकसभा में कहा कि 10 इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट पर लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि विनिमय चालू कर दिया गया है। इसमें त्रिपुरा के अगरतला और श्रीमंतपुर, असम के दारंगा और सुतरकंडी, उत्तर प्रदेश के रुपईडीहा, बिहार के रक्सौल और जोगबनी, पश्चिम बंगाल के पेट्रोपोल, मेघालय के डाउकी और पंजाब के अटारी में आईसीपी शुरू किया गया है। लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम को यूनिफाइड लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और गुड्स एंड सर्विस सिस्टम के साथ जोड़ा गया है। लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम को मजबूत और भविष्य की सभी एकीकृत जांच चौकियों पर कार्यप्रणाली के प्रबंधन के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किया गया है। केंद्रीय भारी उद्योग राज्य मंत्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा ने एक सवाल के लिखित जवाब में कहा कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड अपनी व्यावसायिक आवश्यकताओं, बाजार की संभावनाओं तथा प्रौद्योगिकी विकास को ध्यान में रखते हुए समय समय पर अपने विनिर्माण सुविधाओं का आधुनिकीकरण, प्रौद्योगिकी उन्नयन तथा क्षमता संवर्धन करता है। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान कंपनी ने अपनी सुविधाओं के विस्तार, आधुनिकीकरण तथा क्षमता संवर्धन के लिए 671 करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय किया है। उन्होंने बताया कि BHEL ने नाभिकीय ऊर्जा, रक्षा एवं एयरोस्पेस तथा नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में भी विविधीकरण किया है। BHEL द्वारा अब तक 5.4 गीगावाट क्षमता की नाभिकीय विद्युत इकाइयों के लिए उपकरणों की आपूर्ति की जा चुकी है। BHEL भारतीय नौसेना को महत्वपूर्ण रक्षा तोपों का भी नियमित आपूर्ति करता है। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।

मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं।

आकाशवाणी का ये नजीब आपात केंद्र है। हम अपने श्रोताओं को बता दें कि आज रात 10 बजे राष्ट्रीय स्तरीय प्रसारण के अंतर्गत आप सुने कार्यक्रम खेल दर्पण। इस कार्यक्रम में श्रोताओं आज प्रस्तुति होगी आकाशवाणी नजीब आपात की। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे 23वीं एशियाई मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक विजेता तरुण सहरावत से बातचीत, साथ ही होगी अंडर 17 कबड्डी प्लेयर तनिष कुमार से बातचीत। आलेख उत्सव वाचन स्वर होगा नमित राज का और प्रस्तुति अंकित सैनी की। शेरी नशिस्त कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 9:30 पर। इस कार्यक्रम में प्रतिभागी होंगे श्री तैयब अल अहमद, श्री एजाज धामपुरी, मोहम्मद राशिद और शेरी नशिस्त का संचालन करेंगे श्री बहारुद्दीन शमसी। एक ही फिल्म से कार्यक्रम में रात 8:30 पर आज हम आपको सुनवाएंगे साजन फिल्म के गीत। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये नजीब आपात केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम गीत संध्या।

आकाशवाणी नजीबाबाद से श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत संध्या। और कार्यक्रम का जो पहला गीत आपने सुना श्रोताओं, वो हमने लिया था फिल्म राजा जानी से। आवाज़ थी लता मंगेशकर की, गीत के बोल थे आनंद बख्शी के और संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। कार्यक्रम गीत संध्या का अगला गीत श्रोताओं हमने लिया है फिल्म कटी पतंग से, आवाज़ किशोर कुमार की और शब्द रचना आनंद बख्शी की और संगीत राहुल देव बर्मन का।

आकाशवाणी नजीबाबाद से श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत संध्या। और श्रोताओं, आइए सुनते हैं लता मंगेशकर को फिल्म खानदान में। गीत के बोल हैं नक्श लायलपुरी के और संगीत खय्याम का।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के गाए फिल्म लीडर के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम गीत संध्या अब संपन्न होता है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। रात्रि के 8:30 हुए हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से। इस कार्यक्रम में श्रोताओं, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फिल्म साजन।

0: एक ही फिल्म से कार्यक्रम में श्रोताओं अभी सुन रहे थे साजन फिल्म के गीत। आवाजें थी अनुराधा पौड़वाल, अलका याग्निक और एसपी बाला सुब्रमण्यम की। गीत समीर के थे और संगीत था नदीम श्रवण का। यह आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र। अब आप समाचार सुनेंगे।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ

0: मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। सरकार नीट पेपर लीक और संबंधित मुद्दों पर संसद में चर्चा को तैयार। विपक्ष के विरोध के बाद संसद दिन भर के लिए स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट पेपर लीक मामले में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। कहा, सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठा रही है। भारत और उत्तरी मैसेडोनिया स्कोपिये में राष्ट्रपति स्तरीय वार्ता के बाद व्यापार बढ़ाने और प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने पर सहमत। मध्य प्रदेश विधानसभा ने समान नागरिक संहिता विधेयक पारित किया। अमरीका और ईरान के लगातार 10वें दिन एक दूसरे पर हमलों के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में तनाव और बढ़ा। और भारत ने अगले महीने से शुरू होने वाले पुरुष हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्य टीम की घोषणा की। हरमनप्रीत सिंह होंगे टीम के कप्तान। और अब समाचार विस्तार से। सरकार संसद में नीट और उससे जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार के आश्वासन के बावजूद नीट मुद्दे पर चर्चा की अपनी पुरानी मांग से पीछे हट गए हैं। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अन्य सदस्यों के साथ मिलकर नीट मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर लोक कल्याण मार्ग पर विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। मुलाकात के बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने इस मामले पर चर्चा की मांग मान ली है।
1: सरकार संसद में न केवल इस विषय को लेकर बल्कि इस विषय के साथ संबंधित अन्य सभी विषयों को विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि नीट और पेपर लीक इत्यादि विषयों को लेकर के जो लोग भी जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और हम अपने बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे।
0: इस बीच लोक कल्याण मार्ग के पास विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और विपक्षी दलों के अन्य सदस्यों को हिरासत में ले लिया है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार स्थगित हुई। दोनों सदन 3 बार स्थगित हुए। विपक्षी दल नीट पेपर लीक मामले और अन्य मुद्दों पर नारेबाजी करते रहे। हंगामे के कारण दोनों सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल भी नहीं हो सका। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला और बाद में पीठासीन अधिकारियों ने विरोध कर रहे सदस्यों से बार बार सदन की मर्यादा बनाए रखने और तय कामकाज को आगे बढ़ाने का आग्रह किया, लेकिन हंगामा जारी रहने के कारण सदन को दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा का हाल भी कुछ ऐसा ही रहा। राज्यसभा के चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन और डिप्टी चेयरमैन हरिवंश की बार बार अपील के बावजूद विरोध कर रहे सदस्य नारेबाजी करते रहे, जिसके कारण सदन को स्थगित करना पड़ा। सुपर्णा सेकिया और आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया है। आज संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन NDA संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि हाल ही में हुए नीट पेपर लीक मामले में शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 13 आरोपी अभी जेल में हैं।
3: आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया और ये भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिलकर के करें।
0: खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने आज कहा कि सरकार शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। संसद भवन परिसर में श्री पासवान ने विपक्ष से रचनात्मक सुझाव देने और सार्थक बातचीत में भाग लेने का आग्रह भी किया।
4: प्राइम मिनिस्टर इज वेरी क्लियर कि हमें रिफॉर्म्स करने होंगे. हर मंत्रालय को कहा जा रहा है इंक्लूडिंग शिक्षा मंत्रालय कि आप रिफॉर्म्स लाइए. आज की परिस्थिति के हिसाब से हम लोग को व्यवस्था निर्माण करने की जरूरत है. आप सुझाव देंगे हम करेंगे रिफॉर्म. कल से संवाद के दरवाजे खुले हैं.
0: वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा है कि सरकार ने बदलती वैश्विक भू राजनैतिक और आर्थिक स्थितियों के बीच निर्यात बाजारों में विविधता लाने के लिए कई कदम उठाए हैं. लोकसभा में एक लिखित उत्तर में श्री प्रसाद ने कहा कि इनमें मुक्त व्यापार समझौते और व्यापक आर्थिक साझेदारी तथा सहयोग समझौतों का विस्तार करना और प्राथमिकता वाले बाजार पहुंच हासिल करने के लिए प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं और क्षेत्रों के साथ व्यापार वार्ता करना शामिल है. भारत का वस्त्र और परिधान निर्यात 2025-26 में 3,25,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा, जिसमें 1.8% की वृद्धि दर्ज की गई. लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि सरकार ने वस्त्र और परिधान क्षेत्र की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता और निर्यात को मजबूत करने के लिए कई योजनाएं लागू की हैं. ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं. समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत. मध्य प्रदेश विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पारित कर दिया. मानसून सत्र के दूसरे दिन सदन में हंगामे और विपक्ष के कड़े विरोध के बीच यूसीसी विधेयक पारित हुआ. एक रिपोर्ट.
5: कांग्रेस विधायकों ने बिल को प्रवर समिति के पास भेजने की मांग की, लेकिन सरकार ने ये मांग खारिज कर दी. इसके बाद विपक्षी विधायक सदन के बीच में आकर नारेबाजी करने लगे और कार्यवाही दो बार स्थगित करनी पड़ी, लेकिन सरकार ने बहुमत के बल पर बिल को पास करा लिया. राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू हो जाएगा. यूसीसी के प्रमुख प्रावधानों के अनुसार प्रदेश में एक से अधिक विवाह मान्य नहीं होगा. तलाक की प्रक्रिया कानूनी होगी और महिला पुरुष को समान उत्तराधिकार का अधिकार मिलेगा. लिविंग रिलेशनशिप में 1 महीने के भीतर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा और विवाह का रजिस्ट्रेशन ग्रामीण स्तर तक जरूरी किया जाएगा. हालांकि आदिवासी समाज को इससे अलग रखा गया है. अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल.
0: सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने नामची जिले के समरदुंग में राष्ट्रीय जल विद्युत निगम NHPC की घटना की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है. घटनास्थल से अब तक 12 शव निकाले जा चुके हैं और 13 अन्य लोग अभी भी सुरंग के अंदर फंसे हुए हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम के मुख्यमंत्री से बात करके हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है. श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के निकट परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है.
6: सिक्किम के गवर्नर ओम प्रकाश माथुर और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ओले ने आज दुर्घटना वाली जगह का दौरा किया और हालत का जायजा लिया. श्री गोले ने उम्मीद जताई कि एक उच्च स्तरीय जांच से इस दुखद घटना से जुड़ी सभी बातें सामने आ जाएंगी. उन्होंने कहा कि सिक्किम सरकार मृतकों के परिवार को मुआवजा देगी. इस बीच सिक्किम के मुख्य सचिव ने भी आज नामची में अलग अलग विभागों के साथ समीक्षा बैठक की ताकि चल रहे बचाव अभियान में तेजी लाई जा सके. इस बीच NDRF की और एक टीम नए उपकरणों के साथ बचाव अभियान में लगे हुए है. मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक.
0: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में तत्काल स्थानांतरित करने का आदेश दिया है. मुख्य न्यायाधीश DK उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश पारित किया. सरकार ने दिल्ली में नीट पेपर लीक मामले में विरोध कर रहे लोगों पर पुलिस के पैलेट गन का इस्तेमाल करने की सोशल मीडिया की खबरों को गलत बताया है. सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस द्वारा कील लगे डंडों के इस्तेमाल करने के दावों को भी खारिज कर दिया है. पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि ये दावे झूठे हैं. झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर प्रतिबंधित नक्सली संगठन के कट्टर माओवादी अजय महतो की पत्नी अनीता किस्कू उर्फ बबीता महतो ने आज गिरिडीह पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया. गिरिडीह के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने बताया कि उसे झारखंड सरकार की नई दिशा एक नई पहल पुनर्वास नीति के तहत 3 लाख रुपए की सहायता और अन्य पुनर्वास सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.sanskritbhavan.org

0: ही देश व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने पर सहमत हुए हैं।
1: आर्थिक सहयोग हमारे द्विपक्षीय संबंधों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ है। हम अपने द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर भी सहमत हुए। हमने आईटी, कृषि, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स तथा टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और फिल्म मेकिंग सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा। हम स्वास्थ्य सेवा में सहयोग पर अपने द्विपक्षीय अग्रीमेंट को भी रिन्यूअल कर रहे हैं।
0: पश्चिम एशिया में ईरान और अमरीका के एक दूसरे पर लगातार 10वें दिन हमले जारी रहने से हॉर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। ईरान की अर्ध सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार बुशहर प्रांत को भी निशाना बनाया गया है। एक रिपोर्ट।
2: ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजर रहे एक टैंकर पर हमला किया, वहीं अमरीका ने ईरान के भीतर तक हवाई हमले किए। इस बीच ईरान के एक अधिकारी ने आज पाकिस्तान में मध्यस्थों के साथ बैठकें शुरू की। ईरान और अमरीका के बीच अंतरिम समझौते को बचाने के राजनयिक प्रयास भी लगातार जारी है। इससे पहले अमरीका ने हमलों में दक्षिण पश्चिमी ईरान के हॉर्मुज शहर को निशाना बनाया। जॉर्डन, कुवैत और बहरीन ने ईरान की ओर से नए हमलों की जानकारी दी है। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी JAAC ने आज कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर POJK में बंद और चक्का जाम जारी है। JAAC ने आंदोलन के दौरान मारे गए लोगों के लिए न्याय और अपनी मांगे मनवाने के लिए 23 जुलाई को विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का आह्वान किया है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन में गुजरात, पूर्वी राजस्थान और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम, मेघालय, बिहार, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, उत्तराखंड, विदर्भ और पश्चिमी राजस्थान में अगले 3 दिनों में तेज बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी कल तक आंधी तूफान की संभावना है। दिल्ली में कल बादल छाए रहने का अनुमान है। हॉकी इंडिया ने बेल्जियम और नीदरलैंड्स में 15 से 30 अगस्त तक होने वाले हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय पुरुष टीम की घोषणा कर दी है। टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह संभालेंगे। मोहित एचेस और सूरज करकेरा गोलकीपर के रूप में हैं। हरमनप्रीत सिंह, अमित रोहित, जुगराज सिंह, सुमित मनप्रीत और हार्दिक सिंह भी इस टीम का हिस्सा हैं। उधर कनाडा के नियाग्रा ऑन द लेक में विश्व स्क्वॉश जूनियर चैंपियनशिप में 7 भारतीय खिलाड़ी अगले दौर में पहुंच गए हैं। महिला वर्ग में अनाहत सिंह, सानवी कलंकी, अनिका दुबे और रुद्र सिंह ने अगले दौर में जगह बना ली है। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार नीट पेपर लीक और संबंधित मुद्दों पर संसद में चर्चा को तैयार। विपक्ष के विरोध के बाद संसद दिन भर के लिए स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट पेपर लीक मामले में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। कहा, सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठा रही है। भारत और उत्तरी मैसिडोनिया स्कोपिये में राष्ट्रपति स्तरीय वार्ता के बाद व्यापार बढ़ाने और प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग और मजबूत करने पर सहमत। मध्य प्रदेश विधानसभा ने समान नागरिक संहिता विधेयक पारित किया और भारत ने अगले महीने से शुरू होने वाले पुरुष हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय टीम की घोषणा की। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Government says it is ready to discuss NEET paper leak issue and other related matters in Parliament. Both houses adjourned for the day amid opposition protests. Prime Minister Narendra Modi vows strict action against those involved in NEET issue, says government taking steps to prevent such incidents. India and North Macedonia agree to enhance trade and cooperation in key sectors after presidential level talks in Skopje. Madhya Pradesh Assembly passes Uniform Civil Code Bill. US and Iran trade strikes for the 10th day in a row, mounting tensions over Strait of Hormuz. And in hockey, 20-member Indian squad led by Harmanpreet Singh announced for the Men's World Cup set to begin next month. And now the news in

0: और ये शेर भी समाप्त फरमा लें,
1: अता करें।
0: बात कहते हुए मैं डरता हूँ,
1: बात कहते हुए मैं

0: नमाज़िश है,
1: बहुत
0: दोस्त दुश्मन बने पता न लगे।
1: दोस्तों ये मोहतरम जनाब एजाज धामपुरी जो अपनी गजल से नवाज रहे थे, इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हमारे दरमियान एक और शख्सियत मोहतरम जनाब राशिद हमीदी यहाँ तशरीफ रखते हैं। मैं बड़े अदब व एहतराम से उन्हें शेर के साथ ज़हमत सुखन दूंगा कि खुदा के वास्ते मोहरे सकूत तोड़ भी दे, तमाम शहर तेरी गुफ्तगू का प्यासा है।
2: मतलब पेश खिदमत है,
1: अता कर
2: समात फरमाए। जो शे जुनू है फसल बहारा को क्या करें,
1: वाह।
2: जो शे जुनू है फसल बहारा को क्या करें,
1: बहुत उम्दा।
2: हम

0: मुझे लूटा है मेरे हम सफर ने। और शेर भी समाज फरमाए
1: अता करें।
0: उसी

0: तो दिखाने लगे मुझे, मन
1: वाह
0: से मेरे मिलके जलाने लगे
1: वाह
0: मुझे।
1: वाह,
0: आइए हजरत, इस समखराशी के बाद अब मैं एक बहुत ही अजीम शख्सियत, उस्ताद शायर मोहतरम जनाब तैयब आजाद शेरकोटी साहब को इस शेर के साथ जहमत सुखन दूंगा कि कसम खुदा की मोहब्बत नहीं अकीदत है, कसम खुदा की मोहब्बत नहीं अकीदत है, दयारे दिल में बहुत एहतराम है तेरा।
2: बहुत बहुत शुक्रिया बहार शमसी,
0: जज़ाकअल्लाह।
2: मतलब अर्ज करता हूं कि तुम्हारी याद दर्पण हो गई है,
0: वाह वाह वाह, तुम्हारी
2: तुम्हारी याद
0: दर्पण हो गई है,
2: दर्पण हो गई है, गजल सज धज के दुल्हन हो गई है।
0: क्या बात है भाई, वाह वाह,
2: तुम्हारी याद दर्पण हो गई है,
1: गजल
2: गजल सज धज के दुल्हन हो गई
0: वाह
2: है,
0: वाह वाह,
2: और तुम्हारा हुस्न सर आंखों पे, लेकिन तुम्हारा हुस्न सर आंखों पे, लेकिन मोहब्बत दिल के कारण हो गई है।
0: बहुत अच्छा है, वाह वाह,
2: तुम्हारा हुस्न सर आंखों पे, लेकिन
0: भाई वाह वाह वाह,
2: मोहब्बत दिल के कारण हो गई है।
0: वाह वाह वाह,
2: और एक नेचुरल शेर पेश करता हूँ, मुलाजा फरमाए तमाम हजरात, के
1: अच्छा,
2: हवा ने पायलें पैरों में बांधी,
0: हवा ने पायले पैरों में
2: हवा में हवा ने पायलें पैरों में बांधी, फजा में छन छनाछन हो गई है,
0: बहुत अच्छा बहुत अच्छा,
2: फजा में छन छनाछन हो गई है।
0: बहुत उम्दा,
2: और
0: बहुत
2: शेर अर्ज करता हूँ कि किसी का नाम क्या आया लबों पर,
0: अच्छा,
2: किसी का नाम क्या आया लबों पर, मेरी आवाज रोशन हो गई है।
0: बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है,
2: किसी का नाम क्या आया लबों पर,
0: मेरी आवाज रोशन,
2: मेरी
0: हो गई,
2: आवाज रोशन हो गई
0: वाह
2: है।
0: वाह वाह,
2: मुलाहिज़ा फरमाए के जरूरत ले उड़ी सोना बदन का,
0: अच्छा,
2: जरूरत ले उड़ी
0: सोना बदन,
2: सोना बदन का, वो शहजादी भिकारन हो गई,
0: बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है,
2: जरूरत ले
0: बहुत
2: उड़ी सोना बदन का,
0: उम्दा है,
2: वो शहजादी भिकारन हो गई है, और वही
0: वाह
2: रूठा हुआ है जिसके कारण,
0: वाह,
2: वही रूठा हुआ है
0: जिसके कारण,
2: जिसके कारण कई यारों से अनबन हो गई है,
0: बहुत अच्छा, वाह वाह वाह,
2: कई यारों से
0: वाह
2: अनबन
0: वाह
2: हो गई है। और
0: वाह
2: गजल
0: वाह
2: का यह
0: वाह,
2: आखिरी शेर पढ़ता हूँ कि
0: अतः
2: तुम्हारी याद असली हो के नकली, तुम्हारी दाद असली हो के नकली,
1: अच्छा,
2: मगर यारो गजल डन हो गई है,
0: बहुत अच्छा है,
2: मगर यारो गजल डन हो गई
0: क्या बात
2: है,
0: है भाई, वाह वाह वाह, अच्छा,
2: तुम्हारी याद दर्पण हो गई है, गजल
0: क्या
2: सज धज के दुल्हन हो गई है।
1: बात,
2: मतलब अर्ज है, मौसम खुशबू बादल सूरज,
0: वाह,
2: मौसम

0: जब जब कपड़े बदलेगा, वो जब जब कपड़े बदलेगा, हुस्न गजल बन जाएगा। वो जब जब कपड़े बदलेगा, हुस्न गजल बन जाएगा, मौसम खुशबू बादल सूरज।
1: शेर पेश करता हूँ,
2: अता करिए, अता करिए।

0: महाराज हैं, और
1: गंगा जमनी तहजीब को मलहूजे निगाह रखते हुए शेर मुलाहिज़ा फरमाएं। प्यार के ये पाकीज़ा रिश्ते खत्म न होंगे सदियों तक,
0: बेशक
1: प्यार

0: मौसम खुशबू बादल सूरज, मौसम खुशबू बादल सूरज।
1: बहुत गजल का आखिरी शेर पेश करता हूँ,
2: अता करे अता करे।
0: नदिया प्यासा गोरी पनघट, चांद चकोरी धूप और छांव।

0: मौसम खुशबू बादल सूरज
1: जी।
0: चांद कमल बन जाएगा। शुक्रिया हजरात।
1: हाजरीन, हमारे स्टूडियो में जो शोरा इकराम जिन्होंने अपने कलाम से नवाजा, उसमें मोहतरम जनाब तैयब आजाद शेरकोटी, मोहतरम जनाब एजाज धामपुरी साहिब, मोहतरम जनाब राशिद हमीदी और खाकसार मैं बहार शमसी। इस शेर के साथ इस नशिस्त का खत्म करता हूँ कि अब तो जाते हैं मैं कदे से मीर, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया।
2: अभी आप सुन रहे थे शेर नशिस्त। शेर नशिस्त में प्रतिभागी थे श्री तैयब वाले अहमद, श्री एजाज धामपुरी, मोहम्मद राशिद और शेर नशिस्त का संचालन कर रहे थे श्री बहारुद्दीन शमशी। मीडियम वेव 314.47 मीटर था 954 किलो हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। हम अपने श्रोताओं को एक बार पुनः याद दिलाते हैं कि कल रात 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम चर्चा का विषय और 8 होगी संसद समीक्षा। दोनों कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। गीत संध्या कार्यक्रम होगा कल रात 8:15 पर, 8:30 होगा कार्यक्रम एक ही फिल्म से कानून की बात। ये कार्यक्रम हम अपने लखनऊ केंद्र से प्रसारित करेंगे कल शाम 7:32 पर। भाई हरजिंदर सिंह के गाए शब्द आप सुन सकते हैं सुगम संगीत कार्यक्रम में कल शाम 7:45 पर, और 6:45 पर विविधा कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे वार्ता भारतीय संविधान में लोक कल्याण के तत्व। वार्ताकार होंगे डॉक्टर अमित कुमार सिंह। कृषि जगत कार्यक्रम में कल शाम 6:05 पर आप सुनेंगे नए फलदार वृक्षों की रोपाई करते समय सावधानी विषय पर डॉक्टर प्रतिमा गुप्ता से प्रमोद सिंह की बातचीत। श्रोताओं, ये थी कुछ कार्यक्रम संबंधी जानकारी। मीडियम वेव 314.47 मीटर पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। राज्य स्तरीय प्रसारण के अंतर्गत आप सुनेंगे कार्यक्रम खेल दर्पण, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेल दर्पण।
1: खेल दर्पण।
2: श्रोताओं नमस्कार। कार्यक्रम खेल दर्पण का आज का अंक लेकर हाजिर हूं मैं नमित राज और प्रस्तुति है आकाशवाणी नजीबाबाद की। कार्यक्रम के आज के अंक में हम आपको सुनवाएंगे 23वीं एशियाई मास्टर्स एथलेटिक्स प्रतियोगिता में रजत पदक जीतने वाले अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी एवं एथलेटिक्स कोच तरुण सहरावत से भेंटवार्ता। नेपाल और भारत के बीच खेली गई अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी श्रृंखला में भारत की ओर से प्रतिभाग करने वाले कबड्डी खिलाड़ी तनिष्क कुमार से भेंटवार्ता और साथ ही आप सुनेंगे इस हफ्ते के प्रमुख खेल समाचार। तो चलिए शुरू करते हैं कार्यक्रम खेल दर्पण का आज का ये सफर बीते हफ्ते के प्रमुख खेल समाचारों के साथ। खेल समाचारों की शुरुआत करते हैं फुटबॉल से। अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको की संयुक्त मेजबानी में खेले गए फुटबॉल विश्व कप 2026 के फाइनल में स्पेन ने गत चैंपियन अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर विश्व कप की ट्रॉफी जीत ली है। रोमांच से भरे फाइनल मुकाबले में निर्णायक गोल दागा स्पेन के फेरान टोरेस ने। वहीं स्पेन के कप्तान रोड्री को पूरे टूर्नामेंट में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए गोल्डन बॉल से सम्मानित किया गया। गोल्डन बूट का खिताब फ्रांस के किलियन एम्बापे को दिया गया जिन्होंने टूर्नामेंट में कुल मिलाकर 10 गोल दागे। तीसरे स्थान के मुकाबले में इंग्लैंड को हराकर फ्रांस ने तीसरा स्थान हासिल किया। इस बार के विश्व कप में पहली बार कुल 48 टीमों ने हिस्सा लिया जो अब तक के इतिहास में एक रिकॉर्ड है। क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच खेली गई द्विपक्षीय वनडे श्रृंखला को इंग्लैंड ने 2-1 से अपने नाम किया। श्रृंखला का फाइनल मुकाबला 19 जुलाई को खेला गया जिसमें मेजबान इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवर में 3 विकेट खोकर 387 रन बनाए। बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत की टीम 7 विकेट खोकर 360 रन ही बना सकी और 27 रनों से ये मुकाबला हार गई। भारत की तरफ से रोहित शर्मा ने शानदार 138 रनों की शतकीय पारी खेली। इस मैच में हरफन मौला खेल दिखाने वाले जैकब बेथेल को मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया जिन्होंने 91 रन बनाने के साथ एक विकेट भी लिया। वहीं जो रूट को सीरीज का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया। भारत की स्टार शटलर पीवी सिंधु ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जापान ओपन 2026 का महिला एकल खिताब जीत लिया है। दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने टूर्नामेंट के फाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए मेजबान जापान की स्टार खिलाड़ी अकाने यामागुची को सीधे गेमों में 21-17, 21-17 से हराकर पहली बार जापान ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीता। 31 वर्षीय पीवी सिंधु इस जीत के साथ ही जापान ओपन जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी भी बनी। इस बार की विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 17 से 23 अगस्त 2026 तक नई दिल्ली, भारत में आयोजित होगी। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में होने वाले इस 30वें संस्करण में विश्व के शीर्ष खिलाड़ी 5 श्रेणियों पुरुष एकल, महिला एकल, पुरुष युगल, महिला युगल और मिश्रित युगल में खिताब के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। ये प्रतिष्ठित टूर्नामेंट 2009 के बाद पहली बार भारत में वापसी कर रहा है। भारतीय दल में पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन के नेतृत्व में 10 भारतीय खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में भाग ले रहे हैं। अगली खबर बॉक्सिंग से। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में आयोजित एशियन अंडर 19 एवं अंडर 23 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 19 पदक जीते। भारत ने इस प्रतियोगिता में 5 स्वर्ण, 10 रजत और 4 कांस्य पदक जीते। अंडर 19 महिला वर्ग में भारत ने 2 स्वर्ण और 6 रजत पदक जीते। 51 किलोग्राम भार वर्ग में चंद्रिका भोरेश पुजारी और प्राची ने स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। वहीं अंडर 23 महिला वर्ग में भारत ने 1 स्वर्ण, 4 रजत और 4 कांस्य पदक जीते। वहीं पुरुषों में स्वर्ण पदक विजेता रहे 50 किलो भार वर्ग में विश्वनाथ सुरेश और मुक्केबाज गंगा ने 55 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया। बेल्जियम और नीदरलैंड की संयुक्त मेजबानी में 15 से 30 अगस्त तक होने वाले महिला हॉकी विश्व कप के लिए शुक्रवार को भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई। सलीमा टेटे टीम की कप्तान होंगी जबकि सोर्ड मराइन मुख्य कोच की भूमिका में रहेंगे। विश्व कप के लिए उसी टीम को चुना गया है जिसे कुछ दिन पहले एशियाई खेलों के लिए चुना गया था। कुश्ती में हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में आयोजित यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग रैंकिंग सीरीज में भारतीय पहलवानों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 12 पदक अपने नाम किए। भारत ने प्रतियोगिता में 3 स्वर्ण, 3 रजत और 6 कांस्य पदक जीते। भारत के लिए अमन सहरावत ने 57 किलो फ्रीस्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। महिलाओं में नेहा सांगवान ने 59 किलो और काजल ढोचक ने 76 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसके अलावा अंतिम पंघाल, मानसी अहलावत और हंसिका लांबा ने अपने अपने भार वर्ग में रजत पदक जीते। साल 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन 23 जुलाई से 2 अगस्त 2026 तक ग्लासगो स्कॉटलैंड में किया जाएगा। इन खेलों में 126 भारतीय एथलीट हिस्सा ले रहे हैं। उद्घाटन समारोह में ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन भारतीय दल की अगुवाई करेंगी। बीते हफ्ते के प्रमुख खेल समाचारों को जानने के बाद आइए कार्यक्रम खेल दर्पण के इस अंक को आगे बढ़ाते हैं और अब आपको सुनवाते हैं 23वीं एशियाई मास्टर्स एथलेटिक्स प्रतियोगिता में रजत पदक जीतने वाले अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी एवं एथलेटिक्स कोच तरुण सहरावत से भेंटवार्ता। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने पहले भारतीय सेना में रहकर देश की सेवा की और फिर खेल के मैदान में देश का गौरव भी बढ़ाया। तरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
1: नमस्कार, मैं तरुण सहरावत। मैं एक नजीबाद तहसील के एक छोटे सा गांव पड़ता चमरौला
2: जी,
1: मैं उसका निवासी हूं और मेरे फादर मुझे एमबीबीएस कराना चाहते थे। अब मेरी रुचि क्या हुआ कि हमारे यहाँ क्षेत्र कंपटीशन था एथलेटिक्स का, तो महावीर पीटीआई जी थे एक हमारे, तो मैं बोला सर मैं भी खेलने जाऊं। बोला नहीं नहीं पढ़ाई करो।
2: अच्छा।
1: मैं चला गया। अगले दिन मैं चुपचाप वहाँ जहाँ कंपटीशन होता वहाँ गया
2: जी,
1: तो मेडल तो नहीं आया वहाँ, कोई प्लेस नहीं आई, मगर पीटीआई ने मुझे देख लिया, बोला इधर आ। तो मेरे 2-3 रैपट उसने साहब मारे।
2: अच्छा।
1: बस उसी टाइम ही पता नहीं क्या हुआ, मन ये किया कि अब मैं करके दिखाऊंगा। गांव में नहर थी, नहर पर प्रैक्टिस करता था मैं
2: जी,
1: नहर पे प्रैक्टिस कर करके मैं अपना जिला स्तर का कंपटीशन खेला, वहाँ मेडल आए, फिर मंडल स्तर 4 जिलों में खेला, वहाँ मेडल आए। तो ललक ये थी कि बस इंडिया खेलना, उस टाइम पर पीटी ऊषा भागती थी
2: जी। अच्छा, उस समय आपकी उम्र क्या थी?
1: छोटा था, 6th क्लास में था।
2: 6th क्लास में थे आप, और 6th क्लास में आपने पीटी उषा,
1: हाँ
2: पीटी उषा को देख के शुरू किया था।
1: पीटी उषा जी थी, उनके मेरे पापा उनकी कहानियां सुनाते थे
2: जी,
1: तो बस यही उन्हीं की देखते हुए मैं आगे बढ़ता रहा। और एक कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिला कि प्रॉपर प्रैक्टिस हो जाए, कोच नहीं मिला, फिर भी मैं हौसला नहीं छोड़ा,
2: हौसला नहीं छोड़ा।
1: स्टेट चैंपियन में गए, वहां से मैं फिर जूनियर नेशनल में मेडल दिया
2: जी,
1: उसमें गोल्ड था। फिर यूनिवर्सिटी आया खेलने के लिए, जब इंटर हो गया वहाँ से मेरा सिल्वर।

0: मेडल था।
1: तरुण जी, खेलों की दुनिया से निकल कर आप सेना में भर्ती हुए
0: जी,
1: ठीक है, तो जो सेना का अनुशासन था
0: जी,
1: वो कितना काम आया खेलों में?
0: सर जब हम फौज के अंदर गए तो कुछ थोड़ा सा ऐसा था कि यार इनडिसिप्लिन टाइप रहता सिविल आदमी। जब हम वहाँ गए हमने थोड़ा सा ट्रेनिंग भी किया
1: जी,
0: और ट्रेनिंग में ये पता चला कि यार ये जो जो हम एक डिसिप्लिन में बॉडी रखते हैं ये हमारे माइंड को भी फोकस करता, हमारी बॉडी को भी फोकस करता, तो डिसिप्लिन तो मस्ट है, उसके बगैर तो हम कुछ कर भी नहीं सकते।
1: अच्छा, जैसे सेना में आप थे तो एक तो सेना की ड्यूटी होगी, एक आप खेल भी खेल रहे थे, तो दोनों को मैनेज कैसे करते थे?
0: ड्यूटी तो कभी कभी देनी पड़ती थी
1: अच्छा,
0: क्योंकि मैं स्पोर्ट्समैन था और कोई भी अधिकारी ये नहीं चाहता कि मेरा स्पोर्ट्समैन अगर ड्यूटी देगा ज़्यादा तो फिर वो प्रैक्टिस में मेडल नहीं ला पाएगा। फिर भी ऐसा नहीं था कि हम फ्री सो रहे थे, हम ड्यूटी भी देते थे, कुछ ऐसी ड्यूटीज थी जो हम कर सकते थे। और हमारे जो बड़े सीनियर थे, कोचेस थे, उन्होंने यही सिखाया था कि यार कुछ पाने के लिए कुछ थोड़ा तो
1: खोना पड़ता
0: खोना
1: है
0: पड़ता,
1: जी।
0: तो ये चीज़ें तो नॉर्मल थी कि ड्यूटी वगैरह ये तो नॉर्मल हो जाती है, मगर एक मेडल लाने के लिए जो हमारा संघर्ष था वो कड़ा था
1: बिल्कुल
0: जी। उसमें डाइट फोकस हो जाता, उसकी मेहनत हो जाती, कभी कभी ऐसा होता कि इंजरीज आ जाती हैं, कभी हैमस्ट्रिंग खिंच जाना,
1: जी।
0: कभी कोई और प्रॉब्लम हो जाना, तो उससे क्या होता था, डिस्टरबेंस तो होता था एक खिलाड़ी को।
1: जी, अच्छा, आपने तरुण जी इंजरीज के बारे में बात की, चोट भी लग जाती है, तो ऐसे में हमारा जो माइंडसेट है वो थोड़ा सा वीक कहीं ना कहीं होने लगता
0: बिल्कुल
1: है,
0: सर।
1: तो उससे कवर अप कैसे करते हैं अपने आप को?
0: सर जब एक स्पोर्ट्समैन को इंजरी हमें भी हो जाती है,
1: जी
0: और होता क्या है कि हम लोग एक्स्ट्रा कर जाते हैं कुछ वर्क,
1: अच्छा,
0: जैसा अभी हैमस्ट्रिंग खींचने का मैटर हो जाता है कि भैया तुमने उस पर ज़्यादा लोड कर दिया इसलिए वो खींची, और एक कोई भी मसल खींचने के लिए कम से कम नहीं तो 4 से 5 दिन लगते हैं सही होने के लिए।
1: जी
0: हम क्या करते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं तुरंत एकदम, यार मेरा कंपटीशन आ गया, मैं भी स्पोर्ट्समैन होता क्योंकि वो मेहनत करने वाला बंदा होता है, रेस्ट कैसे करे,
1: बिल्कुल।
0: अंदर से इतना दर्द होता है कि वो जाहिर नहीं कर सकता क्योंकि मेरे साथ होता
1: अच्छा,
0: रहता है।
1: एक चीज़ और होती है कि जैसे एक तो अगर हम कंटिन्यू किसी चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसमें अगर बीच में ब्रेक हो गया 10-5 दिन का, तो
0: जी
1: वो भी बड़ा फर्क
0: बहुत
1: हो
0: सर,
1: जाता है।
0: वो फर्क इतना पड़ता है कि अगर हमारी ट्रेनिंग 10 दिन छूट चुकी है
1: हाँ
0: तो हम 3 महीने पीछे चले जाएंगे,
1: बिल्कुल,
0: उस बॉडी को कवर करने के लिए हमको कम से कम नहीं तो 15-20 दिन तक लगना पड़ेगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अभी तक हम बात कर रहे थे अपनी उस जर्नी की जब तक आप सेना में रहे,
0: जी
1: तो रिटायरमेंट क्यों लिया था?
0: सर, इसका एक मेन कारण ये था कि जब मैं कभी इंडिया लेवल या फिर बाहर खेलने जाता था तो
1: जी
0: अपने क्षेत्र का बच्चा बड़ा कम निकलता था,
1: अच्छा।
0: तो मुझे ऐसा लगा यार मैं अगर मेरी सर्विस पूरी हो गई है, पेंशन मेरी मिलने लगी है,
1: जी
0: तो यार मैं चलता हूँ और अपने क्षेत्र के बच्चों को निकालने का काम करूँगा
1: अच्छा।
0: जी। मैंने उसी के खातिर NIS किया, योगा कोर्स किया, न्यूट्रिशन का कोर्स किया कि मैं एक जब बच्चों को सिखाना जाऊँ तो मेरे पास सब कुछ हो जो प्रॉपर मैं उसको फेस करा सकूँ।
1: NIS का आपने जिक्र किया, NIS के बारे में थोड़ा सा डिटेल जानना
0: जी
1: चाहेंगे हम।
0: सर, NIS होता है एक अच्छा कोच बनाने के लिए,
1: अच्छा।
0: उसमें सब कुछ सिखाया जाता है, जैसे कि आपका कई सारे इवेंट मिलते हैं उसमें जो एथलेटिक्स के, जैसे एथलेटिक्स वाला NIS कर रहा है या फिर कुश्ती में कर रहा है या फिर किसी और इवेंट में कर रहा है, अलग
1: जी
0: अलग इवेंट के अलग अलग होते हैं, वहाँ पढ़ाई होती है पूरी तरीके से कैसे हम बच्चों को फेस करा दें।
1: अच्छा।
0: हाँ, 0 से बिल्कुल एकदम, जब लास्ट में 1 साल हो जाता है, टेस्ट होते रहते हैं बीच में, 1 साल का होता है या पटियाला होता है, ग्वालियर होता है, कोलकाता में भी होता है, तो मैंने जो किया था वो पटियाला किया था।
1: अच्छा।
0: पढ़ाई भी बढ़िया होती है वहाँ, पढ़ाई करनी पड़ती है, फिर हर एक टेस्ट को पास करना पड़ता
1: जैसे आपने कहा कि जो खेलों में प्रशिक्षण देना चाहते हैं
0: जी।
1: उनके लिए ये कोर्स होता है,
0: यस
1: तो कौन अप्लाई कर सकता है इसमें,
0: सर,
1: कौन?
0: अभी तो इसमें कैटेगरी रख दिया कि आपका नेशनल में मेडल होगा तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो
1: अच्छा,
0: जी।
1: मिनिमम क्वालिफिकेशन
0: हाँ,
1: नेशनल
0: नेशनल में
1: का।
0: मेडल,
1: जी
0: या फिर आप कोई ऐसा ओपन नेशनल खेल रहे हो जो हाई लेवल की गेम है और आपका मेडल भी नहीं आया, क्वालिफाई भी कर दे तो भी आप खेल सकते हो।
1: अच्छा।
0: इसके लिए शॉर्ट भी है, 6 वीक का सर्टिफिकेट कोर्स भी है NIS का, आप उसको कर सकते हो, उसमें भी प्लेटफॉर्म है।
1: यानी जो प्रशिक्षण वहाँ पे प्राप्त कर रहे हैं इनका भी फिटनेस टेस्ट
0: बिल्कुल
1: होता
0: सर,
1: होगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: अच्छा, इस दौरान ही आपका जो ये खिलाड़ी वाला सफ़र था, जो आप
0: जी,
1: बाधा दौड़ के प्लेयर हैं, तो ये भी चलता रहा कंटिन्यू
0: यस
1: साथ में,
0: जी
1: तो थोड़ा सा वहाँ का अनुभव हम जानना चाहेंगे कि आपने
0: जी
1: एशियन गेम्स में परफॉर्म किया और वहाँ पे सिल्वर

0: जल आपको प्राप्त हुआ,
1: जी
0: कैसा लगा ये उपलब्धि पाकर?
1: सर, मैं जब खेलने के लिए गया तो अनुभव ये रहा कि मैंने ये देखा कि यार हमारे इंडिया से बाहर का कंट्रीज का वहाँ एक तो टेक्निकल फेस ज़्यादा है, सुविधाएं ज़्यादा हैं, और दूसरा वहाँ के कोच अव्वल दर्जे के हैं। हमारे इंडिया में भी हैं बहुत अच्छे अच्छे कोचेस हैं जो अच्छी परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं। थोड़ा सा क्या ना कि माहौल नहीं मिल पा रहा,
0: अच्छा।
1: दूसरा ट्रैक नहीं मिल पा रहा किसी फील्ड पे जाने के लिए। अभी मैंने एक स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट ओपन किया है
0: जी
1: जिसमें हम बच्चों को बहुत अच्छी प्रैक्टिस एथलेटिक्स की, एथलेटिक का फिजिकल फिटनेस होती है वहाँ।
0: अच्छा
1: जब आप अच्छे लेवल का फिजिकल फिटनेस करोगे तभी तो किसी गेम में जाओगे।
0: हाँ बिल्कुल
1: उसका टेस्ट होते रहते हैं स्किल टेस्ट, स्पोर्ट्स के रनिंग के हों चाहे फिर किसी भी चीज़ के हों, तो फिर डिसाइड होता है कि भैया इसको इस गेम में उतारा जाए, 100% रिजल्ट देगा।
0: तो क्या क्या सुविधाएं देते हैं आप वहाँ, क्या क्या कराते हैं बच्चों को?
1: सर मैं वहाँ बच्चों को एथलेटिक्स का ऑल गेम कराता हूँ,
0: जी
1: जितने भी गेम है चाहे वो जैवलिंग हो, लॉन्ग रेस हो, 100 मीटर हो, हर्डल्स हो, या फिर लॉन्ग जंप हो, हाई जंप हो, सबका हम बढ़िया से उनको
0: जी
1: इवेंट वाइज जो प्रैक्टिस कराते हैं। दूसरा फिजिकल फिटनेस बहुत अव्वल दर्जे का, हम लोग उनको भी ट्रेनिंग देते हैं जो अभी फिजिकल फिटनेस की तैयारी कर रहे हैं, जैसे पुलिस की हो गई या
0: अच्छा।
1: आर्मी की हो गई, उनको भी तैयार करते हैं।
0: अच्छा।
1: हाँ, जो बड़े बच्चे हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे बच्चे हैं जो अभी स्टेट खेलने जा रहे हैं या जिला स्तर में गोल्ड मेडल है, जो स्टेट में मेडल है, नेशनल की तैयारी भी कर रहे हैं, उस टाइप के बच्चे भी हमारे पास हैं।
0: आगामी अगस्त में
1: जी
0: आपका सिलेक्शन हुआ है दक्षिण
1: जी
0: कोरिया में
1: जी
0: वर्ल्ड चैंपियनशिप में, तो उसके लिए क्या तैयारी है आपकी?
1: सर, काफ़ी ज़्यादा तैयारी उसके लिए मेरी, और कम से कम नहीं तो 4 से 5 घंटे में वर्क कर रहा हूँ सर। हाँ, बिजनौर हमारा भी कच्चा ट्रैक है, वहाँ से मुझे स्पीड वर्कआउट करने के लिए, हर्डल्स पे वर्कआउट करने के लिए मैं हरिद्वार जाना पड़ता है मेरे को, हफ्ते में 3 डेज़। एक सेक्शन मैंने रखा इवनिंग का, मैं यहाँ से बिजनौर से 11 बजे निकलता हूँ और फिर हरिद्वार थोड़ा रेस्ट करके, और फिर मैं ट्रैक पर 3 बजे या 4 बजे जाता हूँ, 8 बजे मैं वर्कआउट करके फिर वापस आना पड़ता है बिजनौर।
0: अच्छा, ये डेली को डेली का
1: हाँ,
0: रूटीन है
1: हफ्ते में
0: आपका,
1: 3 दिन
0: हफ्ते में 3 दिन?
1: जी।
0: अच्छा।
1: और उसमें क्या ना, देखो ऐसा ना, स्पोर्ट्स में पैसा बहुत खर्च होता है भाई, बहुत ज़्यादा। आपके शूज़, आपके स्पाइक्स, आपकी किट महंगी आती हैं बहुत, आम आदमी अफोर्ड नहीं कर पाता। कुछ बच्चे इतने टैलेंटेड हैं हमारे पास
0: जी
1: कि उनको डाइट नहीं मिल रही, मैं खुद प्रोवाइड कराता हूँ क्योंकि उनमें टैलेंट है। तो हम यही चाहते हैं कि जो बच्चा जिला स्तर में या फिर मंडल स्तर में मेडल आता है स्टेट स्तर में, उनको कम से कम ये तो हो कि हाँ भाई डाइट प्रोवाइड करा दो, क्या क्या खाना, जैसे एक साईं की डाइट चलती है प्रॉपर फेस में, उनको दिलाओ, रहने की व्यवस्था करनी चाहिए, ट्रैक अच्छा होना चाहिए।
0: सही बात है, प्रतिभा देखिए हर क्षेत्र में है, लेकिन सही गाइडेंस की
1: यस
0: ज़रूरत है और सही
1: जी
0: सुविधाओं की ज़रूरत है। एक चीज़ मेरे दिमाग में अभी अभी आ रही है कि जैसे आजकल बच्चे स्टेरॉयड वगैरह लेते हैं
1: जी
0: खिलाड़ी, तो वो कितना सही है और उसके क्या प्रभाव
1: जी
0: पड़ते हैं बॉडी पे?
1: सर, आपने ये सवाल बहुत अच्छा किया है,
0: जी
1: मैं भी सोचने वाला था, इसको बताने वाला था। ये जो एक अभिशाप है स्पोर्ट्स में, हमारे बच्चे जो ये स्टेरॉयड वगैरह ले रहे हैं ना, दे कौन रहे पहले तो ये जो स्टेरॉयड, अगर ये सक्सेस होता तो भारत सरकार क्यों बंद करती इसको? ये एक ऐसा नशा है, ये ऐसा पॉइजन है जो हमारे स्पोर्ट्स को ख़त्म कर रहा
0: खत्म कर रहा
1: जी। तो ये बहुत गलत है और मैं इसके हमेशा विरोध में खड़ा रहूँगा
0: है।
1: कि ये ना हो। अच्छी अपनी डाइट खाओ, घर का खाना बहुत अच्छा खाओ, ट्रेनिंग स्मार्ट तरीके से करो।
0: जी, तो बिल्कुल सही बात आप कर रहे हैं, जड़ पे काम करना ज़रूरी है। कोई भी समस्या तभी ख़त्म हो सकती है जब हम उसकी
1: बिल्कुल
0: जड़ पर काम करें।
1: जी
0: एक लास्ट क्वेश्चन
1: जी जी
0: और मैं लेना चाहूँगा कि जैसे हमारा क्षेत्र बिजनौर है,
1: जी
0: छोटा ज़िला है
1: जी
0: और प्रतिभा की कमी नहीं है,
1: बिल्कुल।
0: तो अपने यहाँ के क्षेत्र के बच्चों को क्या गाइडेंस क्या देना चाहेंगे आप?
1: मैं अपने क्षेत्र के बच्चों को यही गाइडेंस देना चाहता हूँ भाई कि गलत राह पर चलो मत, और भैया मेहनत करो। अभी कुछ देर पहले सर बोल रहे थे स्टेरॉयड का, उसे तो यूज ही मत करो, उसको यूज करोगे आपके फेफड़े, आपके लीवर, ये सब खराब हो जाएंगे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ भाई, मेहनत करो बस, शॉर्टकट कुछ भी नहीं है। सर साथ में मैंने एक चीज़ और ऐड की है, हमारा जो यूथ है वो गलत ट्रैक पर जा रहा, तो मैंने उस यंग बच्चों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने का काम कर रहा हूँ, और हर गांव-गांव जाके
0: अच्छा
1: पेरेंट्स को समझाया जा रहा है, मैं खुद जा रहा हूँ तो इस चीज का फेस कर रहे हैं। दूसरी बात थी जो अभी बताई थी हमने कि भैया स्टेरॉयड नहीं लेना, उस पर भी हम विचार करते हैं और घर वालों को भी समझाते हैं। दूसरा कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं जो बच्चे जो है माँ बाप परेशान है उनसे, यार हमारे सुनते नहीं है
0: जी। मतलब ये ऐसे युवाओं की बात आप कर रहे हैं कि जैसे जो एक तो बेरोजगार हैं,
1: हाँ,
0: पढ़ाई लिखाई कम की है और ज्यादातर नशेखोरी की तरफ बढ़ रहे हैं।
1: यस, अगर हमारा यूथ सही चलेगा, हमारा समाज बदलेगा, हमारा जो समाज की ग्रोथ बदलेगी, सभ्यता चेंज होगी, हमारे अगली पीढ़ी मजबूत होगी,
0: अगली पीढ़ी मजबूत होगी। बिल्कुल सही आपने बात की, क्योंकि ऐसा है ना कि अगर इन पर ध्यान नहीं दिया गया तो क्रिमिनेलिटी भी बढ़ेगी।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तरुण जी, आपने सेना में रहकर देश की सेवा की, खेल के मैदान में देश का नाम रोशन किया और अब नई पीढ़ी के खिलाड़ियों को तैयार करने का काम कर रहे हैं, तो हमारी शुभकामना है कि आपके मार्गदर्शन में और भी प्रतिभाएं आगे आएंगी और देश का गौरव बढ़ाएंगी।
1: धन्यवाद सर।
0: श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए आइए अब आपको सुनवाते हैं नेपाल और भारत के बीच खेली गई अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी श्रृंखला में भाग लेने वाले कबड्डी खिलाड़ी तनिष कुमार से भेंटवार्ता। श्रोताओं, कार्यक्रम खेल दर्पण में आज हमारे साथ हैं युवा कबड्डी खिलाड़ी तनिष। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है तनिष।
2: धन्यवाद सर।
0: तनिष, भारत और नेपाल के बीच में द्विपक्षीय सीरीज हुई थी कबड्डी की, उस कबड्डी टीम के आप प्लेयर हैं, लेकिन सबसे पहले आपका एक शॉर्ट इंट्रो चाहेंगे।
2: सर, मैं मूर्ति देवी सरस्वती इंटर कॉलेज नजीबाबाद जिला बिजनौर का स्कूल का छात्र हूँ। मैं फर्स्ट क्लास में हूँ। मुझे 8th क्लास से ही कबड्डी खेलने का शौक हो गया था। स्कूल में बहुत से लड़के कबड्डी खेलते थे, जो शुरू में डर लगता था कबड्डी की, मेरी पैर हाथ नहीं टूट जाए डर लगता था इस वजह से। फिर जब मैं उसमें फोकस करा तो फिर मेरा डर भागा। फिर हमारे स्कूल में GIC वर्सेस MDS के स्कूल के टीम का मैच हुआ और हमने उसमें पहला स्थान पाया, जब से मुझे बहुत शौक लगा कबड्डी खेलने का।
0: अच्छा तनिष, कबड्डी खेलने का आपको शौक है और आपने, जैसा आपकी बातों से लग रहा है कि स्कूल लेवल से आपने शुरू किया और 8th क्लास से शुरू किया, तो ये जो द्विपक्षीय सीरीज हुई थी इंडिया और नेपाल के बीच में, तो इसमें आपका सिलेक्शन कैसे हुआ उसके बारे में बताइए।
2: सर, मैं अपने दोस्त के बारे में बताता हूँ। मेन कबड्डी प्लेयर मेरा दोस्त विवेक है।
0: अच्छा,
2: तो उसने मुझे बताया हापुड़ में ट्रायल चल रहे हैं
0: जी,
2: वहाँ पर एक कोच थे अरुण कुमार सर, उन्होंने ट्रायल में मेरा सिलेक्शन हुआ। सिलेक्शन के होने के बाद मेरा इंडिया वर्सेस नेपाल के लिए सिलेक्शन हुआ, मैं राइट कॉर्नर रहा हूँ।
0: तनिष, टूर्नामेंट में जैसे हम गए नेपाल, तो आप पहली बार इंडिया से बाहर गए होंगे।
2: यस सर।
0: कैसा महसूस हुआ?
2: सर, बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। इंडिया में पहली बार गए, इंडिया से बाहर जाते जब बॉर्डर से गुजर रहे थे, कुछ अलग सी फील आ रही थी।
0: अलग सी फील आ रही थी, डर भी लग रहा होगा।
2: जी सर जी।
0: अच्छा, इस टूर्नामेंट में कितने मैच हुए थे दोनों टीमों के बीच में?
2: सर, दो मैच हुए थे, वो तीन, सॉरी सर, तीन,
0: तीन तीन मैच हुए थे,
2: जिसमें दो मैच जियो जीत जाती है उसका फाइनल था।
0: अच्छा
2: जी सर,
0: यानी दो मैच नेपाल ने जीते और एक मैच इंडिया ने जीता। अच्छा, कबड्डी का आपको शौक है तनिष, तो आपने बताया कि आप 11th क्लास के स्टूडेंट हैं, पढ़ाई को और कबड्डी को कैसे मैनेज करते हैं?
2: सर, सुबह में मैं रनिंग करने जाता हूँ, जो कि मेन है कबड्डी के लिए
0: जी,
2: जिसकी वजह से सांस ना फूले। 40 मिनट का गेम होता है कबड्डी का, और शाम को 5 बजे के समथिंग मैं अपने ग्राउंड पे जाता हूँ, ग्राउंड पे प्रैक्टिस करता हूँ 3 घंटे। 3 घंटे प्रैक्टिस करने के बाद शाम को करीबन 9 बजे से लेके 10-10:30 बजे लोग पढ़ाई करता हूँ।
0: अच्छा, सेल्फ प्रैक्टिस करते हैं या फिर किसी कोच के अंडर में कर रहे हैं?
2: सर, कोच के अंडर में मैं JD अकेडमी में करता था, पर अभी गर्मी की वजह से मैं यहाँ पर नोएडा में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तो जैसे घर पे ही कर रहा हूँ।
0: तो कहाँ देखते हैं अपने आप को आगामी जो 1-2 साल में अपने आप को, क्योंकि अभी आपकी उम्र काफी कम है तनिष, तो आने वाले समय में अपने आप को कहाँ देखते हैं?
2: सर, बस इंडिया की तरफ से खेलने का सपना है मेरा सर, इंडिया के लिए कुछ करके दिखाना है।
0: इंडिया के लिए कुछ करके दिखाना है। चलिए, थोड़ा सा हम अपनी बात को आपकी पर्सनल लाइफ से जोड़ते हैं। देखिए, जो भी श्रोता हैं जो हमें सुन रहे हैं तनिष, तो वो इस बात में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं कि खिलाड़ी ने कौन सी उपलब्धि हासिल की, वो जानना चाहते हैं कि उसके पीछे की मेहनत आपकी कैसी रही। तो जब आपको पता चला कि आप द्विपक्षीय सीरीज जो नेपाल के साथ इंडिया की हुई उसमें आप सेलेक्ट हो गए हैं, तो उसके बाद तैयारी के लिए कितना वक्त मिला था आपको?
2: सर, मुझे करीबन 1 महीने का समथिंग मिला था, जिसमें मैंने अपने पूरे 100% दिया, सुबह भी शाम भी प्रैक्टिस कर रहा था मैं। फिर मैंने सर थोड़ी सी टाइम के लिए पढ़ाई रोक दी थी।
0: अच्छा
2: जी सर, फिर मेरे क्लास टीचर बोल रहे थे तो स्कूल क्यों नहीं आ रहा है, ये वो है। मैंने सर अभी थोड़ी सी प्रैक्टिस चल रही है, सर ने चलो कर लो, हमारे PTI सर हैं आलोक सर, वे भी हमें बहुत सोर्स करते हैं स्पोर्ट्स के लिए।
0: अच्छा, तो पूरी तैयारी की, आपको 1 महीने का समय मिला, उसका पूरा आपने सदुपयोग किया और
2: जी सर,
0: जी जान मेहनत की। अच्छा, इसके अलावा जैसे ये तो एक टूर्नामेंट की बात रही, इसके अलावा आपने कुछ मंडल स्तर पे खेला हो या नेशनल
2: जी
0: वगैरह
2: सर
0: खेला
2: जी
0: हो?
2: हाँ सर, हमारे स्कूल से स्कूल की टीम गई थी सर, वहाँ से किरतपुर, किरतपुर से नांगल जट, नांगल जट से अमरोहा, अमरोहा में जाकर मंडल स्तर खेलता है अमरोहा में, तो अमरोहा में जाकर अमरोहा की टीम फाइनल हुई थी, पर उसमें मेरा सर सिलेक्शन हुआ था, पर वहाँ पे कुछ ऐसा कारण हुआ कि मैं जा नहीं सका
0: मंडल स्तर के लिए।
2: जी
0: अच्छा तनिष, जैसे देखिए कबड्डी का जो ये गेम है इसमें
2: जी
0: चोट भी काफी लगती है,
2: जी सर
0: तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि मतलब इतनी ऐसी चोट लगी कि आपने सोच लिया छोड़ ही दूं
2: जी
0: कबड्डी?
2: सर इंजरी की बात मैं स्कूल में ही बता रहा हूँ, मैं स्कूल में बड़े बड़े बच्चों के साथ खेल रहा था
0: अच्छा।
2: जी सर, तो मेरे गोड में इंजरी आई थी बहुत तगड़े वाली, तो मैंने ये तक बोल दिया था आज के बाद कबड्डी नहीं खेलूंगा, फिर
0: अच्छा।
2: सर 3 दिन बाद फिर दोबारा खेलने चालू कर दी, फिर 3 दिन बाद जिन बच्चे ने मेरी इंजरी करी थी उन बच्चों के ऊपर ही टैकल पॉइंट करे मैंने
0: बहुत बढ़िया। तो ये होता है कि इम्प्रूवमेंट हमारा, कि इंजरी को हमने बहाना नहीं बनाया कोई, और उससे हम उभर कर वापस आए। एक बात मेरे जहन में अभी आ रही है कि कबड्डी ही क्यों?
2: सर। कबड्डी शुरू से फेवरेट स्पोर्ट्स है, छोटा सा था मैं सर करीबन मान के चलो 9 साल तक का, तो मेरी एक दीदी है वहाँ पर, तो उनके समूह के संतिंग जो ना मैं सानपुर ये यहाँ
0: जी
2: पर कबड्डी खेलना,
0: जी
2: यहाँ
0: जी
2: से
0: जी
2: ही फर्स्ट आया था प्राइस मैंने,
0: अच्छा।
2: जब से और भी ज़्यादा लगन लगी फिर स्कूल में कबड्डी खेलने लगी
0: तो इसलिए आपका इंटरेस्ट कबड्डी में
2: जी
0: है, तो परिवार का कितना सपोर्ट है इसमें?
2: सर। परिवार का ही सपोर्ट है, पर घर वालों को भी डर लगता है कि कहीं बच्चा चोट फिट ना खा ले, इसलिए पापा भी थोड़ा मना करते थे कबड्डी मत खेलो, पर मैंने फिर भी छुप छुप के खेली
0: अच्छा। एक कबड्डी का प्लेयर होने के नाते अगर मैं आपसे व्यक्तिगत सवाल करूं, तो कबड्डी में अगर कोई सफल होना चाहता है बच्चा, तो क्या चीज़ ज़रूरी है सबसे ज़्यादा?
2: सर। पहले फोकस करना, कबड्डी पे फोकस करो और अपनी मेहनत में लगे रहो, ये मत सोचो कि मेरे से खिल नहीं रहा ये नहीं हो रहा, पर एक दिन जरूर हो जाएगा जब मेहनत करते रहेंगे, मेहनत का फल जरूर मिलता है सर।
0: कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं कि लंबाई में ज़्यादा होते हैं, कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो शॉर्ट होते हैं, तो लंबाई का कितना फ़ायदा मिलता है?
2: सर लंबाई के लिए एक तो रेडर ही फायदा देता है, क्योंकि ग्राउंड अलग अलग टाइप के होते हैं, सीनियर का ग्राउंड लंबा होता है, जूनियर का ग्राउंड छोटा होता है, तो रेडर का फायदा लंबाई से बहुत ज़्यादा होता है
0: अच्छा,
2: कि रोकना मुश्किल हो जाता है रेडर को
0: रेडर को
2: जी
0: यानी लंबाई का कहीं
2: जी
0: थोड़ा सा
2: सर
0: इम्पैक्ट ज़रूर पड़ता है
2: जी
0: खेल
2: जी
0: पे।
2: सर जी
0: अच्छा, थोड़ा सा हम बात इस बारे में करेंगे कि जहाँ पे आप कोचिंग ले रहे हैं, प्रशिक्षण ले रहे हैं इसका, वहाँ पे क्या कैसा माहौल रहता है, किस तरह से सिखाते हैं कोच? जैसे सपोज आप यहाँ पर थे, यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी जो कबड्डी के बारे में आपको नहीं पता होंगी, तो वहाँ पे जाके आपका अनुभव कैसा रहा, कि कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली, स्ट्रेटेजी सीखने को मिली?
2: सर। कोच हमारे मतलब हर चीज़ बताते थे, मुझे जो ना राइट कॉर्नर पर चैन मारने नहीं आती, जैसे बोलते हैं कि रेडर को रोके कैसे जाए, मतलब कवर कवर की कोई गलती नहीं होती, कवर को दिखाना दिखाना होता है,
0: अच्छा
2: तो उन्होंने मुझे ये भी सिखाई कैसे लगती है, अपने हाथ से हाथ पकड़ के सिखाई,
0: अच्छा
2: माई बेस्ट कोच मैं उन्हीं मानता हूँ सर
0: अच्छा एक बेहतर कबड्डी प्लेयर बनने के लिए और क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए, जो मतलब आप सोचते हैं कि
2: सर
0: एक एक खिलाड़ी को मिलनी ज़रूर चाहिए?
2: सर कबड्डी प्लेयर को तो ऐसी बात है सर, डाइट पर अपना फोकस देना चाहिए, क्योंकि
0: अच्छा
2: ये खेल जान

0: और प्रस्तुतकर्ता थे अंकित सैनी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के नज
1: खेल दर्पण।

मीडियम वेव 314.47 मीटर तात 954 किलोहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। और आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ धर्मेंद्र। श्रोताओं, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारा ये कार्यक्रम आपकी फरमाइश होता है आपके फरमाइशी पत्रों और व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित। तो श्रोताओं, अगर आप भी हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं अपनी पसंद का कोई गीत,

तो आप अभी सीधे हमारे स्टूडियो में हमें व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं और सुन सकते हैं अपनी पसंद का कोई गीत। तो व्हाट्सएप भेजने के लिए हमारा नंबर है 94-570-78-288, 9457078288। इस नंबर पर आप अभी सीधे हमें मैसेज भेज सकते हैं अभी से लेके 11 बजे तक और सुन सकते हैं अपनी पसंद का कोई गीत। और देखिए, हमारे कुछ श्रोताओं ने मैसेज हमें भेजना शुरू भी कर दिए हैं, लेकिन मैसेज पढ़ने से पहले हम शामिल करते हैं हमारे इन पत्रों को जो पत्र हमें मिले हैं। तो कार्यक्रम का पहले गीत के लिए ये पत्र हमें मिला है शाही मार्केट सिवारा जिला बिजनौर से। भेजने वाले हैं आसिफ चौधरी, बेगम रिहाना, अरफात अदीब, कादिर चौधरी। और ये अगला पत्र श्रोताओं हमें मिला है, ये अगला पत्र है शेरवानी स्कूल गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से। भेजने वाले हैं आफताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ अनवर मास्टर, लुबना अंसारी, गंगाधर सावनकर, विजय लक्ष्मी सावनकर, राजेश, राकेश, ऋषिता, जिला नांदेड़, कुंडलवाड़ी, महाराष्ट्र से। और ये एक हमारे श्रोता हैं अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक और आदित्य कसाना, कांट रोड, लदावली से। ये एक पत्र और हमें मिला है मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब, बाजार रोड, मुंगीसापुर से। भेजने वाले हैं मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरू निशा, शबिस्ता मोहम्मद, नबी पलक, लुबना और यश मंसूरी। और ये श्रोता हमें मैसेज भेज रहे हैं और मैसेज हमें मिला है योगनगर बुढ़ाना बुढ़लाड़ा पंजाब से। भेजने वाले नरेंद्र मेहता, सुनीता मेहता, हनी मेहता, सिमरन मेहता और प्रेमलता मेहता। ये अगला मैसेज श्रोता हमें मिला है और ये मैसेज है मोहम्मद शराफत रंगरेज, आसिफ रंगरेज, सादिक रंगरेज, वसई ईस्ट मुंबई। गांव जुझैला, थाना शिवाला कला, बिजनौर से राशिद अंसारी, परवीन झा, निशात आयसा, साइना महविश, मोहम्मद अफ़ान और अधीना नूर। ये अगला मैसेज वडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा का। और ये पत्र श्रोता हमें मिला है, ये पत्र हमें भेजा है जिला मुरादाबाद गांव दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से। भेजने वाले मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल, सीमा मानवी, तन्वी लक्ष्य, मोनी, ऋतिक और राजवीर सिंह। मौला अफगानन शेरकोट से हमारे श्रोता है नदीम बाकी, कलीम बाकी, अलीम बाकी, अजीम बाकी, अदीम बाकी, अब्दुल गनी, अलमीर और मोहम्मद मोहम्मद जैन के साथ ये है जन्नत। और ये हमारे श्रोता हैं परी महल कासगंज से। और ये परी महल कासगंज से हमारे श्रोता हैं और ये हमें मैसेज इन्होंने हमें भेजा है। भेजने वाले हैं इलमा खान, एम असलम सैफी, मास्टर जाहिद अली, गंज डुंडवारा से इरफान कुरैशी और शमसुल कमर राही। जलालाबाद वेस्ट से हमें ये हमारे श्रोता सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया, दिशानी, निमित और आहुजा। और ये सभी श्रोता सुनना चाहते हैं फिल्म कामचोर का ये गीत, आवाज़ लता मंगेशकर और किशोर कुमार की, बोल है इंदिवर के और संगीत राजेश रोशन का।

कार्यक्रम का अगला गीत श्रोताओं हमने लिया है फिल्म कभी कभी से, आवाजें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। गीत के बोले हैं साहिल लुधियानवी के, संगीत खय्याम का, और इस गीत को सुनना चाहे आप सबने। ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से सुधाकर राजे जाधव देशमुख, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव देशमुख, कुमार संचित वायल, कुमार प्रथमेश देशमुख, कुमार सर्वेंद्र देशमुख, प्रणाली देशमुख, सानवी देशमुख और कुमारी कल्पना देशमुख। ये मैसेज हमें मिला दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से, भेजने वाले हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा। और ये पत्र श्रोता हमें मिला है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से, भेजने वाले टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप सिंह, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज। हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से ये हमारे श्रोता हैं रज्जाक मोहम्मद, समीम बेगम, इमरान खान और इरफान खान। एक ये मैसेज हमें मिला है और भेजने वाले हमारे श्रोता हैं जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से, और भेजने वाले हमारे श्रोता हैं मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा, राजकुमार बोडाना और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी, रोहित रितु और मुकेश जगताप। खेल बाजार पानीपत से ये हमारे श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं नरेश मल्होत्रा, नीटू, लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो, कोयल मल्होत्रा, नानकचंद मल्होत्रा, और इन्हीं के साथ एक हमारे श्रोता हैं शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयू सिक्का, कोयल सिक्का, डुग्गू भाविक सिक्का। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और विमल अनेजा। मामूलवाड़ी महाराष्ट्र से हमारे श्रोता हैं सोपान ताड़े, विजय ताड़े, और जिगांव विदर्भ से वसंत राव भोजने और सुनंदा भोजने। ये हमारे श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं, ये हैं हमारे श्रोता गौतम नगर नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले और आरती जोंधले। व्हाइट फील्ड बेंगलुरु से हमारे साथ श्रोता हैं भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिव्यांशु भूषण, संस्कृति पोरुस। उत्तम नगर दिल्ली से कमला रानी, बोधराज खोरवाल, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश। गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर, धनंजय कटनकर और सरोज चौक अमरावती से कमरुल्ला ठेकेदार और नसीम बेगम। गांव लोहड़ी जिला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से हमारे श्रोता हैं जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, राघवेंद्र, अरविंद, रागनी, रिया, रेनू, दिव्यांशी, आराधना, रोनिका यादव, चंद्रेश गोहर और सुनील पाठक। लालमाता सुदामा नगर रटलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से हमारे श्रोता हर्षिता, रामेश्वर, परमेश्वर, मीनाक्षी, कान्हा, श्रीमती मनोहर बाई बागरी और प्रभुलाल बागरी। गांव पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बालकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति वर्मा, प्रहलाद और राजेंद्र वर्मा। कलाना भादरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से विक्रम कड़वासरा, सचिन, सतीश, योगेश कड़वासरा और युधव कड़वासरा। एक हमारे श्रोता सेक्टर 5 सूर्यनगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी पोस्ट और गांव नांगलसोती से हैं मोहम्मद असलम पेंटर। एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से नाराय खर्चे, ललिता खर्चे, गणेश खर्चे, कार्तिक खर्चे, परी खर्चे, स्वाति प्रयाग चौधरी। सेक्टर 5 कुड़ी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी। जीतपुर खास नांगलसोती से आरव राजपूत, इशिका चंचल और रंजना। ये हमारे सभी श्रोता सुनना चाहते हैं कभी कभी फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में।

आकाशवाणी नजीबाबाद से श्रोता आप सुन रहे कार्यक्रम आपकी फरमाइश। अगर आप भी अपने पसंद का कोई गीत सुनना चाहते हैं तो अभी सीधे हमारे स्टूडियो में व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 9457078288। और कार्यक्रम का अगले गीत के लिए फरमाइश हमें मिली है सेक्टर 5 कुड़ी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद चौहान मोहिनी चौहान। और ये हमारे श्रोता हैं एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोत, निखिल कांगड़ा और तन्वी बोत। मोहल्ला बारादरी महमूद खान रामपुर से रफत साहब, सईद मंसूरी, राशिद मंसूरी, असद, फिरोजा मुस्कान, अफसर अली और नगमा नाज मंसूरी। उत्तर प्रदेश जिला बिजनौर पोस्ट ऑफिस राजा का ताजपुर गांव पंडिया से रामदयाल सिंह, शशि देवी, खुशबू, प्रतिभा, शिखा, सत्यम, कार्तिक, रोबित और इनके परिवार के सभी सदस्य। और ये अगला मैसेज हमें मिला है श्रोताओं नाज पैलेस अजमेर शरीफ से, और भेजने वाले हैं सैयद आलम हाशमी, गुलनाज नाज, सलमा नाज, असद अरहम और मोहम्मद आलम हाशमी। अमरोहा कोंखेड़ा से आस मोहम्मद, जिशान, जुनैद मलिक और शारिक मलिक। रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से जगपाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां, आजाद नगर, लक्सर, हरिद्वार से। आदर्श नगर मलोट पंजाब से हमारे श्रोता राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मेंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, साइना शर्मा और निवान शर्मा। ये सभी श्रोता सुनना चाहते हैं फिल्म लावारिस का ये गीत, आवाज किशोर कुमार की।

और कार्यक्रम के अगले गीत के लिए श्रोताओं, ये फरमाइशी मैसेज हमें मिला है गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी और पुष्पेंद्र कुमार डूडी का। लक्सर रोड गांव सोहड़ी कस्बा पुरगाजी जिला मुजफ्फरनगर से मोहम्मद जाबिर, मोहम्मद हुजैफा, मोहम्मद शाहनवाज, मोहम्मद शाहरुख, मोहम्मद शोएब कहकशा और इनका पूरा परिवार। मरहरा दरवाज़ा एटा से हमारे श्रोता हमारे साथ हैं और इन्होंने मैसेज हमें भेजा है। भेजने वाले नबी हसन अब्बासी, सहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी, अनम यशफ अब्बासी और रसीद वारसी। तहसील नजीबाबाद गांव मीरमपुर बेगा से हमारे श्रोता हमारे साथ हैं और इन्होंने हमें मैसेज भेजा है। मोहम्मद कैफ हैं भेजने वाले, सैफ, ओवैस, उबेद, मोंटी, डॉक्टर विजय, कासिम पेंटर और इनके परिवार के सदस्य हैं। बीड़ शहर महाराष्ट्र से नंदकिशोर घटे, सीता घटे, साक्षी घटे, जयश्री महेत्रे, अंजलि करवा, बाला साहेब करवा, रामनिवास अग्रवाल, धनंजय और पी बी कुलथे। नई बस्ती गुंज डुडवारा से हमारे साथ हमारे श्रोता जुड़े हैं और ये हमारे श्रोता हैं मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम, मोहम्मद तौसीफ, मोहम्मद तैमूर हाशमी, मोहम्मद कलीम हाशमी। गांव व डाकघर नीमनाबाद जिला जींद हरियाणा से जसवीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर, करमजीत कौर। बीजना मुरादाबाद से राजवीर सिंह यादव, कुणाल यादव, हर्ष यादव, मनीष यादव, अंशिका यादव, यूनुस खान और सोफिया खान। जैन मंदिर वाली गली कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरी अंसारी, नौरीन अंसारी, सायना आसना अंसारी और मोहम्मद कैफ अंसारी। सरायमीर स्ट्रीट नगीना से रईस अहमद राही, रविश अहमद राही, रुएश अहमद राही, रिशान अहमद, रुशेज अहमद, रुशियान अहमद राही और इनके परिवार के सभी सदस्य। ये मैसेज हमें मिला है जमशेदपुर झारखंड से, सुपाही गांव से देवेंद्र ताती, राकेश ताती, प्रकाश, निशा कुमारी, रेशमा कुमारी, दीपाली कुमारी और देवेंद्र। अनारकली बाजार जगराव

अबनूर और मनिंदर सिंह। और कार्यक्रम के अंतिम गीत के लिए श्रोताओं, ये हमारा अंतिम मैसेज हम अपने कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं, और ये मैसेज हमें मिला है कृष्ण की नगरी मथुरा से, और भेजने वाले हैं सबा अंसारी, शकील अंसारी, हिना अंसारी, बुशरा अंसारी, गुलिस्ता रानी, नंदिनी और अंजलि। ये सभी हमारे श्रोता सुनना चाहते हैं फिल्म लैला मजनू का ये गीत। आवाज़ें हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी फरमाइश, मीडियम वेव 314.47 मीटर पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजे हैं, अब आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। सरकार संसद में नीट और उससे जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार के आश्वासन के बावजूद नीट मुद्दे पर चर्चा की अपनी पुरानी मांग से पीछे हट गए हैं। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अन्य सदस्यों के साथ मिलकर नीट मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर लोक कल्याण मार्ग पर विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। मुलाकात के बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने इस मामले पर चर्चा की मांग मान ली है। नीट पेपर लीक मामले को लेकर प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए सभी विपक्षी नेताओं को दिल्ली पुलिस ने रिहा कर दिया है। इनमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी शामिल हैं। इन नेताओं को लोक कल्याण मार्ग के पास प्रदर्शन स्थल से हिरासत में लिया गया था। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार स्थगित हुई। दोनों सदन तीन बार स्थगित हुए। विपक्षी दल नीट पेपर लीक मामले और अन्य मुद्दों पर नारेबाजी करते रहे। हंगामे के कारण दोनों सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल भी नहीं हो सका। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला और बाद में पीठासीन अधिकारियों ने विरोध कर रहे सदस्यों से बार बार सदन की मर्यादा बनाए रखने और तय कामकाज को आगे बढ़ाने का आग्रह किया, लेकिन हंगामा जारी रहने के कारण सदन को दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा का हाल भी कुछ ऐसा ही रहा। राज्यसभा के चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन और डिप्टी चेयरमैन हरिवंश की बार बार अपील के बावजूद विरोध कर रहे सदस्य नारेबाजी करते रहे, जिसके कारण सदन को स्थगित करना पड़ा। सुपर्णा सेकिया और आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और

मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11:10 हुए हैं। हमारी आज की ये प्रसारण सभा अब संपन्न होती है। सवेरे 5:55 पर प्रातःकालीन सभा में फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय हिंद।